नमस्कार, हम विविध भारती से बोल रहे हैं। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 26वीं तिथि, तदनुसार 17 अगस्त सन 2026। हम अपने श्रोताओं का स्वागत करते हैं।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। हम आपको बता दें कि हमारे कार्यक्रम डीटीएच और इंटरनेट स्ट्रीमिंग पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा न्यूज ऑन एआईआर,

0: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक है। श्री शाह ने कल राजस्थान के अलवर में राज्य के 17 जिलों में 6400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और लोकार्पण करते हुए ये बात कही।
1: 2047 में अगर भारत को पूर्ण विकसित बनाना है तो ये युवा, गरीब, अन्नदाता और महिला को ताकतवान बनाना पड़े। आज यही मन से किसानों को किसान सम्मान निधि, पशुपालकों के लिए 500 करोड़ की डेयरी की व्यवस्थाएं, युवाओं को नौकरी और माताओं के लिए, बहनों के लिए सरस डेयरी का एक्सटेंशन का काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया।
0: ब्रिक्स के पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन पर संपर्क समूह के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। भारत कल ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। इस कार्यक्रम का आयोजन भारत की ब्रिक्स की अध्यक्षता के विषय के अंतर्गत किया जाएगा। इस वर्ष इस सम्मेलन का विषय लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण है। ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक का संचालन केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार 2026 प्रदान करेंगे। मंत्रालय ने बताया कि इस अवसर पर पेंशन मित्र पुस्तिका और देशव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र DLC अभियान 5 के दिशा निर्देश भी जारी किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान एक बैंक प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी। इसमें 17 पेंशन वितरण बैंक सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए तैयार अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रदर्शन करेंगे। राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार योजना 2026 के लिए 15 कर्मचारियों का चयन किया गया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने UGC नेट और परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र की पुनर्परीक्षा की घोषणा की है। इन विषयों में कई त्रुटियों की शिकायतें मिलने के बाद ये निर्णय लिया गया है। NTA ने बताया कि अंग्रेजी का विषय 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक, वाणिज्य विषय का पेपर उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक और समाजशास्त्र का विषय 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित किया जाएगा। विशाखापत्तनम की सभी उड़ानें आज से भोगपुरम स्थित नए अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से संचालित होंगी। एयर इंडिया भोगपुरम और दिल्ली के बीच 14 साप्ताहिक उड़ानें जारी रखेगी। 77,342 वर्ग मीटर में फैला यह नया टर्मिनल यात्रियों के लिए बेहतर सुविधा और परिचालन दक्षता प्रदान करता है। BWF बैडमिंटन चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। महिला सिंगल्स में PV सिंधु का मुकाबला आयरलैंड की सोफिया नोबेल से होगा। वहीं महिला डबल्स में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी पहले दौर में स्पेन की जोड़ी से खेलेगी। आयुष शेट्टी का सामना चीन के शी यू क्यूई से होगा। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी को बाई मिलने के बाद वे पहले ही दूसरे दौर में पहुंच चुके हैं। वहीं भारतीय जोड़ी MR अर्जुन और हरिहरन अमस्करुणन का मुकाबला आयरलैंड की जोड़ी से होगा। उधर पुरुष क्रिकेट में भारत आज श्रीलंका के गाले अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में श्रृंखला के पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन पहली पारी के अपने 460 रन से आगे खेलना शुरू करेगा। पुरुष हॉकी में भारतीय टीम आज नीदरलैंड्स में अपने दूसरे मैच में इंग्लैंड का सामना करेगी। आज का मुकाबला पूल डी में शीर्ष स्थान हासिल करने वाली टीम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। भारत ने वेल्स पर 3-1 की जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की थी। और मौसम विभाग ने आज ओडिशा और पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाकों में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश और लद्दाख में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये है विविध भारती।
3: वंदन वार।

आज का चिंतन। स्वामी विवेकानंद का कथन है, ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से हमारी हैं, लेकिन हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। ये था आज का चिंतन। लीजिए अब सुनिए भक्ति रचनाएं।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए सुनिए आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। अब से थोड़ी देर बाद यानी 6:35 पर सुनिएगा श्री रामचरित मानस गान, भाग होगा 283। 6:45 सुबह और शाम 6:45 पर सुनिए संगीत सरिता कार्यक्रम। संगीत सरिता कार्यक्रम में आज सुनिए श्रृंखला ताल प्रवाह तबला वादक। इस श्रृंखला की पहली कड़ी कलाकार हैं पंडित कालीनाथ मिश्र, प्रस्तुति मनीषा जैन की। 7 बजे से भूले बिसरे गीत 7:30 से हम हेरा ही प्यार के। 8:15 पर त्रिवेणी और 8:30 पर चित्रलोक। 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम आज का केंद्रित होगा अभिनेता सचिन पिलगांवकर पर। प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। 10 बजे पिटारा में उजाले उनकी यादों के, इसके अंतर्गत सुनेगा नाट्य निर्देशक शिक्षाविद और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय एनएसटी नई दिल्ली की पूर्व निदेशक पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे से यूनुस खान की बातचीत का पहला भाग। संपादन सहयोग योगिता जाधव का, प्रस्तुति तेज श्री कांबले का। ग्यारह बजे रंग तरंग, 12:05 पर यादों की महफिल, 1 बजे सुनेगा सुरीला सफर। 2 बजे त्रिवेणी और 2:30 पर सदाबहार नगमे प्रोग्राम। सखियों सहेलियों का कार्यक्रम सखी सहेली 3 बजे से, प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक। 4 बजे पिटारा के अंतर्गत सुनिएगा सेहतनामा, इसके अंतर्गत सुनिए फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर हर्षदा राजाध्यक्ष से यूनुस खान की बातचीत, प्रस्तुति है जुबैर खान की। 5:30 पर तराने नए पुराने।

6:35 पर संध्या रंजन, 6:45 पर सुने संगीत सरिता। आपको फिर से बता दें, श्रृंखला होगी ताल प्रवाह तबला वादक। इस श्रृंखला की पहली कड़ी कलाकार हैं पंडित कालीनाथ मिश्र, प्रस्तुति मनीषा जैन की। फौजी साथियों का कार्यक्रम जयमाला सुनेगा शाम 7 बजे से 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत एक ही फिल्म से। हवा महल में रात 8 बजे सुनिए झलकी शाही दावत, लेखन पीवी राव का, निर्देशन साधना भारद्वाज का। 8:15 पर चित्रलोक, 9 बजे कार्यक्रम आपके लिए, 9:30 पर आज के फनकार। रात 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा निर्देशक डेविड धवन पर, प्रस्तुत करता है रमेश गोखले। 10 बजे जाएगी 10:30 पर ढलती जाए रात, और 11 बजे रंग तरंग। आप सुन रहे थे आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षेप में विवरण।

अपने को समर्पित कर देने के लिए रावण ने सीता को एक माह का समय दिया था। इस अवधि की समाप्ति पर सीता जी के लिए अपना अंत हो जाने से अधिक व्याकुलता का कारण पति वियोग है। वो त्रिजटा से कुछ ऐसा उपाय करने की प्रार्थना करती हैं जिससे वो शीघ्र शरीर त्याग कर सकें। त्रिजटा उन्हें धीरज बंधाती हैं। हताश सीता अशोक वृक्ष से प्रार्थना करती हैं, तुम्हारे नए कोमल पत्ते अग्नि के समान दिख रहे हैं, तुम ही मुझ पर अग्नि वर्षा कर दो ताकि मेरी विरह व्यथा का अंत हो जाए। अशोक वृक्ष की डाल पर बैठे हनुमान जनक नंदिनी के शोक सने वचन सुनकर विचलित हो जाते हैं। वह श्रीराम की अंगूठी सीता जी के सामने गिरा देते हैं। मुद्रिका पहचान कर सीता जी को आश्चर्य होता है। श्रीराम की महिमा के गान के स्वर सुनकर वह राम कथा रूपी अमृत बरसाने वाले से अपने सामने प्रकट होने की प्रार्थना करती हैं।

0: नमस्कार मित्रों, समूची सृष्टि एक निश्चित लय में गतिमान है और इस चराचर जगत की गति लय जैसे किसी ताल में निबद्ध है और यह मानव जीवन प्रवाहमान है इसी ताल में। श्रोताओं, आज से आरंभ हो रही है श्रृंखला ताल प्रवाह। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध तबला वादक कालीनाथ मिश्र। आपसे बातचीत की है रामकृष्ण दास ने। आइए सुनते हैं इस श्रृंखला की पहली कड़ी।
1: संगीत सरिता के सभी रसिक श्रोताओं, आप सभी को मैं रामकृष्ण दास एक नई श्रृंखला में स्वागत करता हूं। इस संगीत श्रृंखला का नाम है ताल प्रवाह। इस कार्यक्रम में हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं बनारस घराने के जाने माने तबला वादक श्री कालीनाथ मिश्र जी। मिश्रा जी, आपका स्वागत है, आपको मेरा नमस्कार।
2: नमस्कार।
1: हमारे साथ सारंगी में संगति प्रदान करेंगे उस्ताद फारूक लतीफ खान साहब। खान साहब, आपको मेरा नमस्कार।
3: नमस्कार।
1: और हारमोनियम पर संगति प्रदान करेंगे श्री विनोद पड़गे जी। विनोद जी, आपको भी मेरा नमस्कार।
4: नमस्कार।
1: आज से लेकर कई दिनों तक ये ताल प्रवाह चलता रहेगा, जिसमें तालों के बारे में और तबला वादन के विभिन्न शैलियों के बारे में श्री कालीनाथ मिश्रा जी वादन करेंगे और इसके बारे में बोलेंगे भी। मिश्रा जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपके तबला वादन का शुभारंभ बहुत कम उम्र में हुई होगी, और जितना मुझे पता लगा कि आप गायक परिवार से हैं और आपने तबला वादन की तालीम पंडित शंभुनाथ मिश्रा, पंडित मदन मिश्रा एवं बनारस घराने के मूर्धन्य कलाकार पद्म विभूषण पंडित किशन महाराज से प्राप्त की। मिश्रा जी, हम आपके बारे में और अधिक कुछ जानना चाहेंगे।
2: दास बाबू, सबसे पहले मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ संगीत सरिता का, जिन्होंने मुझे इस स्टूडियो में बुलाया। मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूँ। मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि मैं एक संगीत परिवार में जन्म लिया। 4.5 साल की उम्र में हमने तबला शुरू कर दिया।
1: वाह।
2: और कहते हैं कि पूजा पाठ करने में सबसे पहले भगवान गणेश को याद करते हैं। हमारे गुरु जी पंडित किशन महाराज जी हमेशा अपने कार्यक्रम का समापन गणेश परण से करते थे, तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना गणेश परण से शुरू किया जाए। 3 ताल से लेता हूँ दास बाबू। 3 ताल सभी तालों का राजा है, और कहते हैं कि जिसने 7 सीख लिया वो रे तक पहुंच जाएगा, जिसने 10 सीख लिया वो तधा तक पहुंच जाएगा।
1: क्या कहने।
2: तो हम सोच रहे हैं कि सबसे पहले विलंबित 3 ताल लिया जाए। गंग गंग गणपति गज मुख मंगल गिट गिड गिट गिड गिट गिड थुन थुन तत् तत्थई जय जग वंदन वक्त तुंड दानी दाता दिघन हरन शुभ करन धागे ना धागे धुम कीट तक धुम कीट तक धुम कीट थुरंग तक। तो मैं इसे विलंबित 3 ताल में बजाता हूँ फारूक भाई।

पहले मैं ये गणेश परन पढ़ के सुनाता हूं। गंग गंग गणपति गज मुख मंगल गीठ गीड़ गीठ गीड़ गीठ गीड़ थुन थुन तत् तत् थै जय जग वंदन वक्रतुंड दानी दाता विघन हरन शुभकारन धागे न धागे धूम कीट तक धूम कीट। इसमें खास पखावज का अंदाज है कि भगवान गणेश पखावज कैसे बजाते थे, उन्हीं का एक अंदाज है, क्योंकि भगवान गणेश पखावज बजाते

초랑 짜카타카 되기는 타 짜자타카 되기는 타 짜자카타카 되기는 타 ये था भगवान गणेश का आराधना। अब बनारस का उठान का क्या अंदाज है, प्रस्तुत है उठान।

बनारस का जो एक अंदाज है वो खुले हाथों से बजाने का एक अंदाज है। तो श्रोता, एक क्या होता है पहाड़, उसी का एक अंदाज।

ये जो एक अंदाज है बनारस का, थाप, चाट और गत्ता तीनों कैसे बोलता है,

0: ये था हमारा उठान।
1: क्या बात है, बहुत खूबसूरत चीजें आपने प्रस्तुत की।
0: धन्यवाद,
1: बहुत अच्छा लगा।
0: धन्यवाद।
1: हम ये जानना चाहेंगे, आपने जो उठान की बात की, ये किस लिए बजाया जाता है? हमने सुना है कि नृत्य में कुछ आमद या सलामी ये भी कहते हैं, तो ये क्या चीज है?
0: उठान का मतलब होता है जोरदार बोलों का प्रवाह, नाम है ताल प्रवाह, और सरिता में भरी हुई संगीत। उठान का जो एक अंदाज है वो सिर्फ नाच में नहीं होता है, एक सारंगी प्लेयर, एक सितार प्लेयर, हर इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले पहले एक मूड बनाते हैं, तो वो अपने सुर को देखते हैं। लेकिन बनारस का जो अंदाज है, हमारे गुरुजी पंडित किशन महाराज जी या शंभुनाथ मिश्रा जी, उनका जो एक अंदाज है, उठान का मतलब होता है माहौल बनाना। जब बरसात होती है, बरसात जब होने वाला होता है, तो पहले बादल अपना मूड बनाते हैं, तब कहीं बारिश होती है, और बादल का मूड बनेगा 15 मिनट में कि 20 मिनट में। तो जो एक अंदाज है, धा का साउंड बोलों के साथ तालमेल, एक प्रेम विलाप बोलों के साथ, छोटी छोटी तिहाइयां लेके तब वो पहाड़ पे चढ़ते हैं। फिर उठान का जो साउंड होता है वो पखावत से आया है वो।
1: अच्छा
0: जी हाँ, वो पखावत से आया है। तो उठान का मतलब होता है कि पहले ही पब्लिक में ऐसा उठान बजा दो कि पूरी पब्लिक कम से कम एक घंटे आपको देखती रहे, और वो बड़ा पावरफुल साउंड होता है।
1: वाह
0: जी
1: मिश्रा जी, आपने इतना खूबसूरत माहौल तैयार किया है, बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया।
0: धन्यवाद।
1: तो कोई एक गीत आप बताइए ना हमारे श्रोताओं के।
0: देखते हैं कि हमें संगीत सरिता ताल प्रवाह में कौन से गाना सुनाते हैं हमारे श्रोताओं को।

ताल प्रवाह। इस श्रृंखला की ये थी पहली कड़ी। सुप्रसिद्ध तबलावादक कालीनाथ मिश्र से बातचीत कर रहे थे रामकृष्ण दास। तकनीकी सहयोग वंदना ठाकुर और निखिल धामापुरकर का। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा

सुनो गजर क्या गाए, समय गुजरता जाए, सोना ना खोना ना, भूली बिसरी गीत कार्यक्रम में पहला गाना आपने ये सुना बाजी फिल्म से। आवाजें गीता दत्त और साथियों की थी। साहिल लुधियानवी ने इस गीत को लिखा था और एसटी बर्मन ने इस गीत की धुन बनाई थी। लीजिए अब सुनिए बादल फिल्म का ये गाना जिसे लता मंगेशकर ने गाया है। शब्दकार हैं शैलेंद्र और संगीतकार हैं शंकर जयकिशन।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

दत्त महमूद और लता मंगेशकर की आवाजों में सगाई फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। रचना राजेंद्र कृष्ण की थी, संगीतकार थे सी रामचंद्र। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में बस एक बहुत छोटा सा अंतराल लेते हैं।

0: सुरैया की आवाज में राजपूत फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। बोल कैफ इरफानी के थे, संगीतकार थे हंसराज पहल।
1: कुछ आवाजें सिर्फ कानों तक नहीं पहुंचती, वे सीधे दिल में उतर जाती हैं। वीर जारा, टोरबाज, इंडियाज मोस्ट वांटेड, सीआईडी, अदालत, जाने कितनी फिल्मों और धारावाहिकों में देखा है उनका अभिनय और सुनी है उनकी सशक्त आवाज।
2: अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं जीवन में, आपके मन में वैसी दीवानगी और एकदम पागलपन होना चाहिए कि मुझे ये करना ही है, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग।
1: अभिनेता, निर्माता, निर्देशक, वॉइस ओवर आर्टिस्ट और डबिंग डायरेक्टर पंकज रैना की कश्मीर से लेकर मुंबई तक की सारी यादें करेंगे विशेष मुलाकात 19 अगस्त 2026 को आज के मेहमान कार्यक्रम में शाम 4 बजे। सुनिएगा विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन पर।
3: जब तक हाथ पैर सक्रिय रहते हैं हमें उनके महत्व का अंदाजा नहीं होता। जब होती हैं हड्डियों या मांसपेशियों की समस्याएं तो समझ नहीं आता कि क्या करें।
4: फर्स्ट साइन इज पेन, वो बता देता आपको कि कुछ गलत हो रहा है।
3: सेहत नामा कार्यक्रम में फिजियोथेरेपिस्ट हर्षदा राजाध्यक्ष आ रही हैं।
4: एक्सरसाइज करते रहो, शुगर और सॉल्ट अवॉइड करो, जब भी पेन हो तो किसी को कंसल्ट करो।
3: 17 अगस्त शाम 4 बजे और 18 अगस्त सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: सेहत नामा।

0: अलबेला फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाजें थी लता मंगेशकर और चितलकर की, राजेंद्र कृष्ण के बोल थे और श्री रामचंद्र की तर्ज।
1: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
2: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
1: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
3: मैं अगले दिन आशुतोष गोवारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

मल्हार फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाजें थीं लता मंगेशकर और मुकेश की, रचना इंदीवर की थी, संगीतकार थे रोशन। अब आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की दीजिए इजाजत। सविता सिंह को नमस्कार।

आप सुने हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। हम हैं राही प्यार के। इस कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: गीत गाता चल इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाजें आरती मुखर्जी और जसपाल सिंह की थी। गीतकार और संगीतकार थे रविंद्र जैन।
1: खड़ी हो जा।
2: जब तक हाथ पैर सक्रिय रहते हैं हमें उनके महत्व का अंदाजा नहीं होता। जब होती हैं हड्डियों या मांसपेशियों की समस्याएं तो समझ नहीं आता कि क्या करें।
3: फर्स्ट साइन इज पेन, वो बता देता आपको कि कुछ गलत हो रहा है।
2: सेहतनामा कार्यक्रम में फिजियोथेरेपिस्ट हर्षदा राजाध्यक्ष आ रही हैं।
3: एक्सरसाइज करते रहो, शुगर और सॉल्ट अवॉइड करो, जब भी पेन हो तो किसी को कंसल्ट करो।
2: 17 अगस्त शाम 4 बजे और 18 अगस्त सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सेहतनामा।
4: कुछ आवाजें कानों तक नहीं पहुंचती, वे सीधे दिल में उतर जाती हैं। वीर जारा, तोरबाज, इंडियाज मोस्ट वांटेड, सीआईडी, अदालत, जाने कितनी फिल्मों और धारावाहिकों में देखा है उनका अभिनय और सुनी है उनकी सशक्त आवाज।
5: अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं जीवन में, आपके मन में वैसी दीवानगी और एकदम पागलपन होना चाहिए कि मुझे ये करना ही है, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग।
4: अभिनेता, निर्माता, निर्देशक, वॉइस ओवर आर्टिस्ट और डबिंग डायरेक्टर पंकज रैना की कश्मीर से लेकर मुंबई तक की सारी यादें करेंगे विशेष मुलाकात 19 अगस्त 2026 को आज के मेहमान कार्यक्रम में शाम 4 बजे। सुनिएगा विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली।

नदिया के पार, फिल्म का गीत आप सुन रहे थे आवाजें जसपाल सिंह और हेमलता की थी। गीतकार और संगीतकार थे रविंद्र जैन। हम है राही प्यार के इस कार्यक्रम में। चलिए एक बहुत छोटा सा अंतराल लेते हैं, अंतराल के बाद फिर से उपस्थित होंगे।

हमें राय प्यार के इस कार्यक्रम में आप सभी का फिर से बहुत स्वागत। दोस्तों, सादगी भरे अभिनय और शानदार अभिनय से दर्शकों के दिलों को जीतने वाले अभिनेता सचिन पिलगांवकर का आज जन्मदिन है। विविध भारती परिवार की ओर से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। सुनते हैं अखियों के झरोखों से फिल्म का ये गाना, जिसे गाया है हेमलता और शैलेंद्र सिंह ने, गीतकार। गीतकार और संगीतकार हैं रविंद्र जैन।

0: झुमके वाली ओ ठुमके वाली ओ झुमके वाली हो ओ ठुमके वाली हो जरा चल के बता कैसी रे तेरी चाल।
1: बालिका वधू फिल्म का गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार आशा भोसले की आवाजें थी, आनंद बख्शी के बोल थे, आर डी बर्मन की तर्स थी।
2: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
3: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
2: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
4: मैं अगले दिन आशुतोष गोवारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
2: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जइयो कहां से हुजूर।
5: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
6: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती।
5: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
6: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
5: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
6: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
5: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
6: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

त्रिशूल फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, आवाजें लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की थी। साहिल लुधियानवी की रचना आपने सुनी खयाम की। ये तर्ज थी इसी गाने के साथ ही आज का हम है राही प्यार के कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। 8 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
1: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहां आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ।

0: अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के दुर्गम इलाकों में जनगणना का पहला चरण वाली 1 सितंबर से शुरू होगा। इससे पहले नागरिकों की सुविधा के लिए आज से 31 अगस्त तक स्वगणना की विशेष सुविधा दी जाएगी। 1 अक्टूबर को संदर्भ तिथि मानकर लद्दाख में जनगणना 2027 पूरी हो जाएगी। ब्योरा हमारे संवाददाता से।
1: लद्दाख देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बनने जा रहा है, जहां जनगणना 2027 का कार्य पूरा किया जाएगा। इसके अंतर्गत जनसंख्या गणना 1 से 30 सितंबर तक होगी। स्वगणना आज से शुरू हो रही है। लद्दाख में पूरी आबादी को शामिल करने के लिए करीब 637 गणना ब्लॉक बनाए जाएंगे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जनगणना संचालन अधिकारी अमित शर्मा ने बताया कि सितंबर में जनसंख्या गणना कराने का निर्णय क्षेत्र में कड़ाके की सर्दी, दुर्गम इलाकों और सीमित पहुंच को देखते हुए लिया गया है। जनसंख्या गणना में आबादी के वितरण, जनसांख्यिकी संरचना, शिक्षा, आर्थिक गतिविधियों, पलायन, दिव्यांगता, भाषा, प्रजनन और आबादी से जुड़ी अन्य जानकारियां जुटाई जाएंगी। जनगणना 2027 डिजिटल माध्यम से कराई जा रही है। यांगचेन डोलमा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने UGC नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाज शास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की है। इन तीनों विषयों के पेपर में कई तरह की त्रुटियों की शिकायत मिलने के बाद ये निर्णय लिया गया है। NTA ने बताया है कि अंग्रेजी विषय की परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक प्रथम पाली में, वाणिज्य विषय की परीक्षा उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक दूसरी पाली में होगी। समाजशास्त्र विषय की परीक्षा 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली पाली में आयोजित की जाएगी। पीएम गति शक्ति पहल के अंतर्गत अब तक विभिन्न मंत्रालयों की लगभग 18,66,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली कुल 396 अवसंरचना परियोजनाओं की मंजूरी के लिए सिफारिश की गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया है कि इनमें से 256 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। इन परियोजनाओं में से 198 परियोजनाएं कार्यान्वयन की प्रक्रिया में है। मंत्रालय ने बताया है कि इन परियोजनाओं का मूल्यांकन नेटवर्किंग प्लानिंग ग्रुप NPG तंत्र के माध्यम से किया गया है। ये जानकारी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने संसद में हाल ही में संपन्न मॉनसून सत्र के दौरान लोकसभा में लिखित उत्तर में दी। इसका उद्देश्य विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक योजना और अवसंरचना परियोजनाओं के समन्वित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक साथ लाना है। ब्रिक्स के पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन पर संपर्क समूह के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। भारत कल ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। कार्यक्रम का आयोजन भारत की ब्रिक्स की अध्यक्षता के विषय के अंतर्गत किया जाएगा। इस वर्ष इस सम्मेलन का विषय लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण है। ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक का संचालन केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। झारखंड में JPSC JSSC भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का आज 24वां दिन है। विद्यार्थियों ने भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में अपना प्रदर्शन तेज कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सरकार और विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों के बीच आज बातचीत का एक नया दौर होगा।
2: JPSC JSSC अभ्यर्थियों ने कल रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट इक्का चौक तक विरोध मार्च निकाला। छात्रों ने JSSC CGL परीक्षा रद्द करने और भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की CBI जांच की मांग को लेकर नारेबाजी की। इस बीच राज्य सरकार ने आंदोलनरत छात्रों को आज दोपहर 2 बजे रांची में बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। छात्रों को अपने विधिक सलाहकारों के साथ वार्ता में शामिल होने की अनुमति दी गई है। रिफॉर्म मंच ने कहा कि सरकार छात्रों की मांगें स्वीकार करती है तो आंदोलन समाप्त करने की दिशा में कदम उठाया जा सकता है, अन्यथा आंदोलन जारी रहेगा। छात्रों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन का ऐलान पहले ही कर रखा है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: मध्य प्रदेश के इंदौर में देश में पहला वर्चुअल चिड़ियाघर शुरू

0: किया है। इसके साथ ही इंदौर प्राणी संग्रहालय में 14D सिनेमा थिएटर और वर्चुअल जंगल सफारी की सुविधा भी शुरू हुई है। एक रिपोर्ट।
1: करीब 4.5 करोड़ रुपए की लागत से PPP मॉडल पर 14D सिनेमा और वर्चुअल जंगल सफारी तैयार की गई है। वर्चुअल जंगल सफारी में लोग तकनीक के जरिए जंगल और वन्य जीवों का आभासी अनुभव ले सकेंगे। वहीं 14D सिनेमा में दर्शकों को फिल्म देखने का अलग अनुभव मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इन सुविधाओं का कल लोकार्पण किया और स्कूली बच्चों के साथ 14D सिनेमा में फिल्म भी देखी। इन नई सुविधाओं से बच्चों और पर्यटकों को वन्य जीवों और प्रकृति को तकनीक के जरिए समझने का मौका मिलेगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार 2026 प्रदान करेंगे। मंत्रालय ने बताया है कि इस अवसर पर पेंशन मित्र पुस्तिका और देशव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र DLC अभियान के 5वें चरण के दिशा निर्देश भी जारी किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान एक बैंक प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी। राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार योजना 2026 के लिए 15 कर्मचारियों का चयन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्र की प्रगति केवल सामूहिक संकल्प और एकता की शक्ति से ही संभव है। उन्होंने सोशल मीडिया पर संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए कहा कि यही भावना भारत की प्रगति और समृद्धि की मजबूत नींव है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में भ्रामक लेबलिंग और उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूकता विषय पर एक परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए टेलीफोन नंबर है 0112331048 या 2371717 या 2371716 और 2331444। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी प्रश्न भेजे जा सकते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज पटना में चुनावी साक्षरता क्लब का शुभारंभ करेंगे। इस पहल को चुनावी साक्षरता, डिजिटल सहभागिता और लोकतंत्र में नागरिकों की सार्थक भागीदारी को नई गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। मौसम विभाग ने आज ओडिशा और पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि 4 जिलों के लिए रेड अलर्ट और 11 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
2: राज्य सरकार ने प्रभावित जिलों के अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी है और भद्रक, बालेश्वर और जाजपुर में राहत और बहाली के काम में तालमेल बिठाने के लिए 3 IAS अधिकारियों को तैनात किया है। मछुआरों को कल तक समुद्र से दूर रहने की सलाह दी गई है। बालेश्वर जिले के जलेश्वर में लगातार बारिश के कारण एक दीवार गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है और एक अन्य गंभीर रूप से घायल है। मयूरभंज जिले में रेल सेवा भी प्रभावित हुई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: जम्मू कश्मीर में बूढ़ा अमरनाथ की वार्षिक यात्रा आज से शुरू हो गई है। पुंछ जिले की मंडी तहसील में बाबा श्री बूढ़ा अमरनाथ मंदिर की 12 दिवसीय ये वार्षिक यात्रा 28 अगस्त रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी। एक रिपोर्ट।
3: उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के पहले जत्थे को कड़ी सुरक्षा के बीच पुंछ के लिए रवाना किया। राजौरी और पुंछ जिलों में यात्रा मार्ग पर सुरक्षा और निगरानी के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुंछ जिला प्रशासन ने देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अग्रिम पंजीकरण की सुविधा देने के लिए एक विशेष पोर्टल भी शुरू किया है। समुद्र तल से करीब 4600 फीट की ऊंचाई पर स्थित बूढ़ा अमरनाथ मंदिर में स्वयंभू सफेद पत्थर का शिवलिंग है। यात्रा से जुड़ी सहायता के लिए श्रद्धालु जम्मू यातायात नियंत्रण इकाई से 0191246732 और श्रीनगर यातायात नियंत्रण इकाई से 0194247987 पर संपर्क कर सकते हैं। जम्मू से एन गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: और अब खेल खबरों के साथ हैं कृष्णकांत।
4: BWF बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप आज नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शुरू होगी। भारतीय खिलाड़ी आज से अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। महिला सिंगल्स में पूर्व विश्व चैंपियन और 9वीं वरीयता प्राप्त पीवी सिंधु का मुकाबला आयरलैंड की सोफिया नोबेल से होगा। महिला डबल्स में ट्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी पहले दौर में स्पेन की पाउला लोपेज और लूसिया रोड्रिगेज से भिड़ेंगी। पुरुष डबल्स में 5वीं वरीयता प्राप्त भारतीय जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को बाई मिलने के बाद वे पहले ही दूसरे दौर में प्रवेश कर चुके हैं। वहीं पुरुष क्रिकेट में भारत आज श्रीलंका के गौले अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में श्रृंखला के पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन पहली पारी के अपने 460 रन से आगे खेलना शुरू करेगा।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
5: धन्यवाद प्रियंका। वंदे मातरम पर तीखी तकरार और यूजीसी नेट पेपर में गड़बड़ी से जुड़े खबरों को आज हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों ने प्रमुखता दी है। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, आजादी के उत्सव के बाद सत्ता और विपक्ष में सियासी संग्राम। कांग्रेस मुख्यालय पर वंदे मातरम के गायन के बीच टोका टाकी, भाजपा बोली माफी मांगे। रेलवे स्टेशनों के पानी में जहरीले बैक्टीरिया मिलने की सीएजी की रिपोर्ट के बाद नवभारत टाइम्स ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के इस बयान को सुर्खी दी है कि रेलवे करीब 20,000 जगहों पर नया टैंक टू टैप पानी फिल्टर सिस्टम लगाएगा। पुरानी टंकियां बदली जाएंगी और नियमित जांच होगी। 5 बार के तृणमूल विधायक आशीष बनर्जी के दफ्तर में खुदकुशी की खबर को जनसत्ता सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने लिखा है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट हटाने की वजह जान सकेंगे यूजर्स। अमर उजाला की सुर्खी है, लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी के ऐलान के बाद बड़े सुधार की चल रही है तैयारी। छोटे शहरों में जेईई नीट सीयूईटी के मुफ्त कोचिंग सेंटर खोलेगी सरकार। पंजाब हरियाणा सहित 7 राज्य साथी पोर्टल से पायलट प्रोजेक्ट में 21 लाख बच्चे ले चुके हैं कोचिंग। पत्र ने अपने संपादकीय में लिखा है, कभी नक्सलियों का सबसे मजबूत गढ़ रहे बस्तर में आजादी के बाद से पहली बार तिरंगा फहराया जाना और प्रधानमंत्री मोदी का अपने संबोधन में युवा कार्यबल पर जोर देना स्वागत योग्य है, लेकिन विकसित भारत का लक्ष्य तभी अर्थपूर्ण होगा जब विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। दैनिक भास्कर की खबर ध्यान खींचती है, ना इंटरनेट ना बिजली, दीवारों पर ही नोट्स तैयार किए। राजस्थान के बाड़मेर और आसपास के जिलों के करीब 18 गरीब होनहारों ने नीट क्वालिफाई किया।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लद्दाख और जम्मू कश्मीर के बर्फबारी वाले इलाकों में जनगणना 2027 के लिए स्वगणना आज से शुरू। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यूजीसी नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र में त्रुटियों की शिकायत के बाद इनकी दोबारा परीक्षा कराएगी। झारखंड में प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों की आज रांची में राज्य सरकार के साथ नए दौर की वार्ता। ओडिशा और पश्चिम बंगाल के गांगई क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। जम्मू कश्मीर में बूढ़ा अमरनाथ की वार्षिक यात्रा आज से शुरू। और BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

नमस्कार। आज की त्रिवेणी मोड़ शब्द पर आधारित है। हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे मोड़ भी आते हैं जहाँ से जाकर लौटना मुनासिब नहीं होता। बड़े ही अजीब हैं ये जिंदगी के रास्ते। उस मोड़ पर आकर ठहर सी जाती है जिंदगी। इन्हीं अनजाने मोड़ पर कुछ लोग अपने बन जाते हैं, वहीं कुछ अपने होकर अनजान बन जाते हैं। इसमें कभी खुशी भी मिलती है तो कभी गम में बिखर जाते हैं। हर मोड़ पर एक नया शख्स मिलता है, नया चेहरा होता है, उसके साथ एक अनुभव जुड़ता है। यही मोड़ हमें मजबूत भी बनाता है।

जिंदगी में मोड़ों से भरी एक लंबी सड़क होती है। यही मोड़ हमें सिखाते हैं कि जिस रास्ते को तुमने चुना है, मंजिल उसके बहुत दूर है। कुछ पाना है तो कुछ मोड़ पर आकर लौटना हारने जैसा है। जैसे जब हम शहर में जीविका की तलाश में आते हैं तो समस्याएं, परेशानियां मुंह फैलाए आती हैं। ऐसे ऐसे मोड़ आते हैं कि उन स्थितियों में अपने आप को संभालना ही पड़ता है। कई दोस्त साथी बनते हैं, कुछ दूर तक साथ चलते हैं, लेकिन मुश्किलों के मोड़ पर कुछ हाथ छोड़ भी देते हैं। तब भावनाएं आहत होती हैं, लेकिन भरोसा खुद पर गर हो तो ये मोड़ भी सीधे हो जाते हैं।

कई बार हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो लगता है कि अगर वो एक मोड़ ना आया होता तो शायद हम इतने समझदार, इतने मजबूत ना होते। दर्द देने वाले मोड़ ही अक्सर इंसान को अपनी असली पहचान से मिलवाते हैं। इसीलिए जब भी जिंदगी किसी नए मोड़ पर लाकर खड़ा करे तो डरिए मत, हो सकता है वही मोड़ आपकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत अध्याय बन जाए। क्योंकि रास्ते चाहे कितने भी कठिन क्यों ना हो, हर मोड़ के बाद एक नई सुबह इंतजार करती है, एक नए मोड़ का।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। जब तक हाथ पैर सक्रिय रहते हैं हमें उनके महत्व का अंदाजा नहीं होता। जब होती हैं हड्डियों या मांसपेशियों की समस्याएं तो समझ नहीं आता कि क्या करें।
2: फर्स्ट साइन इज पेन, वो बता देता आपको कि कुछ गलत हो रहा है।
1: सेहतनामा कार्यक्रम में फिजियोथेरेपिस्ट हर्षदा राजाध्यक्ष आ रही हैं।
2: एक्सरसाइज करते रहो, शुगर और सॉल्ट अवॉइड करो, जब भी पेन हो तो किसी को कंसल्ट करो।
1: 17 अगस्त शाम 4 बजे और 18 अगस्त सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: सेहतनामा।

0: गब्बर इज बैक इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह और पलक मुछाल की आवाजें थी। मनोज यादव ने इस गीत को लिखा था और चित्रांगद भट्ट का संगीत था।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

0: धुरंधर फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, आवाजें थी जैस्मिन सैंडल्स और सतिंदर सतराज के। चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा पर।
1: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
2: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
1: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
3: मैं अगले दिन आशुतोष गोवारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: कि हम तुम चोरी से बंधे।

हाफ गर्लफ्रेंड फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आवाज़ एश किंग की आवाज़ थी और तनिष्क बागची ने इस गीत को लिखा था। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम। एक ब्रेक लेते हैं, फिर हाजिर होते हैं।

अरिजीत सिंह के आवाज में क्रिएचर फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। गीतकार थे टॉनी कक्कर और संगीतकार थे मिठो। दोस्तों आज 17 अगस्त है, 17 अगस्त 2026 और सावन का तीसरा सोमवार और नागपंचमी एक साथ, इसे बहुत सुंदर संयोग माना जाता है। आज नागपंचमी का पर्व मनाया जा रहा है। आज के दिन भगवान शिव महादेव और उनके आभूषण नाग देवता की पूजा अर्चना का विशेष महत्व माना जाता है। अब मन में सवाल ये उठता है कि नागों की पूजा क्यों करें? जवाब ये है कि हमारी संस्कृति इतनी खूबसूरत है कि प्रकृति के हर कण का सम्मान और पूजा करना सिखाती है, श्रद्धा करना, प्रेम करना सिखाती है। हम तो धरती, पेड़ पौधों, सूर्य, चंद्रमा, वायु, अग्नि, जल और प्राकृतिक सभी शक्तियों की पूजा करते हैं। हम कण कण में परमात्मा का निवास मानते हैं, इसीलिए हम पूजनीय मानते हैं। नाग केवल पूजनीय ही नहीं बल्कि प्रकृति और पर्यावरण का महत्वपूर्ण अंग भी हैं। भगवान शंकर के गले विराजमान नाग हमें याद दिलाते हैं सृष्टि के हर जीव का अपना महत्व है। और अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो किसान भाई हमारी ये जानते हैं, नाग यानी सांप हमारी फसलों के कितने बड़े रक्षक हैं। वे खेतों से चूहे और कीड़े मकोड़ों को साफ करके हमारी अन्न की सुरक्षा करते हैं, पर्यावरण की सुरक्षा करते हैं। इसलिए नाग पंचमी अंधविश्वास नहीं जैसा कि कुछ लोग मानते हैं, बल्कि प्रकृति और जीवों के प्रति कृतज्ञता और आभार व्यक्त करने का एक सुंदर तरीका है, सुंदर जरिया है, माध्यम है। इस पर्व से जुड़ी अनेक पौराणिक कथाएं हैं जिनमें भगवान कृष्ण और कालिया नाग की कथा प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि आज के दिन अनंत तक्षक, वासुकी, शेष, पद्म और तक्षक नागों की प्रतीक रूप में विधि विधान से यानी उनकी तस्वीर बनाकर पूजा करने से घर में, समाज में सुख समृद्धि का वास होता है। लेकिन एक बात का ध्यान अवश्य रहे कि जीवित सांपों को दूध ना पिलाएं, ये उनके लिए जानलेवा होता है। मूर्ति या प्रतीक रूप में पूजा करके जीव जंतुओं की रक्षा की जाए। तो आइए नागपंचमी के इस पावन अवसर पर हम अपनी परंपराओं को नमन करें और प्रकृति के प्रत्येक जीव के प्रति करुणा और सम्मान का भाव रखें, ये संकल्प लिया जाए।

केदारनाथ फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, आवाजें अमित त्रिवेदी और साथियों की थी। अमिताभ भट्टाचार्य के बोल थे, अमित त्रिवेदी का संगीत था। आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम, आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। अब वक्त है एक और छोटे से अंतराल का।

0: वाटर टू फिल्म का गीत आप सुन रहे थे विशाल मिश्रा और तुलसी कुमार की आवाजें थी। मनोज मुंतशिर ने इस गीत को लिखा था और विशाल मिश्रा ने धुन बनाई थी।
1: जब तक हाथ पैर सक्रिय रहते हैं हमें उनके महत्व का अंदाजा नहीं होता। जब होती हैं हड्डियों या मांसपेशियों की समस्याएं तो समझ नहीं आता कि क्या करें।
2: फर्स्ट साइन इज पेन, वो बता देता आपको कि कुछ गलत हो रहा है।
1: सेहत नामा कार्यक्रम में फिजियोथेरेपिस्ट हर्षदार राजाध्यक्ष आ रही हैं।
2: एक्सरसाइज करते रहो, शुगर और सॉल्ट अवॉइड करो, जब भी पेन हो तो किसी को कंसल्ट करो।
1: 17 अगस्त शाम 4 बजे और 18 अगस्त सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सेहत नामा
3: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
3: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।

0: या एक निर्देशक और एक प्राध्यापक, तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कुछ आवाजें सिर्फ कानों तक नहीं पहुंचती, वे सीधे दिल में उतर जाती हैं। वीर जारा, टोरबाज, इंडियाज मोस्ट वांटेड, CID, अदालत, जाने कितनी फिल्मों और धारावाहिकों में देखा है उनका अभिनय और सुनी है उनकी सशक्त आवाज।
3: अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं जीवन में, आपके मन में वैसी दीवानगी और एकदम पागलपन होना चाहिए कि मुझे ये करना ही है इरेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग।
2: अभिनेता, निर्माता, निर्देशक, वॉइस ओवर आर्टिस्ट और डबिंग डायरेक्टर पंकज रैना की कश्मीर से लेकर मुंबई तक की सारी यादें करेंगे विशेष मुलाकात 19 अगस्त 2026 को आज के मेहमान कार्यक्रम में शाम 4 बजे। सुनिएगा विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली।

0: आशिकी टू फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, आवाजें तुलसी कुमार और केके की थी, इरशाद कामिल के बोल थे और जीत गांगुली का संगीत था।
1: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर इस समय आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम। चित्रलोक कार्यक्रम में एक बहुत छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे।

0: सावन की हवा में घुली है मिट्टी की सोंधी खुशबू, हरियाली का प्यार प्यार और नोक झोंक। पहला लाभ गीत सुन रहे थे मुबारका फिल्म से मीका सिंह की आवाज थी, कुमार के बोल थे और गौरव रोशन का संगीत था।
1: कितने
0: फिर हेरा फेरी फिल्म का ये गाना आपको सुनवा रहे हैं।

फिर हेरा फेरी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, हिमेश रेशमिया की आवाज थी, समीर के बोल थे, हिमेश रेशमिया का संगीत था। बार बार देखो फिल्म का ये गीत अमर आरशी बादशाह नेहा कक्कड़ की आवाजों में। अमरीक सिंह और कुमार के बोल हैं।

बार बार देखो फिल्म के इसी गीत के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम समाप्त करने की दीजिए इजाजत सविता सिंह को। आप स्वस्थ रहें और समृद्ध रहें। नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: एक जमाना था 1951 या 50 में, बाबूलाल चतुर्वेदी यहाँ प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली से आए।
0: संगीतकार रवि,
2: उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम लोरियां रिकॉर्ड करना चाहते, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं, एक लाइन सुना करते, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के।
1: आप खाए थाली में, हमने कूदे प्याली में।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: दोस्तों, इस दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनके करियर की शुरुआत बचपन में ही हो जाए और उसी उम्र से उन्हें सफलता भी मिले। हिंदी फिल्मी दुनिया में तो ऐसे नाम बहुत ही कम है जिन्होंने बाल कलाकार के रूप में फिल्मी दुनिया में प्रवेश किया हो और अभिनय के क्षेत्र में ही बड़े होने तक सफलतापूर्वक नायक या नायिका के रूप में वो काम करते रहे हों। ऐसा ही एक कीर्तिवान कलाकार है जिसने हिंदी और मराठी फिल्म जगत में समान रूप से पूरी अधिकारिता के साथ अपने फन का लोहा मनवाया है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हरदिल अजीज कलाकार सचिन की, जिनका पूरा नाम है सचिन पिलगांवकर।
1: बड़े अच्छे लगते हैं
2: क्या?

0: बचपन ने मेरे अभिनय की कला को और ज्यादा संवारा, क्योंकि उस उम्र में कुछ ऐसे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला जिनसे बहुत कुछ सीखना नसीब हुआ। और उसके बाद ये दौर चलता रहा, जारी रहा, और होते होते मैं और कुछ सीखता गया। पहले मैं अपने बड़ों से सीखता था, आज
1: जी
0: अपने छोटों से सीखता हूँ। मुझे पहली फिल्म का ऑफर मिला होमी वाडिया साहब, जिनकी बसंत पिक्चर्स, जो बहुत फेमस स्टंट फिल्म्स बनाने में बहुत मशहूर हुआ करते थे, उनकी फिल्म थी जिम्बो का बेटा। उसमें मुझे उन्होंने टाइटल रोल के लिए सेलेक्ट किया, और जिम्बो मतलब टार्जन का एक इंडियन रूप हम समझ सकते हैं वैसा था। और उसमें बाकायदा मुझे टार्जन के जैसे कपड़े पहनाए गए, एक खंजर और वो जो टिपिकल टार्जन के कपड़े थे, उनमें मैंने पहली बार हिंदी में पदार्पण किया। और उसके बाद कई हिंदी फिल्मों में मैंने काम किया, लेकिन उसमें से एक अविस्मरणीय फिल्म बचपन की हिंदी में जो थी, वो थी मंझली दीदी, जो
1: जी
0: ऋषिकेश मुखर्जी साहब ने डायरेक्ट की थी, और जिसमें मुझे अवसर मिला था मीना कुमारी जी के साथ काम करने का। और बचपन में काफी मतलब ब्रह्मचारी, फिर चंदा और बिजली, बचपन, ऐसी अनगिनत फिल्मों में काम किया मैं।
1: 17 अगस्त 1957 को जन्मे सचिन पिलगांवकर ने जब बाल कलाकार के रूप में फिल्मी दुनिया में प्रवेश किया, तब उनकी उम्र थी मात्र 4 वर्ष। 1962 में रिलीज हुई इस मराठी फिल्म का नाम था हाँ माझा मार्ग एकला, और इस फिल्म में अभिनय के लिए सचिन को सर्वोत्तम बाल कलाकार का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। इस जबरदस्त शुरुआत के बाद उन्होंने लगभग 65 हिंदी मराठी फिल्मों में बाल कलाकार के रूप में काम किया, जिनमें प्रमुख हैं मझली दीदी, ज्वेल थीफ, चंदा और बिजली, ब्रह्मचारी, मीला और कृष्णलीला।

बिरला ही होगा जिसने 1975 की फिल्म शोले न देखी होगी। इस फिल्म में सचिन द्वारा निभाया गया किरदार अहमद आज भी सभी को याद है। अब सचिन बाल कलाकार नहीं थे, वो एक युवा कलाकार बन चुके थे। उसी वर्ष बतौर नायक उनकी पहली फिल्म रिलीज हुई गीत।

0: गीत गाता चल ये फिल्म जबरदस्त हिट हुई। इस फिल्म में उनकी जोड़ी जमी नई नवेली अभिनेत्री सारिका के साथ। आगे इस जोड़ी ने और भी कई फिल्मों में काम किया, मगर उन्हें याद किया जाता है केवल गीत गाता चल के लिए। अगले ही वर्ष यानी 1976 में सचिन की एक और फिल्म रिलीज हुई, बालिका वधू। इस फिल्म के नायक अमल की भूमिका के लिए सचिन को खूब सराहना मिली।
1: बड़े अच्छे लगते हैं
2: क्या?

1978 में सचिन की 3 फिल्में आईं, जिनमें से 2 फिल्मों में वे नायक थे और 1 फिल्म में सहायक अभिनेता। अब नायक हो या सहायक, अभिनेता सचिन हर रूप में छा जाने वाले कलाकार हैं। 1978 की यादगार फिल्में थी राजश्री प्रोडक्शंस की अखियों की झरोखों से और कॉलेज गर्ल, और यशराज फिल्म्स के बड़े बैनर तले बनी फिल्म त्रिशूल। आइए इन तीनों फिल्मों में से सचिन पर फिल्माए गए गीतों का ये मिडले सुनते हैं।

फिल्म त्रिशूल से सचिन एक बार फिर सहायक अभिनेता के रूप में ज्यादातर फिल्मों में नजर आने लगे। फिल्में थी अवतार, सुरसंगम और सत्य पे सत्ता। 1979 में एक महत्वपूर्ण बदलाव हुआ। सचिन अपनी मातृभाषा मराठी की ओर बढ़े। पारध, इस फिल्म में उनके साथी कलाकार थे नूतन, सारिका और डॉक्टर श्रीराम लागू। 1979 में शरद पिलगांवकर निर्देशित फिल्म अष्टविनायक रिलीज हुई, जो एक सुपर डुपर हिट फिल्म रही। नायक थे सचिन। लग रहा था मानो अब सचिन मराठी में ही बस जाएंगे। उसी दौरान वो एक बार फिर हिंदी फिल्मों में बतौर नायक और सहनायक दिखाई दिए। 1980 में जुदाई, 1981 में स्वीटी, 1982 में सत्य पे सत्ता और नदिया के पास।

1980 से सचिन ने मराठी फिल्मों का निर्माण और निर्देशन शुरू किया। 1982 की पहली फिल्म माय बाप को समालोचकों ने खूब सराहा, परंतु सचिन ने निर्देशक के रूप में व्यावसायिक सफलता का रस पहली बार चखा 1984 में। फिल्म थी नवरी मिड़े नवर्याला। नायिका के रूप में थी उनकी पत्नी सुप्रिया। उसके बाद आई फिल्में गम्मत जम्मत और माझा पति करोड़पति की सफलता ने सचिन को एक निर्देशक के रूप में पुख्ता जगह दी। और उसके बाद 1988 की मल्टी स्टारर फिल्म अशी ही बनवा बनवी को मिली अपार सफलता ने सचिन को हिट फिल्म मेकर की श्रेणी में लाकर बिठाया।

इस गीत के नायक की गाड़ी चाहे जिस दिशा में गई हो, सचिन के कला जीवन की गाड़ी जा रही है सफलता की ओर। और इस यात्रा के विभिन्न पड़ाव हैं अभिनय, निर्देशन, पार्श्व गायन, टीवी पर रियलिटी शो में सहभागिता और जीत, टीवी पर नृत्य के रियलिटी शो का निर्माण, फिल्म और टीवी के कार्यक्रमों का निर्माण, और ये यात्रा बदस्तूर जारी है। सचिन जी की पत्नी सुप्रिया तो उनके साथ नायिका के रूप में कई फिल्मों में आई, परंतु अपने बेटी को लेकर भी, यानी श्रिया पिलगांवकर को लेकर भी सचिन जी ने 2013 में फिल्म बनाई एकुलती एक। सन 2015 में रिलीज हुई मराठी फिल्म कट्यार काळजात घुसली, मराठी के मशहूर साहित्यकार पुरुषोत्तम दारव्हेकर लिखित संगीत कट्यार काळजात घुसली, इस नाटक पर आधारित इस फिल्म में खां साहेब की भूमिका में सचिन ने जान डाल दी। इस अभिनय के लिए उन्होंने खूब तारीफें बटोरी और उनके इस परफॉर्मेंस के लिए एक ही शब्द कहा जा सकता है, लाजवाब।

0: अभिनेता, निर्माता, निर्देशक सचिन पर केंद्रित आज के फनकार, ये कार्यक्रम अभी आपने सुना। आलेख और स्वर जयंत पात्रीकर, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: हम जो गाना बनाते हैं उसमें 50% 50% हाथ जो है सिर्फ सॉन्ग राइटर का है।
0: संगीतकार ओ पी नैयर।
1: ये हकीकत है, इसको बाकी लोग नहीं मानेंगे। जिगरा चाहिए ये मानने के लिए कि ओ पी नैयर कुछ नहीं बगैर सॉन्ग राइटर के। मैं दूसरों की बात नहीं करता। आप 50% तो शायर हो गए और 25% जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑर्केस्ट्रेशन में और सिंगर में। बाकी आप 25% अगर बोले तो क्रेडिट कंपोजर का है, ज्यादा कुछ।
0: ऐसी अनमोल यादें।

0: ये है विविध भारती।
1: उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की।

0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पूर्व निदेशक रंगकर्मी और शिक्षाविद पद्मश्री वामन केंद्रे से बातचीत। वामन केंद्रे को रंगमंच की दुनिया में उत्कृष्ट योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तकरीबन 50 दशक तक रंगमंच की दुनिया को अपनी कला से वामन जी ने सुशोभित किया। उनका ये सफर आज भी जारी है। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में अपनी यादों के उजाले बिखेरेंगे पद्मश्री वामन केंद्रे। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने, तो आइए सुने ये बातचीत। आज आपको सुनवा रहे हैं इसका पहला भाग।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान और इस समय हमारे साथ हैं जाने माने रंग निर्देशक थिएटर की दुनिया में जिनका बहुत अमूल्य योगदान है पद्मश्री वामन केंद्रे साहब। बहुत बहुत स्वागत आपका।
2: धन्यवाद, नमस्कार।
1: बहुत लंबे इंतजार के बाद आपका विविध भारती आना हुआ है
2: जी। जी।
1: इन स्टूडियोज में आके कैसा महसूस होता है सर?
2: मैं बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि क्या है कि आकाशवाणी से जो पुराना रिश्ता है, मुझे लगता है कि मनोरंजन के जब साधन सीमित थे
1: जी,
2: उस समय की सारी यादें जो हैं, चाहे वो बीड आकाशवाणी केंद्र था, पहले तो नहीं था पर बाद में हुआ, तब का औरंगाबाद और अभी का छत्रपति संभाजी नगर में जो आकाशवाणी केंद्र था उससे काफी जुड़ा हुआ था मैं, फिर मुंबई आकाशवाणी केंद्र, फिर दिल्ली आकाशवाणी केंद्र। और एक ऐसा याद आता है कि नाटक के अलावा कभी कभी बीच में सिनेमा एक माध्यम था, नाटक एक था, और दूरदर्शन की शुरुआत भी नहीं हुई थी, तब से आकाशवाणी में आना जाना रहा है। और वही एक जो संस्कार है, चाहे वो छोटे छोटे जो भी कार्यक्रम हुआ करते थे, सुबह की धुन से

0: और बहुत मशहूर प्रोग्राम तो था बीना का गीतमाला, तो वो
1: जी
0: तो बिल्कुल दिल हाथ में पकड़कर सुनते थे,
1: वाह,
0: और वो एक रेडियो होता था और उसके इर्द गिर्द 200-300 लोग बैठ के सुनते थे। तो ये सारी जो स्मृतियां हैं अभी भी आकाशवाणी की, और ऐसा लगा था कि ये माध्यम खत्म होगा टेलीविजन के आने की वजह से, इतने चैनल खुलने की वजह से, पर क्योंकि ये भी एक माध्यम है, एक शक्ति है, व्यक्त होने की शैली है, तो ये तो मालूम था कि ये खत्म नहीं होगा। फिर वो सारे रेडियो मिर्ची और सारे जितने भी चैनल वापस आ गए, और जब आप कैमरे के सामने नहीं होते हो, आप जर्नी में हो, कहीं टैक्सी में ट्रैवल कर रहे हो, कार में जा रहे हो, घर में हो, तो वो फिर दोबारा उसकी शक्ति जो है लोगों को पता चली, जिसको हम वाचिक अभिनय की शक्ति कहते हैं।
1: वाह
0: तो
1: जी,
0: मूल गांव में जहां मैं रहता हूं या मेरी फैमिली रहती है, वो वैसा ही है, पतरे के घर है, मिट्टी की दीवारें हैं, पहले तो झोपड़ियां होती थी, उसी में रहता था, मेरा बचपन तो उसी में गया।
1: तो पिता काश्तकार थे।
0: पिता मेरे, हाँ, किसान थे, तो इसीलिए वो जो संस्कार है वो किसानी के या खेती के हैं या उस माहौल के हैं। तो ऐसा ही गांव है अभी भी, मुझे लगता है कि 8-10 साल पहले एक सड़क जैसे तैसे गांव तक पहुंची है,
1: जी,
0: तो इसीलिए वो अभी भी घर तक बहुत सीधे तरीके से हम पहुंच नहीं पड़ती थी, क्योंकि वो काली मिट्टी वाला एरिया है। मतलब आप खोदते जाओ जमीन में तो 8-10 फीट कोई पत्थर नहीं दिखता, मिट्टी ही मिट्टी है। तो इसलिए बरसात में बहुत ज्यादा तकलीफ वाला है कि पैर फंसते रहते, आप एक पैर फंसाओ और दूसरा निकाल के आगे डालो, फिर पहला निकालो फिर दूसरा, इस तरीके से। वो जब हम स्कूल में भी जाते थे बगल वाले गांव में, मेरे गांव में एक शिक्षक की स्कूल था,
1: जी
0: उस स्कूल को कोई बिल्डिंग भी नहीं थी।
1: मैंने सुना है पेड़ के नीचे पढ़ते थे।
0: तो जो हनुमान का एक मंदिर था, और
1: जी
0: वो बहुत पुराना पत्थर वाला, वो पत्थर भी, वो क्या कहते हैं, बहुत तराशे हुए पत्थर नहीं होते थे, ऐसे ही हनुमान मंदिर के दीवार को लगाए और उसके सामने एक चबूतरा बनाया था ताकि लोग आके बैठे, और बहुत बड़ा इमली के पेड़ था उसके ऊपर,
1: जी
0: मतलब
1: जी
0: कई सैकड़ों साल पुराना। तो उसके नीचे उस चबूतरे पे हमारी स्कूल शुरू होती थी,
1: अच्छा
0: और जब बारिश आती थी तो बगल में एक चावड़ी बोलते हैं मराठी में,
1: जी
0: एक
1: जी
0: धर्मशाला टाइप थोड़ा सा एक पाइस पतरे की शेड था,
1: हाँ
0: तो उसको दरवाजे नहीं होते थे, तो जो गांव की गायें हैं, भैंसे हैं,
1: घुस
0: बकरियां
1: जाते
0: हैं,
1: थे।
0: वो घुस जाते थे रात भर वहां, और फिर हमको सबको उसको हकाल के बाहर निकालते, सुबह 8-9 बजे स्कूल जब जाते थे तो वो सारा गोबर ये सब
1: साफ कर रहे हैं।
0: साफ करके उसके बाद बरसात पतरे के नीचे भरती थी। तो ऐसा था हमारा स्कूलिंग,
1: जी, तो
0: जिसको
1: यहां शिक्षा की असली ताकत समझ में
0: नहीं,
1: आती
0: मेरे
1: है।
0: समझ में आता है कि हम अब आज की तारीख में इतना स्कूल के बारे में सजग है, अवेयर है, पर पढ़ना हो तो आदमी कहीं भी पढ़ सकता है। मैं
1: बिल्कुल
0: अपने अनुभव से तो कह ही सकता हूं कि जिला परिषद का स्कूल है, एक शिक्षक आता था, वो बीच में एक नदी थी, बाढ़ आ गई तो शिक्षक उधर है, हम नदी के इस किनारे, शिक्षक उस किनारे, तो कुछ कम्युनिकेशन नहीं होता था, तो स्कूल नहीं होता था। पर बहुत अच्छे शिक्षक, एक जो शिक्षक आके गांव में रहे, उन्होंने एक शिक्षण का वातावरण बनाया। अब उनका मुझे नाम भी और सरनेम भी याद नहीं है, इतना पुरानी बातें हैं,
1: जी
0: पर एक शिक्षक जब आपके जीवन में आता है तो इंस्पायर करता है। कहीं भी पढ़िए, मुझे लगता है बिल्डिंग से शिक्षण नहीं होता है, पढ़ाने वाले से शिक्षण होता है और पढ़ने वाले से शिक्षण होता है। इसलिए ऐसे छोटे से गांव में जहां कोई खेल का माहौल नहीं है, जहां कुछ नहीं है, पर एक बहुत अच्छी चीज थी कि किसान के घर में पैदा होने की वजह, एक तो खेती की वजह से एग्रीकल्चरल बेस है मेरे जीवन का, तो इसीलिए कौन से पौधे को क्या कहते हैं, कौन से पौधे को क्या फल आते हैं, ये सारा का सारा जो ज्ञान है उस समय हुआ। फिर जानवर पंछी, ये सारा का सारा माहौल हो मेरे संस्कार का, एक्सपोजर का हिस्सा है। दूसरी सबसे बढ़िया बात ये हुई कि जो हमारा फोक कल्चर है, लोक कलाएं जो हैं, वो किसान के घर के सामने जाए बिना, आंगन में जाए बिना उनकी रोजी रोटी नहीं चलती है।
1: जी
0: वो सुबह 4 बजे आने वाला जो कुड़मुड़िया बोलते हैं, 4 बजे आता है, 6 बजे वासुदेव आता है, फिर गोसावी आते हैं, डवरी आते हैं, गोंधली आते हैं, ये आता है, वो आता है। तो ऐसे सारे जितने भी कल्चर को कैरी करने वाले मुसाफिर है या थे, वो किसान के आंगन में आके वो नाच गाना जो भी है उसका भिक्षा मांग कर वो अपना चरितार्थ चलाते हैं। तो हमारा सारा कल्चर जो है भारतीय, वो एग्रीकल्चरल बेस्ड है,
1: बिल्कुल
0: वर्तुल से चलता है। किस समय दिवाली आएगी, किस समय

0: पंचमी आएगी कब, होली आएगी कब, फलाना आएगा, ये एग्रीकल्चर में जब किसान को कब फुर्सत होती है उससे वो कैलेंडर बंधा हुआ है।
1: बिल्कुल।
0: तो उसका फायदा ये हुआ कि वहां कीर्तन है, भजन है, भारूड है। एक मेरे घर में ही था
1: जी,
0: मेरे एक चाचा तो कीर्तनकार थे और पिताजी को भजन और भारूड बहुत अच्छा लगता था। उनका मेन व्यवसाय तो ये था,
1: खेती
0: खेती था, पर वो अपने आनंद के लिए ये सारा करते थे। कभी भजन गाते थे एकादशी के दिन, कभी कहीं बगल के गांव में भंडारा लगा तो वहां बुलाते थे इन गांव वालों को, वहां जाके वो भारूड इनेक्ट करते थे, संतों की कविताएं। तो गाते भी थे, नाचते भी थे और इनेक्टमेंट भी था। तो ये टोटल मुझे लगा कि मेरे गांव में पैदा होने का जो बड़ा मेरे जीवन में है, मेरे सोच में है, वो इसीलिए कि ये सारा मुझे मुफ्त में मिला। ये संस्कार, लोक कलाएं, लोक संगीत है, लोक नृत्य है, चाहे तमाशा है, चाहे कीर्तन, जो भी है, मतलब एक मनोरंजन से प्रबोधन तक की जितनी भी लोक कलाएं हैं, वो मुझे घर में बैठे बैठे देखने को मिली, उसकी अनुभूति मिली, उनका संस्कार मिला। तो ये छोटा गांव जो है वो मेरे जीवन का अहम हिस्सा है और इसीलिए मुझे मालूम है उस गांव का योगदान मेरे अपब्रिंगिंग में, मेरे करियर में क्या है। इसलिए मैं अभी भी गांव से जुड़ा हुआ हूं। मेरी माता जी गांव में रहती हैं, मेरे भाई, मेरे चाचा जी सारे गांव में रहते हैं। यहाँ कुछ लोग हैं, कहीं और जगह पे बिखरी हुई फैमिली है, लेकिन उस गांव से मेरा रिश्ता अभी भी कायम है।
1: क्या बात है, गांव और पढ़ाई लिखाई और ये सारी बातें हो रही है तो यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं। मुझे लगता है यहाँ ये गाना ठीक रहेगा, लिखोगे पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे। ये गाना सुनते हैं।
0: यस।

अलिफ से बोलो क्या होता है।

0: क्या होता है?
1: दीटर।
0: तब्दीर।

0: वामन केंद्र जी, सुंदर बात आपने कही कि एक पूरी लोक कलाएं किसान के घर उसके द्वार तक आती हैं और जो खेती का एक पूरा चक्र है उसके आधार पर हमारे त्योहार बंधे हुए हैं, कैलेंडर बंधा हुआ है और उस तरह से जीवन चलता है, उस तरह से पर्व और उत्सव चलते हैं और वो हमारे जीवन का हिस्सा है और कलाएं उसमें अंतर्निहित है। भारूड़ आपके बचपन और आपके संस्कारों का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। आपने बताया पिताजी को भी बहुत ज्यादा वो लुभाता था, उससे जुड़ी यादें बांटिए।
1: नहीं, मुझे लग रहा है कि भारूड़ एक ऐसी कला है जो संतों ने जो कविताएं लिखी है, जो कविताएं ऐसी कविताएं जिनका इनैक्टमेंट भी हो सकता है, ऐसी कविताओं को भारूड़ कहते हैं। बहुरूढ़
0: जी,
1: जो लोगों में रूढ़ है, प्रसिद्ध है, ऐसी कविताओं का उसमें गाना भी है
0: जी,
1: नृत्य भी है और उसके बाद इनएक्टमेंट भी है। तो जैसे हम ये कह सकते हैं कि उसको एक आधे आधे घंटे का एक भारूढ़ के ऊपर इनएक्टमेंट, आधा घंटा पौना घंटा जितनी कैपेसिटी है, क्योंकि होता तो सारा इम्प्रोवाइजेशन है वहां। हाँ, कोई स्क्रिप्ट तो लिखा होता नहीं है। स्क्रिप्ट तो जो है वो संत एकनाथ ने लिखे भारूढ़ है, जनाबाई ने लिखे भारूढ़ है, तुकाराम जी ने लिखे भारूढ़ है, ज्ञानेश्वर ने लिखे कुछ भारूढ़ है। तो ऐसे जितने भी ये संत परंपरा है महाराष्ट्र की, मुझे लगता है उनकी कविताओं का एक तरीके से स अभिनय सादरीकरण है ये
0: जी।
1: तो वो और बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग होता है, उसमें ह्यूमर भी है, उसमें मस्ती भी है, नाचने नचवाने वाला रिदम भी है, ताल भी है, लय भी है, सामाजिक जागृति भी है और प्रबोधन भी है। तो इसीलिए वो फॉर्म बहुत, और वो कंटेम्प्रेरी है, उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड़ में रिफ्लेक्ट होता है। मतलब इतना लचीला भी है वो, क्योंकि वो जो किसान है या मजदूर है या जो भी इनैक्ट कर रहा है वही, और उसमें इनफॉर्मेलिटी बहुत है, मतलब कोई औपचारिकता नहीं है। मतलब एक बड़ी बड़ी मूंछ वाला आदमी औरत का काम कर रहा है,
0: okay.
1: मान लीजिए, और चारों तरफ ऑडियंस बैठी हुई है, हस्बैंड और वाइफ के बीच का झगड़ा हो रहा है यहाँ पर, जो गीत से भी हो रहा है और गीत के बाद एक्चुअल संवाद में भी आ रहा है। तो औरत बनने के लिए क्या आवश्यक है, तो एक पल्लू चाहिए, तो किसी ने ओढ़ी हुई शॉल है उसको खींच लिया, कमर में जो धोती पहना हुआ है उसने अपने कमर में एक उसका सिरा जो है खोच लिया और ऊपर से पल्लू, सर के ऊपर से पल्लू लगा लिया और एक बिंदी लगा ली या कुमकुम लगाते थे, हो गया वो औरत। बड़ी बड़ी मूछ है, इतनी लंबी दाढ़ी है, फिर भी उसको औरत मानते थे लोग।
0: यस,
1: और जो दूल्हा है वो गांव का है तो वो कोई लकड़ी ले ली है, लाठी ले ली है और कोई एक पगड़ी बांध ली कि हो गया वो दूल्हा। तो और वो दोनों के बीच में कभी गाते हैं, कभी संवाद प्रस्थापित हो रहा है, ह्यूमर हो रहा है, हजारों की तादाद में लोग आ गए, वो लोटपोट हो रहे हैं और उसमें से प्रबोधन तक पहुंच रही है बातें।
0: क्या बात,
1: मनोरंजन के द्वारा प्रबोधन तक पहुंचाना, जीवन के किसी एक वृत्ति प्रवृत्ति के सामने उसके ऊपर टीका टिप्पणी करना और हंसाते गुदगुदाते हुए ये सब करने वाला फॉर्म है, इसलिए कोई भी आदमी उसकी तरफ आकर्षित होगा। मेरे पिताजी को कई सैकड़ों भारूढ़ याद थे और वो परफॉर्म भी करते थे, वो कोई उनका व्यवसाय नहीं, अपने आनंद के लिए परफॉर्म करते थे। जो मेरा गांव है दरडवाड़ी, वहां की भारूढ़ मंडली बहुत फेमस थी, तो वो पंचक्रोशी जो है वहां 150 गांवों में कहीं भी ये भंडारा होता था तो भारूढ़ मंडलियों को हर गांव के बुलाया जाता था, न्योता दिया जाता था। तो वो न्योते में ये जब जाते थे तो पूरा हंगामा करके आते थे। वहां एक तरीके का आपने एक भारूढ़ गाया, सवाल जवाब जैसे होते हैं कुछ मनोरंजन की लोक कलाओं में, ऐसे भारूढ़ के द्वारा एक दूसरे को तू हारेगा क्या मैं जीतूंगा या मैं आज जीतूंगा कि आप हारोगे,
0: जैसे
1: कवालियों के मुकाबले में भी होता है। तो ये सुबह जब सूरज उदय होता था तब तक चलता था।
0: ओहो, पूरी रात,
1: पूरी रात, और पूरा एक उस गांव की जो भंडारे में 4-5 हजार तो लोग आते ही आते थे। तो ये मुझे लग रहा कि इस फॉर्म ने मुझे बहुत आकर्षित किया और वो आज भी मेरे आकर्षण का केंद्र वैसे ही है।
0: बचपन में याद हो गए थे भारूढ़,
1: बहुत सारी भारूढ़ मैंने प्रस्तुतियां कभी नहीं की, आई वॉज साइलेंट एडमायरर और साइलेंट ऑडियंस।
0: अरे वाह,
1: तब मुझे नहीं मालूम था कि मैं इस क्षेत्र में आऊंगा और कुछ हो जाएगा। ये तो मेरे ग्रेजुएशन के बाद मुझे लगा कि अब उधर जाना चाहिए, जो मेरे अंदर का संस्कारित कलाकार है इनडायरेक्टली डायरेक्टली, वो कहीं ना कहीं उछल मार रहा था या वो कुछ उड़ान भरने की कोशिश कर रहा था। तो वो भारूड वाले तो बहुत सारी चीजें हैं।
0: बिल्कुल, यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं।

0: लेकिन कठिन थी पढ़ाई, आपने जैसा कि बताया अपने गांव से दूर जाके
1: माहौल नहीं था, पढ़ने का माहौल नहीं था। जो मेरे साथी थे, जैसे अब नेकनूर से सातवीं तक पढ़ लिया मैंने
0: जी,
1: और फिर आठवीं से आगे मेरे चाचा के साथ मैं रहता था एक रूम किराया करके नेकनूर गांव में। एक रूम में तीन चार बच्चे अपना उसको किराए से लेते थे, उसी में चूल्हा, उसी में ईंधन लाना, लकड़ियां लाना, उसी में चूल्हा जला के खाना बनाना, अपने कपड़े खुद धोना। तो इसलिए स्वावलंबन भी उस सारी जीवन शैली का एक हिस्सा हो गया। पानी भी लाना, सब कुछ आपको अपना अपना करना पड़ता था। तो खाना भी जब बनाते तो इकट्ठा, कोई सब्जी काट रहा है तो कोई रोटियां बेल रहा है, तो कोई तवे पे सेक रहा है, तो कोई सब्जी बगल वाले चूल्हे पे चढ़ा रहा है। तो इस तरीके का वो माहौल था। तो मेरे चाचा जी मेरे साथ थे, तो उनका वहां एसएससी खत्म हो गया। अब उनको आगे कॉलेज में जाना था, तो बीड जो जिला है हमारा, वहां पर उनको जाना पड़ा, क्योंकि उनके पास यहाँ पढ़ने के खत्म हो गई कक्षा। तो फिर ऑब्वियसली मैं उनके साथ चला गया, क्योंकि चाचा साथ में है तो थोड़ा सा ये भी सुकून भी था घर वालों को भी। तो आठवीं से फिर मैं बीड जिले पे आ गया, और जिले पे आने का मतलब ये है कि थोड़ा सा माहौल भी बड़ा बन गया, जिले का स्तर है तो एजुकेशन भी थोड़ा अलग किस्म का था, थोड़ा बड़प्पन या एक दृष्टि का विस्तार होने की जो संभावनाएं बनती है छोटे गांव से थोड़ा अर्बन एक टाउन में जाओ, टाउन से थोड़े बड़े टाउन में जाओ। तो फिर बीड़ में मैंने आठवीं से लेके ग्रेजुएशन तक मैं बीड़ में ही पढ़ता रहा
0: जी। एक नई दुनिया खुली,
1: एक नई दुनिया खुली। एक क्या होता था कि यहाँ साइकिल ही बहुत ज्यादा एक ग्लैमरस चीज होती, किसी के पास साइकिल है तो बहुत बड़ी बात होती थी। तो वो साइकिल से अब रिक्शा तक आ गए हम लोग। अरे रिक्शा भी होती है, कार भी होती है, पूरे जिले के गांव में तीन चार कार होती थी, वो बड़े अमीर लोगों के पास होती थी। पर दूर दराज की गाड़ियों का आना जाना, लोगों से मिलना मिलाना, फिर एक क्या कहते हैं एक्टिविटी में हिस्सा लेना, तो जहां पर आप 200-400-500 बच्चों के साथ पढ़ते थे, अब अचानक मेरे कॉलेज में उस समय 4,500-5,000 स्टूडेंट थे।
0: ओहो,
1: दूसरा कॉलेज था एक हमारे ही बीड शहर में बलभीम कॉलेज, मैं पढ़ा हूँ नवगण महाविद्यालय में, वहाँ एक 4,000-5,000 थे। तीसरा एक बंकट स्वामी महाविद्यालय था, उसमें 2,000-3,000 गांव गांव से आए और शहर के लोग पढ़ते थे, विद्यार्थी पढ़ते थे। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है जिला स्तर पर आप जब आते हैं। तो मेरा हमेशा विजन जो बढ़ता रहा, छोटे 30-35 मकान के गांव से फिर 2,000-3,000 वाले मकान के शहर में, छोटे से तालुका प्लेस भी नहीं था, अभी भी वो तालुका नहीं हुआ है, पर उस वाले शहर पे, वहां से फिर डिस्ट्रिक्ट। तो आपका जितना शहर का आकार बढ़ता है उतनी आपकी सोच का भी आकार बढ़ता है।
0: बहुत सही बात है।
1: उसके बाद फिर औरंगाबाद संभाजीनगर चला गया यूनिवर्सिटी के लिए, फिर वो और भी बड़ा है। पांचों जिलों का जो पांच जिले थे मराठवाड़ा में, तो वो कमिश्नर ऑफिस था वो
0: जी,
1: तो वो और भी बढ़ गया। वहाँ यूनिवर्सिटी भी थी, तो यूनिवर्सिटी तो बहुत बड़ी बात होती है
0: जी।
1: 300-400 एकड़ में आप इतनी सारी बिल्डिंगें, इतने सारे डिपार्टमेंट, और पढ़ने पढ़ाने का बहुत बड़ा माहौल बन जाता है
0: जी।
1: कई सारे कॉलेजेस थे वहाँ। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि जो आपके पढ़ने का भी विस्तार होता है, सोचने का भी विस्तार होता है, और जीवन को आप जो सामना कर रहे हैं उस सामना का भी विस्तार होता है, तो जीवन अनुभव का भी तो विस्तार होता है
0: एकदम।
1: तो ये ऐसा वो माहौल था
0: जी। यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं।

0: जब आप बीड शहर में आ गए अपने चाचा के साथ, चाचा की अपनी पढ़ाई, आपकी अपनी पढ़ाई, वहाँ सिनेमा और रंगमंच की दुनिया से किस तरह का संपर्क बना देखने सुनने और समझने का?
1: नहीं, क्योंकि बीड नेकनूर में तो ये सारा कुछ नहीं था, जो गैदरिंग में एक आध छोटा मोटा नाटक होता था वही उसी में हिस्सा लेता था मैं। पर बीड में आने के बाद, बीड एक शहर बड़ा है तो 2-3 सिनेमा हॉल थे, तो सिनेमा देखने की शुरुआत हो गई। कोई एक रिश्तेदार आते थे और वो जब भी 2-3 महीने के बाद आते थे, हम सारे बच्चों को वो 5 आने का सिनेमा का टिकट निकाल के हम सब सिनेमा देखते थे।
0: वाह वाह, कुछ फिल्में याद है?
1: बहुत शोले याद है, इतनी सारी फिल्में याद है, जितने भी हमारे हीरो हैं उस समय के पॉपुलर हीरोइंस हैं, हेमा मालिनी के सिनेमे देखे हैं, शर्मिला टैगोर के देखे हैं, रेखा जी के देखे हैं, कई मतलब सिनेमा के नाम, जंजीर देखा हुआ है, शोले देखा हुआ है, उसके पहले जितेंद्र जी के सिनेमा देखे हुए हैं, अपने ये जो पहलवान
0: दारा सिंह
1: के सिनेमे बहुत देखे हुए हैं। तो ये मतलब ऐसा होता था कि साल में 5-6 सिनेमा तो देख ही लेते थे।
0: कितना रोमांचक था ये?
1: बहुत रोमांचक। वो सिनेमा का टिकट निकालना अपने आप में एक जो कल्पना से परे शर्त होती थी, वो टिकट पाना,
0: वाह वाह,
1: वो झुंड जो पड़ता था उस छोटी सी खिड़की में,
0: हाँ, हाँ।
1: अरे बाप रे बाप, कोई किसी के ऊपर कंधे पे चढ़ रहा है, कोई जूते से सर पे खड़ा है, कोई उल्टा खड़ा होके, कोई बहुत स्किलफुल लोग होते थे वो टिकट निकलने वाले। तो ये सारा जो माहौल है वो देखा है। उसके बाद जो गैदरिंग में नाटक होते थे, खासकर कॉलेज में, मेरे स्कूल में कोई नाटक नहीं होता था
0: जी,
1: तो वो एक बहुत ज्यादा गंभीर पढ़ाई वाला था, पर वहां पर दूसरा माहौल था। वो एक जो माहौल में एक किस्म की जो मूवमेंट चली थी उस समय, विद्यार्थियों की समस्याओं के आंदोलन हुए, किसानों की समस्याओं के आंदोलन हो गए, वो मुझे लगा कि वो सारे आंदोलन का हिस्सा मुझे बनाया गया।
0: जी जी,
1: क्योंकि मेरी तरफ देखने के बाद चुलबुला था, थोड़ा भाषण वाषण करता था, जो नेकनूर में ही स्कूल में पढ़ता था तभी से वो शुरुआत हुआ था।
0: तब तो आपने एक्टिंग भी की थी?
1: तब भी एक बार एक एक्टिंग की थी मैंने, जहां एक ही बार नाटक हुआ था तो उसमें एक्टिंग भी की थी।
0: लड़की बने थे?
1: लड़की बना था मैं, और अब वो नाटक का नाम तो याद नहीं, एक छोटा एकांकी नाटक था, पर उसमें लड़की बना था और मेरे से मोटी लड़की का फ्रॉक मैंने लाया था और सेफ्टी पिन लगाया था, तो सेफ्टी पिन डायलॉग बोलते बोलते खिसक गया।
0: ओ,
1: तो पूरा नाटक जो है वो कहीं और चला गया
0: जी।
1: तो ऐसा भी एक वो अनुभव था। बीड में आने के बाद मुझे लगा कि वो जो माहौल मुझे दूसरा मिला, सोशल जागरूकता का माहौल मिला।
0: बड़ी आसानी से आप राजनीति में जा सकते थे?
1: हाँ, जा सकता था मैं, और वो भी एक ऑप्शन मेरे सामने था राजनीति में जाने का। पर वो कॉलेज में आते आते ऐसा लगा कि जो राजनीति हमारी मोड ले रही है उस समय की, जो अंगड़ाई ले रही है, वो मूल्याधिष्ठित राजनीति नहीं रहेगी। बहुत अनुभव किया उसका और ऐसा लगा कि ये कुछ सही नहीं है। वो मैंने इसलिए जानबूझ के छोड़ा कि अब यहाँ जाना सही इंसान का काम नहीं है, पर जाना जरूर चाहिए। वहां की राजनीति में ऐसा लगा कि सही इंसानों का होना बहुत जरूरी है, सेंसिटिव लोगों का होना जरूरी है। वहां नहीं है, ऐसा नहीं है, जो जाते हैं उसके बावजूद वो बदलना पड़ता है, वो दुर्भाग्य है इस देश की राजनीति का। तो इसीलिए मैंने चुना कि कहां पर जाके हम अपना करियर बना सकते हैं। जो मैं ये आंदोलन से काम कर रहा हूं, गरीबों के लिए लड़ रहा हूं, झगड़ रहा हूं, ये मुझे निरंतर आगे चलाना था। तो मुझे लगा कि नाटक का जो इम्पैक्ट होता है, वो इम्पैक्ट हजारों भाषणों से ज्यादा होता है
0: जी।
1: सिनेमा का इम्पैक्ट है वो कई कई गुना ज्यादा होता है, नाटक से भी कई गुना ज्यादा होता है। पर नाटक जो बहुत अच्छा नाटक अगर आप करते हो तो उसका परिणाम इतना प्रभावी होता है कि देखने वाला अंतर्मुख हुए बिना घर नहीं जा सकता। तो इसीलिए मैंने चुना कि नहीं, जो करियर करना है, जब कॉलेज में आया 2-3 साल गैदरिंग में काम किया और सेकंड ईयर में आया तो मैंने फुल लेंथ प्ले में लीड रोल किया, मुझे दिया गया। तो मैं तो इतना छोटा सा था और 2.5 अखर प्रेम का वो नाटक हो रहा था गैदरिंग के लिए, और उसमें मेन रोल था प्रोफेसर बल्लाल का। अब वो रोल निभाने के बाद ऐसा लगा कि यार ये कुछ जादू है इस सारी प्रोसेस में, तो तय किया कि नहीं, नाटक में जाऊंगा तो मैं एक तो सेंसिटिव रह पाऊंगा, मैं अपनी हिसाब से जिंदगी जी पाऊंगा, अपनी सोच के नाटक करूंगा, जिनकी मैं आवाज बनना चाहता हूं, चाहे वो वंचित है, चाहे वो गरीब है, जो समाज के सीढ़ी के आखिरी सीढ़ी पे भी जिनको जगह नहीं है, ऐसे लोगों की आवाज बनने की संभावना इसमें ज्यादा है, तो इसलिए मैंने ये जानबूझकर ये चुनाव जो किया मैंने माध्यम का, वो सोच समझ के किया, और इसीलिए फिर वहां जाना ही है नाटक में तो पूरी तैयारी के साथ जाएंगे।
0: जी जी।
1: तो इसीलिए फिर औरंगाबाद शिफ्ट हो गया और वहां एक साल ड्रामा डिपार्टमेंट में दाखिला लिया। वो इसीलिए कि मुझे अंतिम में जाना तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में ही था, तैयारी करके जाना है मुझे। कोई इंटरव्यू में जाऊंगा तो वापसी का टिकट के पैसे लेके नहीं जाऊंगा।
0: वाह।
1: ये मन में तय किया था। और वाकई जब पहली बार इंटरव्यू दिया तो उसी इंटरव्यू में मैं सेलेक्ट हो गया, और वो भी टॉप फोर में सेलेक्ट हो गया। वो टॉप फोर में इसलिए मुझे पता चला कि मुझे नेशनल स्कॉलरशिप मिली।
0: जी।
1: अगर वो नेशनल स्कॉलरशिप नहीं मिलती तो सेलेक्ट होने के बाद भी मैं एनएसडी नहीं जा पाता, क्योंकि मेरी जो आर्थिक परिस्थिति तब भी थी वो इतनी ही क्या कहती थी कि बहुत गरीब किसान का बेटा था, तो इसीलिए वो संभव नहीं था वहां जाकर वो सारा खर्चा करना। पर वो स्कॉलरशिप मिली, इसीलिए आज मैं आपके सामने बैठ के बातें कर रहा हूँ।
0: क्या बात है। बहुत लंबी यात्रा हमने आपकी देखी यहाँ तक की। यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं। हम उस दौर की बात कर रहे हैं जब आप सिनेमा से परिचित हो रहे हैं।
1: जी जी जी।
0: आपने
1: जी,
0: बताया कि इतने तरह की फिल्में देखी।
1: मुगले आजम देखी।
0: वाह। मुगले आजम का गाना सुनते हैं।
1: का गाना सुनते हैं।
0: जब प्यार किया तो डरना
1: डरना क्या क्या बात है।

0: मुगले आजम का ये गाना प्यार की बात करता है और कॉलेज के जमाने में लड़कों को किसी न किसी तरह से प्रेम तो हो ही जाता है। आपके साथ क्या मामला था?
1: बहुत हुआ, उसमें क्या है, शर्माने की क्या बात है। पर मैं फोकस्ड बहुत था
0: जी,
1: क्योंकि मुझे मालूम था कि मेरी जिम्मेदारियां क्या है और मुझे जाना कहाँ है, क्योंकि मैं तो लीडर था
0: जी,
1: तो हमेशा 10-20 लोगों के बीच में रहने की आदत थी। तो इसीलिए वो वाला जो सिलसिला था, बहुत सारी लड़कियों से बातें होती थी, पर एक पर्टिकुलर फोकस हो के किसी के प्यार में पड़ो, वो वाला माहौल लगा कि ये ठीक नहीं है। इसके लिए और बहुत सारी जिंदगी पड़ी है वो करने के लिए। तो मुझे जाना तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में था। आकर्षण का केंद्र तो आप वैसे भी होते हो, अच्छा बोलते हो, मंचों से अच्छा बोलते हो, आपको मॉब मैनेज करने आता है, आपको ह्यूमन मैनेजमेंट पता है, तो आप लीड में हो तो अपने आप में लोगों के आकर्षण का केंद्र तो आप बन जाते हो। पर आपके आकर्षण का केंद्र कोई इंडिविजुअल बनने की वो क्या कहते हैं वो समय नहीं था, इसलिए मैं वो सारा पार करके फिर सीधा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में पहुंच गया।
0: क्या बात है। लेकिन इस दौरान आपने जो बुनियादी नाटकों की दिशा में जो काम किया, जो बीड में या औरंगाबाद में जाके किया, उसके बारे में बताइए।
1: नहीं, बीड में क्या था कि हम ये नाटक करते थे, कौन सा, गैदरिंग के नाटक
0: करते। जी जी जी, गैदरिंग का मामला।
1: उसके बाद हमारे एक मित्र श्रीराम बड़े ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में सेलेक्ट हो गए
0: जी।
1: तो जब मैं फर्स्ट ईयर में था, शायद फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में था, तो वो सेलेक्ट हो गए वहां। तो उनका जो छुट्टियों में आना जाना होता था, तो हम उनसे सीखने के लिए कार्यशालाएं आयोजित करते थे। मैं लीडर था तो कॉलेज में समर वेकेशन में 10 दिन की 15 दिन की 20 दिन की कार्यशालाएं आयोजित करते थे। फिर उसका कोई एक नाटक होता था, वो फिर अभी जुलूस, मुझे याद आ रहा है नाटक हमने किया बादल सरकार का
0: जी,
1: वो जुलूस के शहर भर में शो किए।
0: वाह,
1: अब ऐसा लगता है कि वो कितने लोगों को समझ में आ गया, रास्ते के आदमी को तो ठेठ बात होनी चाहिए। तो पथनाट्य भी बहुत सारे किए। तो इस तरीके के वो छुट्टियों के माहौल में एक दो नाटक तो करते ही थे। तो गंभीर नाटक क्या होता है, उसकी तरफ जो खिंचाव या आपका आकर्षण का केंद्र बना। गैदरिंग के नाटक से एंटरटेनिंग नाटक क्या होते हैं, उसका संस्कार अपने आप मिलता रहा
0: जी।
1: जो शिक्षक थे उस समय के, पढ़ाने वाले, नाटक या डायरेक्ट करने वाले, उन सबसे जो भी उनका आकलन था, वो बगल वाले जो कॉलेज होते थे उनके नाटक देखने जाते थे, तो वो क्या हमसे बेहतर करते हैं, ये तुलनात्मक अध्ययन भी होता रहा। तो पथनाट्य से लेके मनोरंजन का नाटक में भीड़ में ही समझ गया।
0: वाह वाह।
1: फिर वहां से मैं औरंगाबाद जब गया तो मुझे किसी ग्रुप के साथ ज्वाइन होना था, जहां पर राज्य नाट्य स्पर्धा के लिए नाटक होता था। पर मेरा टेम्परामेंट वो राज्य नाट्य स्पर्धा वाला भी नहीं था, और उनका अपना अपना ग्रुप में लोग होते थे तो उनके साथ वो अपना काम करते थे। तो अचानक वहां एक दिन पता चल गया कि यहाँ दलित थिएटर मूवमेंट की शुरुआत हो रही है।
0: ओ ओ ओ।
1: तो उनके कुछ मित्रों से मेरी जान पहचान हुई थी, मूवमेंट में था मैं, स्टूडेंट एक्टिविटी में था, तो जान पहचान तो हुई थी। तो एक हमारे साहेबराव गायकवाड़, ये साइकोलॉजी के प्रोफेसर थे वहां के अंबेडकर कॉलेज में या मिलिंद कॉलेज में, उनसे राबता था, आना जाना रहता था उनके घर में। तो एक दिन पता चला कि वो एक नाटक कर रहे हैं वहां, दलित साहित्य सम्मेलन पहली बार हो रहा है और जो मिलिन कॉलेज के परिसर में हो रहा है, और उसमें दत्ता भगत लिखित आवर्त नाम का नाटक करना है और वो हीरो की तलाश में है। तो मुझे बुलाया गया और मुझे देखते ही अविनाश डोलस प्रोफेसर थे वो भी, और मेरे ही गुरु त्रिम्बक महाजन
0: जी,
1: वो पढ़ाने आते थे तो वो मुझे जानते थे कि ये बच्चा रॉ है पर बहुत अच्छा है। तो उन्होंने मुझे बुलाया और वो रोल दे दिया और मैं वो रोल निभाया और उसके 10-15 शो हमने किए।
0: वाह।
1: तो दलित थिएटर मूवमेंट की शुरुआत जो हुई, उस मूवमेंट में एक काइंड ऑफ फाउंडर मेंबर के हैसियत से या एक एक्टर के हैसियत से मुझे मौका मिला। उसके बाद दलित थिएटर ने ही दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट

0: नाटक खेला, थांबा राम राज्य येत आहे,
1: ओहो
0: रुकिए राम राज आ रहा है।
1: हाँ हाँ,
0: ये प्रकाश त्रिभुवन ने लिखा हुआ नाटक है, मेरे मित्र थे तो उन्होंने लिखा हुआ नाटक है, उसमें फिर बड़ा नाटक था ये लगभग, तो उसमें फिर लीड रोल करने का मौका मिला। तो ये दो जो फाउंडेशन प्ले हैं दलित थिएटर मूवमेंट के, महाराष्ट्र के और खासकर औरंगाबाद के, तो उस मूवमेंट का मैं हिस्सा बन गया और उस थांबा राम राज्य थे बहुत पॉपुलर हो गया वो नाटक। वो दिल्ली के श्रीराम सेंटर तक जो फेस्टिवल होता था, नेशनल फेस्टिवल, वहां तक पहुंचा। वो पीटर ब्रुक ने देखा,
1: गजब गजब।
0: हाँ, और पीटर ब्रुक ने उस नाटक की इतनी तारीफ की, दूसरे दिन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में आकर उनका व्याख्यान रखा था। तो उसके पहले दिन वाले शो में मैं लीड रोल कर रहा था, वो भी स्पेशल परमिशन लेके, एनएसडी में फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था।
1: अरे
0: हाँ, तो अचानक पीटर ब्रुक उस नाटक की तारीफ कर रहे, तो लोगों को लगा, अरे बापरे, हमारा ही क्लासमेट उसमें तो कल लीड रोल कर रहा था, उन्होंने भी नाटक देखा था। तो इस तरीके से उस नाटक की तारीफें हुई। फिर यहाँ मुंबई में भी छबीलदास थिएटर में भी उसके शो हुए, क्योंकि हमें लगा कि ये केवल मराठवाड़ा तक रहना नहीं चाहिए, अलग अलग जाके उसको परफॉर्म, तो ये परफॉर्मेंस करते रहे। पर जब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का सिलेक्शन हो गया, उसके बाद फिर मुझे उस नाटक को दुर्भाग्य से छोड़ना पड़ा
1: जी।
0: फिर और वो नाटक चलता रहा, किसी और ने रोल कर लिया, पर उस नाटक में उस संवेदना ने मुझे एक और एक मौका दिया कि जो वंचित है, जो दलित है, वो उस आदमी की आवाज बनना पड़ेगा थिएटर को, या कहीं भी, या गरीब किसान है, गरीब मजदूर है। तो ये मोमेंट में जो जो मैं कर रहा था, सौभाग्य से मुझे उसी मंच पे एक कदम रखने का मौका मिला जहां और किसी की आवाज बनकर आप उस माध्यम के द्वारा लोगों के मन में और क्या मस्तिष्क पे या ये नाटक का अनुभव ले जा रहे हो और उनको अंतर्मुख करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये औरंगाबाद का दौर रहा। फिर जो छुटपुट छोटे मोटे नाटक एकांक किया, क्लास में किया, यहाँ किया, वहां किया, ये सारा अनुभव लेकर मैं दिल्ली पहुंच गया
1: जी। यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं,
0: क्या बात है।

0: एनएसडी की एडमिशन की जो प्रोसेस थी, क्योंकि आप बहुत छोटे बैकग्राउंड से आ रहे
1: जी
0: थे और
1: जी जी
0: एनएसडी राष्ट्रीय मुकाबला होता है,
1: जी
0: तो वहां आपने अपनी एक बहुत जोरदार उपस्थिति उस परीक्षा में दर्ज की,
1: जी
0: वो कैसे हुआ?
1: एक तो हमें नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बारे में मालूम हुआ था, एक
0: जी
1: तो हमारा ही सीनियर श्रीराम बड़े वहां सेलेक्ट हुआ था, उसके दूसरे साल शिवदास घोड़के
0: जी
1: वो सेलेक्ट हो गए, तो दोनों मेरे मित्र थे, और तीसरे साल मैं सेलेक्ट हो गया। मैंने एक साल
0: जी
1: नाट्य शास्त्र से लेके जितना भी नाटक के ऊपर लिखा गया वो सब पढ़ा, मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के, तब की मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी और अब की डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी बहुत बड़ी है।
0: जी
1: मैं
0: जी
1: हर दिन शाम को क्लास होता था क्योंकि इवनिंग डिपार्टमेंट था, तो दिन भर क्या करे, तो दिन भर लाइब्रेरी में जाके बैठता था और हर दिन एक नाटक पढ़ता था। ये
0: अरे
1: कसम खाई
0: बाप
1: थी
0: रे,
1: मैं, जब तक यहां रहूंगा मैं हर दिन एक स्क्रिप्ट पढ़ूंगा।
0: तो सैकड़ों नाटक पढ़ लिए
1: तो
0: होंगे।
1: मैंने तो, मुझे लगता है उस पूरे 8-9 महीने के दरमियान 200-250 नाटक तो पढ़ लिए।
0: बाप रे,
1: मान लो किसी वजह से आज कोई मित्र आ गए, कहीं सिनेमा देखने गए, कोई नाटक देखने गए, कुछ हुआ और आज नाटक नहीं पढ़ पाया, तो दूसरे दिन दो पढ़ना।
0: वाह वाह वाह,
1: और उसके साथ साथ फिर जितना भी सैद्धांतिक पक्ष था नाटक का, चाहे वो मराठी की किताबें, मराठी में जो आए आर्टिकल्स, हिंदी में जो आए, अंग्रेजी में जितना समझ में आता था, वो सारे आर्टिकल स्टैनिस्लावस्की से लेके जितनी भी थियरीज है वो सब पढ़ ली।
0: जी
1: समझ में कितनी आई वो बाद में पता चला, पर पढ़ तो लिया। और दुनिया भर किस किस्म का थिएटर होता है, नाटक होता है, क्या संभावनाएं हैं, उसके बारे में बहुत सारे जो मैगजीन आते थे, इंटरनेशनल भी आते थे, हमारे यहाँ भी नाट्य दर्पण निकलता था, कोई भरत शास्त्र निकलता था मराठी के भी, ये सारा पढ़ने का मौका मिला
0: तो एक
1: उस
0: सॉलिड
1: यूनिवर्सिटी
0: बैकग्राउंड
1: में।
0: लेके
1: एक
0: गए।
1: सॉलिड बैकग्राउंड और प्रैक्टिकली भी, आप फोक से तो थे ही, फोक का था आपके ऊपर, और कॉलेज में 2-3 साल जो आइटम्स हमने किए, जैसे अम्बेसा गोंधड़ एक आइटम किया था मैं और श्रीराम बड़े, वो इतना पॉपुलर हो गया कि साल भर का जो हमारा शिक्षण का खर्चा उस एक आइटम से निकलता था, लोग एक्चुअली वो
0: पैसे
1: स्टेज पे
0: फेंकते थे।
1: इतने पैसे फेंकते थे।
0: वाह,
1: एक बार तो जो बड़ा कॉइन फेंका किसी ने, बड़ा रुपये का कॉइन होता था उस समय, वो ढोलकी के, हाँ,
0: पेट में लगा।
1: पेट में लगा और वो ढोलकी फट गई,
0: अरे बाप
1: उसके
0: रे।
1: बाद भी वो रुका नहीं है। तो ऐसी सारी, कोई 10 रुपया दे रहा है, मुझे याद है कि वहां तब हमारी जो कॉलेज की और खासदार रही है, एमपी रही है, थी वो केशर भाई, केशर काकू, हम उनको
0: जी
1: काकू बोलते थे, तो उन्होंने 100 रुपये का जो नोट दिया हमको, इतना बड़ा लंबा नोट था, अब
0: हाँ
1: वो 100 रुपया तो बहुत हो गए हमारे लिए, एक आदमी के लिए, एक साल के लिए,
0: जी,
1: उससे ज्यादा खर्चा होता नहीं था। तो ये सारा का सारा, तो वो भी एक अनुभव था, और ये सारा अनुभव लेके आप, और फिर मैंने आषाढ़ का एक दिन का मैं सेट डिजाइन किया था, उसका मॉडल भी लेके गया,
0: मॉडल भी लेके गए।
1: मॉडल भी साथ में लेके गया, फिर कॉस्ट्यूम प्लेट्स कुछ की थी वो भी लेके गया, ताकि आप दिखाएं कि मुझे बाबा बहुत सारा है
0: अनुभव
1: और
0: है।
1: सीखने की इच्छा है और आगे बढ़ाइए। तो वो सब देखने के बाद मुझे लगा कि कारण जी जो डायरेक्टर थे, बीवी कारण जी जो आगे भी मेरे गुरु रहे, तो वो थे, और मेरा इंटरव्यू बड़ौदा सेंटर में हुआ, तब मुंबई सेंटर हुआ करता था, पर वो उस समय पता नहीं किसी और कारण वो बड़ौदा में शिफ्ट हो गया, तो बड़ौदा में मेरा इंटरव्यू हो गया, और उसके एक 15-20 दिन के बाद चिट्ठी आ गई कि भाई आपका सिलेक्शन हो गया है, आप फलाना तारीख को आके ज्वाइन हो जाइए, क्लासेस शुरू हो रहे।
0: वाह क्या बात है। मैं इस पूरी यात्रा से जुड़ी एक बहुत दिलचस्प बात पूछने वाला हूं, पर यहां एक गाना सुनना है।
1: यार रहमान का लगाइए
0: ठीक है, दिल से गाना सुनते हैं,
1: या
0: दिल से।

0: उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे जाने माने रंगकर्मी, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पूर्व निदेशक और शिक्षाविद पद्मश्री वामन केंद्रे से यूनुस खान की बातचीत। आज आप सुन रहे थे इस बातचीत का पहला भाग। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में संपादन सहयोग मनीषा सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।
1: उजाले उनकी याद।

0: रंग तरंग
1: विविध भारती पर कार्यक्रम रंग तरंग के साथ हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।

अनुप जलोटा, संजय राज की आवाजों में आपने सुना नलिन वर्मा का लिखा ये भजन। सचिन सतीश ने इसे संगीत से सजाया था। एल्बम शिव शंकर देवाधिदेव, इस एल्बम से हमने इस भजन को आपके लिए सुनवाया।

0: शिव आराधना इस एल्बम से आप सुन रहे थे भजन अनुराधा पौडवाल और साथियों की आवाजें, महेंद्र दहलवी की बोल, दिलीप सेन, समीर सेन का संगीत।
1: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

बैजू मंगेशकर और साथियों की आवाज़ में कबीर दास का लिखा ये भजन आप सुन रहे थे, मन मस्त कबीरा। इस एल्बम से बैजू मंगेशकर ने ही इसे संगीत से सजाया था। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

कविता कृष्णमूर्ति, करसन सगार्थिया और साथियों की आवाजों में हम दिल दे चुके सनम फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। महबूब ने इसे लिखा, स्माइल दरबार का संगीत। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और अब आपको सुनवाते हैं आई लव यू इस एल्बम से उदित नारायण की आवाज में गीत। फैज अनवर ने इसे लिखा है, संदेश सांडिल्य का संगीत।

0: जब तक हाथ पैर सक्रिय रहते हैं हमें उनके महत्व का अंदाजा नहीं होता। जब होती हैं हड्डियों या मांसपेशियों की समस्याएं तो समझ नहीं आता कि क्या करें।
1: अब कहां जाएं हम?
2: फर्स्ट साइन इज पेन, वो बता देता आपको कि कुछ गलत हो रहा है।
0: सेहतनामा कार्यक्रम में फिजियोथेरेपिस्ट हर्षदा राजाध्यक्ष आ रही हैं।
2: एक्सरसाइज करते रहो, शुगर और सॉल्ट अवॉइड करो, जब भी पेन हो तो किसी को कंसल्ट करो।
0: 17 अगस्त शाम 4 बजे और 18 अगस्त सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: सेहतनामा।
4: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
0: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
4: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
0: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
4: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
0: जी।
4: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
0: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
4: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
0: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम रंग तरंग।

0: शमीम जयपुरी का यह कलाम आप सुन रहे थे। अनूप जलोटा की आवाज में उन्हीं का संगीत भी इसमें आपने सुना।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं,
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
3: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से,
3: सदा रही है सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

बाबा सहगल की आवाज़ में आप सुन रहे थे जुगनी मस्त कलंदर एल्बम से ये गीत। बाबा सहगल और देव कोहली ने इसे लिखा और बाबा सहगल का संगीत। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर रंग तरंग। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। जाने मन फिल्म का ये गीत गुलजार ने लिखा है, अनु मलिक का संगीत, सोनू निगम और साधना सरगम की

मोहब्बतों में जीने वाले खुश नसीब हैं, मोहब्बतों में मरने वाले भी अजीब हैं। अजीम है हमारी दास्तां जाने मन, फासलों पर रहते हैं लेकिन करीब।

जाने मन फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। सोनू निगम और साधना सरगम की आवाजें, गुलजार के बोल, अनु मलिक का संगीत। इसके साथ ही आज का रंग तरंग कार्यक्रम अब समाप्त होता है। रंग

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनक लता। ब्रिक्स के पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन पर संपर्क समूह के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक नई दिल्ली में हो रही है।
1: प्रायोजित कार्यक्रम

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार, स्वागत है आज के उमंग कार्यक्रम में।
0: और अजीत का भी नमस्कार, धन्यवाद आप सबका उमंग कार्यक्रम से जुड़े रहने के लिए। तो आइए करते हैं हमेशा की तरह शुरुआत आज के सुविचार से, जिसे हमें भेजा है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू जी ने।
2: संस्कृति प्रकृति के लाता सारे रंग, ऐसा कार्यक्रम है हमारा उमंग।
0: वाह, संस्कृति प्रकृति के लाता सारे रंग, ऐसा कार्यक्रम है हमारा उमंग।
2: सबके लिए शिक्षा की प्रेरणा जगा देता है, ऐसा प्यारा है कार्यक्रम उमंग।
0: तो बहुत बहुत धन्यवाद इतनी खूबसूरत कविता के लिए जो आपने अपने प्यारे कार्यक्रम उमंग को समर्पित किया। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है सहसपुर लोरमी से छोटकू साहू, मोहित राम साहू, लोकेश साहू, रामकिशन साहू, दुलीचंद साहू, सतीबाई साहू और सत्यम साहू जी ने। लिखते हैं, उमंग कार्यक्रम ला सुनाइन दो कंपियर साथी हमरा बहुत सुंदर प्रस्तुति देईस, अहो ज्ञान वर्धक बात बताई ना, एकर बार बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
0: हमें आशा है कि हमने इस भाषा को ठीक से पढ़ा है।
2: जी, छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा।
0: और खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा।
2: आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों संदेश भेजने के लिए। और अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की।
0: तो हमारा पूछा गया पहला प्रश्न था, सुप्रसिद्ध पंचतंत्र की कहानियों के रचयिता कौन है?
2: इसका उत्तर है, पंचतंत्र नीति साहित्य का कथा ग्रंथ है। इसके रचयिता 2500 से 3000 वर्ष पूर्व प्रसिद्ध आचार्य विष्णु शर्मा माने जाते हैं।
0: और अब सुनिए हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न था, बिरसा मुंडा द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध प्रारंभ किए गए विद्रोह का क्या नाम था?
2: इसका उत्तर है साथियों, बिरसा मुंडा द्वारा प्रारंभ किए गए विद्रोह को उल गुलान के नाम से जाना जाता है।
0: हमारा अगला प्रश्न था, राष्ट्रीय ध्वज के चयन के लिए श्री पिंगली वेंकैया ने झंडों के कुल कितने डिजाइन प्रस्तुत किए?
2: राष्ट्र ध्वज के चयन के लिए श्री पिंगली वेंकैया ने झंडों के कुल 30 डिजाइन प्रस्तुत किए थे।
0: और अब अगला प्रश्न, हमारा प्रश्न था, वीर सावरकर जी द्वारा रचित पुस्तक का नाम बताइए।
2: वीर सावरकर जी द्वारा रचित पुस्तक का नाम है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857।
0: और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था, जन गण मन को भारत का राष्ट्रगान कब घोषित किया गया?
2: राष्ट्रगान जन गण मन महाकवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1911 में लिखा था, लेकिन इसे देश का राष्ट्रगान 1950 में घोषित किया गया था।
0: तो श्रोताओं, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, बुर्ज खलीफा से पहले दुनिया की सबसे ऊंची मीनार किसे माना जाता था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: बुर्ज खलीफा से पहले दुनिया की सबसे ऊंची मीनार किसे माना जाता था?
0: आप अपना उत्तर हमारे IBRS नंबर यानी 8800440559 पर या हमारे ईमेल पर यानी audio@ciet.nic.in पर भेज सकते हैं।
2: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो जरूर कीजिए। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। इस वेबसाइट से आप पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं
0: और इन्हीं पुस्तकों को आप ऑडियो प्रारूप में भी NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल पर सुन सकते हैं। तो श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं कार्यक्रम नहीं होना।

0: साथियों, हुआ ये कि सोमेश के चाचा सुधाकर अचानक बीमार हो गए, इसलिए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया।
1: सोमेश दादा दादी के साथ अस्पताल पहुंचा। ये उसका अस्पताल जाने का पहला अनुभव था। उसने देखा,
2: वाह क्या सफाई है, सफेद दीवारें, ऊंची छत, खिड़कियों पर हरे पर्दे और फर्श एकदम चकाचक, कोई शोर नहीं, अद्भुत शांति।
0: एक पलंग पर सुधाकर चाचा लेटे हुए थे। उन्हें देखकर वो बहुत खुश हो गए।
3: कैसे हो बेटा, अब कैसी तबीयत है?
4: जी माँ जी, अब बहुत बेहतर हूँ।
3: अरे ये लो, डॉक्टर साहब भी आ गए। डॉक्टर साहब, सुधाकर के लिए थोड़ा सा साबुदाने का हलवा लाई थी, खिला दूं? बड़ा स्वादिष्ट बनाया है। हाँ
5: जी जी, जरूर खिलाइए, शौक से खिलाइए। लेकिन हाँ, ना बाहर का खाना और ना तला भुना हुआ खाना।
2: वाह क्या ठाट है बीमारों के भी, आराम से साफ सुथरे बिस्तर पर लेटे रहो और साबुदाने का हलवा खाते रहो, कोई काम भी नहीं करना पड़ता। काश सुधाकर चाचा की जगह मैं होता। ओह मैं कब बीमार पड़ूंगा।
1: कुछ दिन बीत गए। एक दिन सोमेश को स्कूल जाने का मन नहीं हुआ। उसने होमवर्क भी नहीं किया था। स्कूल जाता तो जरूर सजा मिलती। उसने सोचा, मम्मी पापा भी किसी काम से दूसरे शहर गए हैं, बीमार पड़ने के लिए आज का दिन सबसे बढ़िया रहेगा, सो चलो बीमार पड़ जाते हैं।
3: सोमेश, सोमेश बेटा उठो, स्कूल का समय हो गया है।
2: दादी लगता है मुझे बुखार है।
3: क्या कहा, बुखार है? अरे तेरे मम्मी पापा को भी कल ही जाना था, लेकिन तुम तो कल तक बिल्कुल ठीक ठाक थे। जरा माथा तो छूने दो। अरे तुम्हारा माथा तो बिल्कुल ठंडा है।
2: दादी बुखार बस अभी अभी आया होगा, इसलिए माथा गर्म नहीं हुआ होगा।
3: अरे कोई बात नहीं, मैं जरा थर्मामीटर लेकर आती हूँ।
2: अरे दादी इतनी जल्दी पता थोड़ी चलेगा।
3: लो ये रहा थर्मामीटर, चलो अब इसे अपने मुंह के अंदर रखो। हाँ
2: दादी, मुंह में रखने से पता थोड़ी चलेगा, अंदर जल रहा है।
3: अरे बेटा लेकिन स्कूल का क्या होगा?
2: मैंने कहा ना, मुझे बहुत कमजोरी लग रही है, स्कूल नहीं जाना, अब तो पेट में भी दर्द हो रहा है।
3: अरे ये तो खांस भी रहा है, अब तो स्कूल बस भी निकल गई, चलो तुम आराम ही कर लो।
2: जी दादी।
0: सर्दियों के दिन थे, सोमेश को और क्या चाहिए था, रजाई में दुबक गया। थोड़ी देर में फिर से गहरी नींद आ गई। ठटर पटर की आवाज सुनकर उसकी आंख खुली।
6: सोमेश बेटा, बेटा सोमेश अब कैसी तबीयत है?
2: जी दादाजी अच्छा नहीं लग रहा है।
6: अरे अरे अरे अरे फिक्र न करो, बिल्कुल ठीक हो जाएगी तबीयत। हो तुम्हें तो खांसी भी है। अजी सुनती हो?
3: जी।
6: सुमेश को खांसी भी आ रही है, जरा वो वैद्य जी वाला काढ़ा भी लेती आना, गाढ़ा वाला काढ़ा।
3: जी जी अभी लाई। लो बेटा

0: काढ़े के साथ साथ पुड़िया वाली दवा भी ले लो, धीरे धीरे आराम आ जाएगा। चलो ये लो दवा, लो चलो चलो गटक जाओ, शाबाश।
1: ओ ये तो बहुत कड़वी है।
0: अच्छा इसे खाने में क्या देना है?
2: देखो आज शाम तक उपवास ही करे तो अच्छा, सारे विकार निकल जाएंगे। बेटा अब तुम थोड़ा आराम कर लो, ले जाओ शाबाश।
1: जी दादाजी।
3: दोनों चले गए। सोमेश को फिर से नींद आ गई। तेज भूख भला निंदिया रानी को कैसे टिकने देती। थोड़ी देर बाद आंख खुल गई। लेटे रहना मजबूरी थी, यूं ही पड़ा रहा। पड़े पड़े अब पीठ भी दुखने लगी थी, लेकिन कोई उपाय न था। लगभग एक घंटे के बाद फिर से दादाजी आए।
4: कैसी तबीयत है बेटा?
1: जी जी अब बिल्कुल ठीक हूँ।
4: बड़ी अच्छी बात है, लेकिन बेटा तुम्हें दवाई पूरी लेनी पड़ेगी। दवा बीच में नहीं छोड़ते, रात होने तक दो बार लेनी है। लो लो दवा पी लो, चलो उठो उठो, शाबाश। पकड़ता हूँ उठो। चलो चलो शाबाश बेटा, अब तुम आराम कर लो, ले जाओ।
3: बड़ी मुसीबत थी ये नाटक, अब भारी पड़ता जा रहा था। भूख के कारण नींद भी नहीं आ रही थी और आंख जरा भी लगती तो खाने की चीजें ही दिखाई पड़ती।
1: बर्तनों की आवाज आ रही है, शायद सब लोग खाना खाने बैठ रहे हैं। खुशबू तो दाल चावल की आ रही है। अरहर की दाल में बारीक कटा हरा धनिया और आधा चम्मच देसी घी। आहा, फिर उसमें उन्होंने नींबू भी तो निचोड़ा होगा। हरी मिर्च भी तली गई है, उसे दाल चावल में मसल कर खा रहे हैं। जरा देखो उन्होंने एक बार भी आकर नहीं पूछा कि तू क्या खाएगा। पूछते तो साबुदाने का हलवा ही तो मांगता, कोई ताजमहल थोड़ी ही मांग लेता। लेकिन नहीं, भूखे रहो सोमेश बाबू, सारे विकार निकल जाएंगे। थोड़ा सा इस बीमार को भी दे दे कोई, इससे अच्छा तो स्कूल ही चला जाता, सजा ही तो मिलती। और ऐसी सजा, उफ।
0: पीछे रेडियो पर गाना चल रहा था, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। अब तो सोमेश बाबू हाय हाय करने लगे, जब रहा नहीं गया तो रजाई फेंक कर खड़े हो गए और दरवाजे के पास जाकर बाहर झांका। खाना नहीं मिला तो खुशबू ही सूंघने लगे। कि तभी,
4: अरे सुमेश बेटा जग गए, कुछ आराम आया बेटा है? बोलो ठीक है ना? अरे अब तो तुम्हें खांसी भी बिल्कुल नहीं है।
1: जी दादाजी।
0: चलो चलो बिस्तर पर लेट जाओ वरना ठंड लग जाएगी। हाँ बस अभी आई, तुम्हें एक पुड़िया और देनी है। हाँ और शाम तक
4: बिल्कुल ठीक हो जाओगे
0: बेटा।
1: जी।
3: सोमेश जलन गुस्से और कुड़हन में पांव पटकता वापस बिस्तर पर आ गया। उसे पूरे दिन भूखे पेट ही रहना पड़ा था।
0: सारे विकार निकल गए। इसके बाद स्कूल से छुट्टी मारने के लिए उसने बीमारी का बहाना कभी नहीं बनाया।
5: साथियों इस कार्यक्रम में आपने एक वाक्य सुना, सारे विकार निकल जाएंगे। विकार का अर्थ है कोई शारीरिक या मानसिक समस्या या दोष। इस अवस्था में शरीर का कोई अंग या तंत्र सामान्य रूप से कार्य नहीं कर पाता है। अभी आपने सुना ये मनोरंजक कार्यक्रम नहीं होना बीमार। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सिद्धो और कान्हू।
6: ऐसे नहीं मानेगा।
7: साहब मत करो साहब।
6: चल सिपाही।
8: यस सर।
7: साहब
6: इसको हंटर मारो।
7: साहब
8: जी सर।
9: कमाल जी कमाल जी कमेरे।
5: अबुआ राज अबुआ दिसुम, ये था नारा संथाल जनजाति के हुल आंदोलन यानी स्वतंत्रता संग्राम का। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के आदिवासी नायक सिद्धो और कान्हू।
10: ५८५७ के आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेजी शासन के विरुद्ध स्वतंत्रता की पहली लड़ाई माना जाता है, लेकिन इससे पहले भी देश भर में स्थानीय या क्षेत्रीय स्तर पर विदेशी शासन के विरुद्ध अनेक छोटे बड़े आंदोलन हुए हैं। यदि कहें कि इन आंदोलनों ने राष्ट्रीय स्तर के आंदोलनों को जन्म देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।
0: आज हम बात करेंगे आजादी की लड़ाई को बल देने वाले एक ऐसे आंदोलन की जिसका नेतृत्व सिद्धो और कान्हू नामक दो संथाल आदिवासी युवकों ने किया। ये आंदोलन हुल आंदोलन या संथाल विद्रोह के नाम से जाना जाता है।
10: जनसंख्या की दृष्टि से संथाल आज भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समूह है। सिद्धो मुर्मू और कान्हू मुर्मू का जन्म भोगना डीह नामक गांव में एक संथाल आदिवासी परिवार में हुआ था जो कि वर्तमान में झारखंड के साहेबगंज जिले में है। सिद्धो मुर्मू का जन्म 1815 ईस्वी में हुआ था और कान्हू मुर्मू का जन्म 1820 ईस्वी में हुआ था।
0: इनके पिता का नाम चुन्नी मांझी था।
10: जैसा कि हम सभी जानते हैं, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति को अपनाया था। इस नीति के तहत वो बहुत से भारतीय जमींदारों सामंतों महाजनों और साहूकारों के सहयोग से भोले भाले आदिवासियों का शोषण करते थे। इस क्षेत्र में अंग्रेजों का आधिपत्य सन 1756 से ही हो चुका था। उन दिनों आदिवासियों की दशा बहुत दयनीय थी।
6: ए मैन, तुम्हारा नाम क्या है?
7: जी जी मेरा नाम कोड़ा है।
6: ओके, तो तुम कोड़ा हो
7: जी।
6: तुम यहाँ फसल कैसे काट रहे हो?
7: जी ये मेरी जमीन है।
6: तुम्हारा जमीन थी, अब ये जमीन तुम्हारी नहीं है। तुमने माल गुजारी नहीं दिया है।
7: जी मुझे थोड़ा और समय दीजिए, इस बार की उपज बेचकर पूरी माल गुजारी चुका दूंगा।
6: पिछले साल भी तुमने यही बोला था। सरकारी आदेश आया है कि तुम्हारी फसल जब्त कर ले जाए।
7: नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। हम क्या खाएंगे? हम बर्बाद हो जाएंगे साहब।
6: ये तो तुमको पहले सोचना चाहिए था। सिपाहियों
8: जी सर,
6: आगे बढ़ो और कटी हुई फसल को बैलगाड़ी में डालो।
8: जी सर।
6: और खेत में रात का पैरा बिठा दो।
8: जी सर।
6: बाकी फसल कल काट लेंगे, कचहरी में जमा कराना है।
8: जी सर।
7: नहीं नहीं साहब, साहब ऐसा मत करो साहब। साहब ऐसा मत करो।
6: चलो हटो।
7: साहब साहब
6: आओ।
7: साहब
6: ऐसे नहीं मानेगा।
7: साहब मत करो साहब।
6: चल सिपाही।
8: यस सर।
7: साहब
6: इसको हंटर मारो।
7: साहब
8: जी सर।
7: साहब मत करो साहब, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। साहब
10: इस तरह की अनेक घटनाएं उन दिनों में आम थी। लगान नहीं देने पर बड़ी क्रूरता से पैसा वसूलना, कर्जा नहीं चुकाने पर किशोरों और बच्चों तक को बेगारी में लगाना, जमीन हड़प लेना, कर्जा देकर भारी सूद वसूल करना आदि ऐसी घटनाएं थी जिनके कारण धीरे धीरे आदिवासी समुदाय में असंतोष पनपने लगा।
0: आदिवासी लोग अपने खेतों के उत्पाद जैसे अनाज, दूध, शहद, जंगली कंदमूल और साग सब्जियां इत्यादि बाजार में बेचने आते थे। महाजन और जमींदारों के कारिंदे कर्मचारी बाजारों में भी उनका भारी शोषण करते थे।
10: होता ये था कि वो बड़े बटखरे से इनके उत्पादन को खरीदते थे और छोटे हल्के बटखरे से उन्हें भारी कीमत पर उसी सामान को बेचते थे। असंतोष बढ़ता जा रहा था। कई बार आदिवासियों ने इन बातों का थोड़ा बहुत विरोध भी किया, लेकिन उन्हें बड़ी क्रूरता से कुचल दिया गया। कचहरी थी, लेकिन कहीं न्याय नहीं मिलता था। विदेशी हुकूमत और स्वदेशी जमींदारों की साझेदारी के कारण उन पर दोहरी मार पड़ती थी।
0: सिदो और कान्हू अक्सर इन बातों पर अपने परिवार में और गांव के लोगों के साथ चर्चा किया करते।
8: भाई कान्हू।
7: जी भैया।
8: अंग्रेज अफसरों और उनके लोगों का शोषण तो बढ़ता ही जा रहा है।
7: हाँ, वो तो है। आज ही देखो ना क्या हुआ। सुबह जगत बेसरा के घर से उसके दो बेटों को जमींदार उठा ले गया।
8: क्या कानू, अब तो हमें कुछ करना ही होगा।
7: हाँ भैया।
8: ऐसा करते हैं, कल गांव वालों की बैठक बुलाते हैं, वहाँ विचार करेंगे कि हमें क्या करना है।
7: लेकिन भैया, मुझे लगता है कि सिर्फ गांव के लोगों को बुलाना ठीक नहीं रहेगा।
8: तो फिर
7: कम से कम आस पास के 5-10 गाँव को बुलावा भेजना चाहिए।
8: हाँ, ठीक कहा तुमने।
7: हाँ,
8: ऐसा ही करेंगे।
7: जी भैया।
0: फिर क्या था, आसपास के 10 गांवों की सभा बुलाई गई और सर्वसम्मति से तय किया गया कि बड़े पैमाने पर अंग्रेजों और उनके सहयोगियों के द्वारा किए जा रहे शोषण का जबरदस्त विरोध किया जाएगा।
10: सबके मन में भयंकर आक्रोश पनपने लगा था। 10 गांवों के लोगों ने मिलकर तय किया कि मात्र 10 गांवों से काम नहीं चलेगा, 100 गांवों से भी अधिक गांवों को न्योता भेजा गया। सिदो कान्हू ने विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। इस काम में उनके दो भाइयों चांद मुर्मू और भैरव मुर्मू, साथ ही दो बहनों फुलो मुर्मू और झानू मुर्मू ने भी पूरा सहयोग दिया।
0: लोगों को एकत्रित और संगठित करने के लिए उन्होंने आदिवासियों की परंपरागत विधि अपनाई। गांवों में डुगडुगी बजा दी गई और साल वृक्ष की टहनी भेजी गई। साल वृक्ष संपन्नता, स्थायित्व, जीवन और क्रांति का प्रतीक है। तीर धनुष के साथ लोगों को सभा में आने का आह्वान किया गया। इस आंदोलन में आदिवासियों के अलावा समाज के दूसरे तबके के लोगों ने भी भाग लिया।
10: दिन था 30 जून 1855। स्थान सिदो कान्हू का गांव भगनाडीह। जंगलों पहाड़ों से निकलकर भारी संख्या में संथाल आदिवासी जमा होने लगे। पारंपरिक हथियारों के साथ लगभग 20,000 लोग सभा स्थल पर जमा हो गए। सिदो ने जोश भरा क्रांतिकारी भाषण दिया।
11: अंग्रेजों का अत्याचार तो हमें, अरे हमारी जमीन जब्त की
12: जाएगी।
13: मेरे संथाल भाई और बहन, आज हमारा जो हाल है वो किसी से भी छुपा नहीं है।
14: सही बोले, सही कहे।
13: हमारी जमीन हमसे छीन ली गई है।
15: हाँ, सही कहा।
13: हमारे जवान बच्चों से बेगारी कराई जाती है। सूद की दर इतनी भारी है कि हम चुका नहीं सकते।
14: सही बात कह रहा है।
13: हम अपना ही सामान नहीं बेच सकते। माल गुजारी नहीं देने पर हमारी फसलें जब्त कर ली जाती
15: है।
13: भाइयों अब समय आ गया है, अब समय आ गया है कि हम इन बातों का विरोध करें। और हमारा नारा है, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो,
16: अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो,
13: अब करो या मर जाओ,
16: अब करो या मर जाओ।
13: अबुआ राज अबुआ किसम,
16: अबुआ राज अबुआ किसम,
13: अबुआ राज।
0: इस सभा में सिद्धू को राजा, कान्हू को मंत्री, चांद को प्रशासक और भैरव को सेनापति घोषित कर दिया गया। भारी भीड़ तीर धनुष के साथ चल पड़ी और अंग्रेज अफसरों, स्थानीय साहूकारों और जमींदारों के कार्यालयों और घरों पर हमला कर दिया गया। उनकी विशाल कोठियों पर अधिकार कर लिया गया। लगभग 19 अंग्रेज अधिकारियों और उनके साथ काम करने वालों को अपनी जान गंवानी पड़ी।
10: क्रांतिकारियों ने वीरभूमि क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। रघुनाथपुर और संग्रामपुर की लड़ाई में संथालों की बड़ी जीत हुई, लेकिन तब तक ब्रिटिश सेना बुला ली गई। सेना ने बंदूकों से क्रांतिकारियों पर आक्रमण कर दिया। भला बंदूकों के आगे तीर कमान कब तक टिकते। युद्ध धीरे धीरे मंद पड़ने लगा था। सिद्धू कान्हू के दोनों भाई चांद और भैरव युद्ध में शहीद हो गए।
0: इसी बीच एक और दुखद घटना घटी। सिद्धू और कान्हू के कुछ साथी लालच में आकर अंग्रेजों से मिल गए और गद्दारों के सहयोग से उपरबंदा गांव के पास कान्हू को गिरफ्तार कर लिया गया। 19 अगस्त को बढ़ैत गांव में सिद्धू को भी गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों भाइयों को खुलेआम फांसी दे दी गई।
10: इसके साथ ही सशक्त नेतृत्व के अभाव में आंदोलन कमजोर पड़ गया और धीरे धीरे विद्रोह को कुचल दिया गया। बेशक आंदोलन समाप्त हो गया, लेकिन परिणाम स्वरूप 30 नवंबर 1856 को कानूनन संथाल परगना जिला की स्थापना हुई और इस आदिवासी क्षेत्र का विशेष कानून बना, जिसके कारण आदिवासियों को बहुत से अधिकार मिल गए।
0: संथाल विद्रोह या हूल आंदोलन का तो अंत हो गया, लेकिन इसने कुछ साल बाद 1857 की आजादी की लड़ाई की भूमिका बना दी थी, जो अखिल भारत की स्वतंत्रता का पहला आंदोलन माना जाता है। संथाल विद्रोह का नारा था, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो और करो या मर जाओ। ये मात्र संयोग नहीं है कि आजादी की लड़ाई में यही नारे अंग्रेजों भारत छोड़ो और करो या मरो के नाम से प्रसिद्ध हुए।
10: आज भारत का आदिवासी समुदाय और समस्त देश इन भाइयों पर गर्व करता है। 30 जून को संथाली हूल दिवस पूरे झारखंड में मनाया जाता है। संथाली गीतों में आज भी सिद्धू और कान्हू का शौर्य गाया जाता है।

0: स्वतंत्रता सेनानी घोषित किया, उनकी स्मृति में डाक टिकट जारी किया और उनके नाम पर संथाल परगना में सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय की स्थापना की, जिसमें जनजातीय विषयों पर गहराई से शोध किया जाता है। इन शहीदों को हमारा शत शत नमन।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम सिद्धू और कान्हू। अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ चेतना, जगबंधु
2: और मंजू जी के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम।

0: गोपाल कृष्णा। फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, रविंद्र जैन का गीत और उन्हीं का संगीत, यशदास और हेमलता की आवाजें।
1: जब तक हाथ पैर सक्रिय रहते हैं, हमें उनके महत्व का अंदाजा नहीं होता। जब होती हैं हड्डियों या मांसपेशियों की समस्याएं, तो समझ नहीं आता कि क्या करें।
2: अब कहां जाएं हम?
3: फर्स्ट साइन इज पेन, वो बता देता आपको कि कुछ गलत हो रहा है।
1: सेहतनामा कार्यक्रम में फिजियोथेरेपिस्ट हर्षदा राजाध्यक्ष आ रही हैं।
3: एक्सरसाइज करते रहो, शुगर और सॉल्ट अवॉइड करो, जब भी पेन हो तो किसी को कंसल्ट करो।
1: 17 अगस्त शाम 4 बजे और 18 अगस्त सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सेहतनामा।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

आंखियों के झरोखों से फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। हिमलता और शैलेंद्र सिंह की आवाजें, रविंद्र जैन के बोल, उन्हीं का संगीत। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर यादों की महफिल। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। त्रिशूल फिल्म के इस गीत में सुनिए लता मंगेशकर और नितिन मुकेश को, साहिल धयानवी के बोल, खयाम की तर्ज।

0: लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाजों में आप सुन रहे थे त्रिशूल फिल्म से ये गीत, साहिल लुधियानवी के बोल, खयाम का संगीत।
1: जब तक हाथ पैर सक्रिय रहते हैं हमें उनके महत्व का अंदाजा नहीं होता। जब होती हैं हड्डियों या मांसपेशियों की समस्याएं तो समझ नहीं आता कि क्या करें।
2: अब कहां जाए हम?
3: फर्स्ट साइन इज पेन, वो बता देता आपको कि कुछ गलत हो रहा है।
1: सेहतनामा कार्यक्रम में फिजियोथेरेपिस्ट हर्षदा राजाध्यक्ष आ रही हैं।
3: एक्सरसाइज करते रहो, शुगर और सॉल्ट अवॉइड करो, जब भी पेन हो तो किसी को कंसल्ट करो।
1: 17 अगस्त शाम 4 बजे और 18 अगस्त सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सेहतनामा।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: चले।
1: ज्वेल थी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के शब्द और सचिन देव बर्मन की तर्ज। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर यादों की महफिल।
2: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
3: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली तनू,
2: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत,
4: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी,
2: गुजरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत
5: तुम्हारी याद सताते हैं
2: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
7: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
6: सखी सहेली?
7: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
6: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
7: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
8: सखी सहेली।
1: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: ब्रह्मचारी फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। शंकर जयकिशन का संगीत, हसरत जयपुरी के बोल, मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजें।
1: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
2: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
1: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
3: मैं अगले दिन आशुतोष गवारीकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जयो कहा से हुजूर।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। आइए सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में साहिल लुधियानवी के बोल, सपन चक्रवर्ती का संगीत, जमीर फिल्म के इस गीत में।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सुरीला सफर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में रोजाना हम एक इबारत पोस्ट करते हैं हमारे फेसबुक पेज पर और उस इबारत में ही छुपे होते हैं वो गीतों उन गीतों के शब्द जो आज के इस कार्यक्रम में शामिल किए जाएंगे। तो चलिए आज की इबारत आपको पहले एक बार पढ़कर सुना दें। हालांकि आपने उसे पढ़ ही लिया है और बहुत सारे शब्द भी आपने बता दिए हैं, फिर भी हमारे जो साथी फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं उनके लिए वो इबारत हम एक बार पढ़ते हैं। न जाने लोग क्यों कहते हैं कि चार दिन की जिंदगी में सभी से प्यार करो, निभाते चलो, किसी का दिल न दुखाओ, जो मिले उसे अपनाओ। पर क्यों ना ये सोचा जाए कि इस चार दिन की जिंदगी में अपने मन का काम करो, न झूठे मुखौटे न झूठी मुस्कान धरो। भले न रखो अभिमान पर ऊंचा रखो स्वाभिमान, खुद पे करो भरोसा और बढ़ते चलो अपनी राह। शायद हमारा कुछ ऐसा ही व्यक्तित्व रचा होगा ऊपर वाले ने और हम इस दुनियादारी में कहां से कहां पहुंच गए। ये हमारी आज की इबारत है और इस इबारत पर भी बहुत सी बातें हमारे साथियों ने लिख भेजी हैं। हमारे एक साथी ने एक कविता लिखी कि चार दिन की है जिंदगी फिर क्यों इतना अभिमान, आज जो अपना लगता है कल बन जाता अनजान। कुछ पल हंस लो कुछ पल बांट लो अपनों के संग प्यार, क्या पता फिर मिले ना मिले जीवन का ये सुंदर उपहार। न शिकायतों का बोझ रहे न मन में कोई मलाल, जो मिला उसे स्वीकार करें हर पल को करें खुशहाल। वहीं हमारे एक साथी कहने कि जिंदगी के सफर में सबसे मित्रतापूर्ण व्यवहार बनाए रखने के संदेश देती भारत का स्वागत है, प्यार बांटते चलो। और हमारे एक साथी ने कहा कि मन को पिंजरे में न डालो, मन का कहना मत डालो। बिल्कुल सही बात ये आपने कही। तो और हमारे एक और साथी कहना है कि भगवान की भक्ति करो बाकी सब मोह माया है। आप भी अपने विचार हम तक पहुंचाइए हमारे फेसबुक पेज के जरिए www.facebook.com/vbsmumbai। इस पते पर जाकर आपको विविध भारती का फेसबुक पेज मिल जाएगा। और अगर आप अब तक फेसबुक का ऐप अगर आपके पास है तो वहां आप विविध भारती राष्ट्रीय सेवा टाइप कर सकते हैं, देवनागरी में लिखा है ये, और आपको एक नीले बैच के साथ मिल जाएगा हमारा पेज। और कार्यक्रम की शुरुआत में आपको सुनवाते हैं एक गीत, लेकिन उससे पहले हमें ये बताइए कि क्या आपने अपनी जिंदगी में कोई ऐसा काम किया है जिसे सिर्फ आपने अपने लिए किया हो, किसी और के बारे में ना सोचा हो।

आह, फिल्म से ये गीत आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज में, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। और कभी कभी आह निकल जाती है जब हम दूसरों के लिए ही जीते जाते हैं। क्या आप भी दूसरों को खुश रखने के लिए अपना मन मारते हैं? आपका मन ना हो लेकिन वो काम करते हैं, कुछ रिश्तों को इस तरह से निभाते हैं जब बिल्कुल भी मन ना हो उन्हें निभाने का, या दूसरी तरफ से कोई भी कोशिशें नहीं दिख रही हूँ। हमारे एक साथी तो कह रहे हैं कि किसी का दिल ना दुखाएं, तो ये तो सही है, सही है ना? ऐसा नहीं कर सकते कि सबको परेशान करते हुए आगे बढ़ें। आगे बढ़ने के लिए किसी को रास्ते से हटाना नहीं, बल्कि सबका अच्छा करते हुए बढ़ें, तो इसमें क्या खराबी है? हाँ, अगर बिना मतलब कोई परेशान करे तो फिर उसको छोड़ना सही है, ऐसा वो कह रही हैं। लेकिन हम तो इन्हें ये बताना चाहते हैं कि हम तो ये नहीं कह रहे कि आप किसी का दिल दुखाएं, हम तो ये कह रहे हैं कि आप अपना दिल ना दुखाएं और अपने बारे में भी थोड़ा बहुत सोचें। और जरूरी नहीं कि आप सभी से सिर्फ मुस्कुराकर मिलें, ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने बारे में सोचें। हो सकता है कोई व्यक्ति ऐसा हो जो आपसे मिलता हो लेकिन आप उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते, सिर्फ दुनियादारी निभाने के लिए ही आप उनके साथ बने रहते हैं या मुस्कुराते रहते हैं कि भाई निभाना तो है ही। तो ये निभाते रहना कितना सही है कितना गलत, इस पर कर रहे हैं हम आज बात। क्योंकि अगर है सिर्फ 4 दिन की जिंदगानी, तो क्यों ना उसे हम अपने लिए जिए। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि वे दूसरों को हर हाल में खुश रखने की प्रवृत्ति के मानसिक दबाव पर ये एक सटीक कटाक्ष है। अक्सर 4 दिन की जिंदगी मुहावरे का उपयोग समझौता करने और चुप रहने के लिए किया जाता है, किंतु यहाँ इसी मुहावरे का प्रयोग व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आत्मखोज के अधिकार को सिद्ध करने के लिए किया गया है। और हमारे एक साथी कहते हैं कि आज का गद्यांश जीवन के यथार्थ स्वाभिमान और निष्कपट प्रेम से जुड़ा हुआ है। जिंदगी यदि 4 दिनों की है, ये वाक्य सीधे तौर पर एक अर्थ दे रहा है कि जिंदगी की नश्वरता का बोध है। अस्तित्ववाद कहता है कि जिंदगी सीमित है, इसलिए मनुष्य को बिना कोई मुखौटा लगाए अपने अस्तित्व के वास्तविक और सच्चे स्वरूप को पहचान कर जिंदगी को जीना चाहिए। यहाँ ये महत्वपूर्ण है कि स्वाभिमान का अर्थ अहम प्रेम नहीं बल्कि अपनी आत्मा के स्वरों को सर्वोपरि रखना है, जिससे आत्म सम्मान और विवेक जिंदगी का आधार बन जाए। सभी को प्यार करो यानी सार्वभौमिक प्रेम के सिद्धांत को अपनाया जाए। हमारे एक और साथी हैं, वो कहती हैं कि आज की इबारत में आम आदमी का, उसके वर्तन का और समाज मन का सही चेहरा उभर रहा है। रूढ़ियों और अपेक्षाओं के नीचे दबे सर्वसाधारण आदमियों के सामने खुद के लिए जीना कब सीखोगे, ऐसा सवाल भी खड़ा कर दिया है। अभिमान यानी आत्म सम्मान और गरिमा की रक्षा करते करते स्वाभिमान रखना यानी खुद को विनम्र और आत्मानंद के लिए मजबूत बनाना भी उतना ही जरूरी है। तो ये भी बात है कि क्या हम दूसरों की मर्जी के अनुसार ही सारे काम करते हैं? तो ये भी आप हमें बताइए कि अगर एक दिन आपको ऐसा पता चले कि आज आपको किसी भी चीज के लिए रोका टोका नहीं जाएगा, किसी भी चीज के लिए कोई जजमेंट पास नहीं होगा, या ये नहीं कहा जाएगा कि इस उम्र में आप ये काम नहीं कर सकते, या आप इस खास जगह पर हैं तो आपको ये नहीं करना चाहिए, अगर इस तरह की बंदिशें एक दिन के लिए भी आपसे हट जाएं, या आपके मन की जो ये दुनियादारी है वो आपसे हट जाए, तो कौन सा काम आप करेंगे, ये हमें बताइए। तब तक सुनाते हैं।

0: आपको एक ऐसा ही गीत जो आपको काम इस तरह का अपने मन का काम करने के लिए प्रेरित करेगा। और ये गीत किस फिल्म का है, मैं बताइए, किस पर फिल्माया गया है ये भी बताइए।
1: याहू!

जंगली कहे।

0: में जंग भी कहे, कहने दो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे।
1: जंगली फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफी की आवाज में आप सुन रहे थे। शमी कपूर इसमें नजर आते हैं। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया और हमने आपसे पूछा था कि क्या आपने कभी कोई ऐसा काम किया है जो बिल्कुल अपने मन से आपने किया हो। साथ ही ये भी बताइए कि आज जिंदगी में कोई ऐसा काम किया जिसके लिए सब रूठ गए हों, सबसे बगावत करके कोई काम आपने किया हो तो भी हमें बताइए। और हमारे साथी ने लिखा है कि मैंने अपना जीवन यापन करने का एक हुनर अपने लिए किया है और मेरा जीवन अच्छे से मैं चलाता हूं उससे। और हमारे साथी कहते हैं कि चार दिन की जिंदगी में सबको खुश रखते चलो ये कहते हैं सभी, लेकिन ये नहीं कोई पूछता कि इस कोशिश में खुद को कितना खो दिया। इस छोटी सी जिंदगी में दूसरों को रिझाने के लिए नकली मुस्कान ओढ़ने से बेहतर कि हम वो करें जो हमारे दिल को सुकून दे। झुकना वहां ठीक है जहां रिश्ते मायने रखते हों, पर अपने आत्मसम्मान का सौदा करके किसी के सामने गिरना खुद के साथ अन्याय है। ईश्वर ने हमें किसी के सांचे में ढलने के लिए नहीं बल्कि अपने एक अलग पहचान बनाने के लिए भेजा है, इसलिए झूठे मुखौटों को उतारिए, खुद पर विश्वास रखिए और अपने स्वाभिमान के साथ अपनी चुनी हुई राह पर आगे बढ़िए। हमारी एक और साथी ने कविता लिख भेजी कि वक्त मुट्ठी में रखी रेत सा फिसलता रहता है और हम हैं कि उसे रिश्तों ख्वाहिशों और फर्जों में बांधते रहते हैं। मन की सुन लेना भी जरूरी है मगर किसी अपने की खामोशी पढ़ लेना भी, अपने रास्ते पर चलना आजादी है और चलते हुए किसी

का हाथ न छूटे, शायद यही इंसानियत है। इसलिए इन चंद दिनों को न मुखौटा बनाइए न शिकायत, बस इतना कीजिए कि जो बनना चाहते थे थोड़ा सा बन जाएं, जो अपने थे उन्हें थोड़ा सा अपना कह जाएं। फिर जब शाम उतरेगी जिंदगी की तो अफसोस कम होंगे और यादें शायद थोड़ी ज्यादा। हमारे एक साथी का कहना है कि चल अकेला ये गीत भी सुन सकते हैं क्या आज? हालांकि आज की थीम पर ये गीत तो बिल्कुल भी नहीं जमता, क्योंकि अकेले चलने की बात नहीं हो रही है, बात आप सबके साथ रहकर भी अपने मन की कुछ कर सकते हैं इसकी हो रही है। और साथ ही ये शब्द भी इसमें कहीं ना कहीं मिल नहीं रहा। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि स्वाभिमान अपने आप को दूसरों से बड़ा समझना नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व और अपनी भावनाओं का सम्मान करना है। जीवन में हर किसी को खुश रखना संभव नहीं होता। स्वाभिमान वो ताकत है जो कहती है मैं किसी से कम नहीं, और किसी को छोटा करके बड़ा बनने की जरूरत भी नहीं। किसी के स्वाभिमान की लकीर खींची गई हो, उस लकीर से अपनी लकीर को बड़ा करना होता है, किसी की लकीर को मिटाना नहीं होता। तो बस ये बात तो हो रही है, साथ ही साथ फिल्मों की बातें भी हो रही हैं। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि उन्होंने कि क्षणभंगुर जीवन की यथार्थता परिभाषित करता सुंदर गीत आह फिल्म के गीत के बारे में ये कह रहे हैं। और भी बहुत से गीतों के बारे में हमारे साथियों ने कहा है कि ये गीत शामिल हो सकते हैं। देखते हैं कि आज के जो गीत शामिल हो रहे हैं उनमें आपके लिस्ट के, हालांकि बहुत से गीत तो हैं आपके लिस्ट से उसमें से, लेकिन फिर भी आप हमें बताते चलिए कि कौन से गीत आपके लिस्ट में से आज शामिल होते जा रहे हैं इस कार्यक्रम में। और ये भी बताइए कि कौन कौन सी बातें जो आपके जीवन में रही हैं वो आज के इस कार्यक्रम से संबंधित है, कि आप अपने जीवन को किस तरह से बांधते हैं, किस तरह से देखते हैं, किसके लिए आप करते हैं अपने मन को थोड़ा सा नरम, और कब कब अपने मन के काम करने के लिए, मनमर्जी करने के लिए मचल उठते हैं आप। हमारे एक साथी ने बहुत अच्छा किस्सा भेजा है, बताएंगे, लेकिन एक गीत सुन लेते हैं। बताइए कि कौन सी फिल्म से ये गीत हमने लिया और इसे लिखा किसने।

आशा भोसले मोहम्मद रफी की आवाजों में सच्चाई फिल्म का गीत आपने सुना, जिसे लिखा राजेंद्र कृष्ण ने, और आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। हमारे साथी कह रहे हैं कि आज की इबारत पढ़ते ही दिल गहरी सांस लेकर बुदबुदाया कि होना तो ऐसा ही चाहिए, पर होता कहाँ है। रिटायरमेंट के दिन सहकर्मी भी यही कहते हैं कि अब आपकी दूसरी पारी शुरू हो रही है, अभी तक आप दूसरों के लीजिए, अब अपने लीजिए और सभी इच्छाओं को पूरा करें। लेकिन सच्चाई इसके विपरीत है। हम जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा दूसरों का मन रखने और लिहाज करने में व्यतीत कर देते हैं और इसकी ऐसी आदत हो जाती है कि जब होश आता है तब तक इच्छाएं मर चुकी होती हैं और शरीर अक्षम हो चुका होता है। संक्षेप में एक शेर आज की इबारत का माकूल जवाब हो सकता है, उम्र दराज मांग के लाई थी चार दिन, दो आरजू में कट गए दो इंतजार में। भाई क्या बात आपने कही, बिल्कुल मर्म को समझा आपने आज की इबारत की। और कुछ यही बातें की जा रही है कि एक वक्त के बाद एहसास होता है कि बहुत सा काम हमें करना था अपने मन का जो हमने बिल्कुल नहीं किया। हम दूसरों के बारे में सोचते रहे, कभी कभी कुछ जो बंदिशें या सीमाएं थी वो हमारी अपनी ही बनाई हुई थी, जो हमें बाद में समझ में आता है। हमारे साथी कहने की लता जी की आवाज का एक गीत है, दो दिन की जिंदगी कैसी है जिंदगी। जब जब इस गीत को सुनती हूँ तो लगता है जिंदगी चाहे दो दिन की हो या चाहे चार दिन की, हम जो भी पल जिए उसमें किसी तरह का अपराध बोध ना हो। हम अक्सर ये सुनते हैं कि दूसरों का दिल कभी नहीं दुखाना चाहिए, पर अपने दिल के सुनते हैं अपने दिल को कितना दुखाते हैं। हर समय पूर्ण बनने की कोशिश में दिन गुजर जाते हैं और हम हाथ मलते रह जाते हैं। सो अपने दिल के सुने, न किसी को दुखी करें न खुद दुखी हो, ये जो जितने दिल मिले हैं इन्हें भरपूर जी लें। वाकई बहुत ही अच्छी बात हमारे एक साथी ने दी है, नागपंचम की बधाई, तो हम भी देते हैं उन्हें बधाई और साथ ही साथ उन्हें देते हैं ये संदेश कि अपने मन की जीना बहुत जरूरी है। कभी कभी मन नहीं होता कि हम मुस्कुराएं, या कभी कभी मन उदास होता है फिर भी हम कहते हैं कि हम ठीक हैं, तो इस तरह की बातों से भी हमें बचना चाहिए। तो क्या वाकई हम अपने मन के सुनते हैं? आप हमें बताइए और सुनिए ये गीत जिसमें बात है कुछ ऐसी ही, और आपको ये बताना है कि किस फिल्म का ये गीत है। आवाज तो आप पहचान ही जाएंगे, संगीतकार का नाम पहचानिए।

सच्चा झूठा फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, कल्याण जी आनंद जी का संगीत। इसमें आपने सुना किशोर कुमार की आवाज, और हमने नहीं पूछा था फिर भी आपने बताया कि राजेश खन्ना नजर आते हैं इस फिल्म में, इस गीत में। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सही जवाब दिया। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि बचपन से ही उनका सपना था कि वो एक आरजे बने रेडियो में, लेकिन समय के साथ बैंकिंग जॉब करना पड़ा, फिर 36 साल के बाद रिटायरमेंट हुआ और आरजे बनने की इच्छा हुई तो ऑडिशन क्लियर किया और अब अपना सेकंड फेस यानी लाइफ की जो दूसरी पारी है वो एक आरजे के रूप में कम्युनिटी रेडियो में बिता रहे हैं। और ये उनकी एक चॉइस थी, उनका एक शौक था और इसे उन्होंने चुना और आज वो बड़े खुश हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, आपने अपने इस शौक को, अपने मन की बात को बिल्कुल ध्यान रखा कि आपका मन क्या चाहता था। भले ही आपको कुछ और करना पड़ा, लेकिन जैसे ही मौका मिला आपने ये नहीं सोचा कि उम्र है आप क्या करें और आप आगे बढ़े। इसके लिए बहुत बहुत आपको हम शुभकामनाएं देते हैं। और हमारे एक साथी कहते हैं, अगर आप किसी की मदद चाहकर भी ना कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, पर उसकी राह में रुकावट ना डालें। अगर ये बात हर आदमी मानने लगे तो दुनिया की आधी समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि हम वो क्या करना चाहते हैं, वो कह रहे हैं कि मैं खूब खेलूंगा क्रिकेट, अगर उन्हें जज ना किया जाए तो वो क्रिकेट खेलना चाहेंगे। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि अगर उन्हें कोई रोके टोके नहीं तो मैं छोटे छोटे निके निके से बच्चों के साथ खेलना चाहूंगी। हम तो कहेंगे कि कोई रोकता टोकता भी है तो रहने दीजिए, आप अपना जो ये खेलने का मन है वो कर लीजिए भाई। इतना अच्छा सा शौक आपने सोचा, इतना अच्छा आपका मन में ये छोटे सा एक ख्याल है, इसके लिए भी इतना सोचेंगे तो क्या होगा, है ना। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि कुछ सच कहें तो अपने लिए ज्यादा तो कुछ नहीं किया, बस दूसरों की खुशी कैसे मिले इन्हीं बातों का ध्यान रखा। पहले मायके में सबका ध्यान रखना, सबके काम करना, सबको खिला के खाना, फिर ससुराल में भी बच्चों और सबका ख्याल सदा रखा, लेकिन अब जीना है खुद के लिए और हम करते हैं कुछ ऐसे काम जिससे हमें खुशी मिले। मिलते हैं अपने दोस्तों से, ढूंढते हैं छोटी छोटी खुशियां, कभी कभी खुद की पसंद का खाना भी बनाते हैं और बच्चों से कहते हैं कि आज हम यही बनाएंगे। भाई ये हुई ना बात, क्योंकि ऐसा करना बहुत जरूरी है। अगर आप रोजाना दूसरों की पसंद का ही ख्याल रखते रहेंगे तो आपकी पसंद का ख्याल कौन रखेगा। हमारे एक और साथी कहते हैं कि क्या कहने इस गाने के, बहुत साल हो गए इस फिल्म को देखे हुए लेकिन इतने सालों बाद भी ऐसा लग रहा है कि जैसे ये सब कल की बात हो। शम्मी कपूर और सायरा बानो की बहुत सुंदर अदाकारी इस फिल्म में, और देखकर पुराने दिनों की यादें ताजा हो गई। जंगली फिल्म के गीत के लिए इन्होंने कहा। हमारे एक और साथी ने कहा कि अगर उत्तरदायित्व का बोझ हट जाए तो जरूरतमंद बच्चों को ट्यूशन पढ़ाऊंगा, शिक्षण मेरा शौक है। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, कुछ रिश्तों को समर्पित है ये कहावत। तो अलग अलग बातें हमारे साथी कह रहे हैं, और जो बाकी और साथी भी हैं वो भी बता सकते हैं कि अगर उन्हें एक दिन के लिए ये मौका मिले कि वो सिर्फ अपने मन का कोई भी काम कर सकते हैं, भले ही आज उन्हें इस चीज की पाबंदी हो स्वास्थ्य के कारणों से या किसी और कारण से, मान लीजिए कि वो सब कुछ हट जाए तो क्या करेंगे आप उस एक दिन, क्या होगा आपके मन का वो काम जो आप करना चाहते हैं और कभी नहीं कर पाए, वक्त नहीं मिला या कुछ समय इस तरह का था, परिस्थिति ऐसी थी, लेकिन अगर ऐसा हो तो क्या करेंगे आप, ये हमें बताइए। क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि किस चीज की एक कसक मन में रह गई है तो वो क्या है, हमसे साझा कीजिए आज। तब तक हम आपको सुनवाते हैं ये गीत, हमें बताइए कौन से फिल्म का है, किस पर फिल्माया गया।

छोटी सी बात फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। विद्या सिन्हा इसमें नजर आती हैं। हमने आपसे पूछा था, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है इस गीत के बारे में। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि ये गीत समझ में आया था आज के भारत के बारे में, पर काम का लोड होने के कारण मैं लिख नहीं पाया। हमारे एक और साथी कह रही कि मेरा तो मन है कि एक दिन ऐसा आए मैं आप सबके साथ स्टूडियो आकर मिल सकूं, आप सभी के साथ एक फोटो खिंचवाऊं। हमें तो पूरी उम्मीद है कि ये दिन जरूर आएगा। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि इस गीत की प्रतीक्षा कर रहे थे। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि बचपन से स्कूल टीचर बनना चाहती थी, अब रिटायरमेंट के बाद जरूरतमंद बच्चों को स्कूल में जाकर फ्री में पढ़ाती हूं, उनके साथ खेलती हूं। अब इस तरह अपनी सेकेंड इनिंग चल रही है। बहुत ही खूब अच्छी तरह से आपने ये काम किया। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि हमें तो स्पोर्ट्स बहुत पसंद है, मन भी लगा रहता था, स्कूल में हर खेल में भागीदारी रहती थी, फिर पढ़ाई के कारण सब छूट गया। अब अवसर मिले तो पहले अवसर मिले और पहले वाली थोड़ी स्फूर्ति भी मिल जाए तो खेलों में जाएंगे। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि शमी कपूर साहब की जो जंगली फिल्म का गीत उन्होंने सुना, उसके लिए वो कहने की कुछ लोग को इसी तरह की जिंदगी पसंद आती है तो उनके लिए तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन दूसरों की नजर में खटकते रहते हैं, पर कोई बात नहीं। हमारे एक और साथी कह रहे कि अनेक विवादों का कारण बहुत छोटी सी बात होती है जो बड़ा विकराल रूप धर लेती है। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि जिनके साथ नहीं बनती उनसे एकदम दूर हो जाते हैं। हम तो जबरदस्ती नहीं निभाते किसी के साथ बात, ये नहीं कि सारे विचार सबसे मिलें, पर कुछ लोग अपनी ही बात मनवाने में लगे रहते हैं। हमारे एक और साथी कहने कि अपनों के साथ काहे का स्वाभिमान, ये तो बाहर वालों के साथ होना चाहिए। भाई हमें लगता है कि आप स्वाभिमान नहीं अभिमान लिखना चाहते हैं, क्योंकि अभिमान किसी से नहीं करना चाहिए पर स्वाभिमान बनाए रखना चाहिए। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि जिंदगी की इस भाग दौड़ में जब पीछे मुड़कर देखता हूं तो एहसास होता है कि मैंने हर लम्हा दूसरों की खुशियों को संवारने में गुजार दिया। पहले बच्चों की छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी करने की फिक्र रही, तो कभी परिवार की जिम्मेदारियों को निभाने की जद्दोजहद। उनके चेहरों पर खिलती मुस्कान ही मेरी सबसे बड़ी कमाई बनी और उनकी जरूरतों के आगे मेरी अपनी इच्छाएं चुपचाप पीछे छूटती चली गई। सच्चाई तो ये है कि अभी तक मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है जो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए हो, लेकिन इस बात का मुझे कोई मलाल नहीं। ये बड़ी अच्छी बात है कि आपको इस बात का कोई मलाल नहीं, लेकिन हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि आप कोई ऐसा काम कीजिए जो सिर्फ आप अपने लिए करें और उससे आपको जो खुशी मिलेगी उसकी तो क्या ही कहने, उसके बारे में भी हमें बताइएगा कभी न कभी। तब तक हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। हमें ये बताइए कि क्या आप वाकई परवाह करते हैं कि लोग आपके बारे में क्या कहेंगे। और इस फिल्म का नाम भी बताइए।

दिल चाहता है फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। हमारे कई साथियों ने सही नाम बताया फिल्म का, और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मैं तो सोच भी नहीं पा रही कि एक दिन मैं क्या करूं, मैं फिर से बचपन में जाकर उन सब दोस्तों से मिलकर वही मस्ती भरा पल एक बार और जीना चाहती हूं, जहां हर पल बस खुशियां ही खुशियां हो। तो हम आपको एक आइडिया देते हैं कि आप ये कर सकती हैं कि बचपन में जो चीजें आप किया करती थी अपनी सहेलियों से, अब भी आप मिलने की कोशिश कीजिए, तो आपको वो खुशी थोड़ी बहुत तो जरूर मिल जाएगी। क्योंकि अपने मन की करने के लिए हम आपको काल्पनिक तौर पर नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ सोचिए, नहीं, करके देखिए, बड़ा मजा आएगा। हमारे एक और साथी कहने कि चाहे कोई हमें बुरा कहे, हमें फर्क नहीं पड़ता। बहुत से लोग हमसे 36 का आंकड़ा रखते हैं, पर हम जीते अपनी ही इच्छा से हैं। वही हमारे एक साथी कह रहे हैं कि वो गार्डनिंग उन्हें बहुत पसंद है और वो ये काम करती हैं, वॉलंटियर करती हैं वो अपनी सोसाइटी के लिए। 15 साल हो गए और वो ग्रीनरी अवार्ड भी उन्होंने 2 बार जीता है, कैश भी मिला है, सर्टिफिकेट मिला है, और ये अवार्ड उन्होंने खुद दिल्ली में ये कलेक्ट किया अपने आप ही। 200 पॉटेड प्लांट उन्होंने खुद लगाए और उनकी रखवाली करती हैं, और किसी की सहायता नहीं लेती, खुद उनकी रखवाली करती हैं। तो बहुत ही अच्छी बात आपने की, और अपने मन की आप ये कर रही हैं, और उससे लोगों का भी फायदा हो रहा है। तो ये भी होता है, जब हमारा मन हम खुद खुश रखते हैं तो उससे ही हम दूसरे लोगों को अपने आप ही खुशियां बांटते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। वैसे ही हमारे एक साथी कह रहे हैं कि दिल चाहता है पुरानी फिल्मों के गीत सुने, मगर अब नई फिल्म का दिल आ गया है तो दिल इसको भी सुन लेगा, कान भी सुन लेंगे। भाई, नई और पुरानी दोनों फिल्मों का दौर है, और अच्छे अच्छे गीत हैं, हमारी थीम के साथ मैच कर रहे हैं, तो क्यों ना सुना जाए। हमारे एक और साथी कह रही, हम तो बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हैं, जिससे हमें बहुत खुशी मिलती है। ऐसा लगता है हम कहीं जाकर कुछ गीत गाएं, भले ही उसमें सुर ना हो, बस अपनी खुशी के लिए। एक बात और, जब कहीं हम देखते हैं कोई गीत गा रहे हैं तो हम माइक लेकर एक लाइन ही सही गा लेते हैं, फिर बच्चे कहेंगे कि क्या मम्मी आप ये क्या करती रहती हैं। वहीं हमारे एक और साथी का कहना है, कहते हैं ना परवाह के लोग क्या कहेंगे, शायद इसलिए ही अपने लिए हम कभी जिए नहीं। वहीं हमारे एक और साथी कहते हैं, दिल तो नहीं करता कि उनकी बातों की परवाह करें, पर आप नहीं करेंगे तो लोग जबरदस्ती आपसे परवाह करवा कर ही रहेंगे। भाई, ऐसा तो नहीं हो सकता। अगर आप ठान लें कि आप किसी की परवाह नहीं करेंगे तो देखिए, फिर धीरे धीरे बेपरवाह होने का भी एक मौका मिलने लगेगा आपको। वहीं हमारे एक साथी का कहना है कि मन की तुलना चंद्रमा से की गई, जिस प्रकार चंद्रमा घटता बढ़ता है उसी प्रकार मनुष्य के मन की मनोदशा कही गई है। कभी इच्छाओं से अभिभूत होकर श्रृंक हो जाता है, कभी निराशा से बोझिल थकासा, कभी आशा की किरण से चमकता हुआ, हर दर्द से बेपरवाह। सच, कितनी असीम शक्तियां छुपी हैं इस मन में। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। वहीं हमारे एक साथी का कहना है कि उनका मन था कि आकाशवाणी में प्रोग्राम करूं, एक दो बार गई भी, लेकिन कुछ हालात की वजह से रेगुलर नहीं हो पाया। अब आप लोगों से मिलने का भी मन करता है, मुंबई स्टूडियो जाऊं और आप सबसे मिलूं। तो आपका ये मन जरूर, आप मन का काम पूरा कर सकती हैं ऐसा हमें लगता है, और भविष्य में जरूर ये होगा ऐसा भी हमें लगता है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि तबला बजाने की इच्छा थी जो नहीं पूरी हो सकी, लेकिन अब मैंने तबला क्लास लगाया है और सीख रहा हूं। भाई, क्या कहने, क्योंकि जब आपका मन किसी चीज को करने का हो और आप उसकी ओर कदम बढ़ाने की कोशिश करते रहें, तो यकीन मानिए वो काम तो होकर ही रहेगा। जैसा कि हमारा मन कर रहा है कि आपके मन की बात सुनते हुए गीत आपको सुनवा दें, तो देखिए ये काम पूरा हो रहा है। बताइए कौन से फिल्म का गीत है।

0: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय के साथी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
1: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
0: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
2: मैं अगले दिन आशुतोष गिवारीकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जयो कहासे हुजूर।
3: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरीला सफर और आज हम बात कर रहे हैं कि अपने मन की कब करेंगे हम, अपने मन की बात ही कब सुनेंगे हम, क्योंकि बचपन से हमने तो ये सीखा है कि खुद को तो बाद में रखिए, दूसरों को पहले रखिए, खुद की खुशी के बारे में हम ना सोचें, ऐसा कई बार हमें सिखाया जाता है। लेकिन एक बात जो हमें नहीं सिखाई जाती वो ये कि हमारी जिम्मेदारी अपने प्रति है, हम अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो कोई और हमारा ख्याल कैसे रखेगा। और बहुत सी बातें ऐसी भी होती हैं जो उम्र को देखकर कही जाती हैं कि आपकी उम्र इतनी हो गई है, अब आप ऐसा ना करें, वैसा ना करें। तो हमारे एक साथी कह भी रहे हैं कि इस जीवन के रंगमंच में अनेक किरदार निभाते निभाते हम अपने को ही खो बैठते हैं, सबके सुख और खुशी में हम भी सुख और खुशी पा जाते हैं, अपने निज सुख और आनंद की ओर ध्यान नहीं जाता और कर्तव्य करते करते अपने को हम ना भूलें, ऐसा ये कह रहे हैं। और कई बार हमें देखना चाहिए कि अपनी खुशी भी आगे रखनी चाहिए। तो बिल्कुल सही बात आपने कही और लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे ही, तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। यही गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। राजेश खन्ना नजर आते हैं पर्दे पर, ये बात किसे समझा रहे हैं पर्दे पर, ये बताइए और फिल्म का नाम भी बताइए।

अमर प्रेम फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, जिसमें शर्मिला टैगोर को समझाते दिखते हैं पर्दे पर राजेश खन्ना ये बात, और हमारे साथियों ने तो लिखा है कि पुष्पा को समझाते हैं ये बात, जो कि उस फिल्म में उनका किरदार का नाम था। हमारे एक और साथी कहते हैं कि लोगों क्या का क्या है, वो तो इधर से भी बोलते हैं उधर से भी बोलते हैं, जो मन में आए कहते रहते हैं और उनकी बातें नहीं सुननी चाहिए। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि, और एक साथी का कहना है कि हम तो इस बात की परवाह नहीं करते कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि अपने हिसाब से हम चलते हैं, लोग भी अपने हिसाब से चलते हैं, तो हमसे अपेक्षा क्यों करते हैं कि हम उनके अनुसार जिएं। और एक और साथी का भी कहना है कि वो लोगों की परवाह नहीं करती, क्योंकि लोग तो कुछ कहेंगे ही, कुछ उनका काम कहना है। मैं सबका अच्छा करती, परवाह नहीं करती लोगों की, अपना काम है कि कर्म करते जाओ, फल की इच्छा ना करो। और हमारे एक और साथी कहने कि अगर एक दिन के स्वतंत्रता ईश्वर दे दें तो मैं असीम सच्चिदानंद को हर के ही हृदय में भर दूं। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि पहली कक्षा की सहेलियों से भी वो मिलती हैं, और एक साथी हैं वो जो वो बना रही हैं अपनी दूसरी श्रोता साथी के साथ प्लान विविध भारती स्टूडियो आने की। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि अगर परवाह न करें, सपने न देखें, तो हर शख्स आपसे कोई भी नाराज ना हो, यानी एक सपना है ये कि कोई नाराज ना हो। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि यदि ऐसा एक दिन हो जाए तो अपनी फेवरेट स्कूल टीचर, स्कूल की बेस्ट फ्रेंड के साथ पूरा दिन बिताना चाहेंगे। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि सच और झूठ में यही खेल है, सौ सुनार की एक लोहार की। और एक और साथी अपने दोस्त को याद कर रहे हैं जो कह रहे हैं कि जिंदगी में कुछ ऐसे लोग होने चाहिए जो हमारा पल अपनी बातों से, चुटकुलों से खुशहाल कर दें। हमारा एक दोस्त था जो अपनी बातों से इतना हंसाता था कि सांसें फूल जाती थी, उसके आने का इंतजार करते थे। तो बस जीवन में अपने मन की भी कीजिए, अपने मन की बातों के लिए भी ध्यान रखिए। और आज के इस कार्यक्रम से दीजिए इजाजत, विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहेगा।

नमस्कार। आज की त्रिवेणी मोड़ शब्द पर आधारित है। हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे मोड़ भी आते हैं जहां से जाकर लौटना मुनासिब नहीं होता। बड़े ही अजीब हैं ये जिंदगी के रास्ते। उस मोड़ पर आकर ठहर सी जाती है जिंदगी। इन्हीं अनजाने मोड़ पर कुछ लोग अपने बन जाते हैं, वहीं कुछ अपने होकर अनजान बन जाते हैं। इसमें कभी खुशी भी मिलती है तो कभी गम में बिखर जाते हैं। हर मोड़ पर एक नया शख्स मिलता है, नया चेहरा होता है, उसके साथ एक अनुभव जुड़ता है। यही मोड़ हमें मजबूत भी बनाता है।

जिंदगी में मोड़ों से भरी एक लंबी सड़क होती है। यही मोड़ हमें सिखाते हैं कि जिस रास्ते को तुमने चुना है, मंजिल उसके बहुत दूर है। कुछ पाना है तो कुछ मोड़ पर आकर लौटना हारने जैसा है। जैसे जब हम शहर में जीविका की तलाश में आते हैं तो समस्याएं, परेशानियां मुंह फैलाए आती हैं। ऐसे ऐसे मोड़ आते हैं कि उन स्थितियों में अपने आप को संभालना ही पड़ता है। कई दोस्त साथी बनते हैं, कुछ दूर तक साथ चलते हैं, लेकिन मुश्किलों के मोड़ पर कुछ हाथ छोड़ भी देते हैं। तब भावनाएं आहत होती हैं, लेकिन भरोसा खुद पर गर हो तो ये मोड़ भी सीधे हो जाते हैं।

कई बार हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो लगता है कि अगर वो एक मोड़ ना आया होता तो शायद हम इतने समझदार, इतने मजबूत ना होते। दर्द देने वाले मोड़ ही अक्सर इंसान को अपनी असली पहचान से मिलवाते हैं। इसीलिए जब भी जिंदगी किसी नए मोड़ पर लाकर खड़ा करे तो डरिए मत, हो सकता है वही मोड़ आपकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत अध्याय बन जाए। क्योंकि रास्ते चाहे कितने भी कठिन क्यों ना हो, हर मोड़ के बाद एक नई सुबह इंतजार करती है, एक नए मोड़ का।

0: नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। सरकार विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने में बैंकिंग सुधारों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की भूमिका की समीक्षा के लिए उच्चस्तरीय समिति गठित करेगी। भारत ने ब्रिक्स सहयोग की अपनी अध्यक्षता में जन केंद्रित और मानवता प्रथम दृष्टिकोण की पुष्टि की। बिहार के अशोकधाम मंदिर में भगदड़ से 7 महिला श्रद्धालुओं की मौत। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में आग हादसे में 5 लोग मारे गए। पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और ओडिशा में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। गोल में भारत के साथ टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच के 30 दिन के खेल में मेजबान श्रीलंका ने पहली पारी में 5 विकेट पर 184 रन बनाए। और BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप नई दिल्ली में शुरू। भारत के MR अर्जुन हरिहरन अम सकरून पुरुष डबल्स के दूसरे दौर में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। सरकार विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए बैंकिंग सुधार पर जल्द ही उच्च स्तरीय समिति गठित करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के 2 दिन के सम्मेलन के उद्घाटन के बाद कहा कि यह समिति विभिन्न मुद्दों और अनुशंसाओं को ध्यान में रखते हुए बैंकिंग सुधार के लिए भावी कार्यदिशा तय करेगी।
1: On the basis of a well-researched
2: पहले से उपलब्ध शोध दस्तावेजों से समिति को चर्चा के लिए जरूरी ठोस जानकारी प्राप्त होंगी। समिति के विचारों और सुझावों से स्पष्ट होगा कि यह देश को विकसित भारत की दिशा में किस तरह आगे बढ़ाना चाहती है और इसमें बैंकों की क्या भूमिका होगी।
1: And in that, the role of banks.
0: वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय बैंक इस समय मजबूत स्थिति में हैं। डूबे कर्ज की स्थिति निम्नतम स्तर पर होने के कारण भविष्य के सुधारों के लिए मजबूत आधार उपलब्ध है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि उच्च स्तरीय समिति से सिफारिशें मिलने के बाद सरकार और बैंकिंग क्षेत्र भारत की आर्थिक वृद्धि को तेज गति देने में सक्षम होंगे। भारत ने अपने ब्रिक्स सहयोग की अध्यक्षता में जन केंद्रित और मानवता प्रथम दृष्टिकोण की पुष्टि की है। नई दिल्ली में आज जलवायु परिवर्तन और सतत विकास पर पर्यावरण कार्य तथा संपर्क समूह की बैठक की अध्यक्षता करते हुए पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में सचिव तन्मय कुमार ने कहा कि ब्रिक्स संगठन पिछले 2 दशक में आर्थिक संवाद मंच से विकसित होकर महत्वपूर्ण चुनौतियों के समाधान का प्रभावी मंच बन गया है।
2: श्री तन्मय कुमार ने कहा कि ये चुनौतियां बढ़ते प्रदूषण, जैव विविधता हानि और बढ़ते तापमान की वैश्विक समस्या से संबंधित हैं। उन्होंने कहा कि सतत विकास, जलवायु समायोजन, संसाधन क्षमता और चक्रीय अर्थव्यवस्था तथा पर्यावरणीय निगरानी के संदर्भ में भागीदारी मजबूत हुई है। बैठक के दौरान भारत ने स्पष्ट किया कि ब्रिक्स 2026 की गतिविधियां वैश्विक सहयोग को मनुष्यता प्रथम के आधार पर जन केंद्रित बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण से निर्देशित हैं। भारत ब्रिक्स अध्यक्षता के दौरान पर्यावरणीय कार्य समूह और संपर्क समूह ने 4 प्राथमिकता क्षेत्रों सतत जीवन शैली, वनीकरण, जंगल की आग और आपदा प्रबंधन, चक्रीय अर्थव्यवस्था और समायोजन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाया है। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
0: नई दिल्ली में ब्रिक्स सिविल फोरम में विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंध सचिव सुधाकर दलेला ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में संचालित 350 से अधिक बैठकों से विभिन्न सेक्टर के बारे में महत्वपूर्ण निष्कर्ष मिले हैं। उन्होंने कहा कि इससे ब्रिक्स संगठन के 3 आधार स्तंभ राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग, वित्तीय सहयोग और जनभागीदारी के बीच समन्वय मजबूत हुआ है। पीएम गतिशक्ति पहल के अंतर्गत अब तक विभिन्न मंत्रालयों की लगभग 18,66,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली कुल 396 अवसंरचना परियोजनाओं की सिफारिश की गई है। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय ने बताया कि इनमें से 256 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। इन परियोजनाओं में से 198 परियोजनाएं क्रियान्वयन की प्रक्रिया में है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। बिहार में लखीसराय जिले के अशोक धाम मंदिर में हुई भगदड़ में 7 महिला श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई, जबकि 10 से अधिक श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सावन माह के तीसरे सोमवार को जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ वहां एकत्र थी।
3: लखीसराय के अशोक धाम मंदिर पर जलाभिषेक के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की कतार में भगदड़ से ये हादसा हुआ। हादसे में गंभीर रूप से घायलों को बेहतर इलाज के लिए पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया है। जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार के अनुसार आज सुबह श्रद्धालुओं के अशोक धाम स्टेशन हॉल्ट से मंदिर जाने वाले रास्ते में बिजली के गिरे खम्भे में करंट दौड़ने की अफवाह के बीच भगदड़ मचने से ये हादसा हुआ।
4: मंदिर का क्यू वो पहुंचा हुआ था अशोक धाम हॉल्ट तक, तो जो उसका क्यू था उसके राइट साइड में पोल था, उधर गिरा तो अफवाह फैल गया कि बिजली गिरा।
3: इधर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के निकटतम परिजन को 4-4 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान देने और घायलों को समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। सविता पारी का आकाशवाणी समाचार पटना।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रद्धालुओं की मृत्यु पर गहरा दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों की हर संभव सहायता कर रहा है। रक्षा मंत्री ने इस दर्दनाक हादसे के पीड़ित हर व्यक्ति के लिए कठिन समय में धैर्य बनाए रखने की प्रार्थना की। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में तारापीठ पुलिस स्टेशन के पास स्थित एक होटल में आज तड़के आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई। आग सबसे पहले होटल के रिसेप्शन में लगी और 4 मंजिला इमारत तक फैल गई। आग लगने के समय ज्यादातर लोग सो रहे थे। होटल मालिक ने बताया कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। सूचना मिलते ही दमकल कर्मी और पुलिस मौके पर पहुंचे तथा बचाव अभियान शुरू किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीरभूम हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी से प्रभावित क्षेत्रों के लिए डिजिटल स्वगणना प्रक्रिया आज आधी रात से शुरू हो गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जनगणना 2027 के अंतर्गत ये प्रक्रिया 31 अगस्त तक जारी रहेगी।
5: जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी अमित शर्मा ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि ये प्रक्रिया जम्मू कश्मीर के 16 जिलों में की जा रही है। इसमें जम्मू, श्रीनगर, सांबा और राजौरी जिलों को शामिल नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि लद्दाख को इस अभियान के अंतर्गत पूरी तरह कवर किया जाएगा। श्री शर्मा ने बताया कि स्वगणना प्रक्रिया जियो रेफरेंस्ड है। अपने निर्धारित क्षेत्रों में मौजूद निवासी ही इस प्रक्रिया को पूरा कर सकेंगे। निवासी आज से डिजिटल स्वगणना के माध्यम से अपनी जानकारी स्वयं दर्ज कर सकेंगे। इस बार जाति संबंधी जानकारी भी देनी होगी। जम्मू से गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम के उस बयान की आलोचना की है जिसमें उन्होंने खुद को दिमागी नक्सली बताने पर गर्व व्यक्त किया था। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ सुधांशु त्रिवेदी ने आज नई दिल्ली में कहा कि कांग्रेस सरकारें नक्सलवाद को समाप्त करने में विफल रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस समस्या पर निर्णायक रूप से नियंत्रण किया गया है।
6: नक्सलवाद का खतरा भारत के इतिहास में आज तक आंतरिक सुरक्षा के लिए उत्पन्न सबसे बड़ा खतरा है। 13 अप्रैल 2006 और 31 मार्च 2026 प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उस चीज को जो डॉक्टर मनमोहन सिंह समझ गए थे, नक्सली दिमाग वालों से भरी हुई सुपर कैबिनेट यानी एनईसी के द्वारा उनको कुछ करने नहीं दिया गया था। यदि वह कार्य सिद्ध करके दिखाया तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को राहत देते हुए आज इलाहाबाद उच्च न्यायालय से कहा कि वो कांग्रेस नेता के खिलाफ आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति के मामले में कार्यवाही न करे। शीर्ष अदालत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ईडी से भी कहा कि वे श्री गांधी के खिलाफ दर्ज मामले के संबंध में उच्च न्यायालय के समक्ष कोई रिपोर्ट दाखिल न करें। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ तथा ने श्री गांधी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की दलीलों पर गौर किया और सीबीआई, ईडी तथा उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने वाले कर्नाटक निवासी एस विघ्नेश शेषिर को नोटिस जारी किया। उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ गांधी की ओर से दायर याचिका पर यह पीठ सुनवाई कर रही थी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तेजी से बदलती तकनीक के इस दौर में स्नातक डिग्री शिक्षा का अंत नहीं बल्कि निरंतर बदलाव के साथ सीखते रहने की शुरुआत है। आज तमिलनाडु के तिरुवरूर में तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय के 11वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। उपराष्ट्रपति ने वर्ष 2014 के बाद देश में शैक्षणिक बुनियादी ढांचे के अभूतपूर्व विस्तार का उल्लेख किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट परीक्षा के तीन विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य तथा समाजशास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की है। इन तीनों विषयों के पेपर में कई तरह की त्रुटियों की शिकायतें मिलने के बाद यह निर्णय लिया गया है। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का आज 24वां दिन है। सरकार और विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों के बीच आज बातचीत का एक नया दौर होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @EIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारतीय सेना की टुकड़ी संयुक्त मैत्री सैन्य अभ्यास में भाग लेने के लिए आज थाईलैंड रवाना हो गई। सैन्य अभ्यास कल से इस महीने की 31 तारीख तक चलेगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि मैत्री अभ्यास का उद्देश्य भारत और थाईलैंड के बीच सैन्य सहयोग बढ़ाना है। इससे संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत जंगलों और अर्धशहरी क्षेत्रों में उग्रवाद तथा आतंकवाद का सामना करने की संयुक्त क्षमता बढ़ेगी। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और ओडिशा में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड और सिक्किम में कल तक मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पूर्वोत्तर के कुछ भागों में भी कल तक तेज वर्षा का अनुमान है। बिहार, कर्नाटक, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी, कारैक्काल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अगले दो दिन के दौरान गरज के साथ आंधी वर्षा की संभावना है। दिल्ली के कुछ भागों में आज हल्की बारिश हो सकती है। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली में शुरू हुई। एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसाकरुणन की भारतीय जोड़ी पुरुष डबल्स के दूसरे दौर में पहुंच गई है। आज ही पूर्व विश्व चैंपियन और 9वीं वरीयता प्राप्त पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में आयरलैंड की सोफिया नोबल के साथ खेलेंगी। गोल में भारत के साथ टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच के तीसरे दिन के खेल में मेजबान श्रीलंका ने 5 विकेट पर 187 रन बना लिए हैं। भारतीय टीम ने पहली पारी में 462 रन बनाए थे। श्रृंखला का दूसरा और अंतिम टेस्ट मैच 23 अगस्त से कोलंबो में खेला जाएगा। हॉकी विश्व कप में आज नीदरलैंड्स के एम्स्टरडैम में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 6:30 बजे से शुरू होगा। विश्व कप में भारत ने अपने अभियान की शुरुआत शनिवार को वेल्स पर 3-1 की विजय के साथ की, जबकि इंग्लैंड ने प्रतियोगिता के पहले दिन पाकिस्तान को 4-1 से हराया। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में 15 कर्मियों को राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार से सम्मानित किया। इन पुरस्कार विजेताओं ने राष्ट्र निर्माण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है तथा पासपोर्ट सेवा केंद्र, पुराने कानून निरस्त किए जाने और नए कानून बनाने तथा प्रशासन और लेखांकन में प्रौद्योगिकी अपनाने में महत्वपूर्ण सहयोग दिया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में भ्रामक लेबलिंग और उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूकता विषय पर एक ज्ञानवर्धक परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए टेलीफोन नंबर है 0112331081, व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांक आज मामूली गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। अंतिम समाचार मिलने तक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 148 अंक की गिरावट से 77,861 पर कारोबार कर रहा था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने में बैंकिंग सुधारों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की भूमिका की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करेगी। भारत ने ब्रिक्स सहयोग की अपनी अध्यक्षता में जन केंद्रित और मानवता प्रथम दृष्टिकोण की पुष्टि की। बिहार के अशोक धाम मंदिर में भगदड़ से 7 महिला श्रद्धालुओं की मौत। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में आग हादसे में 5 लोग मारे गए। पश्चिम बंगाल के गंगे क्षेत्र और ओडिशा में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। गोल में भारत के साथ टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच के तीसरे दिन के खेल में मेजबान श्रीलंका ने पहली पारी में 5 विकेट पर 189 रन बनाए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नकमे।

हेमंत कुमार की आवाज में घर हाउस नंबर 44 फिल्म का ये गीत आपने सुना। साहिल लुधियानवी की बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं सदाबहार नकमे कार्यक्रम। आइए सुनते हैं भाभी फिल्म से ये गीत। लता मंगेशकर की आवाज, राजेंद्र कृष्ण के बोल, चित्रगुप्त का संगीत।

0: लता मंगेशकर की आवाज में भाभी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, राजेंद्र कृष्ण के बोल, चित्रगुप्त का संगीत।
1: जब तक हाथ पैर सक्रिय रहते हैं हमें उनके महत्व का अंदाजा नहीं होता। जब होती हैं हड्डियों या मांसपेशियों की समस्याएं तो समझ नहीं आता कि क्या करें।
2: फर्स्ट साइन इज पेन, वो बता देता आपको कि कुछ गलत हो रहा है।
1: सेहत नामा कार्यक्रम में फिजियोथेरेपिस्ट हर्षदा राजाध्यक्ष आ रही हैं।
2: एक्सरसाइज करते रहो, शुगर और सॉल्ट अवॉइड करो, जब भी पेन हो तो किसी को कंसल्ट करो।
1: 17 अगस्त शाम 4 बजे और 18 अगस्त सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: सेहत नामा।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

आप सुन रहे थे गीता दत्त को भाई भाई फिल्म के इस गीत में, जिसे लिखा राजेंद्र कृष्ण ने, मदन मोहन का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नकमी विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। आइए सुनते हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज तुम सा नहीं देखा फिल्म के इस गीत में।

0: तुमसा नहीं देखा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल ओपी नैयर की तर्ज आवाजें आशा भोसले और मोहम्मद रफी की। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और अब आपको सुनवाते हैं सचिन देव बर्मन का संगीतबद्ध किया ये गीत। फिल्म पेइंग गेस्ट, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजें।
1: निगाहें मस्ताना

0: मस्ताना।
1: किशोर कुमार और आशा भोसले को आप सुन रहे थे पेइंग गेस्ट फिल्म के गीत में। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नकमे में अब सुनिए मदर इंडिया फिल्म से ये गीत।

शकील बदायूनी की रचना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। मदर इंडिया फिल्म के इस गीत में संगीत नौशाद का। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और कार्यक्रम का अंतिम गीत आपको सुनवाते हैं चलती का नाम गाड़ी फिल्म से। किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत। गाने का आनंद लीजिए और मुझे दीजिए आज के लिए इजाजत। नमस्कार, विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहे।

0: की सहेली सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को और दीपा आपको सोनाली पाठक का सब प्रेम नमस्कार।
1: सोनाली आपको और हमारी सभी सखियों सहेलियों श्रोता भाइयों को दीपा माहेश्वरी का
0: हेल्दी नमस्कार। मैं समझ गई थी कि आपका हेल्दी नमस्कार होगा।
1: क्योंकि भाई स्वास्थ्य है तो धन है, वो ही हमारा सच्चा धन है।
0: बिल्कुल,
1: है ना।
0: और अभी बारिश का मौसम है तो अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान हमें रखना चाहिए।
1: बिल्कुल, सबका, घर वालों का, परिवार का और स्वयं का। सखियां अपने आप को सबसे पीछे छोड़ देती हैं स्वास्थ्य के मामले
0: ये
1: में।
0: बिल्कुल सही बात आपने कही। क्योंकि सबका ख्याल रखती है पर खुद के लिए बहुत हमेशा कभी सोचती नहीं खुद के लिए, है ना?
1: ये तो हम अपनी सखियों से कहेंगे कि भाई परिवार का ध्यान रखते रखते आप अपने आप को पीछे कहीं न छोड़ दीजिएगा, क्योंकि परिवार की धुरी तो आप ही हैं।
0: और जब हम खुश रहेंगे, हम स्वस्थ रहेंगे तो हर त्योहार हम उसी उमंग उसी उत्साह के साथ मनाते हैं।
1: बिल्कुल, जैसे कि आज नाग पंचमी मनाई जा रही है।
0: बिल्कुल,
1: है ना?
0: आज हर घर में नाग पंचमी का उत्सव मनाया जा रहा है, तो सारे श्रोताओं को सखियों को नाग पंचमी की बहुत सारी बधाइयां और शुभकामनाएं। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने इस विषय पर कमेंट्स लिखना भी शुरू कर दिए।
1: बहुत सारे कमेंट्स आए हैं और साथ में जब भाई बात हो रही है कोई पर्व की, तो पर्व आते ही याद आ जाता है खाना पीना, भोग प्रसाद, अलग अलग तरह के व्यंजन बनते हैं। लेकिन इन सब के बीच में ये जो बच्चे जो बाहर के खाने की जिद करते हैं, जंक फूड खाने की जिद करते हैं, तो इन सब बातों से कैसे निपटा जाए या उस आकर्षण को कैसे कम किया जाए। बहुत सारे कमेंट्स तो आए हैं सोनाली, और हम बात भी करेंगे, इस पे विचार विमर्श भी होगा, तो जानेंगे कि कैसे भाई मिलजुल करके ये चीज के प्रति जरा जो अट्रैक्शन है ये बच्चों का
0: कम किया जाए। और साथ ही आज बहुत सारे साथियों को, श्रोताओं को इंतजार है कथा सुधा का, हमें भी इंतजार है, क्योंकि आज 73 भाग 2 आज हम सुनने वाले हैं। और साथ ही पश्चिम बंगाल के व्यंजन, इसके अंतर्गत लूची, आलूरदम और मिष्टी दोई, ये सारे व्यंजन बहुत बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। तो हमारे श्रोताओं से भी कहेंगे कि आपने चखे हैं, और चखे हैं तो कैसे लगे आपको, या आपको उसकी विधि अगर मालूम है व्यंजन की तो आप हमें लिख कर भेजिए।
1: बिल्कुल,
0: और आप क्या करें,
1: बाहर तो आज बारिश हो रही
0: झमाझम।

0: वृष्टि टापुर टुपुर जब पड़ती है ना दीपा, तो कितना उमंग और उत्साह का मौसम हो जाता है।
1: बिल्कुल, और दिल भी कहीं एकदम ऐसा करने लगता है कि मन में जैसे एक स्वाभाविक सी संगीत टापुर टुपुर वाली ही उत्पन्न होने लग जाती है।
0: और अब इंतजार है श्रोताओं के साथ हमें भी कथा सुधा का,
1: तो चलो
0: तो सुनते हैं आज तेतर कहानी का भाग दो।
2: कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
3: कथा सुधा में आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी तेतर। इस कहानी में पिछले हफ्ते आपने सुना
4: आखिर वही हुआ जिसकी आशंका थी, जिसकी चिंता में घर के सभी लोग विशेषतः प्रसूता पड़ी हुई थी। अनर्थ महा अनर्थ, भगवान ही कुशल करे तो हो, ये पुत्री नहीं राक्षसी है। इस अभागिन को इसी घर में आना था, आना ही था तो कुछ दिन पहले क्यों ना आई। भगवान सातवें शत्रु के घर में भी तेतर का जन्म ना दे। पिता का नाम था पंडित दामोदर दत्त, शिक्षित आदमी थे, शिक्षा विभाग में ही नौकर भी थे, मगर इस संस्कार को कैसे मिटा देते जो परंपरा से हृदय में जमा हुआ था कि तीसरे बेटे की पीठ पर होने वाली कन्या अभागिन होती है, या पिता को लेती या माता को या अपने को।
5: लड़की तो जरा देखो, दुबली पतली भी नहीं है, तीनों लड़कों से हृष्ट पुष्ट है ये। बड़ी बड़ी आंखें हैं, पतले पतले लाल लाल होंठ हैं, जैसे गुलाब की पत्ती। गोरा चिट्टा रंग तो देखो, लंबी सी नाक, कल मुई नहलाते समय रोई भी नहीं, ठुकुर ठुकुर ताकती रही। ये सब लक्षण कुछ अच्छे थोड़े ही हैं, हाँ?
6: इस बेचारी का मेरे घर जन्म लेने में क्या दोष है? मुझ पर या इसकी माता पर जो कुछ भी पड़े, उसमें इसका क्या अपराध? हम कितनी निर्दयता कर रहे हैं। कुछ भावी अनिष्ट की आशंका के कारण उसका इतना तिरस्कार कर रहे हैं। माना कि कुछ अमंगल हो भी जाए तो क्या उसके भय से इसके प्राण ले लिए जाएंगे? अगर अपराधी है तो मेरा प्रारब्ध है। इस नन्हे से बच्चे के प्रति हमारी कठोरता क्या ईश्वर को अच्छी लगती होगी? आ जाओ गुड़िया, आ जाओ।
4: उन्होंने उसे गोद में उठा लिया और उसका मुख चूमने लगे। लड़की को कदाचित पहली बार सच्चे स्नेह का ज्ञान हुआ। वो हाथ पैर उछालकर गुंगुंग करने लगी और दीपक की ओर हाथ फैलाने लगी। उसे जीवन ज्योति सी मिल गई।

0: बाबू साहब ने बड़े लड़के से कहा,
1: सिद्धू सिद्धू जरा उस बकरी को पकड़ो, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, ला ला ला ला ला, लाओ तेरी बहन को दूध पिलाएंगे, शायद भूखी है बेचारी। देखो तुम्हारी नन्ही सी बहन है ना, इसे रोज हवा में खिलाया करो।
0: सिद्धू को दिल लगी हाथ आई, उसका छोटा भाई भी दौड़ा, दोनों ने घेर कर बकरी को पकड़ा और उसका कान पकड़े हुए सामने लाए। पिता ने शिशु का मुंह बकरी के थन में लगा दिया। लड़की चुबलाने लगी और एक क्षण में दूध की धार उसके मुंह में जाने लगी।

मानो टिमटिमाते दीपक में तेल पड़ जाए। लड़की का मुंह खिल उठा। आज शायद पहली बार उसकी शुधा तृप्त हुई थी। वो पिता की गोद में हुमक हुमक कर खेलने लगी। लड़कों ने भी उसे खूब नचाया कुदाया।

0: पिता का प्यार, भाइयों का दुलार मिलने से नन्ही बच्ची दिन ब दिन निखरती जा रही है। आगे क्या होता है इसके लिए सुनिए इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग।
1: उस दिन से सिद्धू को मनोरंजन का एक नया विषय मिल गया। बालकों को बच्चों से बहुत प्रेम होता है। अगर किसी घोंसले में चिड़िया का बच्चा देख पाए तो बार बार वहां जाएंगे, देखेंगे कि माता बच्चे को कैसे दाना चुगाती है, बच्चा कैसे चोंच खोलता है, कैसे दाना लेते समय परों को फड़फड़ाकर चेंचे करता है। आपस में बड़े गंभीर भाव से उसकी चर्चा करेंगे, अपने अन्य साथियों को ले जाकर उसे दिखाएंगे। सिद्धू ताक में लगा रहता। जो ही माता भोजन बनाने या स्नान करने जाती, तुरंत बच्ची को लेकर आता और बकरी को पकड़कर उसके थन में शिशु का मुंह लगा देता। कभी दिन में दो दो तीन तीन बार पिलाता। बकरी को भूसी चोकर खिलाकर ऐसा परचा लिया कि वो स्वयं चोकर के लोभ से चली आती और दूध देकर चली जाती। इस भांति कोई एक महीना गुजर गया। लड़की हृष्ट पुष्ट हो गई, आंखें जग उठी, शिशुकाल की सरल आभा मन को हरने लगी। माता उसे देख देख कर चकित होती थी। किसी से कुछ कह तो न सकती, पर दिल में उसे आशंका होती कि अब वो मरने को नहीं, हमें लोगों के सिर जाएगी, कदाचित ईश्वर इसकी रक्षा कर रहे हैं। जब ही तो दिन दिन निखरती आती है, नहीं तो अब तक ईश्वर के घर पहुंच गई होती। मगर दादी माता से कहीं ज्यादा चिंतित थी।
2: मुझे तो लगता है दूध पिलाती है ये बिटिया को। अरे दूध क्या पिला रही है, सांप पाल रही है सांप। क्यों लड़की का बड़ा छो करती हो हा? हाँ भाई, माँ हो कि नहीं, अब तुम न छो करोगी तो कौन करेगा भला हा?
3: अम्मा जी, ईश्वर जानते हैं जो मैं इसे दूध पिलाती हूँ।
2: अरे तो मैं मना थोड़े ही करती हूँ। अरे मुझे क्या गरज पड़ी है कि मुफ्त में अपने ऊपर पाप लूं है। अरे कुछ मेरे सिर तो जाएगी नहीं। हाँ
3: अरे अम्मा जी, अब आपको विश्वास ही ना आए तो कोई क्या करे।
2: हाँ तो क्या, मुझे पागल समझती है तू है? पागल समझती हो? वो हवा पी पी कर ऐसी हो रही है, हमें कुछ दिखाई नहीं देता क्या?
3: सही कह रही है, भगवान जाने अम्मा जी, मुझे तो आप ही अचरज होता है
4: कि इसका चेहरा कैसे खिलता ही जा रहा है।
1: बहू ने बहुत निर्दोषिता जताई। दादी को लगा ये मेरी शंका को निर्मूल समझती है, मानो मुझे इस बच्ची से कोई बैर है। उनके मन में ये भाव अंकुरित होने लगा कि इसे कुछ हो जाए तब ये समझे कि मैं झूठ नहीं कहती थी। वो जिन प्राणियों को अपने प्राणों से भी प्रिय समझती थी, उन्हीं लोगों की अमंगल कामना करने लगी, केवल इसलिए कि मेरी शंकाएं सत्य हो जाएं। वो ये तो नहीं चाहती थी कि कोई मर जाए, पर इतना अवश्य चाहती थी कि किसी बहाने से मैं चेता दूं कि देखा तुमने, मेरा कहा ना माना ये उसी का फल है। उधर सास की ओर से ज्यों ज्यों ये द्वेष भाव प्रकट होता था, बहू का कन्या के प्रति स्नेह बढ़ता था। ईश्वर से मनाती रहती थी कि किसी भांति एक साल कुशल से कट जाता तो इनसे पूछती। कुछ लड़की का भोला भाला चेहरा, कुछ अपने पति का प्रेम वात्सल्य देखकर भी उसे प्रोत्साहन मिलता था। विचित्र दशा हो रही थी, न दिल खोलकर प्यार ही कर सकती थी, न संपूर्ण रीति से निर्दय होते ही बनता था, न हंसते बनता था न रोते। इस भांति दो महीने गुजर गए।

0: और कोई अनिष्ट ना हुआ, तब तो वृद्धा सास के पेट में चूहे दौड़ने लगे।
1: बहू को दो चार दिन ज्वर भी नहीं आ जाता कि मेरी शंका की मर्यादा रह जाती। कुछ समझ में नहीं आता, पुत्र भी किसी दिन पैरगाड़ी पर से नहीं गिर पड़ता, न बहू के मैके से ही किसी के स्वर्गवास की सुनावनी आती है। हे राम।
0: एक दिन दामोदर दत्त ने खुले तौर पर कह भी दिया,
2: अम्मा ये सब ढकोसला है, तेतर लड़कियां क्या दुनिया में होती नहीं, तो सबके सब माँ बाप क्या मर जाते हैं।
0: अंत में उसने अपनी शंकाओं को यथार्थ सिद्ध करने की एक तरकीब सोच निकाली। एक दिन दामोदर दत्त स्कूल से आए तो देखा कि अम्मा जी खाट पर अचेत पड़ी हुई हैं। स्त्री अंगीठी में आग रखे उनकी छाती सेक रही है और कोठरी के द्वार और खिड़कियां बंद हैं।
2: अरे अम्मा क्या हुआ,
1: अरे
2: कैसी तबीयत है, अरे हो क्या गया?
3: अरे आ गए आप, देखिए ना अम्मा जी को दोपहर से ही कलेजे में शूल सा उठ रहा है, बेचारी बहुत तड़प रही हैं।
1: अरे क्या बताऊं बेटा, तुम आ गए दामोदर, आओ अब ना बचूंगी, हाय भगवान अब ना बचूंगी, जैसे कोई कलेजे में बर्छी चुभा रहा हो, ऐसी पीड़ा कभी नहीं हुई थी, इतनी उम्र बीत गई बेटा, ऐसी पीड़ा कभी नहीं हुई, तो लेकर ही बीतेगी मेरी जान। हाय हाय,
3: ये सब ना इसी के कारण हो रहा है, ये कलमुही छोकरी ना जाने किस मनहूस घड़ी में पैदा हुई है।
2: मैं जाकर डॉक्टर साहब को बुला लाऊं ना, देर करने से शायद रोग बढ़ जाए। अम्मा अम्मा कैसी है तबीयत?
1: हाय हाय बेटा, भगवान साहब करते हैं, हाँ अरे बड़ा दर्द हो रहा है, अब ये बेचारी क्या जाने, तो बच्चा है, देखो हाँ मैं मर जाऊं तो उसे कष्ट मत देना, आए, आए, उसे कष्ट मत देना।
2: जाकर डॉक्टर बुला लाऊं, अभी लौटा आता हूं।
1: अरे नहीं बेटा, रहने दो सब, अच्छा हुआ मेरे सिर गई है, हाँ तू बैठ बेटा बैठ, अब किसी के सिर जाती ही, हाँ तो मेरे ही सिर सही, हाँ बेटा अब ना बचूंगी, हाय राम हाय भगवान अब ना बचूंगी दामोदर, समझ लो कि बस सब सब खत्म, कह देती हूँ अच्छा हुआ, अच्छा हुआ मेरे सिर आई, बड़ा दर्द हो रहा है दामोदर, हाय कहीं कोई मत जाओ।
2: अम्मा अम्मा अभी अभी जाकर डॉक्टर बुला लाऊं, अभी लौटा आता हूँ, ठीक हो जाओगी तुम।
1: अरे कहाँ जाते हो, अरे नहीं नहीं बेटा, डॉक्टर के पास जाकर क्या करोगे, अरे अरे वो कोई ईश्वर है क्या है, डॉक्टर कोई अमृत पिला देगा, है 10-20 वो भी ले जाएगा हमारा, डॉक्टर पैसे कुछ ना होगा, कुछ ना होगा बेटा, बस अब तो बस आखिरी समय आ गया है बेटा, तुम बस मेरे पास बैठ जाओ बेटा, अब बैठकर भागवत पढ़ो, हाँ अंतिम समय है, अब ना बचूंगी, हाय राम अब ना बचूंगी, पढ़ो पढ़ो बचो, भागवत पढ़ो बेटा, अंतिम समय है बस, तो जान लेकर ही जाएगी, हाँ कह देती हूँ।
2: तेतर तेतर बुरी चीज है, मैं समझता था कि ढकोसला ही ढकोसला है।
3: मुझे पता था, इसी से मैं उसे कभी मुंह नहीं लगाती थी।
1: अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत कहो बेटा, नहीं नहीं नहीं नहीं, बच्चों को सब आराम से रखना, भगवान करे तुम सब सुखी रहो, तुम लोगों को भगवान सुखी रखे, बस यही आशीर्वाद देती हूँ, अच्छा हुआ मेरे ही सिर गई, तुम लोगों के सामने मेरा परलोक हो जाएगा, बस यही अच्छा है, राम करे। कहीं किसी दूसरे के सिर जाती तो क्या होता। राम राम। अरे बस अंतिम समय है, भगवान ने मेरी विनती सुन ली, बस यही विनती है तुम सब खुश रहो। हाय हाय, अब न बचूंगी, बस मैं तो चली दामोदर, खुश रहो तुम सब, बच्चों को ठीक से रखना। हाँ कह देती हूँ, कष्ट ना हो किसी को।
0: दामोदर दत्त को निश्चय हो गया कि अब अम्मा न बचेंगी। बड़ा दुख हुआ, उनके मन की बात होती तो वो माँ के बदले तेतर को न स्वीकार करते। जिस जननी ने जन्म दिया, नाना प्रकार के कष्ट झेलकर उनका पालन पोषण किया, अकाल वैधव्य को प्राप्त करके भी उनकी शिक्षा का प्रबंध किया, उसके सामने एक दुदमुही बच्ची का क्या मूल्य था जिसके हाथ का एक गिलास पानी भी वो न जानते थे। शोकातुर हो माँ के सिरहाने बैठकर भागवत की कथा सुनाने लगी। रात को बहू भोजन बनाने चली तो सास से बोली,
3: अब कैसा लग रहा है अम्मा जी? आप कहें तो आपके लिए थोड़ा सा साबुदाना बना दूं।
1: ए, बड़ा दर्द होता है। अरे बेटी, अन्न के बिना ना मारो है, भला साबुदाना मुझसे खाया जाएगा है? जाओ जाओ, थोड़ी सी पुड़िया छान लो। हाँ अब पड़े पड़े जो इच्छा होगी खा लूंगी। और हाँ सुनो बहू, कचौरियां भी बना लेना। अब मरती हूं तो भोजन को तरस तरस के क्यों मरूं भला है? बड़ा दर्द होता। सुन अब बेटी, थोड़ी मलाई भी मंगवा लेना। हाँ वो भी चौक से। हाँ अब फिर थोड़े ही खाने आऊंगी, अब गई तो गई, हम तो समझो कि अब बेटी अब ना बचूंगी। बेटा थोड़े से केले मंगवा लेना, कलेजे में दर्द में केले खाने से आराम होता है। हाँ है, बड़ा दर्द है भैया।
0: भोजन के समय पीड़ा शांत हो गई, लेकिन आधे घंटे के बाद फिर जोर से होने लगी। आधी रात के समय कहीं जाकर उनकी आंख लगी। एक सप्ताह तक उनकी यही दशा रही, दिन भर पड़ी कराहा करती, बस भोजन के समय जरा वेदना कम हो जाती। दामोदर दत्त सिरहाने बैठे पंखा झलते और मातृ वियोग के आगत शोक से रोते। घर की मेहरी ने महल्ले भर में यह खबर फैला दी। पड़ोसी ने देखने आई तो सारा इल्जाम बालिका के सिर गया। एक ने कहा,
4: ये तो कहो भैया कि बड़ी कुशल हुई जो बुढ़िया के सर गई, नहीं तो तैतर माँ बाप दो में से किसी एक को लेकर जाए तो ही शांत होती है। देव ना करे कि किसी के घर तैतर का जन्म हो।
5: हाँ हाँ सही कहती हो, तेतर का नाम सुनते ही मेरे भी रोए खड़े हो जाते हैं। भगवान भले ही औलाद ना दे पर तेतर ना दे।
0: एक सप्ताह बाद वृद्धा का कष्ट निवारण हुआ। मरने में कोई कसर ना थी, वो तो कहो पुरखों का पुण्य प्रताप था। ब्राह्मणों को गोदान दिया गया, दुर्गा पाठ हुआ, तब कहीं जाके संकट टला।
6: कथा सुधा में अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी तेतर। आज आपने सुना इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग। कहानी में भूमिका सहित पात्रों का परिचय इस प्रकार है। सूत्रधार जी श्याम, वृद्ध दादी रेणु चतुर्वेदी, दामोदर दीपक के सावलेकर, दामोदर की स्त्री स्वप्निल श्रीवास्तव, लक्ष्मी चंचल वर्मा, पड़ोसन मंजरी वर्मा, बाल कलाकार प्रज्वल सिंह, वेदांत सिंह और रुद्र सिंह, प्रस्तुति अनुश्री पाठक, संकल्पना और निर्देशन रेणु चतुर्वेदी।
7: तो आपने सुनी कहानी तेतर, और हम तो बहुत मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे। आशा है आप सभी को भी बहुत अच्छी लगी होगी ये कहानी।
8: और आज घर में क्या चल रहा है, आज घर में हो रहा है नाग पंचमी का त्योहार मन रहा है।
9: बिल्कुल।
8: तो ये जो है ना, ये जो त्योहार होता है ना, ये हमारा देश त्योहारों और परंपराओं की विविधता वाला देश है। यहाँ मनाया जाने वाला प्रत्येक पर्व अपने साथ धार्मिक

0: आस्था के साथ साथ सामाजिक और पर्यावरण की रक्षा के लिए एक संदेश भी लेकर आता है। नागपंचमी हमारा एक महत्वपूर्ण पर्व है जो नाग देवताओं की पूजा और उनके प्रति सम्मान का प्रतीक माना जाता है। ये पर्व सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है।
1: बिल्कुल। और सुना ली, नागपंचमी के दिन श्रद्धालु सर्प की पूजा करते हैं। भगवान शिव के गले में नाग का स्थान होने के कारण नागों का संबंध भगवान शिव से भी माना गया है। और नागपंचमी का महत्व ये केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं बल्कि पर्यावरण और प्रकृति संरक्षण की दृष्टि से भी बहुत ज्यादा अधिक है। और सर्प हमारे पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। वो खेतों में चूहे और दूसरे हानिकारक जीवों की संख्या नियंत्रित करते हैं जिससे फसलों की रक्षा होती है। इसलिए नागों और अन्य जीव जंतुओं का संरक्षण प्रकृति के संतुलन के लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है।
0: और इस दिन कई स्थानों पर जो है ना नाग देवता के चित्र और प्रतिमाओं की पूजा की जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में ये पर्व विशेष उत्साह के साथ मनाया जाता है। महिलाएं परिवार की सुख समृद्धि और कल्याण की कामना करती है। अनेक स्थानों पर पूजा व्रत और धार्मिक कथाओं का आयोजन भी किया जाता है।
1: और आज जब हम ये पर्व मना रहे हैं तो इस बात का ध्यान भी रखना चाहिए सोनाली कि सांपों को पकड़कर उन्हें परेशान करना या जबरदस्त उनको दूध उन्हें पिलाना ये सब उचित नहीं है। वन्य जीवों के प्रति प्रेम और सम्मान ही हमारी सच्ची पूजा और श्रद्धा मानी जानी चाहिए। यदि घर या आसपास कहीं सांप दिखाई दे तो उन्हें परेशान करने के बजाय प्रशिक्षित वन्य जीव बचाव दल की हमें सहायता लेनी चाहिए।
0: और ये दिन हमें एक संदेश भी देता है कि मनुष्य और प्रकृति एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नाग देवता के प्रति श्रद्धा तभी सार्थक है जब हम उनके सहित सभी जीव जंतुओं की रक्षा करें और पर्यावरण का संतुलन बनाए रखें। इस प्रकार नागपंचमी हमारी धार्मिक आस्था और संस्कृति और प्रकृति प्रेम का एक सुंदर संगम है।
1: बिल्कुल सही कहा। और एक संदेश भी आया है इसी के लिए कि ये जो पर्व है ये बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है हमारे देश में और बहुत ही सुंदर और धार्मिक मान्यता से जुड़ा हुआ ये पर्व है। इन दिनों नागों की पूजा की जाती है और कहीं कहीं नाग देवता को दूध पिलाने की भी विधि रखी गई है, देखा जाता है। और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान शिव ने गले में सर्प को धारण किया था।
0: ये हमारे साथी ने कहा और वक्त हो चुका है अंतराल का, तो हम हाजिर होते हैं अंतराल के बाद।
1: जी।

0: ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर है, कार्यक्रम है
1: सखी सहेली,
0: और अब एक गीत सुन ले।
1: चलिए।
0: सदा धम

0: दीपा, हमारी एक सखी ने एक मैसेज लिखा है कि हमारे घर भी आज नाग पंचमी की पूजा हुई है। नाग देवता को गोबर और मिट्टी से बनी हुई मूर्ति को धान का लावा, लैया, गुड़ और दूध चढ़ाया जाता है। वहीं सब साथ खाना खाते हैं और बहुत जगह पर, खासकर बिहार के कुछ प्रांत में आज बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। सभी के घरों में दाल की पूरी, खीर, आम, पका कटहल, भोग लगाया जाता है और प्रसाद बांटा जाता है। नीम की पत्तियों से घर के दरवाजे को सजाया जाता है। ये पूजा भी हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई है। सावन के महीने में खेतों में धान की फसलें लगाई जाती है और उन बारिश के दिनों में बहुत सारे कीड़े सांप रहते हैं, जो उन्हें भी देवता स्वरूप मान के साथ उनका भी पूजन किया जाता है और हर्ष और उल्लास के साथ इस दिन को मनाया जाता है।
1: और एक और संदेश आया, ये कहते हैं कि हमारे घर में कहा जाता है कि आप कहीं भी किसी भी देश में रहिए, वहां के परिवेश में अपने को ढाल लिए, पर अपना अपना कुल परंपरा का जो है परंपरा के निभा होनी चाहिए। तो कहती है कि बहू हमारी पुणे में रहती है, वो भी आज नाग पंचमी की पूजा वहां करती है। यानी आप तो अपने गांव देश में रहते हैं लेकिन बहू दूर रह रही है, लेकिन सारी परंपराओं को वो अपनाकर उसका पालन कर रही है।
0: तो ऐसे ही होता है ना दीपा, की जो परंपराएं होती है या फिर पारंपरिक व्यंजन होते हैं, अगर वो बनेंगे घर में तभी तो उसका स्वाद बच्चों को पता चलेगा।
1: बिल्कुल,
0: अगर वो बनेंगे ही नहीं तो बच्चों को पता ही नहीं चलेगा।
1: और उसका जो महत्व है, क्यों बनाया जाता है, हर एक चीज का महत्व है और हर एक चीज का कारण है, वो समझेंगे ही नहीं अगर उन्हें न वो चखेंगे न वो बनते हुए देखेंगे। वो सौंधी खुशबू जब घर में फैलती है उसका आनंद नहीं लेंगे तब तक उसका महत्व उन्हें समझ नहीं आएगा।
0: और जब हम बताते हैं कि कितना पौष्टिक है, इसमें इतना सारा प्रोटीन है, इसमें विटामिन है और इसमें यानी जो जो व्यंजन है स्वाद के साथ साथ स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा है, जब ये बात बच्चों को बताई जाती है ना तो बच्चे जंक फूड के लिए जिद नहीं करते हैं।
1: बिल्कुल, लेकिन देखो ना आज का ये जो जमाना है, तेज रफ्तार भागती भागती से जिंदगी हमारी हो गई है और इस बदलते परिवेश का सबसे ज्यादा जो प्रभाव बच्चों पर पड़ रहा है वो खान पान पर हम देख ही रहे हैं। एक समय था सोनाली जब बच्चों में घर का बना ये दाल चावल सब्जी रोटी या यूं कहें खिचड़ी पोहा उपमा कोई किसी भी प्रकार के पराठे फल सब कुछ उनको बड़े चाव से खा लेते थे वो लोग, है ना।
0: पर आजकल बच्चे जो है ना कलर और जो है ना रंगों के प्रति बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं और उन्हें ना ये जो उसमें बहुत जो चटपटा बनाया जाता है जंक फूड, जैसे फिर पिज्जा है, बर्गर है, फ्रेंच फ्राइज है, नूडल्स, पास्ता, चिप्स, चॉकलेट, केक, कोल्ड ड्रिंक और पैकेट बंद खाद्य पदार्थों ने ये जो जगह ले ली है बच्चों के जीवन में और यही कारण है कि जंक फूड बच्चों के जीवन का हिस्सा बनता चला जा रहा है
1: और उन्हें इस तरीके से रंग बिरंगी पैकेजिंग में परोसा जाता है ना और बड़े लुभावने फिर विज्ञापन भी बना दिए जाते हैं। जब विज्ञापन बच्चे टीवी मोबाइल पर या अपने किसी सोशल मीडिया हैंडल पर देख लेते हैं या कार्टून प्रोग्रामों के दौरान बीच में अगर देख लेते हैं तो बस फिर उनका मन उस पर तो आ ही जाता है, उसका बहुत ज्यादा गहरा प्रभाव पड़ता है, वहां से शुरू हो जाती है जिद।
0: और छोटे बच्चे तो क्या बड़ों का भी मन आ जाता है।
1: बिल्कुल सही
0: बच्चे हैं और जब उनके पसंदीदा अभिनेता है या खिलाड़ी है या कार्टून पात्र किसी खाद्य पदार्थ का प्रचार करते हैं ना तो बच्चे भी उसे खाने की जिद करने लगते हैं। इसके अलावा फिर जन्मदिन है भाई, पार्टियां हैं मॉल में, मल्टीप्लेक्स में, स्कूल के आसपास की दुकानें, ऑनलाइन फूड डिलीवरी ने भी जंक फूड को बच्चों के पहुंच में बहुत ही आसान बना दिया है कि इतना इजीली उन्हें सब मिलता है तो वो तो उन्हें इजी है और चटपटा स्वादिष्ट है।
1: चटपटा स्वाद है और चलिए स्वाद भी अगर किसी को पसंद ना आए तो एक बच्चा तो खा रहा है, शायद दो तीन खा रहे हैं तो वो जो एक नहीं खा रहा है उसका भी मन करेगा या उसको बोला जाएगा कि देखो तुम ये खाकर देखो कितना अच्छा है।
0: और फिर वो अपनी मम्मी से कहेगा कि सबकी मम्मियां तो लेकर देती है, आप ही हमारे साथ ऐसा क्यों करते हो।
1: बिल्कुल सही कहा। और जंक फूड स्वाद में भले ही लाजवाब लगे सोनाली, लेकिन स्वास्थ्य के लिए ये बहुत ज्यादा हार्मफुल है, यानी हानिकारक है। और इनमें बहुत ज्यादा मात्रा में तेल होता है, सफेद चीनी, नमक, मैदा, फिर ये प्रिजर्वेटिव डले होते हैं, कई प्रकार के फ्लेवर उसमें मिलाए जाते हैं और आर्टिफिशियल कलर्स उसके अंदर होते हैं। और ये वहीं पे देखो आप विटामिन, प्रोटीन, फाइबर और कई तरह के खनिज जैसे पोषक तत्व की तो बहुत कमी होती है,
0: या फिर नाक के बराबर होते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा। अच्छा, बच्चे तो नहीं समझ पाएंगे ये सारी बातें, हमें उनको बताना पड़ता है। अगर उनको बताएं कंपोजिशन में क्या लिखा है, देखो ये सब चीजें इतनी ज्यादा है और तुम्हारे शरीर में इतनी ज्यादा ये चली जाएंगी, ये मात्रा हमारे शरीर में जरूरत नहीं है इतनी जितना ये एक पैकेज के द्वारा जा रहा है, तो वो बच्चे समझेंगे। उनको बिठा के बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है, समझते हैं, लेकिन थोड़ा वक्त उन्हें देना होता है।
0: और परिणाम हमारे सामने है ना दीपा, कि जब हम छोटे थे या फिर हमारे साथी मोटे नहीं थे, है ना?
1: बिल्कुल।
0: आजकल के बच्चे देखिए ना कितने मोटे होते जा रहे हैं, जंक फूड खाने से बच्चों में मोटापा बढ़ रहा है, मधुमेह है छोटे छोटे बच्चों को, डायबिटीज हमें मालूम ही नहीं था, उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर मालूम नहीं था, दांतों की समस्या है। हम हार्डली बहुत कम डेंटिस्ट के पास जाते थे, पर आजकल तो हर बच्चा डेंटिस्ट के पास जाता है।
1: सुनाली, पहले तो डेंटिस्ट इतने होते ही नहीं थे, अब तो पेडियाट्रिक डेंटिस्ट भी होने लगे हैं जहाँ छोटे बच्चों के लिए खास तौर पर डेंटिस्ट है, क्योंकि छोटेपन से ही उनको दांतों की समस्या है, यानी उनके दूध के दांत भी अभी गिरे नहीं है, उसके पहले ही उन्हें बहुत ज्यादा बिल्कुल एक सीरियस दांतों की प्रॉब्लम होने लग जाती है।
0: साथ ही उनकी ना रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी कमी आने लग गई है, और कम उम्र में उन्हें अनेक स्वास्थ्य समस्याओं से का सामना करना पड़ रहा है। तो देखिए ना, हम यही चाहेंगे ना कि हमारा बच्चा स्वस्थ रहे, खुश रहे। अगर ये चाहते हैं तो हमें जंक फूड से बच्चों को दूर रखना चाहिए, और अभी हमें एक गाना सुनना चाहिए,
1: उसके तो पास रहना चाहिए, है ना?

0: सोनाली, हमारे सभी साथियों ने, सहेलियों ने अलग अलग संदेशों से के द्वारा बताया है कि जंक फूड के बारे में उनके क्या विचार हैं। बहुत सी बातें तो बताइए, हम ये चाहते हैं कि आप कोई सखी या किसी भी हमारे शो सुनने वाले, इस वक्त सुनने वाले श्रोता बताएं, उनके घर में छोटे बच्चे हैं, अगर हैं तो क्या वो बाहर के खाने के लिए जिद करते हैं तो आप उन्हें कैसे समझा रहे हैं या नहीं समझा पा रहे हैं, दोनों ही बातें बताएं।
1: इस विषय पर भी हमें लिखकर बताएं, क्योंकि जब है ना श्रोता अपने कमेंट्स लिखते हैं ना तो ज्यादा दिल के करीब होते हैं।
0: बिल्कुल,
1: और उससे एक ना बहुत अच्छा संदेश भी जाता
0: और
1: है,
0: समझ में भी आता है कि क्या चल रहा है सबके घरों में, क्या एक सा चल रहा है, एक सा सही हो रहा है या एक सा गलत हो रहा है।
1: एक हमारे साथी लिखते हैं कि मेरी प्रोविजन की शॉप है और मेरी शॉप में 5-10 रुपए वाले पैकेट वाला नाश्ता मैं बेचता हूँ। आजकल स्कूल के बच्चे, स्कूल जाने वाले बच्चे पैकेट लेना पसंद करते हैं। लंच बॉक्स में घर का हेल्दी फूड देने के बजाय घर से पेरेंट्स भी यही खरीद कर नाश्ता में दे देते हैं। इसमें ज्यादा शुगर और नमक होने के कारण बच्चे छोटी उम्र में मोटापे के शिकार हो जाते हैं और घर पर भी पिज्जा जैसे जंक फूड आसानी से ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवा लेते हैं, जो हेल्थ के लिए अनुकूल बिल्कुल भी अच्छे नहीं है।
0: बिल्कुल, वही एक और संदेश आया है कि आज के समय में खाने में जंक फूड बच्चों की पहली पसंद है, पिज्जा, बर्गर, नूडल्स, चिप्स, ये तरह तरह के पैकेट स्नैक्स। खुशबू और आकर्षक पैकिंग की वजह से बच्चों को ये बहुत लुभाते हैं। इसके अलावा माता पिता की व्यस्त दिनचर्या और आसानी से ये सब अवेलेबल है, उसके कारण भी ऐसे खाद्य पदार्थ बच्चों के आदत का हिस्सा बन गए हैं, जो उन्हें बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए स्वाद के साथ बच्चों को संतुलित आहार का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसलिए जंक फूड को पूरी तरह खाने पर पाबंदी लगाने के बजाय उन्हें एक संतुलित भोजन का महत्व समझाना बहुत जरूरी है। और इसके लिए जरूरी है कि घर में जो भी आप हेल्दी फूड, जो भी स्वस्थ खाना बना रहे हैं पौष्टिक, वो बनाए भी और खाएं, खुद भी खाएं और अपने बच्चों को खिलाएं। क्योंकि जब आप खुद करेंगे उस चीजों को, उन आदतों को अपनाएंगे, तो बच्चे बिल्कुल उन आदतों का अनुसरण करेंगे।
1: अब देखिए ना, अब जैसे पिज्जा जैसे ही हम अगर मोटी मोटी रोटी बना के उसपे सारी सब्जियां डाल के उसको अच्छे से उसके ऊपर पनीर कद्दूकस करके उसमें चाट मसाला डाल के दिया ना, तो बच्चों को बताएं कि देखिए होममेड पिज्जा है, ये खाएंगे ना तो ये ज्यादा हेल्दी है। इस तरह से बच्चों को, अगर डोसा का बैटर है उससे आपने ABCD बना के दिया बच्चों को, तो बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। फिर पराठे को कट करके ABCD का शेप बना दिया तो बच्चे शौक से खाएंगे।
0: और इसी तरह से पराठे में जैसे किसी दिन पालक की प्यूरी डाल के आप हरे कलर के पराठे दीजिए, कभी बीटरूट का पराठा जो कि बिल्कुल लाल कलर का हो जाता है, या एक दिन जिस दिन आपके पास थोड़ा समय हो, ये सब अलग अलग कलर के पराठे बना के दीजिए, तो आप उनको बहुत सुंदर लगता है और बहुत खुशी से और बहुत स्वाद लेकर के चाव से खाते हैं बच्चे।
1: और एक हमारे साथी ने लिखा है कि जंक फूड हमने भी बहुत खाया है, हमारी मजबूरी होती थी क्योंकि कॉलेज इतना दूर था, वहाँ आसपास कॉलेज कैंटीन के सिवा कुछ भी नहीं होता था। भूख लगने पर मजबूरी में जो कैंटीन में मिलता था वही खाना खाना पड़ता था, लेकिन आज मैं कोई जंक फूड नहीं खाता हूँ। ये बहुत अच्छी बात
0: ये
1: है,
0: बहुत अच्छी
1: कि मजबूरी में हम खा सकते हैं, पर जहाँ पर हम कोशिश कि ना खाए वहां पे हम कोशिश कर सकते हैं।
0: अच्छा, एक संदेश ये कहता है कि भाई ये आकर्षक नहीं बल्कि घर में समय पर भोजन नहीं बना पाने का परिणाम है। अच्छा, इन्हें ऐसा लगता है, और वो भी वहां पर विशेष जहां दंपत्ति भी ऑनलाइन ऑर्डर करके मनपसंद भोजन मंगवा लेते हैं। अरे बच्चे तो अनुसरण करते हैं और जब कर लिए तो उसका दुष्प्रभाव से मोटे होने पर उन्हें रोकते भी हैं, मगर वे भी तो तभी रुकेंगे जब आप रुकेंगे। ऐसे में तो यही कहना होगा कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो यही बात हम पहले भी कर रहे थे कि हमें पहले अपने आप में सुधार भी लाना होगा और पहल भी करनी होगी।
1: एक साथी कहते हैं कि सिर्फ बच्चों में ही नहीं, बड़ों को भी जंक फूड खाने की आदत होती है, चिप्स, पिज्जा और वो भी कोल्ड ड्रिंक के साथ साथ। इन सभी का आकर्षण विज्ञापनों के साथ बड़ा प्रचार किया जाता है। रंग बिरंगी पैकिंग और इंस्टेंट डिलीवरी सुविधा के कारण गृहणियों को भी आराम मिल जाता है।
0: जी बिल्कुल। और एक और संदेश ये कह रहा है कि जो बच्चे देखते हैं जंक फूड, बस उसे देखते ही मचल जाते हैं, और ये है कि इनके लिए बहुत नुकसानदायक है सेहत के लिए। इनमें जो मसाले, केमिकल का प्रयोग करते हैं बनाने वाले, वो स्वास्थ्य का कतई ख्याल नहीं रखते। उनका उद्देश्य अधिक से अधिक बिक्री पर जोर देना होता है। चटपटे मसालेदार चीजें बड़े आदमियों की तरह बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं, लेकिन उनका पाचन तंत्र इतना मजबूत नहीं होता, इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हम इन्हें अपने बच्चों को इनसे दूर रखें।
1: वही एक साथी कहते हैं कि आजकल ये बहुत स्वाभाविक हो गया है, रंग बिरंगी पैकिंग, स्वाद और विज्ञापन उन्हें जल्दी आकर्षण करते हैं। कभी कभार पसंद की चीज खाना गलत नहीं है, लेकिन अगर यही रोज की आदत बन जाए तो पौष्टिक भोजन से दूरी बढ़ सकती है। अब तो जंक फूड 10 मिनट में घर पर आ जाता है, वही सुविधा हो गई है, इसलिए उस सुविधा का हमें दुरुपयोग नहीं करना है कि हाँ भाई कभी बीमार है या कभी जन्मदिन है या फिर कभी कोई खास अवसर है, 2-3 महीने में 4 महीने में एक आध बार ठीक है, पर अगर रोज रोज वही हम खाने लग गए तो उसकी आदत भी बन जाएगी
0: और हाँ
1: और बीमारियां भी करीब आ जाएगी।
0: बिल्कुल सही कहा। और एक हम गर्मियों की छुट्टी में जब सारी बहनें मिलती हैं तो एक हमारी सिस्टर ने बताया, कजिन सिस्टर ने, कि हम अपने बच्चों को बिठा लेते हैं और उनको बोलते हैं कि पूरे हफ्ते भर के में आप क्या खाना चाहते हो बताओ, एक दिन सिर्फ आपको मिलेगा, वो भी क्योंकि छुट्टियों के दिन चल रहे हैं, एक दिन बाजार का, बाकी सब चीजें घर में बनेंगी और आप भी हमारे साथ मदद करेंगे। तब उन बच्चों को बहुत मजा आने लगा और अब वो बच्चे कहते हैं कि मम्मी आप हमें घर पर ही हर चीज बना के खिलाइए।
1: कितना सुंदर उदाहरण है। चलिए अब गीत सुन लेते हैं।
0: चलिए।

0: भाई दिल किसी पे भी आए ये हानिकारक पदार्थों पे ना आए बस
1: है ना, मिष्टी दोई पे आ जाए तो बात होगी।
0: हाँ ये बिल्कुल सही है।
1: एक हमारे साथी ने लिखकर भेजा है, सामग्री है 1 लीटर फुल क्रीम दूध, 3/4 कप चीनी या गुड़, 3 से 4 चम्मच गाढ़ा दही, हंकड़। बनाने का तरीका, दूध को उबालकर थोड़ा गाढ़ा कर ले, एक अलग पैन में चीनी को पिघलाकर कैरेमल बना ले, कैरेमल को गुनगुने दूध में अच्छी तरह मिला ले, दूध के मिश्रण को हल्का ठंडा होने दे, अब इसमें गाढ़ा दही मिलाकर अच्छी तरह से फेंट ले। इस मिश्रण को मिट्टी के बर्तन कूलर में डाले और बर्तन को ढककर 7 से 8 घंटे तक रात भर के लिए किसी गर्म जगह पर जमने के लिए रख दे। जमने के बाद इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में ठंडा कर ले और फिर सर्व करे, मिष्टी दोई।
0: तो भाई देखियो सखियो, हमारी सोनाली ने तो मीठा आपको पहले बता दिया, लेकिन साथ में क्या खास व्यंजन बनेगा, तो वो बनेगा आलू और दम, यानी कि दम आलू फेमसली उसे कहते हैं। छोटे छोटे आलू लेने होते हैं इसमें, जो दम आलू के लिए जाते हैं। आप ले लीजिए आधा किलो यानी 500 ग्राम, प्याज ले लीजिए 2 बारीक कटे हुए, टमाटर 2 बारीक कटे हुए, दही 1/2 कप, लहसुन अदरक का पेस्ट आपके हिसाब से ले लीजिए, तेल 3 बड़े चम्मच, जीरा 1/2 चम्मच, हल्दी छोटी 1/2 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर आपके हिसाब से, धनिया पाउडर 1.5 चम्मच, गरम मसाला जैसे आपके घर में चलता है वैसे लीजिए, नमक भी आप अब जैसे आपके घर में डाला जाता है वैसा, और हरा धनिया सजाने के लिए। तो अब आलू उबाल करके छील लें और उनमें हल्के छेद छेद छोटे छोटे से कर दीजिए। कढ़ाई में तेल गर्म करके आलू को हल्का सुनहरा होने तक तल लें और निकाल लें। उसी कढ़ाई में जीरा डालें, फिर प्याज डालकर सुनहरा भुने, अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर कुछ और सेकंड के लिए भुने, फिर अब टमाटर हल्दी लाल मिर्च धनिया पाउडर डालकर मसाले को तब तक भुने जब तक तेल मसालों से अलग ना हो जाए। गैस धीमी करके फेटा हुआ दही डालें और लगातार चलाते हुए पकाते रहिए। अब तेल तले हुए जो आलू आपने रखे थे अलग से, नमक और लगभग 1 कप पानी उसमें डालना है। ढककर इसको आप धीमी आंच पर 10 से 15 मिनट तक पकाएं ताकि आलू में मसाले खूब अच्छी तरह से घुल जाए और मिक्स हो जाए। आखिर में आप गरम मसाला डालिए, हरा धनिया डालकर थोड़ा सा और पकाइए।
1: और इसके साथ में लूची यानी बंगाल की बेहद लोकप्रिय पूरी है, जो सामान्य पूरियों से थोड़ी अलग होती है। आटे के बजाय मैदे से बनाई जाती है। सोयाबीन के लिए थोड़ा सा घी या तेल और हल्की सी चीनी मिलाई जाती है और उसका रंग सफेद और बनावट बाहर से हल्की खस्ता और अंदर से बेहद नरम होती है। और आलू और दम और ये लूची और साथ में मिष्टी दोई हो तो क्या कहने।
2: मिला है किसी का।

0: हमारे बहुत सारे साथियों ने भर भर के कमेंट्स लिखे हैं दीपा। एक साथी कहते हैं कि भाई है अपना दिल तो आवारा, बिल्कुल पहले अपने दिल पर मुंह पर कंट्रोल होगा जंक फूड के प्रति, तभी बच्चों को भी इसके लिए मना कर सकते
1: बिल्कुल
0: हैं।
1: सही कहा। और एक संदेश आया है कि बंगाल के व्यंजन में पूरी और दम आलू की बात ये हो रही है आज, लेकिन ये बिहार का भी लोकप्रिय व्यंजन है। जी हाँ बिल्कुल है। और जब भी कोई छोटा मोटा फंक्शन होता है ना तो खीर पूरी तो बनती ही है, साथ में दम आलू भी बनता है, लेकिन आजकल कहीं कहीं जगह पर इस पनीर की सब्जी ने जगह ले ली है।
0: और एक साथी ने लिखा है, एक सखी ने, कि लूची व्यंजन पहली बार सुन रही हूँ,
1: जी
0: तो इनके घर में अब लूची बनने वाली है और हमारे घर में भी बनेगी। पर हम श्रोताओं को दिल से धन्यवाद कहेंगे कि आपके कमेंट्स के कारण, आपके इतने सुंदर सुंदर संदेश के कारण कार्यक्रम में चार चांद लग गए।
1: बिल्कुल सही
0: और अब
1: कहा।
0: इजाजत लेने का वक्त आ चुका है। आप सभी को सोनाली पाठक
1: और दीपा माहेश्वरी का
0: नमस्कार,
1: नमस्कार।

0: दोस्तों नमस्कार, सेहतनामा कार्यक्रम में आइए आज सुनते हैं फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर हर्षदा राज्याध्यक्ष से यूनुस खान की बातचीत।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त यूनुस खान हूं और आज स्टूडियो में हमारे साथ हैं डॉक्टर हर्षदा राज्याध्यक्ष, जो एक जानी मानी फिजियोथेरेपिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका विविध भारती स्टूडियो में
2: और मुझे यहाँ बुलाने के लिए थैंक यू।
1: डॉक्टर, ये जो फिजियोथेरेपिस्ट है, इसकी जरूरत आजकल लोगों को बहुत पड़ती है। जब किसी को टेनिस एल्बो हो जाती है, किसी की गर्दन टेढ़ी हो जाती है, शोल्डर में प्रॉब्लम हो जाती है, पर फिजियोथेरेपिस्ट का काम कितना गंभीर है, सबसे पहले तो ये बताइए।
2: सो फिजियोथेरेपिस्ट का काम गंभीर नहीं बोलूंगी मैं, बट जरूरी है, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल ऐसे बन गई है कि इसकी जरूरत पड़ती है।
1: जी जी।
2: अगर हम सोचे कि हम कितना टाइम बैठे रहते हैं एक जगह पे, काम भी ऐसे हो गए हैं कि लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे काम करना,
1: सारा दिन
2: 8 घंटा, समटाइम्स 4 या 5 घंटा एक साथ बैठे हैं लगातार, तो हमारा बॉडी का टेंडेंसी है कि शोल्डर्स क्रंच हो जाते हैं, हेड फॉरवर्ड आ जाता है, तो गर्दन की प्रॉब्लम्स होती हैं।
1: जी।
2: अभी ये जो लोग हैं उनको एक्चुअली लाइफस्टाइल डे टू डे में कोई एक्सरसाइज मिलती ही नहीं है, तो एक्सरसाइज एक्चुअली ये आर्टिफिशियल हो जाती है, मतलब करनी पड़ती है। तो जब भी हम करते हैं एक्सरसाइज एक्सरसाइज के लिए, तो कभी कभी चॉइस भी गलत करते हैं या बहुत ज्यादा टाइम करते हैं। अगर टेनिस एल्बो टेनिस

0: से रिलेटेड नहीं है। कोई भी चीज अगर हम बहुत ज्यादा करें या बहुत हैवी कुछ उठाएं और हमको आदत नहीं है उस चीज की और वो हम बार बार करें, या तो समझो अगर टेनिस ही खेल रहे हैं तो शॉट परफेक्ट करने के लिए बार बार वही शॉट मारते रहें, तो तभी होता है ये। तो अभी बिकॉज साइंस हैज गॉन अहेड एंड रिसर्च ने दिखाया है कि क्या करना चाहिए, तो इसके लिए ये सब चीजों के लिए फिजियोथेरेपिस्ट आर इसेंशियल।
1: बिल्कुल,
0: जब भी लाइफस्टाइल ही ऐसी थी जहां बहुत सारी एक्टिविटी जरूरी थी लाइफस्टाइल के लिए, तभी आर्टिफिशियल एक्सरसाइज या कुछ ऐसा नहीं था। और अभी स्पोर्ट्स में भी इतना पावर के साथ लोग खेलते हैं कि उनके लिए एक्सरसाइज करना, वो चीज मेंटेन करने के लिए, पावर बिल्ड करने के लिए जो एक्सरसाइज जरूरी है, उससे भी कभी कभी पेन बढ़ता है। तो इस चीजों के लिए हमारी जरूरत पड़ती है।
1: बिल्कुल। और एक और एरिया है जहां बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत पड़ती है और वो है स्पोर्ट्स, जिसकी दिशा में आपका बहुत सारा काम है। इस बारे में बताइए।
0: स्पोर्ट्स मतलब कि फिजिकल होता है और स्पोर्ट्स के लिए ट्रेनिंग भी जरूरी होती है। स्पोर्ट्स में एक्टिविटी ऐसी होती है कि वो बहुत अपने, मतलब यू हैव टू ट्राई योर बेस्ट। इसके लिए जरूरी है कि उसका प्रेपरेशन भी ऐसा हो कि यू आर एट योर फिजिकल बेस्ट। फिजिकल ट्रेनिंग भी सख्त होती है, प्रैक्टिस ट्रेनिंग भी सख्त होती है, और फिर जब भी मैच में जाते हैं तो यू आर कॉम्पीटिंग विथ योर राइवल हु इज ऑल्सो बेस्ट। तो उन्होंने भी बेस्ट उनकी फिजिकल स्टेटस बनाई है, आपकी भी है, और आपको दोनों को जीतना है। तो मैं हमेशा बोलती हूँ ये वॉर के जैसा है,
1: जो
0: दो सोल्जर्स वॉर पे जाते हैं, बेस्ट देते हैं क्योंकि जीतना तो है। तो इस कंडीशन में इंजुरीज आर गोइंग टू हैपन। तो इसके लिए फिजियोथेरेपिस्ट हेल्प अ लिटिल बिट टूवर्ड्स प्रिवेंशन, मतलब जो प्रिवेंटेबल है वो हम प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर उसी टाइम कुछ हो गया, गिर गया कोई या कुछ हो गया, तो वो प्रिवेंटेबल नहीं है। बट जो प्रिवेंटेबल है, वो कंडीशंस प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, और जब भी इंजरी हो भी जाती है तो उसके रिकवरी में हम हेल्प करते हैं। अगर सर्जरी है तो सर्जरी के बाद तो बहुत सारा काम होता है, सो व्हाट आई कॉल लॉन्ग टर्म रिहैबिलिटेशन। क्योंकि सपोज ACL सर्जरी है या रोटेटर कफ जो शोल्डर की है, या कुछ भी, अगर टेनिस एल्बो की भी हो, उसका रिकवरी पीरियड बिटवीन 3 months to 9 to 12 months बाय द टाइम यू कम बैक।
1: तो वो पूरा साल,
0: हाँ, साल जाता है। ACL सर्जरी अगर हो तो स्पोर्ट में वापस आने के लिए 9 महीना जाता है।
1: कॉल इट लाइक, मतलब क्या होता है,
0: इट इज एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। ये नी वाली लिगामेंट है, बहुत फेमस है, बहुत एथलीट्स को होती है,
1: अखबारों में हम पढ़ते हैं।
0: हाँ, स्पेशली फुटबॉल या ऐसे जो है जहां बैलेंस और रोटेशन होता है, तो ये होती है इंजरी। 9 महीने लगते हैं, इट्स लाइक गिविंग बर्थ, जेस्टेशन पीरियड उतना तो लगता है। तो वो पूरा 9 महीना हमारे अंडर होता है ट्रीटमेंट, और एंड वी कॉल इट ग्रेडेड। तो वो स्टार्ट होता है जैसे हम ABCD लिखते हैं, वैसे बहुत बेसिक से चालू होता है, और फिर हर 3-3 हफ्ते के बाद या 6 हफ्ते के बाद इंक्रीमेंट होता है। और इस तरह से पूरा 9 महीना चला जाता है। बाय द 7th month दे कैन गो बैक टू फील्ड एंड दे कैन स्टार्ट विथ फील्ड प्रैक्टिस एंड ऑल दैट, बट फिर भी टीम में आने के लिए 9 महीना लगता है।
1: बताइए ये कितनी महत्वपूर्ण।
0: तो स्पोर्ट्समैन को बहुत ही जरूरत है फिजियोथेरेपिस्ट विद देम, अगर अफोर्ड होता है वो टीम के लिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे कंट्री में सब लेवल पे ये नहीं होता है, क्योंकि टीम्स के पास उतने पैसे ही नहीं होते हैं, या मेनी थेरेपिस्ट डू गो फ्री ऑफ चार्ज, बट फिर वो क्वालिटी नहीं मिलती है।
1: बिल्कुल, आपने सही कहा। आम जीवन में जब फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत पड़ती है तभी हम फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं। आप हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, तो एक आपको हो सकता है कि अजीब सा सवाल लगे, पर क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जो सावधानियां बरतें तो फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाने की जरूरत ही ना पड़े?
0: जरूर है, पर हम ऐसे हैं सब, इवन मी, कि जब तक एकदम जरूरत नहीं हो हम उसको एक्नॉलेज ही नहीं करते कि कुछ प्रॉब्लम है।
1: यानी जब आग लगती है तभी हम,
0: तभी हाँ, जब भी थोड़ा सा कुछ पता लगता है तभी कोई नहीं उस पे केयर करता है। मतलब फर्स्ट साइन इज पेन।
1: जी,
0: पेन ऐसी एक इंडिकेशन है बॉडी की, बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेशन है, कि वो बता देता है आपको कि कुछ गलत हो रहा है। कभी कभी पेन थोड़े टाइम के लिए आता है, मतलब एक जब भी आप कोई एक्टिविटी कर रहे हो तभी पेन आता है और इमीडिएटली जाता है। उसको भी आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि वो पेन कहाँ है, क्या वो

0: तो थोड़ा जर्क लग गया, उसी टाइम समझा कि कुछ गलत है, पेन हो रहा है, तो मैंने एक हफ्ते के लिए नहीं किया, वो ऊपर नहीं लेके गया हाथ, और सब ठीक हो गया, मेरा पेन चला गया। तो मैंने बोला तो फिर आप इधर क्यों हो, पेन तो चला गया। तो बोलता है नहीं, कल मैंने फिर से वही किया, मुझे लगा कि अगर मैंने नहीं किया तो शायद कभी नहीं कर पाऊंगा, तो मैंने वही किया और फिर से पेन हो गया, तो मैं आपके पास आया हूं। तो ऐसा है कि हम सोचते हैं कि अगर हमने एक एक्टिविटी छोड़ दी तो वो पेन आएगा वापस या कुछ ठीक नहीं रहेगा। तो ये जो है बार बार पेन आना जाना, हम उसको टाइम देते हैं, जब तक हमें नहीं लगता ये सीरियस है तो नहीं करते। देखो, जो ओपन इंजरी होती है, अगर आपके हाथ में कोई कट आ जाए तो आप उसकी केयर लोगे, उसको ढक के रखोगे, ये देखोगे कि वो टच ना हो किधर, या आप उसको स्क्रैच नहीं करोगे, उसको केयर लोगे जब तक कि उसका कवरिंग ना आ जाए, वो भी गिर जाए, बहुत 15 दिन उसकी केयर लोगे। पर जो इनविजिबल इंजरीज होती है, जो अंदर होती है, उनको हम इग्नोर करते, हमें लगता है कि हमने अगर वो एक्टिविटी नहीं की तो ये अच्छा नहीं होगा, तो हम करते रहते हैं और उस वजह से वो बढ़ती है। वो एक है कि आपको रेस्ट उसी टाइम लेना चाहिए जब भी है, और अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग हैं जो केयर जो हम ले सकते हैं उसे बचाने के लिए। अगर आप बहुत स्पेसिफिक पूछोगे तो मैं बोलूंगी कि एक कॉमन है ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी,
1: जी
0: अगर उस बारे में बात करनी है तो वो मैं बता सकती हूँ कि उसका केयर कैसा लेना है।
1: डॉक्टर साहब, यहां ये बात करेंगे लेकिन इस गाने की बात करेंगे, तो यहां इस प्रोग्राम का पहला गाना मुझे लगता है कि बजाते हैं, और वो गाना है राही तू रुक नहीं जाना, मिलेगी तेरी मंजिल कहीं दूर गगन की छांव में। ये गाना इसलिए सुनते हैं क्योंकि जब भी कोई इंजरी होती है तो व्यक्ति रुक जाता है, अटक जाता है, उसके काम रुक जाते हैं, तो ये गाना सुनते हैं फिर आगे की बातें करते हैं।

0: मत जाना, लेकिन जब समस्याएं होती हैं, शारीरिक समस्याएं, तो इंसान को रुकना ही पड़ता है। आप कुछ बताने वाली थी?
1: मुझे बोलना है कि ये अभी सब दुनिया के 50 या 60% लोगों को ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द नी
0: जी
1: ये होता है, और फिर उसके लिए नी रिप्लेसमेंट भी होता है, बहुत कॉमन हो गया है।
0: महिलाओं में ज्यादा होता है?
1: महिलाओं में थोड़ा ज्यादा होता है, यस, उसके भी कारण हैं, बट ये एक्चुअली मैं प्रिवेंटेबल टोटली नहीं बोलूंगी, बट डिले तो जरूर हो सकता है, और अगर अर्ली केयर ले तो इसको शायद प्रिवेंट भी हो सकता है। मेनली ये जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है वो इधर डिसयूज के वजह से होता है, मतलब हम जॉइंट ज्यादा यूज नहीं करते, बहुत आराम की लाइफस्टाइल है, कुछ ज्यादा करना ही नहीं पड़ता है, वो एक है। दूसरा ये है कि हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, या तो बहुत सालों के लिए कुछ नहीं करके फिर इमीडिएटली एक्सरसाइज या कुछ बहुत ज्यादा कर लेते हैं। अभी देखो मैराथन भी अगर करना है तो फुल मैराथन करना है या हाफ मैराथन करना है, उसके लिए ट्रेनिंग ज्यादा करनी है, ये सब होता है, इसलिए नी पेन सेटल ही नहीं होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस एज रिलेटेड बोला जाता है, बट उसका डाइट से बहुत ज्यादा संबंध है। ब्लड शुगर अगर बढ़े और बढ़ी रहे, सो डायबिटीज बेसिकली विल गिव यू अ कॉन्स्टेंट इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी विच विल अलाउ द जॉइंट टू डीजेनरेट, मतलब वो उसकी वेयर एंड टेयर हो सकता है। अर्ली साइंस ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस यूजुअली ये जो वाटी होती है जो घुटने के आगे होती है,
0: कटोरी जैसा,
1: कटोरी, वो सबसे पहले उधर पेन होता है यूजुअली लोगों को। हमारे फ्रंट ऑफ द लेग बड़ा मसल है क्वाड्रिसेप्स करके, तो वो क्वाड्रिसेप्स नॉर्मल फंक्शन के लिए, मतलब ये जो कटोरी है सामने, पटेला जो हम बोलते हैं उसको, वो उसका स्मूथ फंक्शनिंग या स्मूथ मूवमेंट इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम उसको थोड़ा सा मसाज करें या क्वाड्रिसेप्स को रिलैक्स करें, उसको स्ट्रेच करें, काफ मसल जो पीछे होता है लोअर लेग के पीछे काफ मसल, उसको अगर हम स्ट्रेच करें रोज, तो सो क्वाड्रिसेप्स एंड पीछे का काफ मसल, ये दोनों अगर हम अच्छे से स्ट्रेच करें और उनको अगर हम लेंथ में अच्छा रखें, अगर आपको फ्लैट फुट है तो उसके लिए जब भी आप एक्सरसाइज करते हो या लॉन्ग वॉक्स करते हो, तो उसके लिए अगर आप अच्छे आर्च सपोर्ट वाले शूज वेयर करें, और वॉकिंग अगर आपको करना है तो आप थोड़ा उसको धीरे धीरे बढ़ाइए। अभी ऐसा बोला जाता है कि वजन ज्यादा होने की वजह से घुटने पे दबाव आता है, पर वो ही एक कॉज नहीं है। फैट जो है बॉडी में वो भी अभी एक मेटाबॉलिक एंडोक्राइन ऑर्गन के जैसा फंक्शन करता है, तो उसके वजह से कोई ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो डिस्ट्रक्टिव हार्मोन्स होते हैं,
0: जो हड्डियों को तबाह करना शुरू करते हैं।
1: तो ये जो फैट बिल्डअप होता है वो भी कम रखना पड़ता है। सो शुगर, सॉल्ट, फैट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट न्यूट्रिशनल फैट, बट जो बॉडी में फैट बढ़ता है वो अगर कम रखें, सब मसल्स लेग के स्ट्रेच रखें, एक्सरसाइज रोज का रोज सही मात्रा में करें, नॉट टू मच नॉट टू लेस, और कायम करें, मतलब ऑलमोस्ट एवरी डे आपका वॉकिंग, जो हमारी बॉडी एक्चुअली एक्सरसाइज के लिए ही बनी है, मूवमेंट के लिए बनी है, हम उसको मूवमेंट बंद कर देते हैं और फिर सडनली जब भी चालू करते हैं तो बहुत ज्यादा करते हैं। तो अगर ये सब आप करो तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस कैन बी प्रिवेंटेड और इट कैन बी डिलेड। अनफॉर्चुनेटली ये बात है कि जब तक हमें ये सब समझता है तभी ऑलरेडी लेट हो चुका होता है
0: जी।
1: ऑल प्रिवेंशन हैज टू बी स्टार्टेड इन चाइल्डहुड, बचपन से ही आदतें डालनी चाहिए।
0: आपने ये जो पूरा ब्यौरा बताया है इससे एक बात ये समझ में आई कि रेगुलर सही एक्सरसाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तब आप इन तमाम चीजों से बच सकते हैं। ये जो सही एक्सरसाइज वाला मुद्दा है, कितना
1: हिप्पोक्रेटस ने बोला था, जो हिप्पोक्रेटस इज द फादर ऑफ मेडिसिन, उन्होंने 400 BC में बोला है कि इफ वी कुड गिव एवरी इंडिविजुअल द करेक्ट अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज एंड द करेक्ट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन, That would be the safest way to ensure health.
0: कितनी बड़ी बात हो,
1: और ये कितनी पुरानी बात है, और हमारे भी संस्कृति में यही बात है
0: जी,
1: योगा में यही बात है,
0: संपूर्ण स्वास्थ्य की बात है। और उन्होंने क्या कहा कि सही मात्रा में
1: सही मात्रा
0: है ना,

0: और
1: वो ही
0: सही
1: कैच फ्रेज है, नॉट टू लेस नॉट टू मच।
0: जी। और आज आपने जब इस कार्यक्रम में बताया तो मुझे ये उम्मीद है कि लोग जो हैं वो अवेयर होंगे इस बात के लिए कि एक्सरसाइज।
1: एक्सरसाइज लाइफ में कभी बंद ही नहीं करनी चाहिए।
0: जी
1: जो हम चाइल्डहुड में जो थोड़ा रनिंग करते हैं या खेलते हैं वो कायम रखना चाहिए।
0: जी आपने एक बात कही थी कि महिलाओं में ये जो ऑस्टियोपोरोसिस है ये ज्यादा
1: ऑस्टियो
0: होता।
1: आर्थराइटिस बोला था, बट
0: जी
1: पोरोसिस भी,
0: हाँ दोनों चीजें।
1: दो अलग हैं। ऑस्टियो आर्थराइटिस इज वेयर एंड टेयर,
0: जी
1: जो घिस जाती है जॉइंट्स, और पोरोसिस है जो
0: हड्डियां कमजोर
1: हड्डियां
0: होना।
1: कमजोर होती हैं,
0: जी
1: पोरस हो जाती हैं।
0: तो महिलाओं पर अगर फोकस किया जाए तो आपकी क्या राय और सलाह होगी, क्योंकि अमूमन महिलाएं सारे परिवार का ख्याल रखने के चक्कर में खुद पर फोकस सबसे कम
1: हाँ,
0: रखती आई हैं।
1: ऑस्टियोपोरोसिस एक्चुअली ज्यादा डेंजरस है। ऑस्टियोआर्थराइटिस का तो है आंसर, कर सकते हैं सर्जरी। ऑस्टियोपोरोसिस बहुत डेंजरस है क्योंकि वो रिवर्स होता है कभी कभी। अभी तो बहुत अच्छे इंजेक्शंस और सब आए हैं जो होता है रिवर्स, बट उसको टाइम लगता है, किसी में होता है किसी में नहीं। मेनली विमेन में क्या होता है, इस्ट्रोजन जब भी कम हो जाता है मेनोपॉज के टाइम, तो उस वजह से कैल्शियम का
0: डिफिशियंसी।
1: डेफिशिएंसी होती है। विटामिन D3 एंड सम अदर मिनरल्स आर देयर, वो अगर नहीं हो तो फिर एब्जॉर्प्शन, बोन में एब्जॉर्प्शन कैल्शियम का कम हो जाता है। हमारे नॉर्मल फूड में अगर हम केयरफुल नहीं हो तो एक्चुअली उतना कैल्शियम नहीं जाता है बॉडी में जो रिक्वायरमेंट होती है। मतलब पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन, दे शुड हैव 1500 mg ऑफ कैल्शियम अ डे, वो नहीं होता है। एक्चुअली अगर दही खाएं या ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं ये सब, पर इतना हमारा बैलेंस न्यूट्रिशन अभी नहीं रहा है और इस वजह से भी होता है। दूसरा है कि बोन को ग्रो करने के लिए, वो एक तो है ना, ये ऑस्टियोपोरोसिस, अगेन आई कॉल इट अ चाइल्डहुड प्रॉब्लम, नॉट एडल्टहुड प्रॉब्लम,
0: उसका पता
1: क्योंकि
0: बड़े होने पर लगता है।
1: बट उसका अक्यूमुलेशन पहले 18 साल में ही होता है कैल्शियम, और वो बैंक के जैसा है, जितना भरो उतना बाद में घटा सकते हो आप। पहले भरना चाहिए, तो 18 तक भरना चाहिए, फिर उसको मेंटेन करना चाहिए 30-32 तक, और उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा खर्चा कर सकते हैं, पर उसको थोड़ा सा रिप्लेनिश भी करना चाहिए। तो अगर मेनोपॉज हो तो अभी हार्मोनल रिप्लेसमेंट भी बहुत अच्छा है। बोन स्ट्रांग रहने के लिए मसल की बहुत जरूरत है। मसल अगर बोन पे पुल नहीं करेगा तो बोन को स्टिमुलेट ही नहीं होगा वो कैल्शियम उठाने के लिए। तो एक्सरसाइज, एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन, मतलब कैल्शियम डाइट में, और फिर जो कमतरता है वो सप्लीमेंट से, मेंटेनिंग ऑल अदर मिनरल्स आल्सो अलोंग विद दैट एब्जॉर्प्शन के लिए, और एक्सरसाइज सो मसल्स का पुल रहे बोन्स पे, यही सब है। अगेन वेट मैटर्स, वेट आल्सो शुड बी अंडर कंट्रोल, बट मेनली एक्सरसाइज एंड फूड हैबिट्स एंड
0: जी
1: हार्मोन रिप्लेसमेंट वेन एवर रिक्वायर्ड। और अगर अर्ली डायग्नोसिस भी अभी बहुत है, मतलब आप BMD बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट रेगुलरली करो, 2-3 साल में जरूर करो, मेनोपॉज के बाद तो हमेशा करो 2-3 साल में। अगर अर्लियर ऑस्टियोपीनिया, मतलब एकदम थोड़ी सी पहली वाली कमजोरी अगर दिखे, तो फिर बहुत अच्छे मेडिसिन हैं अभी रिवर्स करने के लिए। क्योंकि बेसिकली हमें ये चाहिए कि हम जब एज में बढ़ जाए तो गिर के फ्रैक्चर ना हो, या कभी कभी स्पॉन्टेनियस फ्रैक्चर्स भी होते हैं, अपने आप से ही फ्रैक्चर हो
0: तो
1: जाता
0: शरीर
1: है।
0: इतना मजबूत रहना चाहिए
1: चाहिए, क्योंकि
0: यहां।
1: अभी एज एक्सपेक्टेंसी बहुत है, मोस्ट पीपल आर
0: अगर लंबा
1: लिविंग।
0: जीना
1: हाँ,
0: है तो
1: लंबा है,
0: स्वस्थ जीना है।
1: लंबा जीना चाहिए और स्वस्थ भी जीना चाहिए, सिर्फ लंबा नहीं, अच्छा जीवन चाहिए।
0: बिल्कुल सही है। आगे की बातें करते हैं, यहां एक गाना सुनते हैं तो बताइए कि किस गाने की गुजारिश करना चाहती हैं आप।
1: गुजारिश की गुजारिश करूंगी।
0: क्या बात है, तो चलिए ये गाना सुना जाए
1: यस,
0: यहां पर। तेरा जिक्र है
1: तेरा
0: या
1: जिक्र है,
0: इत्र है,
1: करेक्ट,
0: क्या गाना है सुनते
1: बहुत
0: हैं।
1: ही सुंदर।

0: देखिए, गाना हमने सुना और ये गाना सुन के मन थोड़ा रिलैक्स हो गया। ये जो जीवन की भागदौड़ है, इस भागदौड़ में हम सामान्य इंसान और स्पोर्ट्समैन अपने शरीर को कितना ज्यादा ओवरलोड करते हैं, कितना ज्यादा स्ट्रेस करते हैं कि उनको फिजियोथेरेपिस्ट की शरण में जाना पड़ता है।
1: बाकी फिर सेम हो गया कि हम बहुत बॉडी को अब्यूज ही करते हैं,
0: जी
1: एक तरफ से उसे बहुत आराम देते हैं, जैसे कि बॉडी हमारा बना है एक्टिविटी के लिए, मूवमेंट इज द नेसेसिटी फॉर लाइफ। एक्चुअली ऐसा है कि हमारा ये जो फिजिकल बॉडी है वो समझो हार्डवेयर है अपना, और उसके पीछे एक फिजियोलॉजी है, मतलब जो यू कैन से ब्यूरोक्रेसी है कि उसको चलाना कैसे है, और उसके ऊपर बैठा है सॉफ्टवेयर विच इज आर ब्रेन। तो ये तीनों मिलके बॉडी चलती है पूरे लाइफ, और उसको चलाने के लिए एक तरीका है जो इनबिल्ट है। ये सब बोलते हैं कि बॉडी इज अ मशीन, आई मीन ये मशीन से भी बेहतर है, बट ये है ऑल सेड एंड डन समथिंग लाइक अ मशीन। उसको चलाने का एक तरीका है, और उस तरीके का अंडरलाइंग करंट पूरा एक्टिविटी है।
0: बिल्कुल,
1: अगर
0: जिस
1: वो
0: पर आप सबसे ज्यादा जोर दे रही
1: वो
0: हैं।
1: ही है जो सब चलाता है,
0: जी
1: अगर एक्टिविटी नहीं है तो सब जो हार्मोन सिस्टम है या नर्वस सिस्टम है या मस्कुलर सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो भी सब सिस्टम्स इवन कार्डियक, सब कुछ अलग तरह से चलता है, और उसमें थोड़ी सी खराबियां आती हैं धीरे धीरे। देयर इज अनदर प्रिंसिपल कि जो बॉडी है अपनी वो एक इक्विलिब्रियम रखती है हमेशा, और जब भी हम एक्स्ट्रा कुछ करते हैं, अगर एक्सरसाइज करते हैं, आपको मालूम है हार्ट रेट बढ़ेगी, थोड़ा स्वेटिंग होगा, बॉडी हीट बढ़ेगी, दैट मींस वो इक्विलिब्रियम बिगड़ गया। फिर उसको वापस लाना है, वो होम्योस्टेसिस होता है, मतलब जो नॉर्मल स्टेट है उस पे वापस लाना उसको, वो बॉडी के इनबिल्ट ही है, वो
0: इसीलिए
1: मैकेनिज्म
0: एक्सरसाइज के
1: भी
0: बाद रिलैक्सेशन।
1: रिलैक्स

0: रिलैक्सेशन की जरूरत है, तभी सब चलता है
1: जी।
0: एक ये करना है, एक वो करना है, उसके लिए हार्मोन्स की जरूरत होती है। थोड़े हार्मोन्स ऐसे हैं जो एक्सरसाइज को अलाउ करते हैं और थोड़े हार्मोन्स ऐसे हैं जो रिजुविनेशन को अलाउ करते हैं, वो वापस लाने का। तो ये दोनों चीजें जरूरी है कि आप सही तरह से एक्टिव रहो, सही तरह से रिलैक्स करो, इनफ आराम करो, स्लीप। एंड ये भी हमें याद रखना है कि जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, वो होम्योस्टेसिस एक जगह से हिलते रहता है दूसरी जगह पे।
1: Okay.
0: मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा आप वही स्थिति पे वापस आओगे। अगर आप 5 साल एज में बढ़ गए तो आपका होम्योस्टेसिस अलग जगह पे रहेगा,
1: तो वो एक्टिविटी चेंज
0: हो
1: रही है।
0: अभी हम ऐसे हो गया है कि सब सोचते हैं कि एज इज जस्ट अ नंबर, एक्चुअली है नहीं। फिजियोलॉजिकली एज इज समथिंग, उसको थोड़ा रिस्पेक्ट करना चाहिए और हमारी एक्टिविटी थोड़ी चेंज करनी चाहिए। एक्टिविटी इज इम्पॉर्टेंट, बट हाउ मच यू डू इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो अगर ये हम सब मेंटेन करें तो हमारी जरूरत नहीं पड़ेगी फिजियोथेरेपिस्ट की। अगर हम नियम से चले कि क्या खाना है, कितना एक्टिव रहना है और कितना आराम करना है,
1: ये बड़ा मुश्किल लगता है कि फिजियोथेरेपिस्ट
0: मुश्किल ही है
1: ना पड़े।
0: नहीं, मुश्किल ही है, इसीलिए हमारी जरूरत पड़ती है। और कोई पूछेगा अगर ये इतना सिंपल है तो फिर आपकी जरूरत क्यों है
1: जी,
0: तो ये बताने के लिए हमारी जरूरत है।
1: क्या बात,
0: क्योंकि अदरवाइज ये समझाने के लिए मुझे तो कंसल्टेशन में आधा टाइम मैं आई थिंक काउंसलिंग ही करती हूँ।
1: जी जी बिल्कुल,
0: बाकी के सेशन में हम लोग जो करना है ट्रीटमेंट और एक्सरसाइज वो करते हैं। स्पेशली जो कंसल्टेशन सेशन है फर्स्ट वाला, उसमें तो ऑलमोस्ट फुल सेशन, क्योंकि क्वेश्चन आंसर सेशन ही होता है।
1: लोग बहुत सारे सवाल लेकर आते हैं।
0: एक्चुअली जरूरत इसलिए है क्योंकि हम नहीं देखभाल कर रहे हैं बॉडी की, या तो रेस्ट ही करते रहते हैं। कभी फिर डॉक्टर बोलता है कि ब्लड शुगर बढ़ गया है, ये बढ़ गया है, अभी एक्सरसाइज करो, तो सीधा जाके मैराथन के लिए एनरोल करते हैं या टेनिस क्लास चालू करते हैं,
1: जो दोनों एक्सट्रीम है।
0: एक्सट्रीम है।
1: एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आप क्या क्या करती हैं, लोगों को समझाने के बाद वाली जो प्रोसेस है उसमें कितनी एक्सरसाइज है, कितनी मशीनों की मदद है?
0: मेरा थोड़ा अलग से सिस्टम है मेरे क्लिनिक में, मतलब जो अभी आई थिंक मेनी पीपल आर डूइंग, बट मेरा ग्रेजुएशन ही बहुत पहले, लाइक आई ग्रेजुएट 1989 और तभी तो। लेट मी टेक यू टू हिस्ट्री ऑफ फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी इंडिया में आई है 100 साल अभी हुए नहीं है, इट इज अबाउट 75-76 years। सो व्हेन आई जॉइंड 84 में, मैंने ज्वाइन किया 89 में मेरा खत्म हुआ, तभी फिजियोथेरेपी बहुत नई थी। और ये जो अभी सर्जरीज हैं वो भी तभी नहीं थे, मतलब जो अभी आर्थ्रोस्कोपिक, जैसे मैंने ACL बोला, रोटेटर क्रफ, जो छोटी इंसिजन से सर्जरी होती है, वो 1985 या कुछ से चालू हुई है। मतलब मैं तभी थी कॉलेज में, सर्जरीज उतने तभी नहीं थे। रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट, नी रिप्लेसमेंट, ये भी 1980s में आई है, वो भी एकदम नई नई थी तभी। अभी जो जितने सर्जरीज होते हैं और जितने स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन होता है, मतलब जब भी मैं कॉलेज में थी तभी अगर कोई साइक्लिस्ट रास्ते पे दिखा, मतलब दिखते थे तभी बहुत, तो वो एक्सरसाइज के लिए साइकिलिंग नहीं कर रहा था, वो एक्चुअली जरूरत के लिए कर रहा था। जो अभी बढ़ गया है ये सब, इसके लिए ये सब आए हैं। तो बट मेरा थॉट प्रोसेस तभी से ऐसे ही था कि जो इंजरी और पेन और सब है, और दूसरी साइड है एक्सरसाइज और सब, तो उसके बीच वाला ब्रिज हम लोग बन सकते हैं। तो उसी तरह से मेरा क्लिनिक चलता है। पहले पेन मैनेजमेंट होता है। अगर आप आए, समझो आपको पीठ में पेन है, तो फर्स्ट स्टार्ट होता है पेन मैनेजमेंट से। मेरे ख्याल से पेन बहुत जल्दी मैनेज हो जाना चाहिए
1: जी।
0: अगर वो अक्यूट पेन है, अभी आया है, तो उसको मैनेज कर सकते हैं बहुत जल्दी से। अगर पेन मैनेज जब भी होता है तो पहले 2-3 दिनों के अंदर ही हम थोड़े एक्सरसाइज चालू करते हैं उसको सपोर्ट करने के लिए। और जैसे समझो 1 घंटे का सेशन है, तो पहले मे बी 45 मिनट्स उसमें से पेन मैनेजमेंट में जाएंगे, फिर धीरे धीरे वो कम होके पेन का, समझो लास्ट 10 मिनट ही पेन मैनेजमेंट करेंगे, ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे। क्योंकि एक्सरसाइज, वी कॉल इट रिहैबिलिटेशन, मतलब मेकिंग दैट पर्सन फंक्शनल अगेन, जो भी फंक्शन
1: जी।
0: और वो जो हमारे एक्सरसाइज है वो ऐसे डिजाइन होते हैं, एज अप्रोप्रिएट, फंक्शन अप्रोप्रिएट, मतलब आप कुर्सी में बैठ के कंप्यूटर का काम करने वाले हो, या आप कोई मेडिकल रेप, या आप कोई सेल्स के डिपार्टमेंट हो जहां आपको ज्यादा चलना पड़ता है, या आप हाउसवाइफ हो जहां आप क्लीनिंग करोगे या कुछ भी करोगे, या आप स्पोर्ट्समैन हो, या इवन वीकेंड स्पोर्ट्समैन हो, अगर आप ऑफिस में काम करते हो बट वीकेंड

0: में आप स्पोर्ट्स खेलते हो तो आपको उस तरह से एक्सरसाइज कराना चाहिए जो एज अप्रोप्रिएट, फंक्शन अप्रोप्रिएट एंड सूटिंग टू योर नीड्स, सो इंडिविजुअलाइज्ड होता है।
1: बिल्कुल,
0: तो ये प्रोसेस होती है। अगर सर्जिकल है, पोस्ट सर्जिकल है, तो उसका एक प्रोटोकॉल होता है, फिर वो प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है।
1: जी, तो मरीजों को ये बताइए कि कितना ज्यादा मायने रखती है फिजियोथेरेपी, क्योंकि एक चलन जो अमूमन हमारे आसपास देखा जाता है कि जब तक आराम मिला, तकलीफ थोड़ी कम हुई, तो छुट्टी मारो, कौन जाएगा फिजियोथेरेपिस्ट
0: हाँ,
1: के पास।
0: बट अगर मैंने देखा है कि आप जितना बात करते हो ना, जितना समझाते हो या एक्सप्लेन करते हो पेशेंट को, उतना उनका इंटरेस्ट बढ़ता है।
1: जी
0: जरूरी तो है, जैसे मैं बोलती हूँ, पेन मैनेज हो जाता है, पेन के लिए इतनी तकलीफ नहीं करनी पड़ती है। एंड लाइक यू करेक्टली सेड, थोड़े दिनों में पेन चला जाता है, फिजियोथेरेपी का वर्क इज ओवर एक्चुअली। बट जो प्रिवेंटिव है कि नेक्स्ट एपिसोड नहीं होना चाहिए, या ये बार बार नहीं होना चाहिए, या आपको समझना चाहिए कि आपकी बॉडी क्या कर सकती है, क्या नहीं करना चाहिए। एंड अगेन लाइक आई सेड, एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी, इट इज इम्पॉर्टेंट कि आप एक्सरसाइज करो फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग। जो बॉडी का नॉर्मल फंक्शन है वो मेंटेन करने के लिए एक्सरसाइज इज इम्पॉर्टेंट। तो वो कैसे करना है वो सीखने के लिए हम ज्यादा काम करते हैं, सिखाने के लिए, एंड टू क्रिएट इंटरेस्ट इन यू फॉर एक्सरसाइज। उसके लिए बात करना बहुत जरूरी है। उसका जितना आप इम्पोर्टेंस समझाओगे, पेशेंट का इंटरेस्ट उतना ही बढ़ेगा, और उनके लैंग्वेज में उन्हें जैसे समझे वैसे एक्सप्लेन करना चाहिए।
1: जी,
0: जैसे मैंने बोला, इंजरी कहाँ है, आपको कैसे उसको प्रोटेक्ट करना है, क्यों करना है प्रोटेक्ट। सो आई कॉल इट एम्पावरिंग द पेशेंट। अगर आप एम्पावर करोगे तो वो खुद से जान जाएंगे। और मेरा अदर थिंग इज कि उनको एम्पावर इस तरह से करो कि वो अपने आप से एक्सरसाइज कर सके। हमारे पास आने की जरूरत नहीं है ज्यादा।
1: जी जी,
0: बट ऑफकोर्स लर्निंग प्रोसेस के लिए एक महीना या दो महीना जाता है, क्योंकि एक्सरसाइज ऐसी चीज है कि आपने अगर थोड़े अलग तरह से की तो वो आपके लिए हार्मफुल भी हो सकती है। सो वो सिखाने में थोड़ा टाइम जाता है, पर उसके बाद बार बार आने की जरूरत नहीं है।
1: इसका मतलब ये है कि अगर आपको जरूरत है फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाने की, तो पूरी शिद्दत के साथ जाएं और जो कुछ सिखाया जा रहा है उसको सीख के प्रिस्क्राइब्ड टाइम तक पूरा करें।
0: करें और करते रहे उसके बाद।
1: हाँ,
0: ये लाइफ लॉन्ग है, लाइफ लॉन्ग है। जैसे मैं बोलती हूँ, डाइट एंड एक्सरसाइज, उसको टाइम मत रखो। ऐसा मत बोलो कि मैं दो महीने डाइट पे हूँ, मैं दो महीने एक्सरसाइज के लिए, फिजियोथेरेपी के लिए जाती हूँ या जाता हूँ। लाइफ लॉन्ग है, हमारे पास आने की जरूरत नहीं है, बट एक्सरसाइज लाइफ लॉन्ग है।
1: जी, अब हम उन बातों पर आते हैं जहां आपने कुछ बहुत ही मशहूर हस्तियों का इलाज किया है, बीमारियों से, चोटों से, तो उससे जुड़े कुछ अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए।
0: मैंने फिजियोथेरेपी क्यों ज्वाइन किया, तभी तो कुछ उसका यही नहीं था, मतलब नोबडी न्यू कि फिजियोथेरेपी क्या है।
1: जी,
0: मुझे मेडिसिन करना था, MBBS, और उसके बाद MD और MS नहीं मिला, एक दो मार्क से छूट गया।
1: अरे रे,
0: तो फिर मैं फिजियोथेरेपी में आई और मुझे तभी कुछ मालूम नहीं था क्या है ये। जैसे मैंने बोला, मैंने ज्वाइन किया KEM हॉस्पिटल, इट वॉज द फर्स्ट हॉस्पिटल इन मुंबई विच ऑफर्ड, एंड इन 84, जैसे मैंने अभी बोला, मैंने ये डिसाइड किया एक दो साल के बाद, समझने के बाद कि ये क्या है, मैंने ये डिसाइड किया कि ये जो गैप है, तभी स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी करके कुछ नहीं था, स्पोर्ट्स साइंस ही नहीं था 84-85 में, कुछ नहीं था। फिर भी मैंने ऐसे सोचा कि ये जो सब्जेक्ट्स है वो इतने अलाइंड है इस चीज के लिए कि जो लोग एक्सरसाइज करना चाहते हैं या स्पोर्ट्स खेलना चाहते हैं, तो उन्हें हम ब्रिज बन सकते हैं उनके पेन और इंजरी और परफॉर्मेंस के बीच में। तो उस तरह से मैंने बहुत सारे कोर्सेज किए, क्योंकि था नहीं एक कोर्स, तो मैंने योगा टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स किया, टेपिंग, स्पोर्ट्स टेपिंग, बहुत सारे कोर्सेज किए मैंने, एक्चुअली एक्सरसाइज के बहुत सारे किए, एडवांस्ड वेट ट्रेनिंग, कोर स्टेबिलिटी ऑन रीबॉक बॉल, एंड बहुत सारे किए। तो मैं प्रिपेयर्ड थी कि कभी ऐसी जरूरत पड़े, और मैंने मेरा क्लिनिक भी वैसे ही डिजाइन किया कि ज्यादा एक्सरसाइज बेस्ड एंड लॉन्ग टर्म रिहेबिलिटेशन। और आई डोंट नो हाउ लक के वजह से, मेरे आसपास के लोगों के और ऑफकोर्स मेरे काम के वजह से भी, थोड़े लोग जो एक्सरसाइज करते हैं, स्पेशली एक्टर्स जिनको ऐसे बॉडी बनानी है किसी रोल के लिए, और जो एक्सरसाइज कर रहे हैं वो अचीव करने के लिए, वो लोग और स्पोर्ट्समैन थोड़े थोड़े मेरे पास आने लगे। मैं ये बोलना चाहूंगी कि रेसलर्स, जो बहुत पुअर रेसलर्स हैं, उनके साथ मैंने बहुत पहले से काम किया है,
1: अरे गजब।
0: दंगल बहुत बाद में आई, उसके मच बिफोर दैट मैं 2002 से लोकल महाराष्ट्र के और नेशनल लेवल रेसलर्स के साथ मैंने फ्री में काम किया है। मेरे क्लिनिक में आते थे। एक्चुअली नाम आपने पूछा है, मैं नाम थोड़े बड़े वाले बोल सकती हूँ, बट ये लोग जो हैं उनके साथ मैंने इतना काम किया है। और इवन क्रिकेटर्स जो लोअर लेवल के अभी भी आते हैं, अभी भी एक था जो रोटेटर कफ इंजरी था उसको, ही इज ओनली 20-21, अभी कोई टीम में नहीं है, जिसे एक जरूरत है उनको मैं देती हूँ ट्रीटमेंट। तो बड़े नाम बोलो तो एक तो सचिन तेंदुलकर,
1: बाप रे।
0: हाँ, आई हैव बीन ट्रीटिंग हिम फ्रॉम 2002 टू 2012, मतलब क्वाइट अ लॉट, 10 इयर्स। जब भी, बिकॉज स्पोर्ट्समैन का ये है कि वो टीम के साथ ट्रैवल करते हैं तो उनका थेरेपिस्ट उधर होता है
1: जी।
0: मैं कभी उसमें नहीं थी, बट जब भी इंजोर होते हैं तो घर पे होते हैं, तो फिर उन्हें कोई और लगता है। और अगर एक पे भरोसा आ जाए तो फिर वही होता है। तो अनऑफिशियली आई वॉज नॉट विद बीसीसीआई, बट बीसीसीआई ऑलवेज पेड मी फॉर सचिन्स ट्रीटमेंट्स। आई हैव ट्रीटेड सचिन फ्रॉम बैक इंजुरीज, मेनली द टेनिस एल्बो,
1: जो बहुत ही मशहूर
0: टेनिस एल्बो एंड शोल्डर। या सो या ही इज बीन अ प्लेजर। और इतना हम्बल कोई वो लेवल पे हो ही नहीं सकता है,
1: क्या
0: हो ही नहीं सकता है, कोई भी नहीं। मतलब एक बार जब मैं बहुत, मतलब आई थिंक नाउ आई एम प्रिटी एडवांस्ड इन माई फील्ड, बट एट दैट टाइम आई वॉज अ नो बडी एंड ही वॉज एट द टॉप। तभी भी एक बार मुझे याद है, मैं उसके घर में रुकी हुई थी, कोई अपॉइंटमेंट था उसके साथ, और उसका मुझे मैसेज आया कि मैं 5 मिनट लेट होने वाला हूं, आई एम वेरी सॉरी। और एक्चुअली इट वुडंट हैव मैटर टू मी, बट वो इतना टाइम का पंक्चुअल दैट इवन ही थॉट कि आई शुड मैसेज।
1: वाह,
0: बहुत ही सहम्बल आदमी है। एंड प्रूफ इज दैट ही प्लेड फॉर दोस 10 इयर्स दैट आई वाज ट्रेनिंग, ही प्लेड वेरी वेल।
1: क्या बात है।
0: नो, मुझे ये बोलना था कि ये प्रोफेशन मैंने चुना नॉट बाय चॉइस बट बाय चांस, बट इसमें से प्लेजर मुझे बहुत मिला है। ऋतिक रोशन, आमिर खान, सचिन तेंदुलकर, शिल्पा शेट्टी, बहुत बहुत नाम है, बड़े वाले भी और छोटे विक्ट्रीज भी बहुत हैं।
1: क्या बात है। तो जब बड़े स्टार्स को ट्रीट करती हैं तो कैसा वो क्या फीलिंग
0: होती
1: है?
0: मुझे कुछ अलग नहीं लगता है। नहीं, सच नहीं लगता है। इट्स अ ह्यूमन बॉडी एंड इट्स अ सीन, आई रियली डोंट फील, बट इट फील्स गुड। कभी शिल्पा शेट्टी डांस करके बताएं कि मुझे ये मूव करना है, इधर दुख रहा है। कभी सचिन तेंदुलकर 10 स्ट्रोक मार के दिखाएं कि ये बैटिंग में इधर दुखता है, ये ऐसा दुखता है। कभी ऋतिक रोशन पुशअप्स करके दिखाएं
1: कि ये प्रॉब्लम हो रही है,
0: तो अच्छा लगता है। दीज आर द पर्क्स, साइड पर्क्स,
1: ऑफकोर्स,
0: बट नो, इन रियालिटी नथिंग इज डिफरेंट
1: जी। एवरीबॉडी, चूंकि इन तमाम लोगों की हो रही है जो मशहूर लोग हैं जिन्होंने आपसे सलाह,
0: पर मशहूर लोगों से बहुत ज्यादा मैंने रेगुलर लोगों से, और मुझे तो प्लेजर उधर से ही मिलता है। बस वो उनके प्रॉब्लम्स कोई सॉल्व नहीं कर सकता है, यू नो, लाइक दीज पीपल आई नो, मैंने नहीं किया तो कोई और करता था। आई एम एक्चुअली लकी दैट आई केम इन कॉन्टेक्ट विद देम, बट ऑल दी अदर्स, सो मेनी थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ओवर 37-38 इयर्स, वो ही प्लेजर देता है।
1: क्या बात है। चूंकि जिक्र हुआ है ऋतिक रोशन और आमिर खान का, तो इन दोनों में से किसका गाना सुनवाया जाए?
0: अभी आमिर खान का सुनाइए।
1: ठीक है, चूंकि बात दंगल की हो रही है,
0: दंगल, तो
1: दंगल का,
0: यस, का
1: गाना सुनवाते हैं, नैना।

0: डॉक्टर साहब, इतनी सारी बातें स्पोर्ट्स इंजरी की और नॉर्मल इंजरी की हुई, और आपने एक बात पर बहुत जोर दिया कि एक बहुत लंबा समय ऐसा था जब फिजियोथेरेपी पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। आज ऐसा समय है जब फिजियोथेरेपी जिंदगी का एक बहुत जरूरी हिस्सा बन गई है, पर फिर भी क्या आपको लगता है कि एक आम इंसान फिजियोथेरेपी को लेके थोड़ा कम सीरियस है? इस तरह की चीजें आपने देखी?
1: मैं ये कहूंगी कि बहुत लोगों को ये एक्सपेंसिव हॉबी लगती है।
0: एक्सपेंसिव हॉबी?
1: क्योंकि पेन इज अ रियल थिंग
0: जी,
1: बट उसके बाद मुंबई जैसे शहर में रह के कम्यूटिंग इज सो डिफिकल्ट, टाइमिंग्स आर डिफिकल्ट, उसमें आना है, रोज आना है या हफ्ते में 3 दिन आना है, फीस भरनी है, ये सब थोड़ा मुश्किल लगता है आम आदमी के लिए, इसलिए बोलूंगी मैं। अदरवाइज मुझे तो ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि जो हमारे पास आते हैं वो क्वाइट अ फ्यू टाइम्स आते ही रहते हैं
0: जी।
1: उनको हाँ महत्व अगर ठीक से समझे तो वो आते हैं, बट फिर भी ये मैं बड़े शहर की बात कर रही हूँ
0: जी,
1: मुंबई की बात कर रही हूँ, मे बी मुंबई, बैंगलोर, कैलकाटा।

0: लोगों को।
1: जी
0: फिजियोथेरेपिस्ट का पॉपुलेशन भी वो जगहों पे कम होगा,
1: जी तो
0: सब इधर ही बड़े शहरों में भरे पड़े हैं।
1: ऐसे शहरों में जहां लोग हमें सुन रहे हैं, छोटे छोटे शहर, लोगों को छोटी छोटी फिजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं और जो जिनको फिजियोथेरेपी कहा जाता है और जो इस बात को सीरियसली नहीं लेते हैं, एज एन एक्सपर्ट फिजियोथेरेपिस्ट आप क्या सलाह देना चाहेंगी जो बहुत ही कॉमन लोग हैं, छोटे शहरों के लोग हैं और बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, डॉक्टर ने कहा कि फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाइए, ये प्रोटोकॉल आपको करना है,
0: मैं वो उसको सलाह दे के अगर उनके पास कोई हो उधर तो ही तो फायदा है, बिकॉज नहीं तो। और आप बोल रहे हैं छोटी छोटी चीजें, वो है एक छोटी चीजों की थोड़ी बातें कर दी अभी, बट बड़ी चीजें भी होती है लाइक पैरालिसिस ऑफ डिफरेंट टाइप्स,
1: जी
0: हेमिप्लीजिया,
1: बल्कि सर्जरी के बाद भी बहुत ध्यान रखने की जरूरत है।
0: हाँ, बहुत
1: सीरियस मैटर है,
0: बहुत है। अगर टाइमली फिजियोथेरेपी नहीं किया तो फिर वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, डिफॉर्मिटीज आती हैं पैरों में या हाथों में, तो फिजियोथेरेपी एक्चुअली बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और मैं लोगों को कुछ सलाह दे नहीं सकती अगर उनके पास नहीं है फिजियोथेरेपिस्ट, बट अगर है तो सच में लाइफ बदल जाती है, बिकॉज ये जो सर्जरीज हैं वो काफी नहीं है। सर्जरी इज इम्पॉर्टेंट समटाइम्स, बट उसके बाद वाला फिजियोथेरेपी नहीं किया तो फंक्शन नहीं आता है। मतलब जो हमें चाहिए वो एंड रिजल्ट, फंक्शन, वो ही नहीं आता है।
1: इसीलिए इसको रिहैबिलिटेशन कहते हैं।
0: यस, इट इज रिहैबिलिटेशन एंड इट इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। इट शुड बी ट्राइड कि हर छोटी जगह पे भी फिजियोथेरेपिस्ट हो, और क्योंकि कई चीजें छोटी है समझो चल भी जाएंगी,

0: करेंगे तो, बट कई चीजें ऐसी हैं कि आपका लाइफ ही बदल जाएगा, अगर नहीं किया तो खराब हो जाएगा, किया तो मच बेटर हो जाएगा।
1: जी, बुजुर्गों में फिजियोथेरेपी
0: यस,
1: कितनी डिफिकल्ट होती है?
0: बहुत जरूरी है, बहुत बहुत बहुत जरूरी है। एज के वजह से जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम आर बिकॉज ऑफ मसल वीकनेस।
1: जी
0: मसल इज प्रोग्राम्ड, जैसे मैंने बोला, ब्रेन हॉर्मोन्स ये सब डिसाइड करते हैं कि बॉडी फंक्शनिंग कैसे करेगी। अप टू 30 ईयर्स बॉडी इज ग्रोइंग, मतलब आई विल से टिल 20 इट इज ग्रोइंग। 20 to 40 थोड़ा मेंटेन होता है स्टेटस को, और 40 के पास थोड़ा सा डिटेरियरेशन चालू होता है। ये हमारा सेट प्रोग्राम्ड है, बॉडी प्रोग्राम्ड है इस चीज के लिए। मसल लॉस बहुत जल्दी हो जाता है, मतलब अगर हम इनएक्टिव है तो 30 के बाद ही मसल लॉस चालू हो जाता है। पहले 5-5% पर डेकेड, देन 10-15-20%, 70 और 80 एज के बीच में तो ड्रास्टिकली कम हो जाता है, 20-30% का लॉस होता है। तो वीकनेस बढ़ जाता है, उसके बाद स्टेयर्स अगर आपको चढ़ने हैं तो डिफिकल्टी होती है ऊपर चढ़ने में, कुर्सी से कभी उठने में तकलीफ होती है, तो सोशल एक्टिविटी कम हो जाती है, बोन लॉस उसके वजह से होता है, एज रिलेटेड अदर बीमारियां आती है बिकॉज एक्टिविटी कम हो जाती है हार्ट के। तो मसल मेंटेन करने के लिए एक प्रिवेंटिव प्रोग्राम जीरियाट्रिक पॉपुलेशन के लिए बहुत ही जरूरी है।
1: जी
0: पेन तो होता ही है, पेन मैनेजमेंट के लिए भी लगता है, बट मेनली मसल लॉस इज द बिगिनिंग ऑफ एवरी प्रॉब्लम ओल्ड पीपल हैव, इंक्लूडिंग फॉलिंग एंड हैविंग फ्रैक्चर्स।
1: वो तो बहुत ही
0: फ्रैक्चर
1: कॉमन
0: के
1: चीज।
0: उसकी डेंजर्स ये हैं कि गिर के आपका हेड इंजरी और हिप इंजरी, दीज आर द टू डेंजरस थिंग्स विच कैन हैपन टू ओल्डर पीपल, दैट विल मेक देम बेड रिडन और ऑल्सो कैन बी फेटल। सो
1: बिल्कुल
0: वो सब मसल पे डिपेंडेंट है, क्योंकि बैलेंस और हम जो भी बोलते हैं वो सब मसल से चालू होता है।
1: जी, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गया। और मुझे ये लगता है कि बुजुर्गों की इंजरी और उनके पेन मैनेजमेंट और जो आपने कहा कि प्रिवेंटिव जो उपाय हैं
0: बहुत
1: वो
0: ही
1: बहुत
0: जरूरी है,
1: जरूरी
0: और
1: हैं।
0: वो प्रिवेंशन जल्दी ही चालू होना चाहिए, बट इट्स नेवर टू लेट।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: मैं बोल रही थी, हमारे पास बहुत सारे बुजुर्ग आते हैं और हम होम विजिट्स भी उनको प्रोवाइड करते हैं। एक तो 95 ईयर ओल्ड थे, जो 80 के एज से हमारे पास एक्सरसाइज कर रहे थे रेगुलरली, 2 or 3 times a week यूज टू कम टू क्लिनिक, एंड 95 ही पास्ड अवे। 1 day before that ऑल्सो ही हैड रिक्वेस्टेड होम विजिट फॉर एक्सरसाइज।
1: क्या बात है, इतना
0: सो सम
1: ध्यान रखने
0: पीपल आर
1: वाले लोग भी
0: रियली।
1: हैं।
0: और पंडित जसराज जी आते थे हमारे पास,
1: वाह वाह
0: हाँ,
1: वाह,
0: और हमारे
1: क्या
0: क्लिनिक
1: बात
0: में
1: है,
0: गाना गाते थे
1: क्या बात है,
0: ट्रेडमिल पे चलते चलते।
1: क्या क्या बात है, क्या बात है। जिस स्टूडियो में यहां हम बातचीत रिकॉर्ड कर रहे हैं, यहां भी
0: हाँ, वो
1: हम
0: भी 10 साल
1: पंडित
0: आए
1: जसराज
0: हमारे
1: को
0: पास
1: रिकॉर्ड कर
0: जस्ट
1: सके।
0: एक्सरसाइज के लिए, कार्डियक रिहैब, बट ही वेंट ऑन टू एक्सरसाइज।
1: गजब, क्या बात है। चलते चलते एक गाना सुन लिया जाए, उसके बाद आगे की बात करते हैं। आपने चूंकि पंडित जसराज का जिक्र किया है, तो उन्होंने एक बहुत ही शानदार गाना गाया था, 1920 नाम की एक फिल्म है, उसमें वादा तुमसे है वादा,
0: या
1: वो गाना सुनते हैं थोड़ा सा।
0: यस।

0: डॉक्टर, आप विविध भारती के स्टूडियो में आई और इतनी सारी बातें आपने की हैं, चलते चलते एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आम आदमी से आप वो कौन सी बात कहना चाहेंगी जो इस पल सबसे ज्यादा जरूरी है?
1: एक्सरसाइज करते रहो,
0: जी
1: एब्सोल्युटली करते रहो, शुगर और सॉल्ट अवॉइड करो।
0: जी
1: जब भी पेन हो तो किसी को कंसल्ट करो, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। अर्ली डिटेक्शन एंड अर्ली सॉल्विंग द प्रॉब्लम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत लगे तो जरूर जाना चाहिए, बिकॉज एट अ वेरी सिंपल लेवल मेनी मेनी प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व।
0: बहुत जरूरी सूत्र आपने दिए हैं कि ये तमाम चीजें माने तो बहुत सारी
1: एक्सरसाइज
0: प्रॉब्लम्स।
1: एंड डाइट इज, एंड आई ऑलवेज टेल पीपल दैट एक्सरसाइज एक्चुअली मेडिसिन से भी डिफिकल्ट है प्रिस्क्राइब करना। हर एक के लिए इंडिविजुअलाइज होना चाहिए, क्योंकि मेडिसिन में ना एक आता है, उसके पीछे पर्ची आती है जहां पे लिखा रहता है डोसेज, एज रिलेटेड, वेट रिलेटेड, ये वो। एक्सरसाइज में बहुत सारा, हर दिन भी बदलना पड़े तो बदलना चाहिए। अगर
0: जी
1: आप टायर्ड हो तो नहीं करना चाहिए ज्यादा, थोड़ा हल्का वॉक करो। जिस
0: जी
1: दिन एनर्जेटिक लगता है उस दिन ज्यादा करो, क्योंकि उसका रिकवरी उस तरह से अच्छा होगा।
0: बिल्कुल,
1: सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एडवाइस लेके एक्सरसाइज करो।
0: एडवाइस लेके एक्सरसाइज करो, ये आज के इस प्रोग्राम की बॉटम लाइन है।
1: यस
0: डॉक्टर हर्षदा, बहुत

0: बहुत बहुत शुक्रिया कि विविध भारती के स्टूडियो में आके आपने इतनी सारी इंपॉर्टेंट बातें बताई। आगे फिर आइएगा और फिर हमारे श्रोताओं से
1: थैंक यू वेरी मच,
0: जरूरी बातें बताइएगा।
1: आई एंजॉयड, थैंक यू,
0: शुक्रिया।
2: सेहतनामा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर हर्षदा राजाध्यक्ष से यूनुस खान की बातचीत। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, संपादन सहयोग काजल भदरगे, इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

एफएम 102.7 पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हैं। युवा साथी सुने अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ खुश और स्वस्थ होंगे, साथ ही इस बारिश के मौसम में अपने स्वास्थ्य का खास ध्यान दे रहे होंगे, और देना भी चाहिए क्योंकि इस बारिश के मौसम में थोड़ी सी लापरवाही हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए और साथ ही सुनते रहिए अपना वन ऑफ द डेली यूथ प्रोग्राम युवाणी, जो लेकर हाजिर है आपकी रेडियो हम सफर एकता। तो फ्रेंड्स, हर बार की तरह आज ही बातें करेंगे खास विषय से जुड़ी, साथ में सुनेंगे प्यारे प्यारे सॉन्ग्स भी, जिसके लिए आप जुड़े रहिए अपनी रेडियो हम सफर के साथ। दोस्तों, जब तपती गर्मी के बाद आसमान में काले काले बादल छा जाते हैं, हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू घुल जाती है और बारिश की पहली बूंद धरती को छूती है, तो ऐसा लगता है कि जैसे प्रकृति स्वयं कह रही हो, मैं फिर लौट आई तुम्हारी खोई हुई हरियाली वापस लाने। साथियों, बारिश के ये बूंदें केवल आसमान से धरती पर नहीं उतरती, ये उतरती हैं सूखी मिट्टी के प्यास बुझाने, मुरझाए पत्तों में फिर से जान भरने, नदियों को जीवन देने और प्रकृति के चेहरे पर मुस्कान लौटाने। फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसी चर्चा करेंगे जो सिर्फ वर्षा ऋतु की सुंदरता की बात नहीं, बल्कि हमें याद दिलाती है कि बारिश प्रकृति की उपहार है और हरियाली उसकी सबसे खूबसूरत पहचान। गर्मी के दिनों में जब सूरज अपनी तपिश से धरती को झुलसा देता है, पेड़ पौधे की पत्तियां मुरझाने लगती हैं, तब पोखरे सूखने लगते हैं, तब हर कोई आसमान की ओर देखता है, और फिर बारिश की बूंदें जब पेड़ों की पत्तियों पर गिरती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने हरे पत्तों पर मोतियों की लड़ियां सजा दी हों, और किसान उनके लिए तो ये बारिश और एक उपहार की तरह होता है। उनके चेहरे पर एक अलग सी चमक दिखाई देती है, क्योंकि बारिश उनके लिए केवल पानी नहीं है, बारिश उनके लिए खेत की उम्मीद है, उनके परिवार की खुशहाली है और उनके भविष्य का सपना है। दोस्तों, लेकिन आज हमें एक सवाल खुद से पूछना होगा, क्या बारिश अकेले हमारी खोई हुई हरियाली वापस ला सकती है? शायद नहीं, क्योंकि हमने विकास के नाम पर जंगल काटे हैं, पेड़ों की जगह कंक्रीट के जंगल खड़े किए हैं, तालाबों और जल स्रोतों को बंद कर दिया है, प्लास्टिक और प्रदूषण से धरती का दम घोट दिया है, हमने प्रकृति से बहुत

0: बहुत कुछ लिया, लेकिन क्या हमने उसे उतना लौटाया है? यही कारण है कि आज वर्षा ऋतु केवल बारिश का मौसम नहीं है, ये प्रकृति को वापस देने का मौसम है। ये समय है एक पौधा लगाने का, एक पेड़ बचाने का, एक तालाब को साफ रखने का, बारिश के पानी को सहेजने का और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक हरा भरा भविष्य बनाने का। फ्रेंड्स, यदि हर युवा एक पेड़ लगाए और उसकी जिम्मेदारी भी ले तो कितने पौधे हमारे शहरों, गांवों, कस्बों को हरा भरा बना सकते हैं। लेकिन केवल पौधा लगाना ही पर्याप्त नहीं है, पेड़ लगाना शुरुआत है, उसे पेड़ बनाना हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए साथियों, इस बारिश के मौसम में हरियाली फिर से वापस लाएं। और दोस्तों, वर्षा ऋतु में बारिश का आनंद तो होता ही है, साथ ही वर्षा ऋतु में कई सारी बीमारियां भी हो जाती हैं। इसलिए ऐसी स्थिति में आयुर्वेदिक तरीके से स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसलिए आइए जानते हैं एक वार्ता। वार्ता का विषय है वर्षा ऋतु में आयुर्वेदिक माध्यम से कैसे रखें अपना ख्याल, और वार्ताकार है डॉक्टर शरद कुमार।
1: वर्षा ऋतु के ऊपर परिचर्या करते हैं। वर्षा ऋतु में हमारा आहार विहार, दिनचर्या कैसा होना चाहिए और हमारा खान पान आयुर्वेद के दृष्टिकोण से हम कैसे अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। आयुर्वेद में प्राचीन मनुष्यों ने संपूर्ण वर्ष को 12 महीने में विभाजित किया, 6 ऋतुएं बनाई हैं। प्रत्येक ऋतु 2 महीने की मानी जाती है। वर्षा ऋतु की बात करें तो सावन तथा भादों के जो 2 महीने होते हैं वो वर्षा ऋतु के रहते हैं। वर्षा ऋतु में भूमि से वाष्प निकलने तथा आकाश से जल बरसने के कारण हवा में नमी रहती है। यह नमी यानी आर्द्रता श्वासोच्छ्वास के कारण उसके द्वारा शरीर में प्रवेश करके जठराग्नि को मंद कर देती है। ग्रीष्म ऋतु में संचित हुई वायु वर्षा ऋतु की शीत जलवायु के कारण प्रकोपित हो जाती है और जल में अम्ल रस की वृद्धि हो जाने से पित्त का संचय होने लगता है। हम आहार की चर्चा अगर करें तो वायु और वर्षा से युक्त विशेष शीत वाले दिनों में भोजन खट्टे, नमकीन व स्निग्ध पदार्थों की जिसमें प्रधानता हो वो सेवन करना चाहिए। बाहर की नमी युक्त हवा का प्रतिकार करने के लिए शरीर तीखे नमकीन पदार्थों की मांग करता है। इन दिनों लहसुन, अदरक, सौंठ, काली मिर्च, हरी मिर्च, अजवाइन, हींग इत्यादि तीखे पदार्थों का सेवन करना चाहिए। इससे शरीर की नमी कम करने में तथा जठराग्नि को प्रज्वलित रखने में पूरी मदद मिलती है। अनाज की चर्चा करें तो अनाज में पुराने जौ, गेहूं, चावल, सब्जियों में कोमल बैंगन, पेठा, परवल, लौकी, हफ्ते में एक दिन या दो दिन करेला, दालों में कुलथी की दाल, मूंग की दाल, तेलों में तिल का तेल, ये सब सेवन किया जा सकता है। श्रावण मास में दूध का ज्यादा प्रयोग न करें और हरी सब्जियों को ज्यादा प्रयोग न करें तो अच्छा है। हरी सब्जियों को न ही खाएं तो ज्यादा सही है। बिहार की चर्चा करें अगर तो हमें कैसे रहना चाहिए, इन दिनों में मच्छरों के काटने पर जो उत्पन्न मलेरिया इत्यादि जो रोग होते हैं उन सबसे बचने के लिए साफ सफाई का विशेष ध्यान दें। पानी कहीं इकट्ठा न होने दें। दिन में सोना, नदियों में स्नान, बारिश में भींगना, ओस में सोना, ये सब हानिकारक है। इस ऋतु में मुल्तानी मिट्टी से स्नान, घर तथा आसपास के परिसर को धूप करने, गोबर गोमूत्र से भूमि को स्वच्छ पवित्र रखने में तथा परंपरागत जो व्रत उपवास से अपने शरीर को स्वास्थ्य लाभ में आप रख सकते हैं। विशेष रूप से अगर हम बात करें तो जो मंद जठराग्नि और प्रकोपित वात होता है शरीर के अंदर की और शारीरिक बल की अल्पता इस ऋतु में अनेक व्याधियों को आमंत्रित करती है, अनेक बीमारियों को बुलाती है, जिसमें संधिगत ज्वाइंट पेन वगैरह, दमा, खांसी, ब्रोंकाइटिस, एलर्जिकल प्रॉब्लम, स्किन की बीमारियां, हैजा, मलेरिया जैसे संक्रामक व्याधियां फैलने लगती हैं। जठराग्नि की रक्षा के लिए सबसे प्रथम उपचार है उपवास। अपनी संस्कृति में श्रावण और भाद्रपद महीने में अधिक व्रत उपवास का जो विधान है उसके पीछे धार्मिक लाभ के साथ साथ स्वास्थ्य रक्षण प्रधान भी मान्यता मानी गई है। वर्षा ऋतु में शहद का सेवन काफी हितकर होता है, खासकर नींबू जो है वर्षा ऋतु की बीमारियों को दूर करता है। हरण का चूर्ण, हर्रे का चूर्ण, सिंधा नमक मिला करके ताजे जल के साथ इसका सेवन काफी विशेष लाभदायी होता है। पानी को उबाल कर पिएं, भोज्य पदार्थों को ढक कर रखें तथा जो खुले रखे आहार वो पेय पदार्थ हैं उनका सेवन कतई न करें। जैसा कि मैंने पहले बताया, पानी कहीं इकट्ठा न होने दें और अगर कहीं इकट्ठा पानी है भी कीटनाशक द्रव्यों का, कीटनाशक औषधियों का छिड़काव कर करें ताकि मच्छर और लार्वा सभी नष्ट हो जाएं। केरोसिन वगैरह का भी प्रयोग कर सकते हैं। रात्रि में जमीन पर न सोएं, यथासंभव बारिश में भींगने से बचें और भींग भी जाते हैं तो पूरे शरीर को, सिर के साथ पूरे शरीर को पोंछ करके अच्छे से सुखा लें। तत्पश्चात शरीर पर चंदन, उसीर, जो भी आपके पास उपलब्ध हो उन सभी सुगंधित द्रव्यों का लेप कर लें। आजकल तो पाउडर, डीओ, क्रीम इत्यादि क्या सुगंधित पदार्थ लोग लगा लेते हैं जिससे शरीर में एलर्जी, खुजली, खारिश, ये सब चीजें भी होने की संभावना रहती है, क्योंकि वो सब चीजों में रासायनिक द्रव्यों की

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे।
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: वेलकम बैक फ्रेंड्स। दोस्तों अब चर्चा एक महान शख्सियत के बारे में, हिंदी साहित्य के महान कथाकार जी श्री अमृतलाल नागर जी, जिनकी आज 17 अगस्त को जयंती मनाई जा रही है। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। दोस्तों अमृतलाल नागर जी का जन्म 17 अगस्त 1916 को आगरा में हुआ था। वो उपन्यासकार, कहानीकार, नाटककार और व्यंगकार के रूप में हिंदी साहित्य में विशेष स्थान रखते थे। उनकी प्रमुख रचनाओं में बूंद और समुद्र, नाच्यो प्रभु गोपाल, मानस का हंस, खंजन नयन और अमृत और विष शामिल है। उनकी रचनाओं में भारतीय समाज, लोक जीवन, संस्कृति और मानवीय संवेदनाओं का जीवांत चित्रण मिलता है। साथियों जिस साहित्य में समाज की धड़कन सुनाई दे, जिस कहानी में आम आदमी का जीवन दिखाई दे और जिस लेखनी में इतिहास, संस्कृति, मानवीय संवेदना एक साथ जीवांत हो उठे, ऐसे महान साहित्यकार थे अमृतलाल नागर जी। आज उनकी जयंती पर हम उन्हें सादर नमन करते हैं। फ्रेंड्स तो ये थी बातें इन पर, जो बस यहीं तक। अब चलिए चलते हैं म्यूजिकल वर्ल्ड में और सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: गाइए गुनगुनाइए, कहिए हमसे दिल की बात।
1: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
2: हेलो,
0: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
1: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
0: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
1: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
0: ओनली ऑन AIR ओबरा।

वेलकम बैक दोस्तों। फ्रेंड्स, कभी घर के आंगन में बैठा एक बुजुर्ग सिर्फ परिवार का सदस्य नहीं होता, वो पूरे परिवार की चलती फिरती पाठशाला होती है। और आज हम बातें करेंगे उन लोगों की जिन्होंने अपने जीवन के अनुभवों से परिवार को संवारा, संस्कारों को आगे बढ़ाया और समाज को अपनी सीख दी, हमारे वरिष्ठ नागरिकों की। वरिष्ठ नागरिक केवल उम्र का एक पड़ाव नहीं, बल्कि वो हमारे परिवार और समाज के अनुभव, संस्कार और स्मृतियों के जीवंत रक्षक हैं। उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष देखे हैं, कठिनाइयों का सामना किया है और समय में बदलाव को करीब से महसूस किया है। इसलिए उनका अनुभव आज की युवा पीढ़ी के लिए कितनी बहुत अमूल्य धरोहर से कम नहीं है। दोस्तों, परिवार में दादा दादी या नाना नानी की मौजूदगी बच्चों को केवल प्यार ही नहीं देती, बल्कि उन्हें हमारे संस्कृति, परंपराओं, लोक कथाओं और जीवन मूल्यों से भी जोड़ती हैं। उनकी कहानियों में इतिहास होता है, उनकी बातों में अनुभव होता है, उनके आशीर्वाद में एक अलग सा अपनापन होता है। लेकिन वरिष्ठ नागरिकों की सबसे बड़ी आवश्यकता केवल एक आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि सम्मान, अपनापन और समय है। कई बार उन्हें बस इतना चाहिए कि वो कोई उनके पास बैठकर उनकी बातें सुने, उनके पुराने अनुभव पूछे और उन्हें ये महसूस कराए कि वो आज भी परिवार के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं। हमें ये याद रखना चाहिए, आज जो युवा हैं वो कल वरिष्ठ नागरिक होंगे। इसलिए जिस सम्मान और संवेदना की उम्मीद हम अपने भविष्य से करते हैं, वही सम्मान हमें आज अपने बुजुर्गों को देना चाहिए। दोस्तों, अपने वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान करेंगे, उनकी बात सुनना चाहिए, उनके अनुभवों से सीखना चाहिए और परिवार का बोझ नहीं समझना चाहिए, बल्कि परिवार की अनमोल धरोहर समझेंगे। क्योंकि बुजुर्ग घर की छांव हैं, अनुभवों की नाव हैं, इनका सम्मान जहां होता है वही परिवार महान होता है। दोस्तों, तो इस पर बातें बस यहीं तक। अब चलिए फिर से चलते हैं म्यूजिकल वर्ल्ड में और सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है महिलाओं के लिए हमारा कार्यक्रम गृहलक्ष्मी।

नमस्कार प्यारी बहनों, आप सभी बहनों का स्वागत है आपके मन पसंद ग्रह लक्ष्मी कार्यक्रम में। और आप सबसे ढेर सारी बातें करने आई हूँ मैं, आपकी रेडियो सखी सूर्या। तो बहनों, सबसे पहले ये बताइए कैसी हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सावन के इस रिमझिम फुहार ने आपके मन को भी खुशियों से भर दिया होगा। बहनों, सावन का महीना आते ही प्रकृति हमारी जैसे मानो नई दुल्हन की तरह सज जाती है। चारों ओर हरियाली, ठंडी ठंडी हवा, बारिश की बूंदें और पेड़ों पर पड़े झूले, मन अपने आप गुनगुनाने लगता है। बहनों, सावन सिर्फ बारिश का मौसम नहीं बल्कि यादों, रिश्तों और खुशियों को फिर से जीने का मौसम है। सावन आते ही झूले पड़ते हैं, हाथों में मेहंदी रचती है, हरी चूड़ियों की खनक सुनाई देती है और सहेलियों के साथ सावन के गीत गाने का अपना ही आनंद है। और सबसे खास होती है मायके की याद। शादी के बाद जब सावन आता है तो माँ के हाथों का खाना, बहनों के साथ बिताए वो पल और बचपन की गलियाँ जाने क्यों और भी ज़्यादा याद आने लगती है। तो आइए बहनों, इस सावन हम भी अपने मन में खुशियों का एक झूला डालें, थोड़ी सी चिंता छोड़ें, थोड़ा मुस्कुराएं, अपने अपनों के साथ समय बिताएं और खुद के लिए भी कुछ पल निकालें। सावन की फुहार खुशियां बसाएं, हर बहन के जीवन में नई उमंग लाएं, रिश्तों में प्यार और दिल में मिठास सजाएं। इसी प्यारी सी दुआ के साथ आप सभी बहनों को सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सावन की इन खूबसूरत फुहारों के साथ हमारी बातचीत का सिलसिला भी आगे बढ़ रहा है। बहनों, आगे हम आपसे संयुक्त परिवार ही अच्छे संस्कार की नींव, नाग पंचमी और घर परिवार को बर्बाद करता नशा विषयों पर भी चर्चा करेंगे।

0: साथ ही सुनेंगे सर्प दंश पर कुछ रोचक बातें, उपयोगी जानकारी और मन को खुश कर देने वाले गीत। तो बहनों, कहीं जाइएगा नहीं, जुड़े रहिए हमारे साथ। बहनों, सावन माह चल रहा है। सावन आते ही चारों ओर हरियाली, झूले, मेहंदी और त्योहारों की रौनक दिखाई देने लगती है। इस पावन महीने में नाग पंचमी का पर्व भी मनाया जाता है। यह हमारी परंपराओं और प्रकृति के प्रति सम्मान की भावना से जुड़ा पर्व है। बहनों, याद होगा आपको, जब छोटे थे ना, तो नाग पंचमी पर हमेशा नाग के दर्शन करने के लिए बड़ी बेसब्री से इंतजार किया करते थे, है ना? वो दिन याद है ना आपको? अरे क्यों ही भूलेंगी आप लोग भाई, बचपन के वो दिन ही अलग होते थे। और बहनों, नाग पंचमी के दिन नाग देवता की और कहीं कहीं घरों में भी पूजा की जाती है। वैसे तो देखा जाए हमारे देश में अलग अलग जगहों पर नाग पंचमी मनाने की अलग अलग परंपराएं हैं। कहीं पूजा अर्चना होती है तो कहीं घरों में विशेष पकवान बनाए जाते हैं और परिवार के लोग मिलकर त्योहार की खुशियां मनाते हैं। बहनों, हमारे त्योहारों की खूबसूरती यही है कि इनके पीछे केवल पूजा पाठ ही नहीं बल्कि प्रकृति और जीव जंतुओं से भी जुड़ा होता है। सांप हमारे पर्यावरण का महत्वपूर्ण हिस्सा है और खेतों में चूहों जैसे जीवों की संख्या नियंत्रित करने में उनकी भूमिका होती है। इसीलिए नाग पंचमी हमें प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर रहने का भी संदेश देता है। नाग पंचमी की आप सभी बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी पर आइए सुनते हैं सर्प दंश एक राज्य आपदा विषय पर जिला आपदा विशेषज्ञ अरुण कुमार यादव जी की बहन सुसरी द्विवेदी की खास बातचीत।
1: साथियों, जैसे ही मौसम बदलता है, बारिश आए या गर्मी बढ़े, सर्प दंश की घटनाएं सुनने को मिलती हैं। मगर क्या आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने सर्पदंश को राज्य आपदा घोषित किया है। और दुर्भाग्यवश ऐसी घटना होती है, किसी की मौत होती है, तो प्रशासन की तरफ से आर्थिक सहायता का भी प्रावधान है। आज इस विषय पर पूरी जानकारी देने के लिए हमारे पास जिला मुख्यालय आपदा प्रबंधन से आपदा विशेषज्ञ श्री अरुण कुमार यादव जी आए हैं। अरुण जी, नमस्कार।
2: जी नमस्कार।
1: अरुण जी, आज हम सर्पदंश पे बात करते हैं
2: जी।
1: तो सबसे पहला सवाल तो यही होगा कि लोग सर्पदंश को एक हादसा मानते हैं, लेकिन आपदा प्रबंधन विभाग इसे किस तरह देखता है?
2: जी, निश्चित तौर पर जिस परिवार में इस तरह की घटना होती है उनके लिए तो ये एक विपदा ही है, लेकिन आपदा प्रबंधन विभाग उनके साथ खड़ा रहता है। और चूंकि राज्य सरकार द्वारा इसे आपदा की श्रेणी में घोषित किया गया है, तो उनको अहेतुक सहायता के रूप में 4,00,000 रुपए दी जाती है और इससे उनके परिवार को कुछ आर्थिक सहयोग मिलता है।
1: जी जी, अच्छी सराहनीय पहल है। पर ये बताइए कि क्या हर सांप जानलेवा होता है, या हमारे क्षेत्र में ऐसे कुछ सर्प हैं जिनके इलाज के लिए सर्प के पहचान जरूरी है?
2: देखिए, सभी सर्प जहरीले और हानिकारक तो नहीं होते हैं, लेकिन हमें कभी भी इन सब बातों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर सर्पदंश की घटना होती है तो हमें उसे गंभीरता के साथ लेते हुए उसके प्राथमिक इलाज के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पे जाना ही जाना है। और गंभीरता को समझते हुए आवश्यकता पड़े तो जिला मुख्यालय के जिला चिकित्सालय पे जाके इलाज कराना ही है। और रही बात इस क्षेत्र के विषैले सांपों की, तो इस क्षेत्र में करैत और कोबरा इस तरह के विषैले सांप पाए जाते हैं, लेकिन इलाज कराना ही कराना है, चाहे वो किसी प्रकार के सर्प से दंश हो।
1: जी, इलाज उपचार की बड़ी अच्छी बात कही आपने, जो हमारे क्षेत्र में लोगों को जागरूकता बढ़ाएगी। अब आते हैं आज के मुख्य विषय पर
2: जी,
1: कि यदि दुर्भाग्यवश सर्प दंश से किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो प्रशासन द्वारा मुआवजा, जैसा आपने बताया,

0: आया, उसे प्राप्त करने के लिए क्या प्रावधान है?
1: देखिए, सर्वप्रथम अगर इस तरह की कोई दुर्भाग्यवश कोई घटना हो जाती है तो इसकी सूचना वो अपने प्रधान के माध्यम से लेखपाल को देंगे। लेखपाल की स्वयं की जिम्मेदारी बन जाएगी सूचना पाने के बाद कि उनका उनसे संबंधित सभी दस्तावेज एकत्र करें, उनका आवेदन करें। परिवार के लोगों की जिम्मेदारी ये रहती है कि उनका पंचायतनामा बनवाते हुए पोस्टमार्टम कराएं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हो जाए कि ये घटना सर्पदंश की वजह से हुई है, फिर वो लेखपाल उस आवेदन को जिला मुख्यालय, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उस आधिकारिक पोर्टल पे दर्ज करेंगे और उसकी पुष्टि करने के बाद उनका भुगतान किया जाएगा।
0: जी जी, यह तो रही किसी गांव के सक्रिय लेखपाल की तरफ से
1: जी
0: कि वो कितना कर रहे हैं
1: जी।
0: क्या पीड़ित परिवार स्वयं भी किसी से संपर्क कर सकता है? कहने का मतलब कि सहायता राशि प्राप्त करने के लिए कौन कौन से कागजात जरूरी हैं, आवश्यक प्रक्रियाएं, जैसा आपने बताया उसे हमारे श्रोताओं को एक बार फिर बताएं।
1: जैसे अगर पीड़ित परिवार के परिवार के लोग, जैसा कि मैंने बताया कि वो पोस्टमार्टम करा लें, उनका मूल आधार यही होगा कि इस बात की पुष्टि होना कि ये घटना सर्पदंश से ही हुई है। इस बात की पुष्टि के आधार पर वो अपने लेखपाल के माध्यम से, लेखपाल की भी जिम्मेदारी बनती है, ऐसा नहीं है कि वो उनको बहुत परेशान होने की जरूरत है या किसी और माध्यम से आवेदन करना है, ऐसा नहीं है, उनकी जिम्मेदारी बनती है। अगर आपने सूचित किया तो वो उनकी जिम्मेदारी है, वो उसको आवेदन कराएंगे ही कराएंगे। और उनके परिवार से एक और चीज मांगी जाती है कि इनके वाजिब वारिस कौन है, यानी कि उनकी पत्नी, उनके पुत्र, उनकी पुत्री, जो भी उनके लाभार्थी की श्रेणी में है, उन लोगों के बैंक पासबुक, आधार कार्ड और ये पंचायतनामा रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इन सबको एकत्र करके उनको दे देना है। वो आवेदन करके, चूंकि शासनादेश भी है कि 24 से 48 घंटे के अंदर मुआवजा राशि देना है, इसलिए लेखपाल की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि वो आपसे स्वयं संपर्क करके वो आपसे सभी प्रकार के दस्तावेज एकत्र करते हुए उसका आवेदन करेंगे, आवेदन के बाद उसका भुगतान होना है
0: जी। अब यह जो घटना घटी वह तो दुखद होती है
1: जी,
0: पर 24 घंटे 48 घंटे में यदि इस प्रकार से कोई सहायतार्थ धनराशि प्राप्त होती है तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छी पहल है सरकार की और अच्छा मदद भी है। पर हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि क्या यह सहायता सिर्फ ग्रामीणों और किसानों के लिए होती है या आम नागरिक के लिए भी होती है?
1: नहीं नहीं, ये इस राज्य में निवास करने वाले व्यक्ति से लेकर अन्य राज्यों का भी अगर निवासी इस जनपद, इस प्रदेश के क्षेत्र में उन घोषित आपदाओं से अगर वो पीड़ित होकर उसकी मृत्यु होती है तो उसको वो सहायता राशि दी जाती है। इसमें किसी प्रकार का अंतर भेदभाव नहीं है कि वो ग्रामीण होगा, किसान होगा, सभी को सहायता राशि दे होती है।
0: जी जी जी, बहुत अच्छी बात है और हमारे श्रोताओं को जागरूक कराने के लिए आपने बड़े अच्छे तरीके से बातों को भी रखा। चलते चलते हमारे जनपदवासी, हमारे जो श्रोता हमें सुन रहे हैं, उनको सर्पदंश से बचने के लिए क्या एहतियात बरतनी चाहिए या और भी जो आपके सुझाव हो आप हमारे श्रोताओं को बताएं?
1: मैं जनपद के सभी वासियों से यही अपील करूंगा कि बरसात के दिनों में जैसा कि सर्पदंश की घटनाएं बढ़ जाती हैं, निश्चित तौर पर अपने घर के आसपास साफ सफाई रखना चाहिए और अपने बच्चों, छोटे बच्चों को खासकर विशेष ध्यान देना चाहिए कि वो खेलते समय ऐसे किसी घर के पीछे, जैसे थोड़ा सा साफ सफाई नहीं रहता, ऐसे क्षेत्रों में ना जाएं,
0: किसान
1: जंगल झाड़ी के बीच में ना जाएं। किसान जब भी खेतों की ओर जाएं तो वो प्रयास करें कि पूरे कपड़े पहने और पैर में ऊंचे साइज के जो है सूज पहने। उसके साथ साथ जब भी रात में घर से बाहर निकलें तो अपने साथ टॉर्च रखें और अपने को सुरक्षित रखने के लिए हमेशा जो है, जब भी रात में सोएं, चूंकि ग्रामीणांचल का क्षेत्र है, लोग कभी कभी नीचे सोने का प्रयास करते हैं अव्यवस्था के वजह से, तो हमेशा प्रयास रहे कि चारपाई और चौकी पर सोएं, मच्छरदानी लगाकर सोएं। कभी कभी रात में ऐसी घटनाएं भी सामने आती हैं कि कोई सोया हुआ व्यक्ति सर्पदंश हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। निश्चित तौर पर अगर मच्छरदानी वगैरह का उपयोग करेंगे तो रात में सोते समय घटनाएं नहीं हो पाएंगी।
0: बिल्कुल बिल्कुल, कहते हैं कि हमें अगर किसी दुर्घटना से बचना है तो खुद से इतना जागरूक होना चाहिए कि हम समझ सके कि कैसे हम इस चीज से बच सकते हैं। बड़ी अच्छी बात कही आपने, रात में टॉर्च ले लें, जूते पहने, जमीन पर सोने से बचें, और बेहतर होगा कि अगर अपने चारपाई पर हम लोग मच्छरदानी लगा लें। तो अरुण जी, बड़ी अच्छी बात कही आपने, हमारे आकाशवाणी के लिए आपने अपना समय दिया। जागरूकता ही बचाव है और समय पर सही इलाज ही जीवन है। तो आपने जो बातें बताई, हमारे श्रोता निश्चित रूप से इससे लाभान्वित होंगे और स्वयं को ऐसी घटनाओं से बचाएंगे भी। आपको समय देने के लिए और चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी।
2: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन एचआईवी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
3: एचआईवी को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के आईसीटीसी केंद्र पर एचआईवी टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।
4: बहनों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। 102.7 FM पर आप सुन रहे हैं गृह लक्ष्मी कार्यक्रम। बहनों, नागपंचमी के पावन पर्व पर हमने प्रकृति, आस्था और जीवन में सकारात्मकता की बात की। अब इसी सकारात्मक सोच के साथ हम एक ऐसे विषय की ओर बढ़ते हैं जो हमारे परिवार और समाज के लिए बेहद जरूरी है, वो है नशा मुक्ति। बहनों, नशा सिर्फ उस व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाता जो नशा करता है, बल्कि धीरे धीरे पूरे परिवार की खुशियां छीन लेता है। नशे की वजह से घर में झगड़े, आर्थिक परेशानियां, तनाव और रिश्तों में दूरियां बढ़ने लगती है, और सबसे ज्यादा असर बच्चों पर पड़ता है, क्योंकि उनके मन पर घर का माहौल गहरी छाप छोड़ता है। बहनों, हम अक्सर सोचते हैं कि हमें क्या करना, यह तो उनकी अपनी जिंदगी है, लेकिन जब नशा घर में आता है तो उसकी कीमत पूरा परिवार चुकाता है। बहनों, नशा चाहे किसी भी तरह का हो, शुरुआत अक्सर छोटी सी लगती है, किसी दोस्त के कहने पर, तनाव दूर करने के लिए या सिर्फ शौक के तौर पर, लेकिन धीरे धीरे यही आदत इंसान की जिंदगी पर हावी होने लगती है और सबसे ज्यादा नुकसान उसके परिवार को उठाना पड़ता है। घर में छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगते हैं, आर्थिक परेशानियां बढ़ती हैं और आपसी रिश्तों में भी तनाव आने लगता है। बहनों, नशा सिर्फ पैसा नहीं छीनता, यह धीरे धीरे परिवार का विश्वास और सुख चैन भी छीन लेता है। नशे से दूर रहने के लिए जरूरी है हमें जागरूकता फैलानी होगी और नशा मुक्त वातावरण बनाना होगा। इसी संदेश के साथ आप सभी से अपील है कि आप जागरूक बने और दूसरों को भी जागरूक करें और अपने परिवार की खुशियों की रक्षा करें। बहनों, अब हम बात करेंगे हमारे जीवन की उस खूबसूरत संस्था की जहाँ से हमारे व्यक्तित्व की पहली शुरुआत होती है। जी हाँ, हमारा परिवार। कहते हैं परिवार साथ हो तो मुश्किलें छोटी लगती हैं और खुशियाँ दोगुनी हो जाती है। बहनों, परिवार हमारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। सुख हो या दुख हो, परिवार ही हमारे सबसे पहले सहारा बनते हैं। और वही अगर हम बात करें संयुक्त परिवार की, जहां एक ही घर में कई पीढ़ियां मिलजुल कर रहती हैं। बहनों, परिवार केवल कुछ लोगों का एक साथ रहना नहीं है, परिवार वह जगह है जहां बच्चा पहली बार प्रेम करना, सम्मान करना, जिम्मेदारी निभाना और रिश्तों को समझना सीखता है। संयुक्त परिवार की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि यहां बच्चे को केवल माता पिता का ही नहीं, बल्कि दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई और परिवार के दूसरे सदस्यों का भी स्नेह और मार्गदर्शन मिलता है। बहनों दादा दादी की कहानियों में जीवन का अनुभव होता है, बड़ों की सीख में संस्कार होते हैं और परिवार के साथ रहने में बच्चों को साझा करना, सहयोग करना और दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना सीखने का अवसर मिलता है। बहनों आज की तेज रफ्तार जिंदगी में परिवार छोटे होते जा रहे हैं। अपनी अपनी व्यस्तताओं के कारण कई बार हम एक दूसरे के लिए समय नहीं निकाल पाते। ऐसे में संयुक्त परिवार की अहमियत और भी बढ़ जाती है। संयुक्त परिवार बच्चों को यह सिखाता है कि जिंदगी केवल मैं नहीं बल्कि हम का नाम है। जब घर में दादा दादी या बड़े होते हैं तो बच्चों को अपने परिवार की परंपराओं और संस्कारों से जुड़ने का मौका मिलता है। बहनों जब घर में अलग अलग उम्र के लोग रहते हैं तो बच्चे धैर्य, समझदारी और रिश्तों को निभाने की कला सीखते हैं। बहनों संयुक्त परिवार तभी खुशहाल रहता है जब उसमें आपसी प्रेम और समझदारी हो। परिवार में छोटी मोटी बातों पर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि ये मतभेद मनमेद ना बने। एक दूसरों की कमियों को गिनाने की बजाय अच्छाइयों को पहचाने, बड़ों का सम्मान करें और छोटों को प्यार दें। और बहनों सबसे ज़रूरी बात जो हमेशा आपको याद रखनी है, बच्चों के सामने परिवार के किसी सदस्य के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि बच्चे हमारे शब्दों से ज़्यादा हमारे व्यवहार को देखकर सीखते हैं। बहनों याद रखिए, संयुक्त परिवार वह पेड़ है जिसकी जड़ें हमारे बुजुर्ग हैं, तना माता पिता हैं और उसकी शाखाएं हमारे बच्चे। जब जड़ें मजबूत होती हैं तो आने वाली पीढ़ियां भी सुरक्षित और संस्कारी बनती हैं। तो बहनों आइए हम अपने परिवार में प्रेम, सम्मान, सहयोग और संवाद को बढ़ावा दें। अपने बच्चों को केवल किताबों से शिक्षा ना दें बल्कि अपने व्यवहार से संस्कार भी दें, क्योंकि अच्छे संस्कार किसी स्कूल में नहीं सबसे पहले परिवार से ही आते हैं। इसी के साथ देते हैं बातों को थोड़ा सा विराम और सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: गाइए गुनगुनाइए कहिए हमसे दिल की बात।
1: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
2: हेलो,
0: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
1: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
0: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
1: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
0: ओनली ऑन AIR ओबरा।
3: बहनों, अभी आपने सावन पर ये प्यारा सा गीत सुना। उम्मीद करती हूँ आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अपने विचार हमारे साथ साझा करने के लिए हमें ईमेल अपने नाम के साथ जरूर करें। हमारा ईमेल एड्रेस है grahlakshmi@gmail.com पर। एक बार आप नोट कर लीजिए, grahlakshmi@gmail.com पर। तो बहनों, खुलकर अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि आपकी पसंद और सुझाव ही हमारे कार्यक्रम को और बेहतर बना सकते हैं। जाते जाते एक बात और बोलना चाहूँगी कि साफ सफाई हमारे केवल घर की ही नहीं, बल्कि हमारे आसपास के वातावरण की भी सफाई रखना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। इसीलिए घर और बाहर दोनों जगह स्वच्छता का ध्यान रखें। इसी के साथ अपनी रेडियो सखी सूर्या को दीजिए जाने की अनुमति। तब तक स्वस्थ रहे और खुश रहे। नमस्कार।

महिलाएं अभी सुन रही थी अपना कार्यक्रम गृहलक्ष्मी। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही देर में आप भोजपुरी में समाचार सुनेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें समाचारों की।

0: समाचार। नमस्कार, समाचारन के साथ हम वेद प्रकाश पाठक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में प्रदेश के 78,000 से बेसी उचित दर विक्रेता लोगिन के उनका लाभांश 90 रूपया से बढ़ा के 125 रूपया प्रति कुंतल कैल गैले से जुड़ल समारोह में शामिल भेल हैं। इस दौरान वहां के सिंगल स्टेज डोर स्टेप डिलीवरी के तहत ई पॉस आधारित उचित दर विक्रेता फीडबैक प्रणालियों का शुभारम्भ कैले। इस मौका पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री कहले कि वर्ष 2017 में ई पॉस मशीन लगले से पारदर्शिता बढ़ल बा।
1: उचित मूल्य विक्रेताओं के बारे में लोगों की धारणा ठीक हो, इसी के लिए 2017 में हम लोगों ने ई पॉस मशीन लगानी प्रारंभ की थी। हम लोगों ने उस समय कहा था कि नहीं भाई, सिंगल डोर स्टेप होगा, एफसीआई के गोदाम से सीधे कोटे की दुकान पर फेयर प्राइस शॉप तक हम सिंगल डिलीवरी के माध्यम से राशन पहुंचाने का काम करेंगे, बीच में नहीं, सीधे पहुंचाने की कार्रवाई शुरू हुई। परिणाम क्या है? परिणाम इसी से आते हैं, ट्रांसपेरेंसी लाई गई, आपका सम्मान बढ़ा।
0: प्रदेश के अलग अलग जिलन में भईल आयोजन में जन प्रतिनिधियों हिस्सा लेन है। जिला स्तरीय समारोहन में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को वर्चुअल प्रसारण कल गये। केंद्र सरकार विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करे बदे बैंकिंग सुधार पर जल्दी उच्च स्तरीय समिति गठित करी। ये जानकारी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन आज नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकन के 2 दिन के सम्मेलन के उद्घाटन मौका पर देलिन। वहां के कहने कि ये समिति कई गो मुद्दन आ अनुशंसा के ध्यान में रखत बैंकिंग सुधार बदे भावी कार्य दिशा तय करी।
2: पहले से उपलब्ध शोध दस्तावेजों से समिति को चर्चा के लिए जरूरी ठोस जानकारी प्राप्त होंगे। समिति के विचारों और सुझावों से स्पष्ट होगा कि यह देश को विकसित भारत की दिशा में किस तरह आगे बढ़ाना चाहती है और इसमें बैंकों की क्या भूमिका होगी।
0: सर्वोच्च न्यायालय लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के आय से बेसी संपत्ति मामला में राहत दे दिले हो। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना का पीठ आज इलाहाबाद उच्च न्यायालय से कहलस कि वो कांग्रेस नेता के खिलाफ आय को ज्ञात स्रोतन से बेसी संपत्ति के मामला में कार्यवाही न करे। शीर्ष अदालत केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ईडी से भी कहलस कि वो राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज मामलन के बारे में उच्च न्यायालय के समक्ष कौनो रिपोर्ट दाखिल न करें। यूपी बोर्ड हाई स्कूल 2026 का पूरक परीक्षा आ अंक सुधार परीक्षा, वहीं इंटरमीडिएट 2026 के पूरक परीक्षा का नतीजा घोषित कर दे रहे हो। परीक्षा का नतीजा बोर्ड के वेबसाइट upmsp.edu.in पर देखल जा सकेला। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए यूजीसी नेट परीक्षा के 3 विषय अंग्रेजी, वाणिज्य आ समाज शास्त्र बदे दोबारा परीक्षा करोले का घोषणा कैले हो। ए तीनों विषयन के पेपर में कई तरह के त्रुटियन का शिकायत मिलने के बादे ई फैसला लिहल गइल बा। प्रदेश भर में नाग पंचमी का त्योहार आज रिवाज के मुताबिक श्रद्धा भक्ति के माहौल में मनावल जा रहा है।

0: सावन के तीसरका सोमवार आ नाग पंचमी त्योहार पर शिव मंदिरन में भोरवे से श्रद्धालुअन के भारी भीड़ हो। वाराणसी के काशी विश्वनाथ धाम में श्रद्धालु आ कांवड़िया लाइन लगा के भगवान शिव के जलाभिषेक कर रहा हमें।
1: सावन के तीसरे सोमवार और नाग पंचमी पर काशी में आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला। कांवरियों और श्रद्धालुओं का जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। हेलीकॉप्टर से शिवालयों और मार्गों पर गुलाब की पंखुड़ियों की पुष्प वर्षा हुई। पुष्प वर्षा से कांवरियों के चेहरे खिल उठे और वातावरण भक्तिमय हो गया। नाग पंचमी पर प्राचीन नागकुआ मंदिर कारकोटक वापी में भी आस्था का सैलाब उमड़ा। भक्तों ने नाग देवता और नागेश्वर महादेव का विधि विधान से पूजन किया। नाग कुंड में दूध जल और लावा अर्पित की परंपरा निभाई गई। मनीष सिंह, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी।
0: नाग पंचमी या सावन के तीसरका सोमवार पर रामनगरी अयोध्या में श्रद्धालु आज सरजू नदी में आस्था का डुबकी लगौने आ प्राचीन नागेश्वरनाथ मंदिर पहुंच के भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कैले। नाग पंचमी के मौका पर आज गोरखपुर पहुंचल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरु गोरक्षनाथ अपने गुरु का पूजा अर्चना कैले। वहां के गोरखपुर में कई गो कार्यक्रमन में शामिल होके पहुंचल है। समाचार पूरा भेल, नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है। समय है सूचना और कार्यक्रम विवरण का। तो आइए पहले आपको खोए हुए व्यक्ति के संबंध में कुछ सूचना दे दें। पुलिस अधीक्षक कार्यालय सोनभद्र से प्राप्त सूचना के अनुसार मनोज पाल पुत्र प्रेमनाथ पाल निवासी ग्राम बहुअरा थाना रॉवर्सगंज जनपद सोनभद्र से दिनांक 18 जनवरी 2026 से लापता हैं। इनका हुलिया इस प्रकार है। उम्र 38 वर्ष, लंबाई 5 फीट 3 इंच, रंग गोरा, चेहरा गोल और एकहरा बदन है। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर कृपया अपने निकटतम थाने अथवा पुलिस अधीक्षक सोनभद्र को सूचित करें। श्रोताओं, इसी संबंध में एक सूचना और। पुलिस अधीक्षक कार्यालय सोनभद्र से प्राप्त सूचना के अनुसार मीना देवी पत्नी दूधनाथ बिंद निवासी ग्राम करवनिया थाना रामपुर जनपद सोनभद्र से 15 जुलाई 2026 से लापता हैं। इनकी उम्र 32 वर्ष, लंबाई 4 फीट 9 इंच है, गोरा रंग, लंबा चेहरा और एकहरा बदन है। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर कृपया अपने निकटतम थाने अथवा पुलिस अधीक्षक सोनभद्र को सूचित करें। और श्रोताओं, अब मुख्य कार्यक्रमों का विवरण। रात 10 बजे आप सुनेंगे ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम म्यूजिक गैलरी। फिल्मी गीतों का ही कार्यक्रम रसधारा होगा रात 10 बजे। शाम 7:31 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सबरस। 9:15 पर होगा कार्यक्रम भूले बिसरे गीत और रात 8:15 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत कार्यक्रम। सुगम संगीत आप सुन सकेंगे रात 8 बजे और रात 8:30 पर। अब से कुछ ही देर बाद ग्रामीण भाइयों का कार्यक्रम होगा ग्राम जगत। इसमें आज ग्रामीण भाई सुनेंगे राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना के लाभार्थी बाबूलाल मौर्य से सुनील तिवारी की बातचीत। अलावा इसके कम जोत से ज्यादा उत्पादन पाने के लिए सब्जी उत्पादन करें, इस विषय पर ब्रह्मानंद कुशवाहा से अचल श्रीवास्तव की बातचीत होगी। राम आशीष के और साथियों के गाए हुए कुछ लोकगीत हम आपको सुनवाएंगे। 7:05 पर कार्यक्रम होगा लोकगीतों का। 6:50 पर सुनिएगा कुछ गीत फिल्म संगीत के अंतर्गत।

0: सब
1: पंचन
0: पंचन के
1: के राम
0: राम
1: राम।
0: राम। नंदू भैया और बतावे, घर परिवार लड़कन गदेलन सब राजी खुशी बायन ना?
1: देखें सब कुछ सही बा जलेबी भौजी। और देखें ये हरियाम बीच में 2-3 दिन से 4 दिन से कुछ बुन्नी बरखा भी तेज भइल बा कहीं कहीं। तो कुछ किसान भैया लोगन या पंच भैया लोगन के अपन मतलब चाहे हाट बाजार होके चाहे कौनो खाद होके या और कौनो दवा होके ओकरे बीच में उनके थोड़ा सा परेशानी बा। लेकिन कहीं न कहीं सरकार के भी मनसा देखें अपन साफ बा कि भैया हो खेती बाड़ी के कौनो काम होके भैया पैसा के जोन बा कमी के वजह से उनकर
0: रोके
1: जोन बा
0: करना चाहिए।
1: नुकसान न होई।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और एकरे खातिर देखा, हम सब किसान लोग भैया बहन जानी ल जा कि किसान क्रेडिट कार्ड जौने पर हम 4% ब्याज के पर अपने खेती खातिर लाखन रुपया निकाल के एक अच्छा कृषि कर सकीला जा।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ई जोन बा आपके नज़दीकी जोन भी बैंक बा सरकारी वहाँ से ई अपन उपलब्ध हो जाला। और पहले तर कुछ परेशानी भी रहल कि कई बैंकन के न सील आवा तो कई तरह के अपन कागजात रहल। लेकिन अब तो ज्यों ही अपन 2000 वाला प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिलल बा ओकरा से ई बने से एमे कुछ सहूलियत भी भइल बा।
0: देखो नंदू भैया, आज ना हम ए विषय पर आपन कुछ अनुभव साझा करल चाहत है। देखा, हम सब लोगन जानी ला जा कि किसान क्रेडिट कार्ड से जौन भी हम ऋण लेला, लोन लेला, ऊपर 4% ब्याज लगेला। मगर ये 4% ब्याज ही लगे, एकरे खातिर हमके जागरूक होकर बहुत जरूरी बा।
1: बिल्कुल
0: जैसा कि आप कहलन कि किसान सम्मान निधि आवेला तो ये हमारा खाता उजागर हो जाला, है ना? मगर हमके ये बात के ध्यान रखे के बाद कि हम अगर एक वर्ष खातिर 4% ब्याज पर ऋण लेत हैं तो हमार ऋण युक्त वापसी जमा करे का मतलब समय का हो? तो देखा, हम एक बात बतावल चाहते कि अगर हमार खाता मतलब कि जौन किसान क्रेडिट वाल कार्ड वाला खाता जौन खुलेला उस जौने दिन खुलल, जैसे मान लो जुलाई में खुलल और हम जुलाई में पैसा नहीं निकल ली, पैसा हम अगस्त में निकाला थे चाहे सितंबर में निकाला थे, महीना 2 महीना बाद निकाला चाहे 6 महीना बाद निकाला, जैसा हमारी जरूरत होए, तो हमके यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखे की जरूरत बा कि हम जब पैसा निकाली ला तो हमके ई लगे ला कि जौने दिन पैसा निकलले हैं ओमे हमके साल भर पर ही पैसा वापस करे के बा, होला ना?
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: देखा, यहाँ ही हम थोड़ा सा गुमराह हो जाएला। हमके पैसा ओ दिन जमा करे के बा, ओ दिन के एक दिन पहले जमा करे के बा जौने दिन हमार खाता खुलल बा।
1: बिल्कुल आप सही कहते हो।
0: और अगर हम मान लो कि 1 जुलाई के हमार खाता खुलल और ऋण लेते हैं हम आज 17 अगस्त के, ठीक? तो हमके 1 जुलाई नहीं, एक दिन पहले जितना हम ऋण लेते हैं उतना जमा कर दो, और जमा करके जोने दिन हम जमा करते हैं ओकरे 24 घंटा बाद हम फिर ही पैसा निकाल सकीला। यहाँ और एक चीज ध्यान रखे के बाद कि देखो, हमके ये पता रहेला कि हमके ये जोन ऋण मिलल बा वो 4% ब्याज पर बा, मगर जब हम एक दिन पहले पैसा जमा करे जाइला तो हमसे 7% ब्याज लिहल जाला। अब देखा, हमरे मने में ये हो जाला कि देखा हमके कुछ कहल गए, कुछ पैसा लिहल जाता, बैंक वाला धोखा करत बा या योजना में कोनो बदलाव हो गए बा। सोचा बिल्कुल सही बा, होला ये कि जब हम पैसा जमा करीला तो 7% ब्याज पर जमा करीला, किंतु जमा कर ले के 1 महीना 1.5 महीना बाद हमार 4% ब्याज बैंक रखेला और अतिरिक्त जो

0: 3% ब्याज बा वो हमरे खाता में
1: वापस हो जाला।
0: तो देखा हमके थोड़ा सा ध्यान रखे के बा कि हम जौन दिन पैसा निकाली ला ना
1: वो
0: से हमके साल भर ना जोड़े के है। हम आज जौने दिन किसान क्रेडिट वाला खाता खुलल बा ओह से एक साल होए के चाहिए।
1: बिल्कुल आपके कहना सही बा और देखें किसान भैया लोग जरूर एक ध्यान में रखिए ये बात के ताकि सही दिशा में उनकर जोन बा जोन भी लोन बा वो सही दिशा में चल सके
0: और
1: सही समय से जमा हो सके।
0: अच्छा
1: बिल्कुल बिल्कुल और देखें बात कही तो होते रही लेकिन अब तो हम कहब कि अपन कार्यक्रम में भी का बा ऊपर भी देखें अपन चर्चा हो जाए। तो आज देखें जानकारी क्रम में भी जोन बा राष्ट्रीय पशुधन मिशन NLM योजना के लाभार्थी जोन बाबूलाल मौर भी हुआ मानपुर से रावर्सगंज से वो अपन बकरी पालन के अनुभव जोन बा अपन मुनई भैया से साझा करी हैं। आज बाजार भाव भी देखें अपन रावर्सगंज के बा वो बाबूलाल मौर भैया भी बताई हैं। और दूसर बात दूसर जानकारी बा कि कम जोत से ज्यादा मुनाफा पावे खातिर सब्जी उत्पादन करे के चाहिए एकर जानकारी अपन ब्रह्मानंद कुशवाहा भैया जोन प्रगतिशील कृषक हो अपन अचलू भैया से जानकारी साझा बा वो भी जानल जाए।
0: साथ ही साथ देखा मन मनसायन भी हुई राम आशीष यादव और उनके संगति लोगन से तो ई बतावा कि अपन बैठकी कहाँ से शुरू कर।
1: तो हम तो कहते हैं कि हमें जानकारी क्रम में जानल जाए कि राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना जो के लाभार्थी जोन बाबूलाल मौर भी है वहाँ बकरी पालन के जोन अनुभव बाइन कर अपन मुनय भैया से कैसे साझा करत हूँ का बताओ तो वहाँ बस सुनल जाए।
2: भैया लोग देखें हम लोग खेती किसानी से अगर जुड़ल है तो खेती किसानी में ऐसा भी काम हम लोग करीला जौन अपने खेती किसानी में हम लोगन का सहयोग करे यानी हम लोग बात करीला कि कृषि विविधीकरण का और कृषि विविधीकरण में हम लोगन पशुपालन करीला मछली पालन करीला मुर्गी मुर्गा पालन करीला भेड़ पालन करीला सुअर पालन करीला एक साथे साथे बकरी पालन भी हम लोगन करीला और आज हमार संपर्क हो गल बा मुलाकात हो गई बा एक बकरी पालक हम बाबूलाल मौरभिया से जो उनकी रावर्सगंज ब्लॉक के मानपुर गांव का रहे वाला हूँ और आपसे ही आपका जवान बकरी पालन का सफलता का कहानी बा ओके हम लोग अपने पंच भैया लोगन से साझा कर जाये। बाबूलाल भैया राम राम।
3: राम राम भैया राम राम।
2: हम बाबूलाल भैया जौन आप बकरी पालन से जुड़ल हवा तो ई बकरी पालन करे बदे आपके मन में कहाँ से विचार आया?
3: देखे भैया हम लोग तो खेती किसानी कैल जला मेन रूप से सब्जी के खेती कैल जला और फूल गोभी तो 12 महीने हमार जाबे करेला मंडी।
2: बिल्कुल।
3: लेकिन भैया एक साथे साथे गाय भैंस तो हमन के पहले से रहबे के लेना पशुपालन अपन होला घरे के दूध खाए बदे और भैया खेती अगर किसान लोग खेती करत हैं तो कुछ न कुछ जानवर उनके रखे के पड़ी काहे से कि भैया अपने धरती के भी बचाना बाय।
2: बिल्कुल।
3: तो कुछ न कुछ भैया रखे को तो ये भैया पशुपालन भी खेती के साथ साथ हमारे चलत रहा पहले से। तो भैया मीटिंग गोष्ठी के दौरान जितना भी मीटिंग गोष्ठी जिला में होला इधर उधर होला तो जायल जला सुनल जला वैज्ञानिक लोगों के बात सुनल जला। तो भैया एक बार हम किसुही गए रही कृषि विज्ञान केंद्र तो वहाँ के वैज्ञानिक लोग सब लोग बतावत लन की भैया गरीबन के गाय होलिन बकरी और गरीबन के ATM भी होला बकरी। तो वही मीटिंग के दौरान जब बातचीत हो गल तो संयोग से बरकछा का एक वैज्ञानिक डॉक्टर श्री राम सिंह रहलन उसमें और हमें पता लगल कि इनके केहन बकरी पालन होला केबी के बरकछा दक्षिणी परिसर BHU जोन बा भैया मरियान की तरफ तो उम्मीद पता लगल कि बकरी पालन होला तो वही दिना बल्कि हम वैज्ञानिक साहब से डॉक्टर श्री राम साहब से बात कैली कि साहब हमें अब एक बकरी और एक बकरा दिलवावा और हम भी बकरी पालन कर पशुपालन के साथ साथ बकरी पालन भी हुई तो घरे लड़कन बच्चन के दूध भी मिली और गरीबन के गाय गरीबन के ATM बतौते बहन सब लोग। तो भैया वही समय से हमरे मन में इच्छा जगल और उनसे बात कैली और संयोग से कहलन कि आपके मिल जाये तो 2-4-10 दिन के बाद हम गईली और एक बकरी एक बकरा उनके से ले आईली।
2: बिल्कुल भैया आप मने एक बकरी और एक बकरा से शुरू कैलन। अच्छा एकरे बाद आपके कुछ सरकारी सुविधा भी पशुपालन विभाग से मिला?
3: भैया देखे जब एक बकरी बकरा ले ली ना तो हमरे मन में ये रहल कि हम 10 बकरी से काम शुरू करी तो

0: वैज्ञानिक साहब एक बड़ी अच्छी ही बात बतौलन कि आप जो नो ज्यादा परेशान मत हो के दूर से बकरी बकरा मत ले आया कहीं से, अपने अगल बगल से ही बकरी जुटाए ला और ब्रीड के रूप में अच्छा नस्ल के रूप में बर्बरी नस्ल का अपने यहाँ से बकरी बकरा दे दिलन। ओके भैया, बीच हम जो अपने गांव से अगल बगल से करके 10 तक पहुंचा दिली, 10 बकरी और एक बकरा, उतना से भैया काम शुरू कर ली और वो काम हमार 2.5 साल चलल। तो 2.5 साल चलल तो हमें ओकरे रख रखाव देखभाल का कुछ समझ भी आई गल और खान पान का। तो एक बाद हम पशुपालन विभाग से फोन कर ली कि कुछ अगर सुविधा मिलत हो किसानन के तो हम भी जुड़ जाये। तो वहाँ भैया पता लगल कि भारत सरकार द्वारा एक योजना चलला NLM, वो भैया योजना चलत भारत सरकार का। तो भैया 50% का सब्सिडी रहल।
1: अच्छा
0: हाँ, वो भैया 100 बकरी से शुरू होके 500 बकरी तक का योजना रहलो। तो हम कहीं हम ज्यादा लंबा 200-300-500 वाला ना, 100 बकरी वाला भैया प्लान बनौली और डॉक्टर साहब लोगों के सहयोग से फार्म वोरम भर दिली। पूरा गैल दिल्ली, लखनऊ गैल, उसके बाद दिल्ली गैल, एक आध बार फार्म लौट के भी आयल कुछ अगर गलती रहल तो फिर सुधरवाए के भैया फिर भेजली और उम्मीद भैया हमारा सिलेक्शन हो गया।
1: अच्छा
0: जी, सिलेक्शन हो गया भैया। तो ओकर बाद हमरे के कुछ बकरी रहबे कैलिन और बकरी भैया हम लिए ली अच्छे नस्ल से मथुरा से, मथुरा से। तो मथुरा से भैया लिए ली बकरी बर्बरी नस्ल का और दूरी तो काफी रहल लेकिन भैया संयोग रहल, अब जो भी रहल हो हमके इतना अच्छी बकरी का नस्ल मिल गई लीन और बढ़िया भी मिल गई लीन। वो सब मतलब तैयार रहलिन, बढ़िया रहलिन और ये देखा संयोग कि जौने दिन अपने लड़का के भेजली हम बकरी लियावे बदे के वहाँ, वही दिना से बच्चा भी देवे शुरू कर देलिन।
1: अच्छा,
0: यानी 30 बकरी के पैसा हम देले रही, 30 बकरी हमरे के द्वारे पे पहुँचौलन, साथ में दूठे बच्चा भी लिया दिलन वही साथ।
1: अच्छा अच्छा,
0: तो भैया ओकरे बाद हमार इथी नैले पर भी बच्चा सब देवे लगलिन, बढ़े लगलिन। तो एक महीनवा में 30 बकरी से 10 बच्चा बढ़ के मतलब 40 हो गई लगता हूँ। और भैया यही तरह से बढ़े लगलन और 105 का प्रोजेक्ट रहल, 100 बकरी और 5 बकरा का। तो इतना हम पूरा कर दिली, फरवरी महीना में हमारी सब पूरा हो गल और कागज पत्र भी जौने हिसाब से सब लोग कहलन सरकारी विभाग का लोग वो हिसाब से भैया बनवा के अपन लखनऊ हम बल्कि अपने हाथों हाथ ले जाएगी जमा कर दिली। और भैया जमा उमा कर ले पर आधी सब्सिडी भी भैया हमारा आ गया और आधी सब्सिडी अभी आवे वाली है, वो भी जल्दी से आ जाये।
1: अच्छा बाबूलाल भैया, जोन आप बकरी रख ले वहाँ, चूंकि ये समय देखत हुआ की बरसात का मौसम है तो ऐसे मौसम में उनके खान पान का व्यवस्था और रख रखाव का व्यवस्था कैसे करें
0: भैया? बकरी देखा रख रखाव का बात आये तो बड़ा अच्छा ही प्रश्न रहता है भैया कि बकरी जोन बांधना जैसे गाय भैंस अगर किसान रखते हैं तो वो रख लिया उन्होंने रखे बदे थोड़ा सा वो आसान होला, लेकिन भैया बकरीन के रखे बदे ना थोड़ा सा साफ सफाई और उन्होंने के सूखा स्थान चाहला एकदम से। वो भैया तनको पानी बुन्नी या गीला स्थान बना तो उम्मीद रहल न चाहिए। अगर कोई जबरदस्ती रखत बा तो फिर भैया वो सब बीमार हुई हन और उन्हें नुकसान लगे करे। इस भैया उन्हें एकदम सूखा जगह पर रखे को होला। खान पान का रहल बात तो भैया देखा गेहूं का भूसा जैसे हमने ना गर्मी में जुटा के रख लेवल जला साल भर बदे अपने खर्चा बदे और मेन रूप से भैया उन्हें के भूसा चाहला दलहनी वाला।
1: अच्छा,
0: दलहनी कोई भी सामान चाहे खरी चुनी में भी दलहनी सामान दे और अच्छा वाला भूसा के रूप में भी अगर दलहनी चीज मिलत हो, हरा चारा के रूप में भी अगर दलहनी चीज मिलत हो तो उन्हें का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहला। कहीं से भैया वो सब प्रोटीन स्रोत होला दलहनी से तो प्रोटीन ज्यादा चाहला। तो ए तरह से भैया उर्दी मूंग चना ई सब मटर ई सब भैया भूसा हम रख लेला गर्मी में और गेहूं का भूसा रख लेवल जला। एक बाद जैसे चुनी और पालिसर ई सब भैया अपन ले आए के बाजार से अपने घरे का गेहूं जो बा वो के मोटा दलवा करके उसमें मिला मिला के भैया खिलावल जला।
1: अच्छा भैया, जैसे अगर दलहनी हरा चारा के रूप में का प्रयोग करना है आप
0: भैया? जैसे भैया जैसे बोरा बाय लुभिया जोन कहल जला एकर खेती कह के और उर्दी मूंग बाय एक बाद भैया मक्का जैसे बोरल हमार मक्का बुआल तो उकर दाना भी तैयार हो गल और जोन खड़ी फसल वो चारा काट के दियायल। तो इस तरह से भैया ओकर व्यवस्था कल जला। अब जैसे जैसे बोरा बोरा बा भैया न जैसे फर गल जैसे खूब बढ़िया से तो ओके भी चारा के रूप में लेवल जला।
1: अच्छा,
0: तो ओके भी खियावल जला जी।
1: अच्छा बाबू लाल भैया, बकरी में आप कहलन कि रोग जो कभी समस्या आवला, तो कौन कौन ऐसा रोग बा जवन बकरी में ज्यादातर आवला और ओकर आप उपाय का करें?
0: भैया देखें, बकरी पालक जितना भी हैं गांव देहात में, लगभग गाय भैंस भले ही गांव में न मिले, लेकिन बकरी बकरा दो चार थे अधिकांश लोगन के हन मिले हैं। अगर दो चार 1000-2000 के जनसंख्या बा भैया, तो 10-20 घरे जरूर बकरी बकरा मिले हैं, दूठे चारठे 10 ठे। लेकिन भैया वो लोगन डिवार्मिंग नहीं करौतन, कीड़ी मारे के दवाई नहीं देतन, इससे भैया वो लोगन के संख्या गाँव में बढ़ाए नहीं पौतन जा। और बकरी का भैया धंधा एक ऐसा धंधा है कि इन्हन बढ़वार बहुत ज्यादा होला। एक बकरी अगर रखले बान भैया, किसान भैया अगर दो बच्चा देव वाली बात, एक बकरी से 5 बकरी हो जाये साले भर में, कैसे दो दो बच्चा दे हैं साल भर में, 2 बेरी बच्चा देवनी सो, तो एक बकरी से 5 बकरी माने भैया 5 गुना हो गई लन। तो बकरी का संख्या भैया बहुत जल्दी बढ़ेला, बहुत तेजी से बढ़ेला। लेकिन भैया थोड़ा सा आप लोग जानते हैं कि अगर कौनो चीज का बढ़वार अधिक होला एकाएक, तो भैया नुकसान भी होला। तो वो नुकसान के अगर किसान भैया रोक लेवलन तो काफी आगे बढ़ेलन भैया। तो ओकरे बदे सबसे पहला जौन बा उन्हन की डिवार्मिंग करे के होला। डिवार्मिंग मतलब भैया कीड़ी वाली दवाई। तो बड़ा पशु बान भैया तो उन्हन के 1 महीना 2 महीना 2.5 महीना तक भी देवल जला तो सही रहला। और छोटा बच्चा बान भैया जैसे कि जौन की जन्मलय बायन, तो उन्हन भैया 15 दिन से 20 दिन का लगभग हो जलन तो पहला खुराक देवल जला, फिर 1 महीना का हो जाइन तो देवल जला, फिर भैया ओकरे बाद चारा जब उठावे लगलन, चारा जब उठावे लगन तो ओकर डेट थोड़ा सा बढ़ा देवल जला, 1.5 महीना पर 1.25 महीना पर 2 महीना पर ऐसे ऐसे भैया डिवार्मिंग करे को होला। और डिवार्मिंग भैया बहुत जरूरी है, कहीं से सब खर पत्ता है कुल खात रहे इधर उधर का, तो पेट में कीड़ा पड़ जा सबके।
1: बिल्कुल सही बात कहत हूँ, कीड़ी का दवा उनके जरूर देवे के चाहिए। बाबूलाल भैया चलत चलावत जौन अपन पंच भैया लोग हवा वो बकरी पालन से अगर जुड़ल चाहत हवा, बकरी पालन कैल चाहत हूँ, तो उनसे आप का
0: भैया? देखे बकरी पालक किसान भैया लोगन से हम यह कहो कि अगर बकरी पालन कैल चाहे और बड़े स्तर पर भी 100-200 अगर कैल चाहे, तो भैया एकाएक जौन बा उतना संख्या लेके मत करिहन। आप पहले 10 बकरी से काम शुरू करें, आप साल भर 6 महीना ओकर अनुभव जान ले। अगर पुराना किसान हैं भैया तब वो अपन संख्या बढ़ा सकलन, लेकिन जौन नया किसान भाई लोगन बायन बकरी पालक कैल चाहत बान, तो वो पहले 10 बकरी से अपन काम शुरू करें, साल 6 महीना वो समझ ले, ओकरे बारे में जान जाए, तकनीकी जान जाए, रोग भी आज जान जाए, धीरे धीरे मालूम हो जाला। तेकरे बाद भैया अपन संख्या बढ़ा के काम करें और मीन भैया बढ़िया फायदा है, दूध भी हो जाला। देखा डेंगू वेंगू के जोन मरीज मिलन प्लेटलेट कम हो जाला, तो मीन भैया 300-400 रुपया लीटर दूध बिक जात हो, और बकरी बकरा बढ़ियन तो उसे भी हो जाये भैया। तो ऐसे कुल मिला के बकरी बकरा का पालन अच्छा चीज हो, और एक एक कह सकलन मेन रूप से खाली होकर ये हो कि मालिक के रूप में एक जने को में जरूर देखे हुई भैया, ये लेबरन के बूते काम न हो पाई।
1: बिल्कुल एकदम सही बात कहत हूँ बाबूलाल भैया, आज आपसे संपर्क भयल और इतना बढ़िया जौन जानकारी का बात मिलल आपसे, उसे अपन पंच भैया लोग जरूर लाभ उठे हैं, एकरे बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
2: नंदू भैया
3: जलेबी भौजी,
2: जानकारी कितना बढ़िया रहल, यही से कहल जाला ना बैठकी में हम लोगों के बहुत जानकारी मिलेला।
3: बिल्कुल बिल्कुल, और सही स्थिति में जौन बा व्यक्ति तबे आगे बढ़ सकला जब वो जानकारी के साथ बढ़े
2: जागरूक रहे, और देखा जब बात बात कही बढ़िया सुने के मिलेला ना, तो देखा मन एकदम खुश हो जाला।
3: तो लगत बा कि आप कजरी एक ठे सुनवाई हैं।
2: आप देखा सावन के महीना मन मन सायन, और संगे संगे आप लोगन के धन्यवाद भी तो बनत बा, तो सुनल जाए एक ठे कजरी राम अशीष यादव और संगाती लोगन के,
3: वही सुनल जाए,
2: मगर उसे पहले एक ठे विज्ञापन भी बा।
4: यूपी 112 है उत्तर प्रदेश का सुरक्षा चक्र, क्योंकि ये बेफिक्र होकर खुली हवा में आजादी के साथ सांस लेने का हौसला देता है।
5: तो किसी भी आपात स्थिति में पुलिस, फायर ब्रिगेड, प्राकृतिक आपदा, एम्बुलेंस, साइबर अपराध, महिला या बाल अपराध संबंधित प्रथम प्रतिक्रिया और तत्काल सहायता के लिए 112 मिलाएं।
4: यूपी 112 की ओर से प्रदेश वासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं।
5: शहर या देहात, दिन हो या रात, यूपी 112 है आपके साथ।
4: यूपी 112 नंबर 1 सेवाएं अनेक।

0: जलेबी भैया
1: देखा ही रहल है अपन रामासी से यादव उनके संघाते लोग भी है यो कजरी सुनौल है, लेकिन देखते किसान भी है लोगन के लिए भी ना इस समय जोन बा कुछ न कुछ ऐसा बा कि जरा से अपन बढ़िया से अगर कहीं अगर दिमाग से अगर काम ले लें तो उनके काफी जोन बा सहूलियत मिल सकला।
0: अरे भैया तो एकरे खातिर भी आपन बैठकी में समय समय पर विशेषज्ञ भैया लोग आवेलन, प्रगतिशील कृषक लोग आवेलन, उनका अनुभव हम लोग साझा करी ला जा। अगर आप कहें तो आज देखा अपन बैठकी में अपन अचलू भैया जन हमन ब्रह्मानंद कुशवाहा हमन प्रगतिशील कृषक उनसे कुछ बात बत कही करत हमन और विषय भी बड़ा बढ़िया बा। विषय हो कम जोत में ज्यादा मुनाफा पावे खातिर सब्जी का उत्पादन करें।
1: बिल्कुल बिल्कुल।

0: हम कहे इशारा होए तो हम सुनल जाए। चल
1: श्रोताओं नमस्कार। देखिए, हम लोग खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं और खरीफ के तैयारी अब बहुत जोर शोर से चल रही है, लेकिन बहुत से किसान भाई लोग और अब जो है खेती में विविधता के महत्व को भी समझ रहे हैं। आज हम लोगों के बीच में दुधी ब्लॉक के कटौधी ग्राम पंचायत के ब्रह्मानंद कुशवाहा भैया जुड़े हुए हैं, जो काफी अनुभव है, करीब 10 वर्षों से खेती किसानी कर रहे हैं। तो ब्रह्मानंद भैया, आपका
0: जी
1: आकाशवाणी स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
0: धन्यवाद भैया जी।
1: भैया, सबसे पहले तो ये बताइए कि धान जो हमारे तरफ के जनपद में जो है मुख्य फसल माना जाता है
0: जी
1: खरीफ में, इधर हमें सुनने में आ रहा है कि आप सब्जियों की तरफ ज्यादा रुझान है, उस
0: जी
1: तरफ आपका, तो ऐसा रुझान कैसे हुआ आपका?
0: भैया, मेरा मानना है कि आज खेती के लिए जमीन बहुत कम किसानों के पास रह जा रहा है, और कम जमीन में चूंकि आय अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, घर परिवार को चलाने के लिए, बच्चों की पढ़ाई लिखाई और अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आदमी सिर्फ धान गेहूं पे आश्रित रहेगा तो उसकी खर्चा पूरा नहीं हो सकता है। इसलिए मैं अपने दिमाग में लाया कि हमारे पास जब जमीन कम है तो अपने खाने भर के लिए ही हम धान, मक्का या अरहर इस सब की खेती करें। बाकी जो जमीन हमारे पास बच रहा है उसमें हम नाना प्रकार के सब्जी का उत्पादन करें।
1: अच्छा।
0: चूंकि सब्जी में आदमी एक बार पौधा लगा देगा और उससे कई बार तोड़ान करके और इनकम लिया जा सकता है।
1: मतलब आय
0: हर
1: का
0: दूसरे
1: साधन।
0: तीसरे दिन मार्केट, चूंकि हमारे बहुत 10 किलोमीटर के नजदीक में कटौधी से 10 किलोमीटर की दूरी पर रेणुकूट है और 12 किलोमीटर पर दुधी की मंडी है, सब्जी
1: मतलब
0: मंडी।
1: दोनों दोनों बाजार आप पकड़ लेते हैं।
0: जी, यदि सब्जी हम ज्यादा उत्पादन कर ले रहे हैं तो मंडी में जाकर जल्दी से बेच लेंगे, और कम है तो फुटकर अच्छे रेट में रेणुकूट मार्केट में
1: बेच
0: बेचेंगे।
1: लेंगे। तो अभी अपने खेत में कौन कौन सब्जी आप लगोले बड़न?
0: अभी हम भैया लगभग 8-10 प्रकार की सब्जी एक बीघे में खेती किए हैं,
1: अच्छा।
0: जिसमें 50 ग्राम करेले की खेती किए हैं, 100 पौधा लगाए हैं चार कतार में लमसम 100-100 मीटर का के दूरी पर। फिर बोदी लगाए हैं 40 ग्राम, और लौकी लगाए हैं, कोहड़ा लगाए हैं, और खीरा लगाए हैं, देसी खीरा, जिसका कि आजकल मार्केट में बहुत डिमांड है। इसके अलावा 6 बिस्सा जमीन में 2,000 पौधे हमने बैगन के लगाए हैं, और टमाटर की भी खेती में कर दिया हूँ, जो कि खूटा गाड़कर बांस बल्ली लगा करके और फर्स्ट स्टेप में उसको रस्सी धागा लगा चुके हैं।
1: तो ये
0: और
1: सब
0: सेम
1: का
0: की भी खेती हमने देसी सेम की खेती किया है, जिसे 2-3 जून को लगाए थे और वह सेम अभी हर गांठ में फूल आना प्रारंभ हो गया है।
1: कुछ दिन बाद फलत भी हो जाएगी,
0: जी,
1: फिर
0: 15 दिन के बाद वो
1: फलत
0: निकलने
1: आना शुरू हो
0: लगेगा।
1: जाएगा। ब्रह्मानंद भैया, बुआई के बाद जो शुरुआती अवस्था होले, वो मेन किसान भैया लोगों के सबसे पहले कौन कौन चीज सावधानी रखे के चाहिए?
0: पहले तो बुआई करने के बाद पौधा जैसे ही निकल रहा है हमें प्रतिदिन खेत पर 1 राउंड तो जरूर ही जाना चाहिए निगरानी के लिए कि मेरा पौधा क्या कह रहा है। पौधा देख करके उसके स्वास्थ्य का पता चल जाएगा कि पौधा मेरा बिल्कुल स्वस्थ है या इसमें कुछ फैटपन है, मुरझा रहा है, पीला हो रहा है। तो उसको तकरीबन 15 से 20 दिन का पौधा हो जा रहा है तो एनपीके 19-19-19 का छिड़काव कर देने से उसको पोषक तत्व तो मिल जाता है, हरा जल्दी से होने लगता है। पौधों के पास निराई गुड़ाई कर देना चाहिए।
1: तो लगभग सभी जितने भी सब्जियां हैं, लगभग सभी के साथ यही स्थिति रहेगी?
0: जी, यही स्थिति है।
1: जी। तो जैसे जब कीट का प्रकोप होता है, तो
0: जी,
1: उसके प्रकोप को कम करने के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए उसमें?
0: कुछ कीटनाशक हैं जिसका कि छिड़काव हम करते हैं। आजकल एमिमा मैक्टिन नाम से कीटनाशक है और उसके साथ एसीटा, जो मक्खी दिखते नहीं है ऐसे नंगी आंखों से, लेकिन सफेद मक्खी जरूर वहां पे प्रकोप उसका रहता है, उससे पत्तियां सिकुड़ने लगती हैं और ग्रोथ रुक जाता है, चूंकि पौधा बीमार हो जाता है, बीमार पौधा विकास नहीं कर पाता है। कोई भी छोटा भी कीटनाशक जैसे प्रोफेक्स और भी कुछ उससे तगड़े कीटनाशक हैं, उसके साथ मिला करके इन दोनों का और घोल बनाकर छिड़काव करने से तुरंत नियंत्रण होना चालू हो
1: हो
0: जाता है।
1: जाता है। तो जैविक और रासायनिक दोनों के संतुलन से चलता है सब?
0: हाँ, जैविक आजकल जिस तरह से लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान देते हुए जैविक की ओर तो ध्यान
1: झुकाव
0: देना
1: ज्यादा है।
0: जरूरी है, चूंकि रासायनिक दवाइयों में खर्च भी बहुत ज्यादा आता है, लेकिन सहारा लेना पड़ता है
1: थोड़ा
0: उसका।
1: वो सहारा उसका भी लेना होता
0: जी,
1: है। खरपतवार नियंत्रण कैसे करते हैं फिर?
0: खरपतवार हम लोग चूंकि गांव से हैं सर, इसलिए वहां पर मजदूर मिल जाते हैं और भरसक कोशिश करते हैं अपने परिवार के ही लोग मिल करके, खर्चे को चूंकि बचाना है
1: जी, घर के सदस्य मिल जाते हैं
0: तो घर
1: तो।
0: के सदस्य ही करते हैं, और जब काम नुकसान जाने की स्थिति में होता है तो एक दो मजदूर ले लेते हैं। और जैसे बैगन या ये जो खेती किए हैं अभी, टमाटर वगैरह की, करेले की, तो इसको कतारों में किए हैं, 1 मीटर की फासले पर बीच में जगह रखे हैं, तो आजकल खरपतवार नाशी भी मार्केट में दुकानों पर उपलब्ध हैं। जब नहीं कर पाते हैं उसको समय से, जानते हैं कि अब हमारा फसल नुकसान होने की ओर हो रहा है, तो ला करके उसका छिड़काव कर देते हैं। 10-15 दिन का टाइम मिल जाता है
1: मिल
0: हम
1: जाता है
0: लोगों को
1: आपको।
0: निराई गुड़ाई के लिए।
1: जी, तो निराई गुड़ाई से पहले सिंचाई वगैरह भी करते होंगे, तो सिंचाई
0: जी,
1: की योजना कैसे बनाते हैं आप?
0: सिंचाई के लिए अपने पास बोरिंग की व्यवस्था है, और ज्यादा जरूरत हुआ, उससे दिक्कत हुआ तो मोटर लगाकर कहीं से भी, अभी बरसात में हालांकि ऊपर के ही पानी से काम चल रहा है।
1: तो बरसात अभी इस समय कैसा हो रहा है?
0: बरसात मध्यम गति का है इस साल, अन्य साल की अपेक्षा इस
1: तो
0: साल।
1: अभी जैसे अगर बरसात अगर ज्यादा हो जाएगा
0: जी,
1: तो उसमें फिर कैसे नियंत्रण करेंगे या
0: पानी का
1: क्या?
0: निकास,
1: हाँ पास।
0: पानी का निकास होना चाहिए। चूंकि कतार से किए हैं तो हर पौधे को कतार से मेढ़ी दे देंगे ताकि वहां पानी उसके जड़ में ना जाए, नहीं तो जड़ सड़न होने लगेगा, पौधा गलने लगेगा।
1: गलने लगेगा।
0: और भरसक कोशिश करना है आदमी को कि ढलुआ जमीन में, इस समय की जो अगेती सब्जी की खेती है बरसात वाली, तो ढालदार जमीन में हो ताकि पानी का ठहराव ना हो
1: न
0: वहां पे।
1: होने पाए। ठीक है ब्रह्मानंद भैया, सुनत वाणी की आप गोभी की नर्सरी भी तैयार करते हो, इनमें कौन कौन चीज का विशेष ध्यान देते हो आप?
0: गोभी की नर्सरी, अभी चूंकि गोभी बहुत नाजुक पौधा
1: बहुत
0: उसका है, अब बरसात हो रहा है तो क्यारी में ना करके इसका हमें बेड बनाना चाहिए,
1: अच्छा।
0: जो कि जमीन के सतह से ऊंचा बना दीजिए उसको,
1: कितना ऊंचा?
0: लमसम 6 इंच,
1: 6 इंच है।
0: 5-6 इंच ऊंचा बेड बना करके, और उसमें भी ढाल दीजिए, एक साइड ढाल रहे, एक साइड कुछ ऊंचास रहे, और बीज उसमें किए हैं। और ऐसे दिन में जब मौसम खुला रहेगा तो ग्रीन नेट ऊपर से देकर पहले से ही तैयारी में रखे हैं, ताकि यदि तगड़ा बारिश हो जाएगा तो पौधे नाजुक हैं, नुकसान चला जाएगा।
1: जी,
0: बीज आजकल वैसे ही महंगा आ रहे हैं सब, 700 रुपए का 10 ग्राम, तो उसे बचाना है, इसलिए ग्रीन नेट लगा कर रखे हैं किनारे से प्लास्टिक, ताकि बारिश, आदमी बहुत किसान ऐसे करते हैं ऊपर से तो प्लास्टिक डाल दिए या नेट डाल दिए, साड़ी वगैरह डाल दिए, लेकिन बगल से हवा मार करके जो बारिश आता है उनके पौधों को काफी नुकसान कर देता
1: नुकसान
0: है, तो
1: पहुंचाता है।
0: ऐसे करना चाहिए।
1: ब्रह्मानंद भैया, आपके ये सब चीज में खेती बाड़ी करे में लगभग कितना अनुभव हुई?
0: हम भैया तकरीबन 10 साल से खेती से जुड़े हैं, और हमारा यही सोच, मैं चूंकि इंटर करके और बीए किया हुआ किसान हूँ, तो मैं शुरू से ही अपना दिमाग इस ओर लगाया कि हम यदि गेहूं पैदा करते हैं तो 4 बीघे में हमको खेती करना है, तो गेहूं मुश्किल से हमें 15 क्विंटल आएगा, 20 क्विंटल आएगा, और यदि हम सब्जी की खेती कर रहे हैं तो सब्जी 1 बीघे में ही हम 20 क्विंटल आलू बेच देंगे, उस सारे गेहूं के बराबर 1 बीघे में आमदनी हो जाएगा, तो मैं बराबर आधे में खाने के लिए अनाज पैदा करता हूँ, और आधे से ज्यादा में और आधे से कम में सब्जी की खेती जरूर करता हूँ, वो भी कई प्रकार की सब्जी, क्योंकि एक आइटम पैदा करेंगे और ज्यादा पैदा हो जाएगा तो उसमें रेट मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो मेरा नुकसान चला जाएगा।
1: जी, चलते चलते हम किसान भाई से आप क्या कहना चाहेंगे कि वो कैसे अपनी खेती की लागत कम कर सकते हैं, उसके लिए क्या सलाह देंगे?
0: देखिए भैया, हम यही कहना चाहेंगे अपने किसान भाइयों से कि पुराने ढंग की खेती से आज अच्छा आय उत्पादन, आय अर्जन नहीं हो सकता है, इसलिए कुछ आधुनिक तकनीक से खेती करने की आवश्यकता है, और आधुनिक जो मशीनरी आ गए हैं, ट्रैक्टर है, दवा छिड़काव का सुविधा है, उन सब का प्रयोग करें और सब्जी की खेती जरूर करें। सब्जी की खेती में चूंकि बैगन ही लगा दिए आप और उसका हर तीसरे दिन तुड़ान होते रहेगा और अच्छा उत्पादन होता है, और मक्का गेहूं

0: धान जो है ये सिर्फ एक बार होने वाली फसल है,
1: जी
0: और
1: जी जी
0: सब्जी बराबर निकलते रहेगा, उससे पैसे बराबर आएंगे।
1: जी जी जी तो देखें किसान भैया बहन लोगन, आज के बातचीत से ये बात साफ बा कि खेती में सफलता खाली ज़्यादा उत्पादन से नहीं, बल्कि सही समय पर सही प्रबंधन, बाजार का जानकारी, फसल में विविधता और सुरक्षित खेती से मिलेला। खरीफ के साथ अगेती सब्जी की खेती किसान परिवार के आमदनी का एगो मजबूत सहारा बन सकेला। तो इतना अच्छा जानकारी देवे खातिर ब्रह्मानंद भैया और
0: नमस्कार
1: आकाशवाणी स्टूडियो में आप पधारलन, एहू के बदले आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
2: नंदू भैया,
3: जलेबी भौजी,
2: जानकारी सुन ला।
3: बिल्कुल उस सब्जी के बारे में बहुत जोन बा प्रोत्साहन दिला है अपन ब्रह्मानंद भैया। तो कहीं न कहीं जोन बा हमरे हाथ में देखें आज सब्जी के बाजार भावी रोज की तरह बा।
2: वाह वाह वाह, सब्जी के बात भइल और सब्जी के बाजार भाव तक कौने मंडी के हो?
3: ये देखें अपन रावड़सगंज मंडी के बा और कुंतल में बा। आलू देखें 1100 से 1200, प्याज रहल 2800 से 3000, टमाटर रहल 2600 से 2800, मूली रहल 2500 से यानी 2500 से 2800, लौकी रहल 1400 से 1500, करेला रहल 2200 से 2500, भिंडी रहल 1000 से 1200, पालक 1200 से 1400, चौराई रहल 1000 से 1200, कोहड़ी रहल 1800 से 2000, बैगन रहल गोल वाला 3000 से 3200 रुपया, लंबा वाला 1000 से 1200, परवल रहल 6000 से 6500, कुंदरू रहल 2000 से 2200, सूरन रहल 4000 से 5000, धनिया रहल हरा वाला 7000 से 8000, अदरक रहल नया वाला 7000 से 8000, हरा मिर्च रहल 3200 से 3500, लहसुन रहल 15000 से 16000, नेनुआ रहल 1500 से 1800 रुपया, बोड़ा रहल 2000 से 2200 रुपया, खीरा भी रहल 2000 से 2200 रुपया, और फूल गोभी रहल आपके 2500 से 3000 रुपया सैकड़ा, पत्ता गोभी रहल 2200 से 2500 रुपया सैकड़ा, और नींबू रहल 300 से 400 रुपया प्रति सैकड़ा। तो ई रहल आज के रावर्सगंज मंडी के ताज़ा बाजार भाव। रावर्सगंज मंडी के बाबूलाल मौर्य भैया से भेजले रहें, इनकर भी दिहल जाए धन्यवाद। और कहीं न कहीं जोन बा एक बात जान लिहल जाए भाजी कि अगर खेती बाड़ी के सही तरह से अगर कम लागत अगर आपके लाने के बा तो आधुनिक कृषि यंत्र के आपके जरूर जोन बा इस्तेमाल करे के होई। कैसे कि जब तक आप आधुनिक कृषि यंत्र इस्तेमाल ना करिए तब तक जोन बा कम लागत के संभावना एकदम ना करल जा सकला। पहले रहल कि जो बरधा से अपन गेहूं हो
2: जुताई होत
3: गए
2: रहे।
3: या कोनो भी अगर दवाई होके तो महीनों महीनों लग जाए, लेकिन अब तो जोन बा थ्रेसरिंग जोन बा कुछ घंटा में ही अपन निकाल देवला। और देखें सीड ड्रिल हो गई बुआई खातिर, रोटावेयर खेत के जल्दी तैयार करे खातिर, रीपर हो हार्वेस्टिंग हो गई फसल कटाई से अपन मजदूरी बच जाला। तो ई सब रहल आपके, तो कहीं न कहीं अब तो हम यह कहब कि इतना बढ़िया अब जानकारी भई, लेकिन घड़ी के इशारा बा कि आज के पंचायती अब यहीं समेटल जाए, फिर अगले पंचायती में बात होई तो सब पंचन के राम राम।

हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। श्रोताओं, ये गीत आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाजों में। फिल्म है मोहब्बतें।

0: श्रोताओं, ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाजों में। फिल्म थी मोहब्बतें।
1: गाइए, गुनगुनाइए, कहिए हमसे दिल की बात।
2: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
3: हेलो,
1: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
2: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
1: डायल करिए 0544529710 मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
2: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
1: ओनली ऑन AIR ओबरा।
0: और श्रोताओं, आइए अब आपको सुनवाते हैं दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, इस फिल्म का गाना। गीत को लिखा है आनंद मिलिंद ने, धुन बनाई है जतिन ललित ने, और आवाज़ें एक बार फिर लता मंगेशकर और उदित नारायण की।

हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है लोकगीत, कलाकार हैं राम आशीष और उनके साथी। आरंभ करते हैं इनके गाए हुए दादरा के साथ।

0: इसी के साथ लोकगीतों का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। आज के कलाकार थे रामाशीष और उनके साथी। हम आकाशवाणी ओबरा से बोल रहे हैं, कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़ दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
2: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मैं 15-20 वर्षों से खेती कर रहा हूँ, मेरे पास 3 हेक्टेयर लगभग जमीन है। प्रधानमंत्री फसल बीमा हमें आर्थिक मदद करती है। समय 23-24 में खरीफ की फसल में 48,900 रुपए मिला। हमारे जो संपर्की किसान है मैं उनको समझाऊंगा बताऊंगा, जैसे मुझे सहायता प्राप्त हुई है ऐसे अन्य लोगों को भी हो।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: बोल बोल के थक गया,
6: क्या हुआ?
5: नया किडबैक चाहिए।
6: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
5: करेक्ट।
6: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर सीएमएस पोर्टल पर शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर सीएमएस पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी ना मंजूर।
5: चले
6: ले आ गया नया किडबैक।
7: आरबीआई कहता है
8: पहले अपना बैंक फिर आरबीआई ओम्बुड्समैन।
9: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश भर में नई ई पॉस आधारित कोटेदार कमीशन प्रणाली का हुआ शुभारंभ। उचित दर विक्रेताओं के लाभांश को बढ़ाकर किया गया 125 रुपए प्रति क्विंटल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नागपंचमी पर गोरखनाथ मंदिर परिसर में 2 दिवसीय प्रदेश स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता के विजेताओं को किया पुरस्कृत। युवा शक्ति को सही राह दिखाने के लिए खेल संस्कृति को आगे बढ़ाए जाने पर दिया बल। भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय पदाधिकारियों के नामों की गई घोषणा। प्रदेश से 8 पदाधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारी। और प्रदेश के अधिकांश जिलों में मौसम विभाग ने कल भारी बारिश का अलर्ट किया जारी। नदियों का जलस्तर बढ़ने से वाराणसी और चित्रकूट में प्रशासन ने बढ़ाई निगरानी। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज उचित दर विक्रेताओं के लिए नई ई पॉस आधारित कोटेदार कमीशन प्रणाली का लखनऊ से शुभारंभ किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने उचित दर विक्रेताओं के लाभांश को 90 रुपए से बढ़ाकर 125 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। उन्होंने कहा कि पिछले 9 साल में सरकार ने प्रदेश खाद्य वितरण प्रणाली की खामियों को दूर करने का काम किया है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आदेश पर उचित मूल्य विक्रेताओं से जुड़ी दुकानों को अन्नपूर्णा भवन के रूप में निर्मित किया जा रहा है, जहां दुकान और वेयर हाउस की सुविधा दी जाएगी।
10: आप सभी अपने यहाँ अन्नपूर्णा भवनों के निर्माण की कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़वाई। धनराशि का आवंटन सरकार आपको करेगी। राशन वितरण का काम तो आप 1 सप्ताह 10 दिन कर लेंगे, 20 दिन आप उस वेयर हाउस का उपयोग अन्य कार्यों के लिए भी कर सकते हैं। अतिरिक्त इनकम उससे भी कमा सकते हैं। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट से जुड़े हुए उत्पाद भी अगर हम वहाँ रखेंगे, उस पर्व और त्योहार में अगर हम स्थानीय उत्पाद को भी प्रायोरिटी देते हैं, हमारा जो स्थानीय कारीगर हस्तशिल्पी उससे प्रोत्साहित होगा, उसके माध्यम से हम भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेंगे।
9: मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का कन्नौज, बलरामपुर, कौशाम्बी, गोरखपुर, सुल्तानपुर, चित्रकूट, कानपुर देहात और बदायूं सहित विभिन्न जिलों में सीधा प्रसारण किया गया। कोटेदारों में लाभांश बढ़ाए जाने की घोषणा के बाद उत्साह देखा गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर परिसर में नागपंचमी के अवसर पर खेल विभाग और जिला कुश्ती संघ की ओर से आयोजित 2 दिवसीय प्रदेश स्तरीय सीनियर प्राइज मनी पुरुष कुश्ती प्रतियोगिता के समापन समारोह में शामिल हुए और विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार प्रदान किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र और प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं के माध्यम से युवाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि युवा शक्ति को सही राह दिखाने के लिए सरकार की खेल संस्कृति को सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। उद्यान कृषि विपणन राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने लखनऊ में योजनाओं के सफल और पारदर्शी क्रियान्वयन के लिए नव विकसित ऑनलाइन पोर्टल potato.uphorticulture.in का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने आलू उत्पादक किसानों के लाभ के लिए 3 नई योजनाएं शुरू की हैं, जिनमें 1,000 करोड़ रूपये का भामाशाह भाव स्थिरता कोष, भंडारण शुल्क में छूट और आलू के बीज पर छूट शामिल है।
7: राज्य में भामाशाह भावांतर योजना का हम शुभारंभ कर रहे हैं, जिसमें 1,000 करोड़ का प्रावधान उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। निर्धारित लागत मूल्य का जो अंतर होगा उसका 25% अनुदान राज्य के किसानों के खाते में DBT के माध्यम से अंतरित हो जाएगी। जो आलू किसानों के द्वारा अपना आलू शीत गृहों में भंडारित किया गया है, उसके किराए में 100 रूपए प्रति किलो के हिसाब के दर से राज्य सरकार उन्हें अनुदान
9: DBT
7: के माध्यम से देगी।
9: उच्चतम न्यायालय ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को राहत देते हुए आज इलाहाबाद उच्च न्यायालय से कहा है कि वो कांग्रेस नेता के खिलाफ आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति के मामले में कार्रवाई न करे। शीर्ष अदालत ने CBI और प्रवर्तन निदेशालय से भी कहा है कि वे गांधी के खिलाफ दर्ज मामले के संबंध में उच्चतम न्यायालय के समक्ष कोई रिपोर्ट दाखिल न करें। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाला बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ राहुल गांधी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज पार्टी के नए केंद्रीय पदाधिकारियों के नामों की घोषणा की। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता पीयूष गोयल को पार्टी का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया। श्री BL संतोष को राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बनाया गया है। वहीं 13

0: राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और 8 राष्ट्रीय महामंत्री नियुक्त किए गए हैं। पार्टी ने अपने विभिन्न मोर्चों के नए प्रमुखों के नाम भी घोषित किए हैं। पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों में उत्तर प्रदेश के अमरपाल मौर्य को ओबीसी मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि कुंवर बासित अली को अल्पसंख्यक मोर्चा की जिम्मेदारी दी गई है। प्रदेश से रेखा वर्मा और प्रोफेसर तारिक मंसूर को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। हरीश द्विवेदी और स्मृति ईरानी को राष्ट्रीय महामंत्री की जिम्मेदारी मिली है। वहीं डॉ भोला सिंह और संगीता यादव को राष्ट्रीय मंत्री नियुक्त किया गया है। सहारनपुर में आज से अग्निवीर भर्ती रैली शुरू हो गई है। डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर स्पोर्ट्स स्टेडियम में शुरू हुई भर्ती रैली में पहले दिन हापुड़ जिले की 3 तहसीलों के 899 युवाओं ने शारीरिक दक्षता परीक्षा में हिस्सा लिया। भर्ती रैली 4 सितंबर तक चलेगी। नागपंचमी का पर्व आज प्रदेश भर में पारंपरिक तरीके से श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। श्रावण मास के तीसरे सोमवार और नागपंचमी पर वाराणसी के श्रीकाशी विश्वनाथ धाम में दर्शन पूजन के लिए देश के विभिन्न हिस्सों से पहुंचे कांवड़ियों और श्रद्धालुओं का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। एक रिपोर्ट।
1: पुष्प वर्षा से कांवड़ियों के चेहरे खिल उठे और वातावरण भक्तिमय हो गया। काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं ने बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन किया। मार्कंडेय महादेव और महामृत्युंजय मंदिर में भी भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। श्रद्धालुओं ने शिवलिंग पर जलाभिषेक कर सुख समृद्धि की कामना की। नागपंचमी पर प्राचीन नागकुआं मंदिर कारकोटक वापी में भी आस्था का सैलाब उमड़ा। भक्तों ने नाग देवता और नागेश्वर महादेव का विधि विधान से पूजन किया। नागकुंड में दूध जल और लावा अर्पित करने की परंपरा निभाई गयी। सिंह, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी।
0: वहीं बाराबंकी, अमेठी और जौनपुर के मंदिरों में जलाभिषेक के लिए पहुंचे शिव भक्तों तथा कांवड़ियों पर भी हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कराई गई। अयोध्या में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पवित्र सरयू नदी में आस्था की डुबकी लगाई और प्राचीन नागेश्वरनाथ मंदिर पहुंचकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। वहीं लखनऊ, गोरखपुर, पीलीभीत, आगरा, अमरोहा, फर्रुखाबाद और जौनपुर में भी प्रमुख शिव मंदिरों में भक्तों ने जलाभिषेक किया। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा और यातायात के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के कई जिलों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकांश जिलों में कल भी मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। मौसम वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि विभाग द्वारा इसके लिए अलर्ट जारी किया गया है।
2: कल भी भारी वर्षा का जो सदर्न पोर्शन है और तराई बेल्ट है, वहाँ पर भारी वर्षा होने की संभावना है। जैसा कि लो प्रेशर धीरे धीरे मूव होकर उत्तर प्रदेश की तरफ आ रहा है, तो कहीं ना कहीं 20-21 को फिर से जो उत्तर प्रदेश के साउथ वाले हिस्से हैं, बुंदेलखंड, विंध्या रीजन, से बहुत भारी वर्षा आने की संभावना हो सकती है। तापमान में जैसा कि 3-4 डिग्री की गिरावट हुई है, यही क्रम में कल भी रहेगा। बाकी परसों से हल्का हल्का खुलेगा, हालांकि हल्की हल्की बारिश का सिलसिला बना रहा।
0: प्रदेश में लगातार हो रही बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण कई जनपदों में बाढ़ के हालात हैं। वाराणसी में गंगा का बढ़ा हुआ जलस्तर घाटों के ऊपरी हिस्सों की ओर बढ़ रहा है, जिसको देखते हुए प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। वहीं चित्रकूट में मंदाकिनी नदी खतरे के निशान को पार कर गई है। प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर रामघाट की ओर जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश भर में नई ईपॉस आधारित कोटेदार कमीशन प्रणाली का हुआ शुभारंभ। उचित दर विक्रेताओं के लाभांश को बढ़ाकर किया गया 125 रुपये प्रति क्विंटल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नागपंचमी पर गोरखनाथ मंदिर परिसर में 2 दिवसीय प्रदेश स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता के विजेताओं को किया पुरस्कृत। युवा शक्ति को सही राह दिखाने के लिए खेल संस्कृति को आगे बढ़ाए जाने पर दिया बल। भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय पदाधिकारियों के नामों की गई घोषणा। प्रदेश से 8 पदाधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारी। और प्रदेश के अधिकांश जिलों में मौसम विभाग ने कल भारी बारिश का अलर्ट किया जारी। नदियों का जलस्तर बढ़ने से वाराणसी और चित्रकूट में प्रशासन ने बढ़ाई निगरानी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: नई कार जीतने का मौका, वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
4: रुक जा बुद्धू,
3: ऐसे पॉपअप से सावधान।

0: स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
1: तू समझ गई ना, रिलैक्स।
2: पर कार की कहते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
0: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
3: FM 102.7 पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं।

श्रोताओं सुनते हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सबरस। ये गीत हमने लिया है श्रोताओं, ये गीत हमने लिया है अलका याग्निक और साथियों की आवाजों में। फिल्म है चुरा लिया है तुमने

0: Don't you love me, baby? तेरी अदा,
1: तेरी नजर। श्रोताओं, ये गीत आप सुन रहे हैं शान और अलका याग्निक की आवाजों में।

0: माना इंतजार का आलम बड़ा सख्त लगता है, लेकिन क्या करे, दिल की बात जुबान पे आते आते वक्त लगता है।
1: समझा करूं तुमसे।

श्रोताओं, सबरस कार्यक्रम का अगला गाना सुनते हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में। फिल्म है मैंने दिल तुझको दिया।

0: चाहिए, वो भी ऐप से।
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: एक 102.7 पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ओबरा का प्रसारण। समय हुआ है रात्रि के 7:41 और 48 सेकेंड। कार्यक्रम चल रहा है सबरस। कार्यक्रम का अगला गीत सोल्जर फिल्म से है, गाया है अलका याग्निक ने, गीत को लिखा है समीर ने और इसकी धुन बनाई है अनु मलिक ने।

श्रोताओं, राजेश रोशन के संगीत निर्देशन में ये गीत है फैज अनवर का लिखा हुआ। आवाजें हैं श्रेया घोषाल और उदित नारायण की। फिल्म है कृष।

0: गाइए गुनगुनाइए, कहिए हमसे दिल की बात।
1: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
2: हेलो,
0: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
1: जो चाहिए वो ट्रैक सुनाइए।
0: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
1: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
0: ओनली ऑन AIR ओबरा।
3: सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा।
4: हमारा हिंदुस्तान जहान में सबसे अच्छा है, क्योंकि यहां है अच्छे लोग, अच्छा सिस्टम और देशवासियों की सेवा व सुरक्षा के लिए UP 112 की अच्छी सेवाएं।
3: पुलिस, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, प्राकृतिक आपदा, साइबर क्राइम, महिला व बाल अपराध जैसी किसी भी आपातकालीन स्थिति में 112 पर कॉल करें।
5: UP 112 की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रथम प्रतिक्रिया के लिए कॉल UP 112, नंबर 1, सेवाएं अनेक।
6: श्रोताओं, सबरस कार्यक्रम में अब हमने लिया है फिल्म तुम बिन का गाना। इसे गाया है अनुराधा पौडवाल और अभिजीत ने।

हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत, और इस कार्यक्रम में आज के कलाकार हैं अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन।

श्रोताओं, सुगम संगीत के इस कार्यक्रम में आज के कलाकार हैं अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन। आइए सुनते हैं इनकी गाई हुई अगली गजल।

अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की गाई हुई इस गजल के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। श्रोताओं, हम आपको बता दें कि सुगम संगीत एक बार आप फिर से सुन सकेंगे रात 8:30 पर।

श्रोताओं, आइए कार्यक्रम का पहला गाना आपको सुनवाते हैं अलका याग्निक और साथियों की आवाजों में। फिल्म है सिर्फ तुम, बोल लिखे हैं समीर ने और इसकी धुन बनाई है नदीम श्रवण ने।

ये है एलिशा चनाय का गाया हुआ गीत फिल्म मर्डर के लिए। गीत को लिखा है सईद कादरी ने और इसकी धुन बनाई है अनु मलिक ने। हाँ।

श्रोताओं, इस गीत को हमने लिया है फिल्म गैंगस्टर से और गाया है इसे के ने। गीत को लिखा है सईद कादरी ने और धुन बनाई है प्रीतम ने।

हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए एक बार फिर सुनते हैं सुगम संगीत कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम में आज के कलाकार आशा भोसले और गुलाम अली। सुनवाते हैं इनकी गाई हुई ये पहली गजल।

आशा भोसले और गुलाम अली की गाई हुई इस गजल के साथ ही सुगम संगीत का यह कार्यक्रम अब खत्म हुआ। ये आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है। अब से कुछ ही देर बाद यानी 8:45 पर आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। तत्पश्चात 9 आप सुन सकेंगे अंग्रेजी में समाचार। लीजिए प्रतीक्षा कीजिए समाचारों की।

0: परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, स्वतंत्रता दिवस से पहले आईएसआई समर्थित शहजाद भट्टी आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त किया गया, 200 से अधिक संचालक गिरफ्तार। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग योजना के अंतर्गत लगभग 7,900 करोड़ रुपए के 31 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने परीक्षा सुधारों पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को सभी परीक्षा प्रक्रियाओं की गहन जांच करने का निर्देश दिया। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय पदाधिकारियों की नई टीम की घोषणा की। पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी और वसुंधरा राजे सिंधिया प्रमुख नामों में शामिल। कतर में रहने वाले भारतीयों के लिए डाकघरों से यूपीआई के माध्यम से घर पैसे भेजने की सुविधा शुरू। और गोल क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका पहली पारी में 284 रन पर सिमटी, भारत को 178 रन की बढ़त। और अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के

0: नेतृत्व में सरकार ने स्वतंत्रता दिवस से पहले आईएसआई समर्थित शहजाद भट्टी आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त कर 200 से अधिक संचालकों को गिरफ्तार किया और हमलों की साजिश नाकाम की। एक रिपोर्ट।
1: ये आतंकी गतिविधियां स्वतंत्रता दिवस के आसपास की जानी थी। इस ऑपरेशन के तहत 14 राज्यों में 200 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनमें उत्तर प्रदेश से 62, हरियाणा से 52, दिल्ली से 51 और पंजाब से 44 लोग शामिल थे। ऑपरेशन के दौरान आईएसआई समर्थित इस आतंकी संगठन के पास से आईईडी, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के निशान वाले ग्रेनेड, पिस्तौल, कारतूस और जासूसी के लिए इस्तेमाल होने वाले सीसीटीवी कैमरे बरामद किए गए। शहजाद भट्टी नेटवर्क पाकिस्तान में स्थित और आईएसआई समर्थित एक आतंकी सिंडिकेट है जो पूरे भारत में ग्रेनेड, आईईडी और पेट्रोल बम हमलों और टारगेटेड हत्याओं से जुड़ा है। अब तक इस नेटवर्क के खिलाफ 80 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की गई हैं और 200 से ज्यादा गिरफ्तारियां की गई हैं। अमन यादव के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग योजना के अंतर्गत 31 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं में करीब 7,900 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। ये प्रस्ताव 10 राज्यों से मिले हैं, जिनमें तमिलनाडु से 7, महाराष्ट्र और हरियाणा से 6-6 प्रस्ताव शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में प्रस्तावकों को मंजूरी पत्र सौंपे। श्री वैष्णव ने कहा कि इन परियोजनाओं से रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
2: इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम में 106 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हो चुके हैं। इन एक प्रोजेक्ट्स में 69,548 करोड़ इन्वेस्टमेंट आ रहा है और 2.5 लाख लोगों को टोटल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मिला के इन फैक्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। जिस स्कीम में 31 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं, बहुत तेजी से इंडस्ट्री ने अपना इन्वेस्टमेंट लगाकर 38 प्रोजेक्ट्स में मैन्युफैक्चरिंग और ऑलरेडी चालू कर दी है और 16 प्रोजेक्ट्स अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि इन परियोजनाओं में एसिटिलीन ब्लैक, स्पीकर और माइक्रोफोन, ऑप्टिकल ट्रांसीवर, कैपेसिटर और कॉइल जैसे उत्पादों का विनिर्माण शामिल है।
2: भारत में पिछले 12 वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 7 गुना बढ़ी है, अब 13 लाख करोड़ से ज्यादा पहुंच चुकी है और इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट्स 11 गुना बढ़कर 4 लाख करोड़ से ज्यादा के इलेक्ट से होने लगे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में पहले फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, उसके बाद में मॉड्यूल्स और उसके बाद में कंपोनेंट्स और आगे डीप जाने पर कंपोनेंट्स को मैन्युफैक्चर करने वाले मटेरियल्स और कैपिटल इक्विपमेंट, जिन मशीनों से इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चर होती है।
0: शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। एक रिपोर्ट।
3: श्री जोशी ने स्थापित परीक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने गोपनीय संचालन व्यवस्था में व्यापक सुधार करने को कहा है। उन्होंने सुरक्षित कक्षों और एयर गैप सिस्टम को मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जमा करने संबंधी प्रोटोकॉल में भी व्यापक सुधार युद्ध स्तर पर लागू करने को कहा है। श्री जोशी ने एजेंसी को सभी परीक्षा प्रक्रियाओं का व्यापक ऑडिट कराने और की गई सुधारात्मक कार्रवाई पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को भी कहा है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर बताए गए शक्ति की सप्त धारा से कृषि और ग्रामीण भारत को नई दिशा मिलेगी। उन्होंने कहा कि सरकार जनता के हित में योजनाएं बनाकर और उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करके इस लक्ष्य को पूरा करेगी। प्रधानमंत्री ने कृषि और खाद्य उत्पादन को मजबूत करने, खाद्य प्रसंस्करण तथा वैश्विक बाजारों तक पहुंच बढ़ाने को प्राथमिकता बताया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज पार्टी के नए राष्ट्रीय पदाधिकारियों की घोषणा की। श्री नवीन ने वसुंधरा राजे सिंधिया, तीरथ सिंह रावत, राम माधव, बैजयंत जय पांडा, सरदार मनप्रीत सिंह बादल और रेखा वर्मा सहित 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्षों की नियुक्ति की है। एक रिपोर्ट।
4: केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता पीयूष गोयल को पार्टी का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री बीएल संतोष को संगठनात्मक राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। श्री नवीन ने विनोद तावड़े, सुनील बंसल, स्मृति ईरानी और बिप्लव कुमार देव सहित 8 पार्टी नेताओं को राष्ट्रीय महासचिव भी नियुक्त किया है। पार्टी ने अपने विभिन्न मोर्चों के नए प्रमुखों के नाम भी घोषित कर दिए हैं, जिनमें डॉक्टर हेमांग जोशी युवा मोर्चा अध्यक्ष, रूप कुमार चौधरी महिला मोर्चा अध्यक्ष और बंसीलाल गुर्जर किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
0: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता

0: और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि नवनियुक्त पदाधिकारी पार्टी को मजबूत करने और जनसेवा पर ध्यान केंद्रित करने में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। श्री नवीन ने विश्वास व्यक्त किया कि समर्पित कार्यकर्ता की भावना से परिपूर्ण प्रत्येक सदस्य संगठन को और मजबूत करेगा। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि नवनियुक्त पदाधिकारी विकसित भारत के संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रति प्रतिबद्धता को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में सचिव तन्मय कुमार ने कहा है कि ब्रिक्स संगठन पिछले दो दशक में आर्थिक संवाद मंच से विकसित होकर महत्वपूर्ण चुनौतियों के समाधान का प्रभावी मंच बन गया है। आज नई दिल्ली में जलवायु परिवर्तन और सतत विकास पर पर्यावरण कार्य समूह और संपर्क समूह की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि ये चुनौतियां बढ़ते प्रदूषण, जैव विविधता हानि और बढ़ते तापमान की वैश्विक समस्या से संबंधित हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान में मध्य करियर प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग ले रहे वर्ष 2002 और 2003 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों से बातचीत की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि बातचीत के दौरान उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पिछले एक दशक में भारत की विदेश नीति किस प्रकार विकसित हुई है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में 15 चयनित पुरस्कार विजेताओं को राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार 2026 प्रदान किए। पुरस्कार विजेताओं ने राष्ट्र निर्माण, पासपोर्ट सेवा केंद्र, पुराने नियमों को समाप्त करने और नए नियम बनाने, प्रशासन में तकनीकी बदलाव तथा लेखा व्यवस्था जैसी विभिन्न सरकारी परियोजनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार बदलती प्रशासनिक और सामाजिक जरूरतों के अनुसार पेंशन प्रक्रिया को लगातार सरल बना रही है। उन्होंने बताया कि पेंशन फॉर्म से अनावश्यक प्रावधान हटाए गए हैं और जटिल प्रक्रियाओं को आसान बनाया गया है।
1: भारत सरकार में सेवानिवृत्त या पेंशनर्स की संख्या जो काम करने वाले कर्मचारी हैं वर्किंग एम्प्लॉय उससे कहीं अधिक है। रिटायरमेंट हैपनिंग एट द एज ऑफ 60 व्हेन द लाइफ स्पैन हैज गॉन ऑलमोस्ट अप टू 70 सो मोस्ट ऑफ दीज रिटायरिंग कुलीग्स आर इन द प्राइम ऑफ देयर हेल्थ ऑल्सो प्राइम ऑफ देयर एक्सपर्टाइज प्राइम ऑफ देयर एक्सपीरियंस और इसलिए उनको इस तरह से छुट्टी पे न जाने दिया जाए। उनकी सेवाएं उनका योगदान किसी न किसी तरह से राष्ट्र निर्माण के कार्य आए और किस प्रकार आ सकता है ये उनके साथ चर्चा करने का माध्यम बने।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने फर्जी जमानतदारों को लेकर चिंताओं के बीच मादक औषधि और मनोरोगी पदार्थ अधिनियम से संबंधित मामलों में आरोपी विदेशी नागरिकों के लिए जमानत की शर्तें कठोर करने का आदेश दिया है। इस संबंध में कई निर्देश जारी करते हुए न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि जमानत पर रिहा किए गए विदेशी नागरिकों को अपने पासपोर्ट संबंधित न्यायालयों में जमा करने होंगे और वे पूर्व अनुमति के बिना भारत से बाहर यात्रा नहीं कर सकेंगे। देश की 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की आबादी के लिए बेरोजगारी दर जुलाई में घटकर 5.1% रह गई जो इस वर्ष जून में 5.5% थी। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने मासिक श्रम बल और बेरोजगारी संबंधी आंकड़े जारी किए हैं। ग्रामीण बेरोजगारी दर पिछले महीने घटकर 4.5% रह गई जबकि जून में यह 5% थी। हर घर तिरंगा अभियान का आज समापन हो गया। हर घर तिरंगा अभियान के 5वें वर्ष में लाखों भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने, तिरंगा यात्राओं में शामिल होने और वंदे मातरम गाने के लिए एकजुट हुए। 2022 में शुरू हुआ यह अभियान अब देश के सबसे बड़े जन भागीदारी आंदोलनों में से एक बन गया है। एक रिपोर्ट।
2: इस वर्ष का अभियान भारत के राष्ट्र गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर केंद्रित था जिसमें देशभक्ति के अनोखे जश्न के तौर पर राष्ट्रध्वज और राष्ट्र गीत को एक साथ लाया गया। देश भर में तिरंगा यात्राओं, साइकिल और मोटरसाइकिल रैलियां, सांस्कृतिक जुलूसों, स्कूल कॉलेज के कार्यक्रमों और सामुदायिक आयोजनों में हर घर तिरंगा की भावना साफ दिखी। पिछले 5 वर्षों में हर घर तिरंगा लोगों की भागीदारी और गर्व का एक देशव्यापी प्रतीक बन गया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। यूपीआई से संचालित पोस्ट ट्रांसफर पर आधारित कतर से भारत में धन भेजने की सुविधा शुरू हो गई है। इस सेवा

0: के माध्यम से कतर में भारतीय समुदाय के लोग कतर पोस्ट आउटलेट्स के जरिए भारत में यूपीआई सक्षम बैंक खातों में सीधे धनराशि भेज सकते हैं। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है निखिल कुमार।
1: घरेलू शेयर बाजार आज गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 281 अंक लुढ़क कर 77,728 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी में 78 अंक की गिरावट देखी गई और ये 24,288 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया आज 18 पैसे कमजोर होकर 95.61 रुपए पर बंद हुआ।
0: और अब कुछ खेल खबरें। गोल में भारत के साथ टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच के तीसरे दिन श्रीलंका की पहली पारी 284 रन पर सिमट गई। इससे पहले भारत ने पहली पारी में 462 रन बनाए थे। श्रीलंका भारत से 178 रन पीछे है। पीवी सिंधु और आयुष शेट्टी नई दिल्ली में आयोजित BWF विश्व चैंपियनशिप के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। सिंधु ने महिला सिंगल्स में आयरलैंड की सोफिया नोबल को और आयुष ने पुरुष सिंगल्स में चीन के शी युकी को हराया। उत्तरी ओडिशा में बाढ़ की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि लगभग 42,000 हेक्टेयर फसल को नुकसान पहुंचा है।
2: केवंझर, भद्रक, बालेश्वर, मयूरभंज, जाजपुर और केंद्रापड़ा में बाढ़ का असर हुआ है, जिससे 1,304 गांव के लगभग 8 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। बैतरणी, ब्राह्मणी और सालंदी नदियां अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों को भोजन, पीने का पानी और बिजली की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने आज भद्रक और जाजपुर जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया और राहत और बचाव कार्य का जायजा लिया। राज्य के जल संसाधन विभाग का कहना है कि यह स्थिति अगले 4 से 5 दिनों तक बनी रह सकती है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: इस बीच मौसम विभाग ने झारखंड में कल के लिए तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा हो सकती है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में भ्रामक लेबलिंग और उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूकता विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, स्वतंत्रता दिवस से पहले ISI समर्थित शहजाद भट्टी आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त किया गया, 200 से अधिक संचालक गिरफ्तार। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग योजना के अंतर्गत लगभग 7,900 करोड़ रुपए के 31 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने परीक्षा सुधारों पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय पदाधिकारियों की नई टीम की घोषणा की। पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी और वसुंधरा राजे सिंधिया प्रमुख नामों में शामिल। कतर में रहने वाले भारतीयों के लिए डाकघरों से UPI के माध्यम से घर पैसे भेजने की सुविधा शुरू। और गोल क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका पहली पारी में 284 रन पर सिमटी, भारत को 178 रन की बढ़त। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम सायरा मुज्तबा विद द न्यूज एट 9। The headlines. ISI-backed terror group Shehzad Bhatti network destroyed ahead of Independence Day, says Home Minister Amit Shah. Over 200 operatives held. Government approves 31 new proposals worth nearly 7,900 crore rupees under Electronics Components Manufacturing Scheme. Education Minister Prahlad Joshi holds meeting with senior officials on examination reforms. Directs National Testing Agency to conduct thorough audit of all exam processes. BJP announces new team of national office bearers, Piyush Goyal, Smriti Irani and Vasundhara Raja Sindhya among key names. Indians in Qatar can now send money home through UPI from post offices. And in men's cricket, India take 178-run lead after restricting Sri Lanka to 284 in first innings of Gaul Test. And now the news in detail. Union Home Minister Amit Shah has informed that the government under the leadership of Prime Minister Narendra Modi destroyed the ISI-backed terror group Shehzad Bhatti network ahead of Independence Day. He informed that the government also thwarted its plans for subversive attacks by arresting more than 200 operatives. In a social media post, he said that security forces ripped apart the network by launching coordinated operations across different locations in 14 states.

0: गाइए गुनगुनाइए कहिए हमसे दिल की बात।
1: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
2: हेलो,
0: फिर क्या फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
1: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
0: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
1: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
0: ओनली ऑन AIR ओबरा।
3: श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत है फिल्म घर से, आवाज किशोर कुमार की। गीत को लिखा है गुलजार ने और धुन बनाई है आर डी बर्मन ने।

कार्यक्रम का आखिरी गीत है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में, फिल्म है इज्जत। बोल लिखे हैं साहिर लुधियानवी ने और धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की है।

हम आकाशवाणी ओबरा से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। इस कार्यक्रम का पहला गाना आपको सुनवाते हैं, किशोर कुमार का गाया हुआ। फिल्म है कटी पतंग। बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और धुन बनाई है राहुल देव बर्मन ने।

0: श्रोताओं, फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से। समय हुआ है रात्रि के 9:35 और 47 सेकेंड। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म बॉबी से। इसे गाया है लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह ने।
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है,
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है।
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम। देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप करते निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कहती हूँ,

0: गाइए गुनगुनाइए, कहिए हमसे दिल की बात।
1: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
2: हेलो,
0: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
1: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
0: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
1: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
0: ओनली ऑन AIR ओबरा।
3: शिव हरि के संगीत निर्देशन में आपको सुनवाते हैं जावेद अख्तर का लिखा हुआ गाना। आवाजें लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों की हैं। फिल्म का नाम है सिलसिला।

0: उम्र है
1: छोड़ो बहाना
0: ना ना ना।
2: श्रोताओं, ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में फिल्म जुगनू से। और आइए अब कार्यक्रम का आखिरी गीत आपको सुनवाते हैं मौसम फिल्म से। इसे गाया है लता मंगेशकर के साथ भूपेंद्र ने।

एफएम 102.7 पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। पेश है कार्यक्रम म्यूजिक गैलरी।

नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी ओबरा से मैं वंदना भट्ट आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं आपके अपने कार्यक्रम म्यूजिक गैलरी में। श्रोताओं, एक ऐसी गैलरी जहां तस्वीरें नहीं होती, यहां सजे होते हैं सुर, गीत और उनसे जुड़ी खूबसूरत यादें। कभी कोई गीत हमें हमारे बचपन तक ले जाता है, कभी किसी अपने की याद दिलाता है, कभी किसी रिश्ते की मिठास बन जाता है और कभी कभी दिल की वो बात कह देता है जिसे हम स्वयं शब्दों में नहीं कह पाते। और म्यूजिक गैलरी की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यहाँ गीत आप चुनते हैं, अपनी फरमाइशें, आपके संदेश और आपके अपनों के लिए आपके समर्पण इस कार्यक्रम को अपना बनाते हैं। तो आइए आज के इस संगीतमय यात्रा की शुरुआत करते हैं इस पहली फरमाइश के साथ।

दीवाना रेडियो लिसनर्स क्लब जमनिया गाजीपुर से ये मेल हमें भेजा है सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल और स्वाति जायसवाल ने। हमारे इन श्रोताओं ने हमें नाग पंचमी की बधाई दी है। तो श्रोताओं, आपको भी हमारे आकाशवाणी परिवार की ओर से नाग पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप सभी श्रोता सुनना चाहते हैं मिलन फिल्म का गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर और मुकेश ने।

करे शोर। अरे बाबा, शोर नहीं, शोर, शोर, शोर।

बहुत ही खूबसूरत गीत था श्रोताओं। और सच कहिए तो अच्छे गीतों की यही खूबी होती है कि वे खत्म तो हो जाते हैं लेकिन उनका एहसास बहुत देर तक हमारे साथ रहता है। श्रोताओं, म्यूजिक गैलरी में आप भी अपनी पसंद का गीत सुन सकते हैं। आप अपनी फरमाइश, गीत का नाम, फिल्म का नाम और जिसे आप गीत समर्पित करना चाहते हैं उनका नाम लिखकर हमें ईमेल कर सकते हैं। अपने मन का गीत हमें लिख भेजिए और बन जाइए हमारी इस म्यूजिक गैलरी का हिस्सा। हमारा ईमेल आईडी है akashvaniobra@gmail.com, यानी akashvaniobra@gmail.com। और श्रोताओं, ये अगला मेल हमारे पास आया है दत्तरेगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से, हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा का। आप सबकी फरमाइश है फिल्म तुमसे अच्छा कौन है फिल्म के गीत की, जिसे गाया है तौसीफ अख्तर ने। तो सुन पूरी करते हैं आपकी फरमाइश, आपको सुनवाते हैं ये गाना।

आप सुन रहे हैं म्यूजिक गैलरी प्रोग्राम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त वंदना भट्ट। इस समय हमारे साथ रेडियो की दुनिया के माध्यम से जुड़े हुए सभी श्रोताओं को मेरा सादर नमस्कार। श्रोताओं, आप चाहे घर पर हों, अपने कार्य स्थल पर हों, यात्रा में हों, या दिन भर की व्यस्तताओं के बीच कुछ पल अपने लिए निकाल रहे हों, आपकी पसंद हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए अपनी फरमाइश के ईमेल हमें करना ना भूलिए। और श्रोताओं, ये ईमेल हमारे पास आया है आसाम से, हितेंद्र दास का। आपकी फरमाइश है फिल्म गुमराह का गीत, और इस गीत को गाया है अलका याग्निक ने।

और श्रोताओं, अगली फरमाइश का जो गीत हम सुनेंगे ना, वो सिर्फ गीत की फरमाइश नहीं है, उसके गीत के साथ जुड़ी हुई है एक प्यारी सी भावना भी। पाटन गुजरात से ये मेल आया है धीरज राबाजी जी का। आपकी पसंद है फिल्म नूरी का गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर और नितिन मुकेश ने, और इसी गीत की फरमाइश हमें भेजी है ओबरा से। ये मेल प्राप्त हुआ है शशांक, ज्योति, पूनम और सात्विक का। आप लिखते हैं, जीवन में सुख कितना मिला ये मत गिनिए, बल्कि ये देखिए कि आपके कारण कितने दिलों में मुस्कान आई, यही सच्ची कमाई है। जी हाँ, बहुत अच्छी आपने बात कही कि अगर आपके कारण किसी के लबों पर मुस्कान आती है, उनके दिल में प्रसन्नता आती है, तो इससे बड़ी दौलत कुछ भी नहीं होती। जी हाँ, बहुत अच्छी बात है। और इसी के साथ पूरी करते हैं हम आपकी फरमाइश और आपको सुनवाते हैं फिल्म नूरी का ये गाना।

श्रोताओं, ये अगला मेल हमें प्राप्त हुआ है आर्य नगर कोहका भिलाई से। भेजने वाले हैं उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल। साथ ही धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल। आप सबकी फरमाइश है फिल्म नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे का गीत, जिसे गाया है मोहम्मद रफी ने। और श्रोताओं, हम आपको बता दें कि इन्होंने हमें नागपंचमी की बधाई भी दी है। तो आप सभी सुधी श्रोताओं को हमारी ओर से भी नागपंचमी की हार्दिक बधाई। और श्रोताओं, कार्यक्रम के बीच में हम आपसे एक गुजारिश करना चाहेंगे कि आप हमारे म्यूजिक गैलरी प्रोग्राम में अधिक से अधिक मेल भेजें, जिससे इस कार्यक्रम को और भी हम रोचक बनाएं और हमारे कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा ईमेल शामिल हो जाएं। तो मेल करना ना भूलिएगा। हमारा ईमेल एड्रेस है akashvaniobra@gmail.com, यानी akashvaniobra@gmail.com। और अब पूरी करते हैं हम जंघेल परिवार के सदस्यों की ये फरमाइश।

श्रोताओं, कभी कभी कोई गीत सिर्फ गीत नहीं होता, उसमें बीते हुए दिनों की खुशबू होती है, किसी अपने की आवाज होती है, किसी मुलाकात की याद होती है और कभी किसी अधूरी बात का एहसास भी। शायद इसलिए गीतों की फरमाइश का सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। जी हाँ श्रोताओं, आप भी हमें ऐसे ही ईमेल भेजते रहेंगे तो आपकी फरमाइशों का सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। फिलहाल सुनते हैं ग्राम दुर्हापुर जिला मुरादाबाद से, ये मेल है मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलबीर और उनके बहुत सारे साथियों का। श्रोताओं, आपने अपने मेल में अपनी फरमाइश का गीत नहीं लिखा है तो श्रोताओं, हम आपसे एक गुजारिश करेंगे कि आप जब भी ईमेल भेजते हैं तो उसमें अपनी फरमाइश का गीत जरूर शामिल करें, और अगर आप किसी को अपनी पसंद का गीत डेडिकेट करना चाहते हैं तो साथ में उनका भी नाम अवश्य लिखें। फिलहाल हम पूरी करते हैं इनकी फरमाइश और सुनवाते हैं इनको अपनी पसंद का गाना।

श्रोताओं, आकाशवाणी ओबरा से आप इस समय सुन रहे हैं म्यूजिक गैलरी प्रोग्राम। समय हुआ है रात्रि के 10:39:30। आप इस कार्यक्रम में सुन रहे हैं लोगों की फरमाइश के एक से एक बढ़कर सुंदर गीत। और श्रोताओं, अगर आपने अभी तक अपनी फरमाइश का गीत हमें नहीं लिख भेजा है तो अभी लिख भेजिए और इस कार्यक्रम में सुनिए अपनी पसंद का गाना। तो ईमेल आईडी हमारा भेजने के लिए है akashvaniobra@gmail.com। श्रोताओं, अभी मेल करिए और सुनिए अपनी पसंद का गाना। और अगला गाना हम आपको सुनवाते हैं अपने इन श्रोताओं की पसंद पर। ग्राम पंचायत बठेना, पाटन जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ से ये मेल भेजने वाले हैं बलकरण वर्मा, अंजलि, नीरा वर्मा, ज्योति, प्रहलाद वर्मा और घर परिवार के अन्य सदस्य। आप सभी ने सुनना चाहा है लता मंगेशकर का गाया हुआ गीत, फिल्म है गंगा जमुना सरस्वती।

श्रोताओं, कहते हैं संगीत की कोई भाषा नहीं होती, लेकिन हर गीत की अपनी एक कहानी जरूर होती है। और जब वही गीत किसी अपने के नाम के साथ जुड़ जाता है तो वो कहानी और भी खास हो जाती है। श्रोताओं, आप तो जानते ही हैं कि हमारा ये म्यूजिक गैलरी कार्यक्रम फरमाइशी ईमेल पर आधारित है। मेल पे आप भेजते हैं अपनी पसंद के गीत अपना नाम लिखकर, तो हम पूरी करते हैं आपकी फरमाइश। और श्रोताओं, एक बार फिर आपसे गुजारिश कि भेजते रहिए अपने ईमेल और सुनते रहिए अपनी पसंद के गीत हमारे कार्यक्रम में। और अगला गीत है

श्रोताओं, संभलपुर कांकेर से हमें मेल प्राप्त हुआ है फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव जी का। इन्होंने सुनना चाहा है लता मंगेशकर को फिल्म नगीना में। तो पूरी करते हैं आपकी फरमाइश, आपको सुनवाते हैं ये प्यारा सा गाना।

श्रोताओं आप हमें मेल भेजते हैं, उन मेलों में संदेश होते हैं कभी दोस्ती के, कभी प्यार के, कभी परिवार के लिए शुभकामनाएं हैं और कभी किसी पुराने गीत से जुड़ी याद है। यही तो बनाते हैं हमारे प्रोग्राम को कुछ खास, जिस प्रोग्राम का नाम है म्यूजिक गैलरी। तो आइए सुनते हैं ये अगली फरमाइश किसकी है। वीरजारा फिल्म के गीत के लिए हमें ये मेल भेजा है मोहम्मद यासीन अनजान ने। साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मिफ्रा नवाज और बेबी चाहत ने ये हमें मेल भेजते हैं दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से। आपने सुनना चाहा है वीरजारा फिल्म का गाना लता मंगेशकर, उदित नारायण, गुरदास मान और प्रथा मजूमदार की आवाजों

श्रोताओं, ऐसा लग रहा है जैसे अभी अभी हमने म्यूजिक गैलरी का दरवाजा खोला था और देखते ही देखते गीतों और यादों से सजी हमारी ये महफिल अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गई। लेकिन श्रोताओं, संगीत का सफर कहाँ खत्म होता है? आपकी फरमाइशें आती रहेंगी, आपके संदेश मिलते रहेंगे और म्यूजिक गैलरी में गीतों की ये महफिल सजती रहेगी। आप भी अपने पसंदीदा गीत के साथ हमें अपना संदेश भेजिए। संदेश भेजने के लिए हमारा पता है akashvaniobra@gmail.com, यानी akashvaniobra@gmail.com। श्रोताओं, हम आशा करते हैं कि आप बहुत सारे मेल हमको भेजेंगे और इसी के साथ अपनी रेडियो दोस्त वंदना भट्ट को कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार श्रोताओं।

श्रोताओं, ये था आज का म्यूजिक गैलरी प्रोग्राम। हम आकाशवाणी ओबरा से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। कुछ ही क्षणों में समाचार होंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए समाचारों की।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने स्वतंत्रता दिवस से पहले आईएसआई समर्थित शहजाद भट्टी आतंकवादी नेटवर्क को ध्वस्त कर 200 से अधिक आतंकवादियों को गिरफ्तार किया और उसके हमलों की साजिश नाकाम की। सुरक्षा बलों ने 14 राज्यों में समन्वित अभियान चलाकर कार्रवाई की। ये कार्रवाई आतंकवाद के खिलाफ केंद्र सरकार की सख्त नीति को दर्शाती है। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग योजना के अंतर्गत 31 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं में करीब 7,900 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। ये प्रस्ताव 10 राज्यों से मिले हैं, जिनमें तमिलनाडु से 7, महाराष्ट्र और हरियाणा से 6-6 प्रस्ताव शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में प्रस्तावकों को मंजूरी पत्र सौंपे। श्री वैष्णव ने कहा कि इन परियोजनाओं से रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
1: इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम में 106 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हो चुके हैं। इन एक प्रोजेक्ट्स में 69,548 करोड़ इन्वेस्टमेंट आ रहा है और 2.5 लाख लोगों को टोटल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मिला के इन फैक्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। जिस स्कीम में 31 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं, बहुत तेजी से इंडस्ट्री ने अपना इन्वेस्टमेंट लगाकर 38 प्रोजेक्ट्स में मैन्युफैक्चरिंग और ऑलरेडी चालू कर दी है और 16 प्रोजेक्ट्स अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि इन परियोजनाओं में एसिटिलिन ब्लैक स्पीकर और माइक्रोफोन, ऑप्टिकल ट्रांसीवर कैपेसिटर और कॉइल जैसे उत्पादों का विनिर्माण शामिल है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान श्री जोशी ने स्थापित परीक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने गोपनीय संचालन व्यवस्था में व्यापक सुधार करने को कहा। उन्होंने सुरक्षित कक्षों और एयर गैप्ड सिस्टम को मजबूत करने के निर्देश दिए। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जमा करने संबंधी प्रोटोकॉल में भी व्यापक सुधार युद्ध स्तर पर लागू करने को कहा है। श्री जोशी ने एजेंसी को सभी परीक्षा प्रक्रियाओं का व्यापक निरीक्षण कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने अब तक की गई सुधारात्मक कार्रवाई पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को भी कहा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज पार्टी के नए राष्ट्रीय पदाधिकारियों की घोषणा की। श्री नवीन ने वसुंधरा राजे सिंधिया, तीरथ सिंह रावत, राम माधव, बैजयंत जयपांडा, सरदार मनप्रीत सिंह बादल और रेखा वर्मा सहित 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्षों की नियुक्ति की है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता पीयूष गोयल को पार्टी का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री बी एल संतोष को संगठन

0: आत्मक राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। श्री नबीन ने विनोद तावड़े, सुनील बंसल, स्मृति ईरानी और बिप्लव कुमार देब सहित 8 पार्टी नेताओं को राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया है। पार्टी ने अपने विभिन्न मोर्चों के नए प्रमुखों के नाम भी घोषित कर दिए हैं। इनमें डॉक्टर हेमांग जोशी युवा मोर्चा अध्यक्ष, रूप कुमारी चौधरी महिला मोर्चा अध्यक्ष और बंसीलाल गुर्जर किसान मोर्चा अध्यक्ष बनाए गए हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों को बधाई दी। यूपीआई से संचालित पोस्ट ट्रांसफर पर आधारित कतर से भारत में धन भेजने की सुविधा शुरू हो गई है। इस सेवा के माध्यम से कतर में भारतीय समुदाय के लोग कतर पोस्ट आउटलेट्स के जरिए भारत में यूपीआई सक्षम बैंक खातों में सीधे धनराशि भेज सकते हैं। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तहत गणना का चरण आज पूरा हो गया। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के अनुसार इस प्रक्रिया के तहत दिल्ली में लगभग 1,45,00,000 फॉर्म बांटे गए। इस दौरान 13,000 से ज्यादा बूथ लेवल अधिकारी घर घर पहुंचे और मतदाता सूची के सत्यापन का काम पूरा किया। इस महीने की 24 तारीख से 23 सितम्बर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 102.7 पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11:05 हुए हैं। हमारी आज की ये सभा यहीं समाप्त होती है। कल सुबह 5:50 पर हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति चाहते हैं। जय हिंद।